0: मैं रहता हूँ भाई साहब।
1: लेकिन एक मिनट आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं,
0: मैं आपको बताऊं जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
1: ये सपोर्ट
0: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पस पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा आप बताएं।
1: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
2: हाँ हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी दो दो फीट तीन तीन फीट ऐसे निकला हुआ है इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी
1: है। जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
2: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स, तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना, तो यही सेम कंडीशन।
3: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते, लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
4: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
3: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही हैं, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
4: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत, जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है, और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं, और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है, और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मीटर है ये बीम, यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहां पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा, अगर कोई गिर जाए लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए। यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
3: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
5: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
4: टूटा फाटा है,
5: टूटा फूटा आप देखें, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखें बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे, और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके, तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
3: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
4: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे। ये है 25,000 का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
5: 25,000 रेंट है, आप देख लीजिए, 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं और काफी महंगा है मैम। और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका।
4: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
5: महसूस कर सकती हैं,
4: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के। अब एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए। एक पंखा लगा हुआ है, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
3: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
6: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
1: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
0: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
2: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़ेंगे ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए तब जाके हम लोग खुद मिलके NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
3: कितनी देर में आए ये लोग?
2: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है, तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
0: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा PG से नए सिरे से खबरदार किया है।
4: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा PG लेता है, पर PG की हम छात्रों की ये मांग है कि जो PG की गाइडलाइंस होती है वो PG की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक PG रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
5: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
0: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
6: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में PG है उसी बिल्डिंग के बगल में, वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
7: अगल बगल की बिल्डिंग आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही हैं बिल्डिंगें। और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब्स हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे।
4: होती है 11 महीने,
3: 6 महीने या 11 महीने का,
4: 11 महीना मैक्स, हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
3: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते
4: हैं। हम बच्चों को यही बोलते रहते हैं कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब DU प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
0: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने MCD के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
8: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के, जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए, जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
0: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
9: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई, उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
10: मेरे घर वाले पैनिक के ही वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है, फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है, तो हाँ फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
0: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखी, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
11: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी, टेम्परेरी जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है, तो दैसाइन की सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
0: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है, लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है। इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
10: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
9: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है, और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है।
10: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
12: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे डेड, तो उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है, इससे पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
0: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्य निकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
9: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं, और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
13: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है, मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
14: मैं तो 3rd ईयर में हूँ, तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो, हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज है हमने पहले भी उठाई है, हॉस्टल की मांग है DU की बहुत टाइम से, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है, है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजीज, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
15: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो पीजी हैं उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे के प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देंगे। और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे। उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
16: पीजी की सिचुएशंस तो सब जगह जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा उनसे ज्यादा ही खराब है।
0: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
8: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या क्या अब इस कुएं की जो जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो ASI की टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है।
0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू

0: कुआं मिला है। और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
1: भाई ये जो मस्जिदें होती थी, ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहां आज भी है, मेरे यहां चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी। तो वो है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहां ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी। कोर्ट की लड़ाई और कोर्ट में ही रहेगी।
2: कुएं की कहानी क्या है ये एसआई की जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है। दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला, इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है, यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई, मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
3: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
4: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
3: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
4: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
3: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और वो भी विधिक रूप से वैध।
2: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया, क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
5: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
2: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी। सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
6: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जिस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई।
2: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
7: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

गांव में मणिपुर के म्यूजिक टीचर की पीट पीट कर हत्या। ढाबे पर हो रहे शोर का किया था विरोध। हत्या के विरोध में मणिपुर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक हरिराम और उसकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं। मौके पर पहुंची एएसआई टीम ने किया निरीक्षण। अलग अलग एंगल से शुरू की गई जांच। पीएम मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक। मंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने पेश किया कामकाज का ब्यौरा। योजनाओं को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात। कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत। सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही हैं करारा जवाब।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में एक काफी बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हत्या की गई है, पीट पीट कर एक टीचर की हत्या कर दी गई है। दिल्ली में मणिपुर के एक शख्स की हत्या से खलबली मच गई है। वारदात दक्षिणी दिल्ली के सनलाइट थाना क्षेत्र किलोकरी गांव की है। मृतक की शिनाख्त 54 साल के म्यूजिक टीचर विक्रम सिंह के रूप में हुई है। खबर है कि मणिपुर के रहने वाले विक्रम सिंह ने घर के सामने एक ढाबे पर हो रहे शोर शराबे और हंगामे का विरोध किया था और उसी दौरान डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट शुरू की। गंभीर हालत में बेटे ने उन्हें होली फैमिली अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की FIR दर्ज कर एक नाबालिग समेत सभी 8 आरोपियों को भी पकड़ लिया है। तो वही हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट समुदाय के लोगों ने सनलाइट कॉलोनी इलाके में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है।
1: अभी हम दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट के लोग एकत्रित हैं। दरअसल सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक मणिपुर के रहने वाले व्यक्ति की हत्या पीट पीट कर की गई है, जिसके बाद ये लोग एकत्रित हुए हैं। हम आगे चल के भी तस्वीरें दिखा देते हैं। एक मशहूर म्यूजिशियन विक्रम उनका नाम है, उनकी पीट पीट करके हत्या की गई है, ऐसा इनका आरोप है। और उसके बाद ये लोग जस्टिस की मांग को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दरअसल उनके घर के बाहर कुछ लोग शोर कर रहे थे, तो वो उसका विरोध किए और जब विरोध किए तो 4 से 5, जैसा कि लोग बता रहे हैं, 6-7 लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया, जिसके बाद उनके परिजनों के द्वारा उनको होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद ये लोग थाने पर एकत्रित हुए हैं और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
2: जो लोकल है, दारू पी के बहुत शोर शराबत कर रहा था, तो जब शोर शराबत किया था, एक मणिपुरी का लड़का है, वो गिटारिस्ट है, बहुत जाने माने गिटारिस्ट है, मणिपुरी गिटारिस्ट है, तो उसने रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए और यहाँ पे शोर शराबत मत कीजिए। तो जब उसने ये बताया, उसको रिक्वेस्ट किया गया था, उसको SOL की गई है, तो उसको उसका पूरा 8 लोग ने मारा गया था। मैं जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे तो रास्ते में वो अनकॉन्शियस हो गया था, लेकिन जब उसको CT स्कैन करने के लिए कोशिश किया था, तब उसकी BP बहुत लो हो गए थे, तो CT स्कैन कर नहीं पाया, फिर उसके बाद वो बचा ही नहीं पाया।
0: अब बात कर लेते हैं दिल्ली बिल्डिंग हादसे की। दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के 27 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 घायल हो गए हैं। मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक हरिराम गुप्ता और उसकी पत्नी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। MCD के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही दिल्ली में मौजूद सभी PG के स्ट्रक्चरल ऑडिट के भी आदेश दिए गए हैं। बिल्डिंग मालिक की पत्नी भी न्यायिक हिरासत में भेज दी गई है, उनके बेटे को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। 27 घंटे इस पूरे हादसे को बीत चुके हैं, ऐसे में अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस हादसे में जो मालिक है उनकी गिरफ्तारी हो गई है, हरिराम गुप्ता, और उनकी पत्नी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं उनके बेटे को 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। और इस पूरे हादसे के बाद दिल्ली सरकार बड़े एक्शन में है। अभी फिलहाल हादसे में जो रेस्क्यू किया गया उसमें 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी अब हो चुकी है।
3: हमारे साथ ट्रेडिशनल DCP अभिमन्यु सिंह है, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है और उनकी भूमिका क्या है?
4: इसमें हमने जो कल बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था सत्य निकेतन एरिया के अंदर, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इनिशियली हमें लगा था कि हरिराम गुप्ता ओनर है इसके, उनको वो भागे हुए थे इस इंसिडेंट के बाद, उनको इमिडिएटली हमने 10 टीम बनाई अलग अलग लोकेशंस पे, उनके रेजिडेंस पे भी भेजा गया, बट फाइनली भिवाड़ी से उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनके नाम था और उनका बेटा उसके साथ ऑपरेट करता था इस पूरे PG को, बट जो इसकी ओनर है उनकी वाइफ थी, तो इस हिसाब से 3 लोग इस फैमिली के अरेस्ट हुए जो इसको ओनर थे और इसको PG को ऑपरेट करते थे।
3: बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है, क्या पूछताछ में उसने बताया, क्या पूरा
4: जो एक्यूज है उनकी इंटरोगेशन करी गई तो पता चला कि बेसमेंट में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबर वर्कर्स भी वहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी भी स्टेटमेंट ली गई। उन्होंने बताया उस कंस्ट्रक्शन को रिनोवेशन को काम को करते समय वो बिल्डिंग मिसहैप की वजह से कुछ कोलैप्स कर
3: गई। उनसे बात करने के लिए ये थे अभिनंदन सिंह, जिनका कहना कि इस हादसे में 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि सत्य निकेतन में चल रहा ऑपरेशन खत्म हो गया है। इसमें 12 को रेस्क्यू करवाया गया, जिसमें 9 छात्र और 3 मजदूर थे। वहीं 7 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में हॉस्टल मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया गया।
5: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजेस में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
5: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
6: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह मंजिल पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे। वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
5: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
7: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा और हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर्स है सब।
5: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो ये है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। ये हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
8: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
9: अच्छा,
8: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
9: लेकिन एक मिनट आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
8: मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
9: ये सपोर्ट,
8: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना। पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा, आप बताएं।
9: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
7: यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनीज
9: है। जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
7: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स, तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना तो यही सेम कंडीशन।
5: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
10: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
5: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही हैं, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है। जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
10: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप देख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का। यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
5: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
11: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है। कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
10: टूटा फाटा है,
11: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखिए बहुत खतरा है मैम। ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं। बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके। तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
5: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
10: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे। ये है 25,000 का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
11: 25,000 रेंट है, आप देख लीजिए, 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं और काफी महंगा है मैम। और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका।
10: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
11: महसूस कर सकती है,
10: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के। अब एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए। एक पंखा लगा हुआ, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
5: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: तो दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, संकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कार्रवाई कब होगी।

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
1: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
0: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
2: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए तब जाके हम लोग खुद मिलके NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCT के लोग थे वो आए नहीं थे।
3: कितनी देर में आए
2: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
0: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा PG से नए सिरे से खबरदार किया है।
4: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा PG लेता है, पर PG की हम छात्रों की ये मांग है कि जो PG की गाइडलाइंस होती है वो PG की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक PG रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
5: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
0: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
6: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में PG है उसी बिल्डिंग के बगल में, वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
7: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही हैं बिल्डिंगें। और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहां पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहां पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहां से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहां पे।
8: होती है 11 महीने,
3: 6 महीने या 11 महीने का देते,
8: 11 महीना मैक्स, हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
3: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
8: हम बच्चों को यही बोलते रहते हैं कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब DU प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
0: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने MCD के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
9: एमसीडी के जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी नहीं वापस आएंगे। उनका तो सब कुछ चला गया, लेकिन जो अफसर जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती थी, वही क्या उन्हें अब सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? और वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा? ये बड़ा सवाल है।
0: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
10: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई, उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
11: मेरे घर वाले हाँ पैनिक के ही वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है, तो हाँ फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
0: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखी, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
12: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी, टेम्परेरी जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है, तो दैसेंग की सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
0: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है, लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है। इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
13: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
10: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है, और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है,
13: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
14: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे रिकॉर्डेड, तो उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है इससे पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
0: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्य निकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
10: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं, और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
15: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है, मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
16: मैं तो 3rd ईयर में हूँ, तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है क्योंकि हमें तो हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाजें हमने पहले भी उठाई है हॉस्टल की मांग है डीयू की बहुत टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजी, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
17: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो पीजी है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे की प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देंगे। और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे। उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
18: पीजी की सिचुएशंस तो सब जगह जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा उनसे ज्यादा ही खराब है।
0: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
9: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके प्रार्थना करने से प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है? कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके पढ़ने से पढ़ाई में मन लगता है? और कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके पढ़ाई करने से, काम करने से धन की प्राप्ति होती है? क्या है दिशाओं का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
2: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
3: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
2: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: आज तक की पंचायत में यूपी विजय के पक्के वादे।
2: अंजना जी को इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा। वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा।
1: यूपी की चुनावी लीला का मथुरा से शंखनाद, सिर्फ आज तक पर।

0: के म्यूजिक टीचर की पीट पीट कर हत्या, ढाबे पर हो रहे शोर का किया था विरोध, हत्या के विरोध में मणिपुर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक हरिराम और उसकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एएसआई टीम ने किया निरीक्षण, अलग अलग एंगल से हो रही है जांच। पीएम मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने पेश किया कामकाज का ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही हैं करारा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली के मणिपुर के एक शख्स की हत्या से खलबली मच गई है। वारदात दक्षिणी दिल्ली के सनलाइट थाना क्षेत्र केलोकरी गांव की है। मृतक की शिनाख्त 54 साल के म्यूजिक टीचर विक्रम सिंह के रूप में हुई है। खबर है कि मणिपुर के रहने वाले विक्रम सिंह ने घर के सामने एक ढाबे पर हो रहे शोर शराबे और हंगामे का विरोध किया था। आरोप है कि इसी दौरान डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। गंभीर हालत में बेटे ने उन्हें होली फैमिली अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर एक नाबालिग समेत सभी 8 आरोपियों को पकड़ लिया है। तो वहीं हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट समुदाय के लोगों ने सनलाइट कॉलोनी इलाके में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। तो 8 लोगों की गिरफ्तारी इस बीच हो चुकी है। इस पूरे हादसे के बाद दिल्ली में हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, जिसको लेकर विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मणिपुर के एक टीचर का मर्डर दिल्ली में किया गया, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद इसको लेकर विरोध जताया गया।
1: अभी हम दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट के लोग एकत्रित हैं। दरअसल सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक मणिपुर के रहने वाले व्यक्ति की हत्या पीट पीट कर की गई है, जिसके बाद ये लोग एकत्रित हुए हैं। हम आगे चल के भी तस्वीरें दिखा देते हैं। एक मशहूर म्यूजिशियन विक्रम उनका नाम है, उनकी पीट पीट करके हत्या की गई है, ऐसा इनका आरोप है। और उसके बाद ये लोग जस्टिस की मांग को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दरअसल उनके घर के बाहर कुछ लोग शोर कर रहे थे, तो वो उसका विरोध किए, और जब विरोध किए तो 4 से 5, जैसा कि लोग बता रहे हैं, 6-7 लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया, जिसके बाद उनके परिजनों के द्वारा उनको होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद ये लोग थाने पर एकत्रित हुए हैं और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
2: जो लोकल है, दारू पी के बहुत शोर शराबत कर रहा था, तो जब शोर शराबत किया था, एक मणिपुरी का लड़का है, वो गिटारिस्ट है, बहुत जाने माने गिटारिस्ट है, मणिपुरी गिटारिस्ट है, तो उसने रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए और यहाँ पे शोर शराबत मत कीजिए। तो जब उसने ये बताया, उसको रिक्वेस्ट किया गया था, उसको एसॉल्ट की गई है, तो उसको उसका पूरा 8 लोग ने मारा गया था। मैं जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो रास्ते में वो अनकॉन्शियस हो गया था, कि जब उसको सीटी स्कैन करने के लिए कोशिश किया था, तब उसकी बीपी बहुत लो हो गए थे, तो सीटी स्कैन कर नहीं पाया, फिर उसके बाद वो बचा ही नहीं पाया।
0: अब बात कर लेते हैं दिल्ली बिल्डिंग हादसे की। दिल्ली के सत्यनिकेतन बिल्डिंग हादसे के 27 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए। मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक हरिराम गुप्ता और उसकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जबकि बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और एमसीडी के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हादसे को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही दिल्ली में मौजूद सभी पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट के भी आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सत्यनिकेतन में चल रहा ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। इसमें 12 को रेस्क्यू करवाया गया जिसमें से 9 छात्र और 3 मजदूर थे, तो वहीं 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में हॉस्टल मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया गया है।
3: हमारे साथ ट्रेडिशनल डीसीपी अभिमन्यु सिंह है, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है और उनकी भूमिका?
4: इसमें हमने जो कल बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था सत्यनिकेतन एरिया के अंदर, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इनिशियली हमें लगा था कि हरिराम गुप्ता ओनर है इसके, उनको वो भागे हुए थे इस इंसिडेंट के बाद, उनको इमिडिएटली हमने 10 टीम बनाई अलग अलग लोकेशंस पे, उनके रेजिडेंस पे भी भेजा गया, बट फाइनली भिवाड़ी से उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनके नाम था और उनका बेटा उसके साथ ऑपरेट करता था इस पूरे पीजी को, बट जो इसकी ओनर है उनकी वाइफ थी, तो इस हिसाब से 3 लोग इस फैमिली के अरेस्ट हुए जो इसको ओनर थे और इसको पीजी को ऑपरेट करते थे।
3: बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है, क्या पूछताछ में उसने बताया, क्या पूरा
4: जो एक्यूज है उनकी इंटरोगेशन करी गई तो पता चला कि बेसमेंट में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबर वर्कर्स भी वहां पे काम कर रहे थे, उनकी भी स्टेटमेंट ली गई। उन्होंने बताया उस कंस्ट्रक्शन को रिनोवेशन को काम को करते समय वो बिल्डिंग मिसहैप की वजह से कुछ कोलैप्स कर
3: गया। उनसे बात करने के लिए ये थे अभिमन्यु सिंह, जिनका कहना कि इस हादसे में 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम है। जर्जर इमारतें, संकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कार्रवाई कब होगी।
5: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्यनिकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
6: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है, तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
5: सत्यनिकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
7: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं और ऐसी 6-6 मंजिल 5-5 मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
5: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
8: पानी, इलेक्ट्रिसिटी यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा, हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, यहाँ बस कॉमर्शलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर से सब।
5: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो यह है कि सत्यनिकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
9: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
10: अच्छा अच्छा,
9: हाँ मैं रहता हूँ भाई साहब।
10: लेकिन एक मिनट आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
9: मैं आपको बताऊं, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
10: ये सपोर्ट,
9: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पस पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा आप बताएं।
10: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
8: हाँ हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी दो दो फीट तीन तीन फीट ऐसे निकला हुआ है इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी
10: है। जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
8: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स, तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना तो यही सेम कंडीशन।
5: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते, लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
11: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
5: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही हैं, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
11: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत, जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है, और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है, और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहां पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा, अगर कोई गिर जाए लड़खड़ा के, स्टैम्पीड हो जाए। यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
5: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
12: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
11: टूटा फाटा है,
12: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखिए बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके, तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
5: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
11: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे। ये है 25,000 का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
12: 25,000 रेंट है, आप देख लीजिए, 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं और काफी महंगा है मैम। और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका।
11: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
12: महसूस कर सकते हैं,
11: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के। अब एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए। एक पंखा लगा हुआ है, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
5: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: एमसीडी के जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी नहीं वापस आएंगे। उनका तो सब कुछ चला गया, लेकिन जो अफसर जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती थी, और क्या उन्हें अब सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? क्योंकि वो कब जेल जाएंगे ये सवाल है। जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा, ये बड़ा सवाल है।
5: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
13: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा, और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा, और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
5: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
14: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े, और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए तब जाके हम लोग खुद मिल के, NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
11: कितनी देर में आए ये लोग?
14: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है, तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
5: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा पीजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
15: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा पीजी लेता है, पर पीजी की हम छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है, या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है, मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
16: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य है, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
5: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाली ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
17: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
18: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगें। और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे।
19: होती है 11 महीने,
11: 6 महीने या 11 महीने का,
19: 11 महीना मैक्स, हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
11: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
19: हम बच्चों को यही बोलते रहते हैं कि आप चेंज कर लेना सेकंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम, हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
5: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
0: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके प्रार्थना करने से प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है? कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके पढ़ने से पढ़ाई में मन लगता है? और कौन सी दिशा की तरफ चेहरा करके पढ़ाई करने से, काम करने से धन की प्राप्ति होती है? क्या है दिशाओं का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

ढाबे पर हो रहे शोर का किया था विरोध, हत्या के विरोध में मणिपुर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक हरिराम और उसकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एएसआई टीम ने किया निरीक्षण, अलग अलग एंगल से हो रही है जांच। पीएम मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने पेश किया कामकाज का ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही हैं करारा जवाब।

साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अलग अलग दिशाओं की और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग दिशाओं का महत्व क्या है और अलग अलग दिशाओं से आप जीवन में फायदा कैसे उठा सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 2:42 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 4:39 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, किसी भी धर्म शास्त्र की बात करें, सामान्य जीवन की बात करें, उसमें दिशाओं को बड़ा महत्व दिया गया है और अलग अलग धर्मों में भी दिशाओं के अलग अलग प्रयोग की बात की गई है। तो आखिर ये दिशाएं किस तरह से हमारे ऊपर असर डालती हैं? देखिए, दिशाओं का संबंध सूर्य और इसके प्रकाश से होता है। सूर्य के प्रकाश का मूवमेंट अलग अलग तरह जाता है, अलग अलग हिसाब से जाता है। तो सूर्य और इसके प्रकाश के हिसाब से दिशाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अलग अलग दिशाओं में प्रकाश का अलग प्रभाव होता है और ये अलग तरीके की ऊर्जा पैदा करता है। अगर हम दिशाओं के महत्व को न समझें और बिना समझे इस ऊर्जा के संपर्क में आए तो इससे नुकसान होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी समझ रख करके काम करें तो हर दिशा का पूरा फायदा हम उठा सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि किस दिशा से किस तरीके का फायदा सबसे ज्यादा हो सकता है। दिशाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक तनाव से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सबसे पहले जानते हैं पूर्व दिशा के बारे में, जिसको आम तौर पर लोग पूरब कहते हैं। पूर्व दिशा कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, सामान्य ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि पूर्व दिशा सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस दिशा की तरफ चेहरा करके, मुंह करके अगर आप काम करते हैं तो काम करना हमेशा लाभदायक होता है। पूर्व दिशा की तरफ सूर्य और बृहस्पति देव का प्रभाव पाया जाता है। सूर्य और बृहस्पति देव यहां पर असर डालते हैं। इस दिशा से मान सम्मान, यश और ज्ञान मिलता है। ये दिशा आध्यात्मिक भी है, ज्ञान की भी है और मान सम्मान, नाम और यश देने वाली दिशा भी है। जहां तक हो सके पूजा पाठ, ध्यान और पढ़ाई पूर्व दिशा की तरफ अगर चेहरा करके करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जीवन में ढेर सारा मान सम्मान चाहिए तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करिए, आपको लाभ होगा। अन्य दिशाओं पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न काजल ने हमें लिखा है और काजल हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1992। जन्म का समय सुबह के 7:35। जन्म स्थान है उरई, उत्तर प्रदेश। काजल कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। काजल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है। साल 2027 के शुरुआती समय में स्वयं की इच्छा से आपका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। केवल आप अपने क्रोध और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, पश्चिम दिशा भी बहुत ऊर्जावान दिशा है। जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने की वजह से सूर्य पूर्व से प्रकट होते हैं, यानी पूर्व से ऊर्जा होती है, और पश्चिम में अस्त होते हैं, यानी पश्चिम की तरफ भी ऊर्जा का वही लेवल रहता है। ज्योतिष के हिसाब से शनि इस दिशा में अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, अत्यंत ताकतवर हो जाते हैं। इस दिशा से आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपकी खुशहाली और आपकी मैरिटल लाइफ प्रभावित होती है। पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके ध्यान करने से और प्रार्थना करने से इसका प्रभाव तुरंत आता है। लेकिन अगर आप पश्चिम की तरफ चेहरा करके भोजन करेंगे तो इससे आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो स्वास्थ्य खराब होगा और आर्थिक नुकसान, पैसों रुपयों की दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। दिशा पर हमारी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

में काम ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब जानते हैं कि उत्तर दिशा कितनी महत्वपूर्ण है और इसका महत्व क्या है। देखिए, उत्तर दिशा धन और आर्थिक लाभ की दिशा है। इस दिशा में बुध ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन मंगल की भूमिका भी इस दिशा में थोड़ी बहुत आ जाती है। ये दिशा शक्ति और साहस प्रदान करती है, पैसा देती है, बुद्धि देती है, ज्ञान देती है। इस दिशा की तरफ चेहरा करके काम करने से और व्यापार करने से ज्यादा लाभ होता है, खास तौर से अगर आपको समझाने सलाह देने का काम करना हो या बोलने का लिखने पढ़ने का काम करना हो और आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके काम करें तो आपको लाभ होगा। धन की प्राप्ति के लिए इस दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा करनी चाहिए। धन आसानी से मिलेगा और उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करने से कम संघर्ष में आप जीवन में ढेर सारी सफलता पा जाएंगे। अब जानते हैं दक्षिण दिशा के बारे में, साउथ डायरेक्शन के बारे में क्या महत्व है। देखिए, आम तौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन नकारात्मक है, अशुभ है या इसको खराब दिशा समझा जाता है, लेकिन ये दिशा आयु को और स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकती है। इसके अलावा दक्षिण दिशा आकस्मिक लाभ और आकस्मिक उन्नति भी देती है। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके शनिवार को या अमावस्या को दीपक जलाएं तो आपकी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और इस दिशा की तरफ अगर आप मुंह करके भोजन करेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, आपको पेट की समस्याएं और कल्पना की बीमारियां, इमेजिनेशन की प्रॉब्लम परेशान करेंगी। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके भी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, आयु कम होती है। देखिए, दिशाओं से लाभ उठाने की कुछ चमत्कारी चीजें आपको बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आप निरंतर स्वस्थ रहे, इसके लिए मंत्र पढ़ते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा प्रार्थना करिएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, रोजगार में सफलता चाहिए, नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत है, तो आप जो भी पूजा प्रार्थना करते हैं वो पश्चिम की तरफ चेहरा करके आपको करना चाहिए। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन एकाग्र नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, तो ऐसी सिचुएशन में आप उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चेहरा करके पढ़िए। और ख़ास तौर से मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका काम वाणी का है, समझाने और सलाह देने का है,
तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके काम करिएगा, लाभ होगा। अगर जीवन में अज्ञात बाधाएं आ रही हों, कुंडली में कोई शाप हो, कोई दोष हो, उसके लिए कोई पूजा कर रहे हों, कोई प्रार्थना कर रहे हों, तब दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके प्रार्थना करिएगा, शाप दोष और अज्ञात बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम का दबाव कम होगा, धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोज।

रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

धन का लाभ होगा, लेकिन बेवजह की दौड़ भाग आज करनी पड़ सकती है। अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके कोई भी शुभ काम करने को नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो दक्षिण की तरफ चेहरा करके ही करना शुभ होता है। कौन से काम है वो? देखिए, दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की, पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। इसीलिए अगर पूर्वजों को जल देना है, तर्पण करना है, तो दक्षिण की तरफ चेहरा होना चाहिए। पूर्वजों के लिए दीपक जलाना है तो भी चेहरा दक्षिण की ओर होना चाहिए। और अगर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कोई पाठ करना है तो भी आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि पितरों से संबंधित या पूर्वजों के आशीर्वाद से संबंधित कोई काम हो तो वो दक्षिण की तरफ चेहरा करके करने से वो काम शुभ होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या दूर होगी। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके कर्ज की स्थिति में, कर्ज की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न शिक्षा अग्रवाल ने हमें लिखा है और शिक्षा हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1994। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3:45। जन्म स्थान है आगरा। शिक्षा कह रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस करना चाहती हूं, क्या व्यापार में जाना मेरे लिए बेहतर होगा? शिक्षा, आपकी कुंडली ही है व्यापार वाली, तो व्यापार में तो आपको जाना ही चाहिए और वर्तमान समय भी आपका बिल्कुल ठीक है। इसी समय अगर आप व्यापार के लिए कोशिश करें
तो मुझे लगता है आपको काफी लाभ होगा, तो आप व्यापार के लिए जाने का प्रयत्न अभी से शुरू कर दीजिए। सिर्फ आपको दो सलाह दूंगा मैं। पहला, छोटे लेवल पे व्यापार करिएगा, बहुत ज्यादा कर्जे मत लीजिएगा। दूसरा, पार्टनरशिप में व्यापार करने से बचिएगा। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें और जब मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो नारंगी रंग का तिलक लगाकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कर्क राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को, बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। देखिए, आज द्वादशी तिथि है, मंगलवार है, तो आज हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा। और आज पुष्य नक्षत्र भी है, इसीलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ छोटी वस्तु ही सही दान जरूर करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

दिल्ली बिल्डिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। दिल्ली हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 7 लोगों की मौत, 5 घायलों का इलाज जारी। हरिराम के नाम बिजली का कनेक्शन था, बेटा महेश बिल्डिंग का मैनेजमेंट देखता था, प्रॉपर्टी ऑन पेपर हरिराम की पत्नी उर्मिला के नाम थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली बिल्डिंग घटना को बताया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस। दिल्ली में मौजूदा सभी पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट के दिए गए आदेश, दिल्ली में कोचिंग हॉस्टल और पीजी की सुरक्षा जांच होगी। एलजी बैठक के बाद मंत्री आशीष सूद बोले, सभी विभाग मिलकर तय समय में पूरी करेंगे जांच, छात्रों की रेजिडेंशियल सुविधाओं का गैप भरने पर भी जोर। मुखर्जी नगर में यूपीएससी अभ्यर्थियों का रेंट माफिया के बीच गुजर बसर, जर्जर मकानों में रहने को मजबूर छात्र, 25,000 रूपये तक महीने का खर्च, न किराया एग्रीमेंट न मकान मालिकों का आता पता। चोरी के डर से सहमे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ब्रोकर ज्यादा किराया देने वाला मिलते ही कर देते हैं कमरा खाली। वहीं छात्रों का दावा कि इमारतों में पिलर तक नहीं है, कभी भी हो सकता है हादसा। बिहार में 400 बिना रजिस्ट्रेशन वाले पीजी हॉस्टल चिन्हित, सभी जिला अधिकारियों को भेजा गया पत्र, एसपी को कार्रवाई और संचालकों से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश। पीजी हॉस्टल्स पर पुलिस दीदी की हर महीने निगरानी, छात्रों से बातचीत कर सुरक्षा का लिया जा रहा है फीडबैक। एडीजी बोले, इमारतों की उम्र और सुरक्षा का ऑडिट भी जरूरी। पीएम मोदी आज वडोदरा, नवसारी और मुंबई के दौरे पर, 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवसारी दौरे की तैयारियां पूरी, देश का पहला एआई तकनीक से लैस आधुनिक कमलम तैयार हुआ। हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद के बीच बीजेपी का 19 जिलों में सामाजिक सौहार्द संकल्प प्रदर्शन, हरिद्वार में कैबिनेट मंत्रियों समेत नेताओं ने किया धरना। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर होगा उपचुनाव, 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। वहीं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद होने वाला कार्निवल बंद, सीएम शुभेंदु अधिकारी का ऐलान, ममता बनर्जी सरकार की पहल पर कोलकाता के रेड रोड पर होता था भव्य आयोजन। वडोदरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए बुक माई शो पर फ्री रजिस्ट्रेशन खुलते ही 1 घंटे में फुल हुई सभी सीटें, 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। आज तक पर जल थल नभ के धुरंधर सीडीएस एनएस सुब्रमणी ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से अपील, नवरात्र में मांस मछली का करें बहिष्कार, नवदुर्गा में नॉनवेज खाने वाले पाखंडी। निशु आजाद के अपने घर पर हुए पथराव के दावे पर उठे सवाल, सोसाइटी के लोगों ने कहा यहां पर नहीं हुई ऐसी कोई भी घटना। संभल जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वे के आदेश पर सबकी नजर। संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। उत्तराखंड में 2027 चुनाव की तैयारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा 9 सितंबर से। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी मंथन, नितिन नवीन कमजोर सीटों और संगठन की रणनीति पर करेंगे बैठक। बीजेपी विधायकों के टिकट पर भी नजर, नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से लेंगे ग्राउंड फीडबैक। पंजाब में कर्मचारी आंदोलन तेज, 8 सितंबर से सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी। 18% लंबे डीए और ओपीएस की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम आवास तक निकलेगा मार्च। शोकॉज नोटिस वापस लेने की मांग, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। पंजाब में फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी, कर्मचारियों ने मंत्रियों और विधायकों के घेराव का किया ऐलान। डीए पुरानी पेंशन और वेतन से जुड़े मुद्दों पर आर पार की लड़ाई, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी फिर से आंदोलन के मूड। तो आईएनएस सुदर्शनी ने स्पेन के बार्सिलोना में पोर्ट कॉल पूरा किया, लुकायन 26 अभियान के तहत भारतीय नौसेना की सेल ट्रेनिंग शिप का दौरा, स्पेनिश नौसेना और समुद्री अधिकारियों से हुए पेशेवर संवाद। बार्सिलोना में आईएनएस सुदर्शनी पर हुआ डेक रिसेप्शन, भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों ने जहाज और परीक्षकों से मुलाकात की और भारत स्पेन समुद्री संबंधों को मिली मजबूती। दुबई में एआईएम कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एमपी पवेलियन का किया गया उद्घाटन।
फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिवसीय कार्यक्रम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे मुख्य अतिथि, महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर। कार्यक्रम में ओम बिरला ने आजादी से राष्ट्र निर्माण तक महिलाओं की भूमिका को बताया अहम, कहा विकसित भारत के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी। पालघर में डॉक्टर से मारपीट पर एकनाथ शिंदे का सख्त एक्शन, शिवसेना सिटी चीफ राहुल घराट पार्टी से निष्कासित, बोले डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। मुंबई में 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकली करेंसी बरामद हुई, हाई क्वालिटी 500 रुपए के जाली नोटों की बड़ी खेप जब्त, जांच एजेंसियां नेटवर्क और सप्लाई चेन खंगालने में जुटी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में तीसरा आरोपी रितेश हांगे 12 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में, आगे की जांच जारी। एसपी का बयान, केतन को गंभीर रूप से घायल या अपाहिज करने की साजिश भी रची गई थी ताकि सिया की प्रस्तावित शादी रुक सके, डिलीट व्हाट्सएप चैट बरामद। नागपुर में 300 रुपए में आधार कार्ड की जन्म तारीख बदलकर नाबालिगों को पब में एंट्री मिली, एआई की मदद से उम्र बढ़ाने का फर्जीवाड़ा। कश्मीर में सजा सिनेमा और संस्कृति का महामंच, घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ, सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख समेत कई सितारे फेस्टिवल में पहुंचे, निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और रमेश सिप्पी भी बने आयोजन के हिस्सा। कश्मीर को ग्लोबल सिनेमा से जोड़ने की शानदार पहल, 41 देशों की 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित, 10 सितंबर तक चलेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। प्रयागराज में 60,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी, शिक्षक सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी में पुरानी नियमावली लागू करने के लिए किए जाने की मांग पर छात्रों का आमरण अनशन, धरने पर बैठे सैकड़ों छात्र। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर तक पानी ही पानी। बिहार की विनाशकारी बाढ़ पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, 5 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की अपील की। नवगछिया के ब्रह्मोत्तर बांध पर मंडराया बड़ा खतरा, 4 से 5 जगह रिसाव से मचा हड़कंप, कई जगह कटाव के बाद गांव की ओर बढ़ा पानी। नवगछिया के तीन टांगा दियारा में बाढ़ का कहर, स्कूल कॉलेज और पशु अस्पताल में घुसा पानी, वहीं बच्चों ने ट्यूब को बनाया नाम। मुंगेर में बाढ़ का कहर, थाना अध्यक्ष का आवास और गाड़ियां डूबी, फरियादी के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी हो रही है परेशानी। कटिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच मेगा कम्युनिटी किचन चालू हुआ, पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था। लखनऊ में भीषण बारिश के बीच सड़क पर गिरा भारी भरकम नीम का पेड़, कार और स्कूटी चपेट में आए, कार सवार 2 लोग बाल बाल बचे, कुछ देर यातायात बाधित। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश से एक राजमार्ग सहित 15 सड़कें बंद हुई, 3 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। एमपी के मुरैना में बाढ़ के पानी के कारण मंदिर में फंसा साधु, राहत बचाव टीमें पहुंची तो लौटने से किया इनकार। 24 घंटे की बारिश में स्मार्ट सिटी बरेली बेहाल हुआ, वीआईपी और रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी घुसा, घर घर दुकानों में घुसा बारिश का पानी, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। बेगूसराय में बाढ़ का कहर बढ़ा, 5 नगर निगम वार्ड समेत 8 प्रखंडों के करीब 200 गांव प्रभावित, 4 लाख से ज्यादा आबादी पर संकट। जिस पुलिया से सीएम सम्राट चौधरी ने 5 सितंबर को किया था बाढ़ का निरीक्षण, वहां पर अब 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी, पेयजल शौचालय की समस्या से पलायन को मजबूर। ग्रेटर नोएडा में स्कूल में घुसकर छात्रों को पीटा गया, वीडियो वायरल, 12वीं के छात्रों से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नवसारी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, वीडियो वायरल हुआ। मुंबई के दहिसर में कार के बोनट के अंदर मिला अजगर, बोनट खुलते ही मची अफरा तफरी। देशभर में गणेशोत्सव की धूम, भगवान की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप, कई जगहों पर विराजमान होने के लिए पंडालों तक पहुंचाई गई मूर्तियां। राजकोट में भी गणेशोत्सव को लेकर पूरी तैयारी, बंगाल के मूर्तिकार दीपक जाना 30 साल से राजकोट आकर बना रहे हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 9 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू हुआ, कलश यात्रा से शुभारंभ, 15 सितंबर को निकलेगी भव्य नगर भ्रमण शोभा यात्रा। छत्तीसगढ़ के भिलाई की दिव्यांग शिक्षिका शारदा ने बनाया रिकॉर्ड, केवल 1.5 साल में ब्लाइंड बच्चों के लिए बनाए 3800 ऑडियो बुक्स। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को मिला संस्थागत समर्थन, और इसी के साथ समारोह में शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स का सम्मान भी किया गया। इंदौर में बारिश आंधी के बीच बड़ा हादसा, चलती कार पर गिरा पेड़, हादसे में 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। गुजरात के मांडिया में भीषण सड़क हादसा, कार को पीछे से गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, 1 महिला की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीण का उग्र आंदोलन, 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, 7 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। भोपाल की 80 फीट सड़क की हालत बदहाल हुई, सड़क पर 3 फीट गहरे गड्ढों से राहगीर परेशान। धनबाद में आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में मचा बवाल, जमकर हुई तोड़फोड़ और मारपीट से मची अफरा तफरी।
कानपुर में करोड़पति दवा कारोबारी हत्याकांड का बड़ा खुलासा, बहू निकली 6 लाख रुपए की सुपारी देकर ससुर की हत्या की साजिश। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट, 8 से 10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, सीसीटीवी वीडियो वायरल। झांसी में रील बनाने के जुनून ने पहुंचाया अस्पताल, 30 फीट ऊंचे बांध से युवक ने लगाई छलांग, चट्टान से टकराया युवक। नूह में कुएं में गिरने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई, हादसे में मां गंभीर रूप से घायल। बदायूं में टेम्पो डंपर की टक्कर की वजह से पति पत्नी समेत 3 की मौत, 7 सवारी घायल, हादसे के बाद डंपर चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में मणिपुर के रहने वाले शख्स की पीट पीट कर हत्या, घर के सामने डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों के शोर शराबे और हंगामे का विरोध। गोरखपुर में अंतिम संस्कार में गए 2 वकीलों पर गिरी बिजली, दोनों की मौके पर मौत हुई। बस्ती में दरोगा सुसाइड केस में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में बाढ़ सर्वे के नाम पर अवैध वसूली, हंगामे के बाद लेखपाल और मुंशी ने लौटाई रकम। इटावा में चलती डबल डेकर बस बनी आग का गोला, 40 यात्रियों का लाखों का सामान खाक हुआ, हाईवे पर धू धू कर जलती दिखी बस। आशा भोसले की जयंती पर ए आर रहमान पेश करेंगे आशा फॉरएवर, दिवंगत गायिका को खास श्रद्धांजलि, एआई के जरिए तैयार होगा वो सेलिब्रेशन जिसे आशा जी के साथ जीवन देखने का सपना था। महज 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, देश में 150 करोड़ के पार पहुंचा ग्रॉस कलेक्शन, 31वें दिन 22 करोड़ से ज्यादा नेट कमाई का दावा। हनुमान अंश ने धुरंधर, छावा और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों के कलेक्शन को छोड़ा पीछे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिल्ली से बाहर गुजरात के एकता नगर में आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू देंगी पुरस्कार, वहीं 23 सितंबर को संभावित आयोजन। मनोज तिवारी की बेटी रीति की बिग बॉस में एंट्री हुई, मजाक के अंदाज में बोले सलमान खान, पिता की तरह नहीं खेलना शुरू।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
3: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
4: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते क्या पता उससे हमारी इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
3: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
5: दरख्तों को देख करके आप समझ में आएंगे कि त्रिशूली की धारा कितनी ताकतवर थी। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ बह गया, ध्वस्त हो गया। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। 9 दिन पहले एक भरा हुआ शहर अब बंजर रेगिस्तान कब्रिस्तान की तरह दिखाई देने लगा। जो अपने आप में मिरेकल हाउस थे, जो बचे रहे लोग इनकी छतों पर खड़े रहे, अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ओह सॉरी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ओला ला भाई मेरा बैट।
1: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: वो तो चार्ज हुआ यार।
4: ओला बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट।
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: चुनाव का मौसम हो तो ढाई जा रही इमारतों पर उगती सियासत की रवायत एक बार फिर सहारनपुर में दिख रही। शासन ने दो दिन पहले जिस इमारत को अवैध ठहरा दिया था उसके मलबे पर राजनीति अभी बाकी।
1: क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में 13 घंटे में मस्जिद को गिरा दिया जाए? ये सोची समझी रणनीति साजिश है जिसके तहत पूरे प्रदेश को ये अपने अधिकारियों के माध्यम से कम्युनल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये छोड़ खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
5: बिना तो चार्ज हुआ यार।
6: ओला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशी।

0: चुनाव का मौसम हो तो ढाई जा रही इमारतों पर उगती सियासत की रवायत एक बार फिर सहारनपुर में दिख रही है। शासन ने दो दिन पहले जिस इमारत को अवैध ठहरा दिया था उसके मलबे पर राजनीति अभी बाकी।
1: क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में 13 घंटे में मस्जिद को गिरा दिया जाए? ये सोची समझी रणनीति साजिश है जिसके तहत पूरे प्रदेश को ये अपने अधिकारियों के माध्यम से कम्युनल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।
0: एक तरफ विपक्षी दल सहारनपुर की घटना पर सांप्रदायिकता का सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सहारनपुर जाते रोके जाने के आरोप लगा रहे हैं। एसपी की इकरा हसन से कांग्रेस के अजय राय और ओएसी पार्टी तक के नेताओं ने कहा है कि सहारनपुर जाते हुए पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया।
1: हमारे सभी सांसद सभी नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई है। ये पुलिस चोर डकैत बदमाशों को नहीं पकड़ रही है, पॉलिटिकल लोगों को घेराबंदी कर रही है।
0: प्रशासन ने एहतियातन नेताओं को सहारनपुर जाने से जरूर रोका, लेकिन दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम उस कुएं की पड़ताल करने जरूर पहुंच गई, जिसकी खुदाई की मांग हिंदूवादी संगठन करने लगे। दरअसल सहारनपुर में 5 सितंबर को तड़के 4 बजे जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उसमें कचहरी की जमीन पर अवैध मस्जिद गिराई गई थी। इसे 16 जुलाई 2026 में सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने अवैध घोषित किया था और 6,41,00,000 का जुर्माना भी लगाया था। जिला अदालत में अपील खारिज होने के फौरन बाद मस्जिद पर बुलडोजर चला दी गई। अखिलेश सवाल उठाते हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रहते हुए फौरन मस्जिद ढहाने की क्या जरूरत है? दरअसल सहारनपुर में ढाई गई मस्जिद को लेकर दावा किया गया था कि ये करीब 70 से 100 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसे सरकारी जमीन पर अवैध बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे गलत बताए कि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला अदालत में मस्जिद कमेटी की अपील खारिज होते ही 5 सितंबर की सुबह 4 बजे बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। कचहरी परिसर के सभी 5 दरवाजे बंद करके 6 बुलडोजर ने 3300 वर्ग फीट की 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। अब उसके मलबों पर सियासत हो रही है, क्योंकि उसमें अभी एक कुएं का पता चल गया है

और आम आदमी पार्टी के सांसद समेत विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि खसरा नंबर 539 के उसी भूभाग में एक मंदिर भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन या किसी अन्य पक्ष की ओर से उस पर कोई कानूनी कार्रवाई या अतिक्रमण का मुकदमा नहीं है। आज तक के रूप में।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली के एक किलोकारी गांव में मणिपुर के म्यूजिक टीचर की पीट पीट कर हत्या। ढाबे पर हो रहे शोर का किया था विरोध। कत्ल के विरोध में मणिपुर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। राजधानी में सभी पीजी का होगा ऑडिट। आज महाराष्ट्र और गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। 35,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। राज्य मंत्रियों के साथ बैठक में दिया विकसित भारत का मंत्र। कहा वक्त पर पूरा हो रहा हर प्रोजेक्ट। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं। मौके पर पहुंची एएसआई टीम ने किया निरीक्षण। अलग अलग एंगल से शुरू हुई जांच। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की न्यू इंडिया की बात। कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत। सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब।

7 बज गए हैं और वक्त हो गया है सुपर 8 खबरों का। सबसे पहले ये देखिए कि सुपर 8 खबरें कौन कौन सी होने वाली हैं आज। दिल्ली के सत्यनिकेतन में बिल्डिंग हादसे वाली जगह पर ऑपरेशन पूरा हो चुका है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इस हादसे को लेकर पुलिस ने एक्शन लेते हुए बिल्डिंग मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं दिल्ली में मणिपुर के एक शख्स की हत्या को लेकर कैसे उबाल नजर आ रहा है ये भी आपको बताएंगे। आगे बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ 3 घंटे बैठक कर 2047 के विजन पर क्या बात की है। इसके अलावा यूपी में योगी सरकार की आओ सुने और सुनाए कहानी अभियान की भी होगी बात। एमपी के सागर में जहरीली शराब से 13 लोगों के मरने वाले मास्टरमाइंड आखिर कौन है ये भी आपको बताएंगे। दिखाएंगे कि बिहार में नदियों के उफान के चलते कितने जिले खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। वहीं जर्मनी में 90 साल बाद दक्षिणपंथी सत्ता ने क्यों आखिर यूरोप में हलचल बढ़ा दी है, पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सत्यनिकेतन बिल्डिंग हादसे को लेकर, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। इस पूरे हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल है। मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक हरिराम गुप्ता और उसकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तो वहीं एमसीडी के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हादसे को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही दिल्ली में मौजूद सभी पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट के भी आदेश दिए गए हैं।

0: दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। हादसे में 7 लोगों की जान गई है जबकि 5 लोग घायल हैं। हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एमसीटी के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल और उसकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जबकि बेटे महेश को 2 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, साथ ही दिल्ली में मौजूद सभी पीजी स्ट्रक्चरल ऑडिट के भी आदेश दिए हैं। हादसे के बाद सीएम रेखा एक्शन मोड में है। दिल्ली में अब बिना मंजूरी के बनी 5वीं मंजिल की इमारतों को तुरंत सील करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल एमसीटी से है, क्या इन निर्माणों और पीजी की जानकारी प्रशासन को नहीं थी? अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर कार्रवाई हुई थी तो ऐसे निर्माण और पीजी दोबारा कैसे संचालित होते रहे? अब दिल्ली सरकार ने बिल्डिंग सेफ्टी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। एलजी की अध्यक्षता में हुई संयुक्त समीक्षा मीटिंग में सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। बैठक में पीजी और छात्रावासों की सुरक्षा जांच, एजेंसियों की जवाबदेही और बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। सीएम रेखा ने पीजी और आसपास की इमारतों की जांच के आदेश दिए हैं। अब दिल्ली में बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक कमेटी पीजी के नियमों की समीक्षा करेगी। विश्वविद्यालयों, एमसीडी और डीडीए के जरिए छात्रों के लिए ज्यादा आवास की संभावनाएं भी तलाश की जाएंगी, साथ ही खाली पड़े डीडीए आवासों के इस्तेमाल पर भी विचार होगा। सबसे अहम, दिल्ली में मौजूदा पीजी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार के एक्शन के बाद असली परीक्षा अब होगी। क्या ये ऑडिट सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेगा या उन तमाम पीजी और इमारतों तक पहुंचेगा जहां दिल्ली के छात्र हर दिन रहते हैं? अब सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं, पूरे इलाके की बिल्डिंग सेफ्टी और निगरानी व्यवस्था का है। क्या दिल्ली में अवैध इमारतों पर शिकंजा कसेगा? सत्य निकेतन हादसा सिर्फ 7 मौतों की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम पर सवाल है जिसे हादसा होने से पहले खतरे को पहचानना था। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग हादसे पर पुलिस का भी एक्शन जारी है। इस पूरे मामले में हॉस्टल मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया गया।

0: एसीपी अभिमन्यु सिंह है, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है और उनकी भूमिका क्या है?
1: इसमें हमने जो कल बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था सत्यनिकेतन एरिया के अंदर, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इनिशियली हमें लगा था कि हरिराम गुप्ता ओनर हैं इसके, उनको वो भागे हुए थे इस इंसिडेंट के बाद, उनको इमिडिएटली हमने 10 टीम बनाई अलग अलग लोकेशंस पे, उनके रेजिडेंस पे भी भेजा गया, बट फाइनली भिवाड़ी से उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनके नाम था और उनका बेटा उसके साथ ऑपरेट करता था इस पूरे पीजी को, बट जो इसकी ओनर है उनकी वाइफ थी, तो इस हिसाब से 3 लोग इस फैमिली के अरेस्ट हुए जो इसको ओनर थे और इसको पीजी को ऑपरेट करते थे।
0: बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है, क्या पूछताछ में उसने बताया, क्या पूरा
1: जो एक्यूज है उनकी इंटेरोगेशन करी गई तो पता चला कि बेसमेंट में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबर वर्कर्स भी वहां पे काम कर रहे थे, उनकी भी स्टेटमेंट ली गई। उन्होंने बताया उस कंस्ट्रक्शन को रिनोवेशन को काम को करते समय वो बिल्डिंग मिसहैप की वजह से कुछ कोलैप्स कर
0: गया। उनसे बात करने के लिए ये थे अभिमन्यु सिंह, जिनका कहना कि इस हादसे में 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली। आज
2: हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ सत्यनिकेतन से ही, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। हिमांशु, इस हादसे को लेकर देखिए, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अभी वहां पर क्या स्थिति है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, वहां पर किस तरीके से और जो बिल्डिंग्स हैं उनको देखा जा रहा है?
3: देखिए, सिविक एजेंसी की सक्रियता बढ़ी है क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता का भी आदेश आया, उसके बाद इस पूरे इलाके में ऑडिट किया जा रहा है, जो तमाम जहां पर खासतौर से पीजीज चलनी है जिस बिल्डिंग में, वहां पर ऑडिट किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये बगल वाली बिल्डिंग की है। दरअसल यहां पर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर अब इतना कमजोर हो चुका है कि इसको सपोर्ट देने के लिए लोहे के आप देखिए गाटर लाए गए हैं, जिन्हें काट काट के यहां पर सेट किया जा रहा है। आगे की तरफ हम अगर देखेंगे तो 4 से 6 पिलर्स लोहे के लगाए गए हैं ताकि बिल्डिंग को सपोर्ट दिया जा सके, ये झुके नहीं और अपने आप कहीं धराशायी ना हो जाए अचानक से, और दोनों तरफ से यही काम किया जा रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो अंदर तमाम कर्मचारी हैं, जो अंदर मलबा चला गया था सबसे पहले उस मलबे को वहां से बाहर किया जा रहा है। और जो जानकारी है कि एक्सपर्ट की देखरेख में फेज वाइज धीरे धीरे इस बिल्डिंग को यहां से हटाया जाएगा। और इसके अलावा जो तमाम पूरा एरिया है, अब सिविक एजेंसीज इस पूरे इलाके की सर्वे कर रही है, बकायदा टीम बनाई गई है। अब जितने पीजी चल रहे हैं, हालांकि जितने भी पीजी बने हैं जो चल रहे हैं, अब आप देखिए ऊपर तक अगर हम देखें तो नीचे जो बिल्डिंग है 6 मंजिला 5 मंजिला, उसके बाद वहां टीन शेड लगा करके उसमें भी छात्रों को रहने के लिए उनसे मोटा मोटा किराया वसूला जा रहा था। तो ऐसा तो है नहीं कि अथॉरिटीज को सिविक एजेंसीज को पता नहीं था, तो जानकारी तो सब है उनके पास, अब बस वो सर्वे करके ये पता लगाएंगे कि कहां कहां चल रहा है और उसके बाद एक एक जगह को मार्क किया जाएगा कि कहां कहां इलीगल काम हो रहा है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर बिल्डिंग को कमजोर पाया गया, किसी भी बिल्डिंग को अगर कमजोर पाया गया, देखा गया कि बेस सिर्फ 2 फ्लोर की वजन उठाने के लिए है, लेकिन उसी 2 फ्लोर के बेस पर अगर 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है तो उसको फेज वाइज हटाने का काम किया जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो ये इस पूरे इलाके में अब शुरुआत हुई है। तमाम टीमें एक्सपर्ट की जो एमसीडी की बनी हुई है उसमें एक्सपर्ट शामिल हैं, जो लोकल अधिकारी हैं वो शामिल हैं, और वो लोग बिल्डिंग वाइज हर जगह जाएंगे और इस तरीके से एक एक बिल्डिंग का सर्वे किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट उसमें रह रहे हैं उनको आगे इस तरीके
2: आगे
3: के
2: कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। अब दिल्ली में मणिपुर के रहने वाले एक म्यूजिक टीचर की भी हत्या कर दी गई। दिल्ली के किलोकारी गांव में मणिपुर के रहने वाले 54 साल के म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की शोर शराबे का विरोध करने पर पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल उनके घर के सामने डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों के शोर शराबे हंगामे का विरोध करने पर आरोपियों ने विक्रम सिंह पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल विक्रम को उनके बेटे ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने हत्या की FIR दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 15 साल के एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना 6 सितंबर की है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक सनलाइट कॉलोनी थाने में एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने को लेकर PCR कॉल भी मिली थी। तो दिल्ली में मणिपुर के रहने वाले रिटायर्ड म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है। सिंह की हत्या के विरोध में मणिपुर के लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतक को श्रद्धांजलि दी, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने विक्रम सिंह के लिए न्याय की मांग की। लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
4: अभी हम दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट के लोग एकत्रित हैं। दरअसल सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक मणिपुर के रहने वाले व्यक्ति की हत्या पीट पीट कर की गई है, जिसके बाद ये लोग एकत्रित हुए हैं। हम आगे चल के भी तस्वीरें दिखा देते हैं। एक मशहूर म्यूजिशियन विक्रम उनका नाम है, उनकी पीट पीट करके हत्या की गई है, ऐसा इनका आरोप है। और उसके बाद ये लोग जस्टिस की मांग को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दरअसल उनके घर के बाहर कुछ लोग शोर कर रहे थे, तो वो उसका विरोध किए, और जब विरोध किए तो चार से पांच, जैसा कि लोग बता रहे हैं, छः सात लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया, जिसके बाद उनके परिजनों के द्वारा उनको होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद ये लोग थाने पर एकत्रित हुए हैं और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
5: जो लोकल है, दारू पी के बहुत शोर शराबत कर रहा था, तो जब शोर शराबत किया था, एक मणिपुरी का लड़का है, वो गिटारिस्ट है, बहुत जाने माने गिटारिस्ट है, मणिपुरी गिटारिस्ट है, तो उसने रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए और यहाँ पे शोर शराबत मत कीजिए। तो जब उसने ये बताया, उसको रिक्वेस्ट किया गया था, उसको एसॉल्ट की गई है, तो उसको उसका पूरा आज से लोग ने मारा गया था। मैं जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो रास्ते में वो अनकॉन्शियस हो गया था, लेकिन जब उसको सीटी स्कैन करने के लिए कोशिश किया था, तब उसकी बीपी बहुत लो हो गए थे, तो सीटी स्कैन कर नहीं पाया, फिर उसके बाद वो बचा ही नहीं पाया।
6: वी नीड प्रोटेक्शन, जस्टिस फॉर विक्रम। दक्षिणी दिल्ली के सनलाइट थाना में सुरक्षा और इंसाफ की मांग करते नॉर्थ ईस्ट के ये कैंडल मार्च निकाला गया मणिपुर के म्यूजिक टीचर 54 साल के सी विक्रम सिंह की हत्या के विरोध में। कैंडल मार्च से पहले बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोग सनलाइट थाने में भी जमा हुए और वहां भी जमकर नारेबाजी की।
5: यहाँ पे हम ये मांग कर रहे हैं कि कल्प्रिट को अप्रहेंड करिए और जो जो जो जो पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो सजा मिलना चाहिए, उसको मिलने के लिए हम यहाँ पे मांग करने के लिए आए हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट अ लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट।
6: पूरी वारदात किलोकरी गाँव की सोमवार देर रात की है। बताया जाता है कि जिस जगह सी विक्रम सिंह रहते थे, वहीं स्थित एक ढाबे में देर रात शोर शराबा हो रहा था। शोर शराबे से परेशान विक्रम ने जब ढाबे में मौजूद लोगों से शांत होने को कहा, तो बताया जाता है कि इसी बात पर ढाबा स्टाफ और वहां मौजूद डिलीवरी बॉय उस पर टूट पड़े। बुरी तरह जख्मी हालत में विक्रम को होली फैमिली अस्पताल ले जाया जा सका, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
5: यहाँ का जो लोकल है, दारू पी के बहुत शोर शराबत कर रहा था, तो जब शोर शराबत किया था, एक मणिपुरी का लड़का है, वो गिटारिस्ट है, बहुत जाने माने गिटारिस्ट है, मणिपुरी गिटारिस्ट है, तो उसने रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए और यहाँ पे शोर शराबत मत कीजिए, क्योंकि काफी दिनों से उधर उस एरिया पे शोर शराबत कर रहा था। तो जब उसने ये बताया, उसको रिक्वेस्ट किया गया था, उसको एसॉल्ट की गई है।
6: बहरहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। आशुतोष कुमार के साथ अरविंद ओंझा, दिल्ली आज तक।
2: और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गया। अरविंद, आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले में, लेकिन अभी कैंडल मार्च भी इसको लेकर निकाला जा रहा है। क्या मांग उठ रही है, आगे किस तरीके से इस पूरे केस में कार्रवाई होगी?
7: देखिए, कार्रवाई की मांग लगातार जो नॉर्थ ईस्टर्न मूल के लोग हैं वो कर रहे हैं, और विक्रम सिंह मणिपुर के रहने वाले थे। और बहुत जरा सी बात है ये, देखिए दिल्ली में किस तरह से इस तरह के हत्याएं होती हैं, बहुत जरा से मामूली सी बात थी। जो विक्रम सिंह अपने घर में बैठे हुए थे, रिटायर्ड म्यूजिक टीचर थे, नीचे ढाबा है, यहाँ शोर शराबा हो रहा था और उन्होंने खामोश रहने को बोला। बस इसी बात पर लोग घर पर चढ़कर आ गए और सीसीटीवी भी है जिसमें घर पर चढ़कर आए और उनकी पीट पीट के हत्या कर दी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 नाबालिग है उसको हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जितने भी आरोपी थे उनको तुरंत राउंडअप किया गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में हत्या की धाराओं में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वहीं जो विक्रम सिंह और उनके करीबी हैं और नॉर्थ ईस्ट रेंज के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें काफी ज्यादा इसको लेकर आक्रोश है। जी
2: चलिए ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के राज्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई ये बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली। मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज, सुधार और नए पहलों का ब्यौरा प्रधानमंत्री के सामने रखा। पीएम मोदी ने योजनाओं और परियोजनाओं की टाइम बाउंड डिलीवरी, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने मंत्रियों से सोशल मीडिया एंगेजमेंट, जनता से जुड़ाव और विकसित भारत 2047 के विजन पर भी जानकारी ली है। 3 घंटे ये बैठक चली है। मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। 12 से ज्यादा राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। 2047 के विजन पर मंथन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर भी रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी 35,000 करोड़ रुपए की ज्यादा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के करीब 326 किलोमीटर लंबे 3 खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। साथ ही 9,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद शाम को पीएम मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 6,000 युवा प्रोफेशनल्स को संबोधित भी करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब कांड ने हड़कंप मचा दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने एहतियातन इलाके की 6 शराब दुकानों को सील कर दिया। तो वहीं पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौत के आंकड़े को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एमपी के सागर में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सागर के बंडा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। दरअसल 13 मौतों के मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों का भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जुलूस निकाला गया। इसी के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबारियों में कानून का डर पैदा करना एक मकसद है।
8: तो इस घटना में जो घटना के क्या कारण रहे, किन ऐसी घटनाक्रम क्या बना जिसके कारण की ये घटना घटित हुई है, इसके पीछे कौन लोग जवाबदार हैं, घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो इसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इन सभी विषयों पर ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन किया गया है। और ये जो मजिस्ट्रेट हैं ये अपनी जांच उन्होंने आज से शुरू कर दी है। तो ये अपनी जांच रिपोर्ट इन विषयों को समेकित करते हुए यहाँ पर सौंपे। इसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई है और उन लोगों के पीएम हुए हैं, जिसमें ये पॉइंट आया है जो जिस घटना जिस विषय से संबंधित है। इसके अलावा अपने जो अभी 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो कि हमारे क्रिटिकल केयर ऑब्जर्वेशन में हैं।
9: जो भी दोषी होंगे, चाहे बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई भी हो, जहां से ये शुरू हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से जांच हो रही है, जांच पूरी होगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी भी 30 लोगों को, 30 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है।
10: जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, मौतें छुपा रही है। 50 से ज्यादा मौतें हुई है। मौतों से जहरीली राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये अब मध्य प्रदेश सहन करने की स्थिति में नहीं। देवड़ा जी हमारे जो वित्त मंत्री भी है, शराब के कारोबार के मंत्री भी है, उनको इसी वक्त पद से हटा देना। इस पूरे प्रोसेस में जिनकी ड्यूटी थी, जो पुलिस विभाग के कर्मचारी थे, जिनके कंट्रोल करना था, उन पर एफआईआर क्यों नहीं, और क्यों नहीं होनी चाहिए।
2: अब बात कर लेते हैं यूपी में बुनियादी शिक्षा की मजबूत करने के लिए योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सरकार बुनियादी शिक्षा की मजबूत नींव बाल वाटिका स्तर से ही तैयार करने की दिशा में सीखने को बच्चों के लिए सहज आनंदमय और रचनात्मक अनुभव से जोड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि आज से सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र और बाल वाटिकाओं तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में आओ सुने और सुनाए कहानी गतिविधि आयोजित की जाएगी। तो वही संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे का आदेश निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं था और हिंदू पक्ष ने इस पूरे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने का विरोध भी किया है।

0: चलिए सुपर एट में यहाँ वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। इंदौर में बारिश आंधी के बीच बड़ा हादसा, चलती कार पर गिरा पेड़, हादसे में 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट, 8 से 10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी वीडियो वायरल। गुजरात के मांडिया में भीषण सड़क हादसा, कार को पीछे से गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, एक महिला की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। गुजरात की नवसारी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से मची अफरा तफरी, लाखों का हुआ नुकसान। झारखंड के रामगढ़ में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का उग्र आंदोलन, 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, 7 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। ऊधम सिंह नगर में बारिश के बीच बड़ा हादसा, कार पर गिरा पहाड़ी का बोल्डर, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। भोपाल की 80 फीट सड़क की हालत बदहाल, सड़क पर 3 फीट गहरे गड्ढे से राहगीर परेशान। धनबाद में आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में मचा बवाल, जमकर हुई तोड़फोड़ और मारपीट से मची अफरा तफरी, पुलिस ने कराया कार्यक्रम बंद। सुपर एट में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: देखे जन्म पहला पहला कदम।
12: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3। E3 ग्रुप, India's लीडिंग manufacturer ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर products. E3 ग्रुप celebrates द रिलीज ऑफ हैवान ऑन द 11th ऑफ September.
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
7: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
8: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
7: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
9: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
10: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
11: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मणिपुर के म्यूजिक टीचर की पीट पीट कर हत्या। ढाबे पर हो रहे शोर का किया था विरोध। कत्ल के विरोध में मणिपुर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। राजधानी में सभी पीजी का होगा ऑडिट। आज महाराष्ट्र गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी। 35,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। राज्य मंत्रियों के साथ बैठक में दिया विकसित भारत का मंत्र। कहा वक्त पर पूरा हो रहा हर प्रोजेक्ट। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं। मौके पर पहुंची एएसआई टीम ने किया निरीक्षण। अलग अलग एंगल से शुरू हुई जांच। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की न्यू इंडिया की बात। कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत। सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब।

दिल्ली बिल्डिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। सत्य निकेतन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 7 लोगों की मौत, 5 घायलों का इलाज जारी, ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। हरिराम के नाम बिजली का कनेक्शन था, बेटा महेश बिल्डिंग का मैनेजमेंट देखता था, प्रॉपर्टी ऑन पेपर हरिराम की पत्नी उर्मिला के नाम थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली बिल्डिंग घटना को बताया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस, दिल्ली में मौजूदा सभी पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट के दिए गए आदेश, दिल्ली में कोचिंग हॉस्टल और पीजी की सुरक्षा जांच होगी। एलजी बैठक के बाद मंत्री आश्री सूद बोले, सभी विभाग मिलकर तय समय की में पूरी करेंगे जांच, छात्रों की रेजिडेंशियल सुविधाओं का गैप भरने पर भी जोर। मुखर्जी नगर में यूपीएससी अभ्यर्थियों का रेंट माफिया के बीच गुजर बसर, जर्जर मकानों में रहने को मजबूर छात्र, 25,000 रुपए तक महीने का खर्च, न किराया एग्रीमेंट न मकान मालिकों का अता पता, चोरी के डर से सहमे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ब्रोकर ज्यादा किराया देने वाले मिलते ही कर देते हैं कमरा खाली, छात्रों का दावा इमारतों में पिलर तक नहीं है, कभी भी हो सकता है हादसा। बिहार में 400 बिना रजिस्ट्रेशन वाले पीजी हॉस्टल चिन्हित, सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया पत्र, एसपी को कार्रवाई और संचालकों से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश। पीजी हॉस्टल पर पुलिस दीदी की हर महीने निगरानी, छात्रों से बातचीत कर सुरक्षा का लिया जा रहा फीडबैक, एडीजी बोले इमारतों की उम्र और सुरक्षा का ऑडिट भी जरूरी। पीएम मोदी आज वडोदरा, नवसारी और मुंबई के दौरे पर, 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नवसारी दौरे की तैयारियां पूरी, देश का पहला एआई तकनीक से लैस आधुनिक कमलम तैयार। हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद के बीच बीजेपी का 19 जिलों में सामाजिक सौहार्द संकल्प प्रदर्शन, हरिद्वार में कैबिनेट मंत्रियों समेत नेताओं ने दिया धरना। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर होगा उपचुनाव, 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद होने वाला कार्निवल बंद, सीएम शुभेंदु अधिकारी का ऐलान, ममता बनर्जी सरकार की पहल पर कोलकाता के रेड रोड पर होता था भव्य आयोजन। वडोदरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बुक माई शो पर फ्री रजिस्ट्रेशन खुलते ही 1 घंटे में फुल हुई सभी सीटें, 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। निशु आजाद के अपने घर पर हुए पथराव के दावे पर उठे सवाल, सोसाइटी के लोगों ने कहा यहां नहीं हुई ऐसी कोई घटना। सागर जहरीली शराब कांड पर कांग्रेस नेता उमंग सिंगार का हमला, बोले हिंदुओं के नाम पर डर फैलाने से नहीं चलेगा काम, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। 13 लोगों की मौत पर और 100 से ज्यादा लोग बांदा के अस्पताल में भर्ती, 30 के खिलाफ मामला दर्ज, 14 को हिरासत में लेने के लिए मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। संभल जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वे के आदेश पर सबकी नजर, संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। उत्तराखंड में 2027 चुनाव की तैयारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा 9 सितंबर से। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी मंथन, नितिन नवीन कमजोर सीटों और संगठन की रणनीति पर करेंगे बैठक, बीजेपी विधायकों के टिकट पर भी नजर, नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से लेंगे ग्राउंड फीडबैक। पंजाब में कर्मचारी आंदोलन तेज, 8 सितंबर से सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी, 18% लंबित डीए और ओपीएस की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम आवास तक निकलेगा मार्च, शो कॉज नोटिस वापस लेने की मांग, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। पंजाब में फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी, कर्मचारियों ने मंत्रियों और विधायकों के घेराव का ऐलान किया, डीए पुरानी पेंशन और वेतन से जुड़े मुद्दों पर आर पार की लड़ाई, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी फिर से आंदोलन के मोड में। झारखंड सीजीएल पेपर लीक केस में पटना से गिरफ्तारी, एसआईटी ने कारोबारी राजन कुमार को पकड़ा, पेपर लीक के आरोपी राजन पर बड़ा आरोप, कोलकाता बुलाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र की जानकारी देने का दावा। अयोध्या में आज से नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा की नई जिम्मेदारी, राम मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभालेंगे, रामलला के दर्शन के बाद कार्यभार संभालेंगे सीईओ जितेंद्र मिश्रा, मंदिर की व्यवस्था को लेकर नई कार्य योजना पर होगा मंथन। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के सामने अब राम मंदिर की जिम्मेदारी, श्रद्धालु का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती। आईएनएस सुदर्शनी ने स्पेन के बार्सिलोना में पोर्ट कॉल पूरा किया, लोकायन 26 अभियान के तहत भारतीय नौसेना की सेल ट्रेनिंग शिप का दौरा, स्पेनिश नौसेना और समुद्री अधिकारियों से हुआ पेशेवर संवाद। बार्सिलोना में आईएनएस सुदर्शनी पर हुआ डेक रिसेप्शन, भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों ने जहाज और प्रशिक्षुओं से की मुलाकात, भारत स्पेन समुद्री संबंधों को मिली मजबूती। दुबई में एआईएम कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एमपी पवेलियन का किया गया उद्घाटन,
फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिवसीय कार्यक्रम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे मुख्य अतिथि, महिला अधिकारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर। कार्यक्रम में ओम बिरला ने आजादी से राष्ट्र निर्माण तक महिलाओं की भूमिका को बताया अहम, कहा विकसित भारत के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी। कश्मीर में सजा सिनेमा और संस्कृति का महामंच, घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ, सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख समेत कई सितारे फेस्टिवल में पहुंचे, निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और रमेश सिप्पी भी बने आयोजन का हिस्सा। कश्मीर के ग्लोबल सिनेमा से जोड़ने की शानदार पहल, 41 देशों के 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित, 10 सितंबर तक चलेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। प्रयागराज में 60,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी, शिक्षक सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को मिला संस्थागत समर्थन, IIVA के वार्षिक समारोह में शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स का सम्मान किया गया। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, पटना, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर तक पानी ही पानी। बिहार की विनाशकारी बाढ़ पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, 5 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की अपील। नवगछिया के ब्रह्मोत्तर बांध पर मंडराया बड़ा खतरा, 4 से 5 जगह रिसाव से मचा हड़कंप, कई जगह कटाव के बाद गांव की ओर बढ़ा पानी। नवगछिया के 3 टंगा दियारा में बाढ़ का कहर, स्कूल कॉलेज और पशु अस्पताल में घुसा पानी, बच्चों ने ट्यूब बनाया था। मुंगेर में बाढ़ का कहर, थानाध्यक्ष का आवास और गाड़ियां डूबी, फरियादी के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी हो रही है परेशानी। कटिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच मेगा कम्युनिटी किचन चालू, पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था। लखनऊ में भीषण बारिश के बीच सड़क पर गिरा भारी भरकम नीम का पेड़, कार और स्कूटी चपेट में, कार सवार 2 लोग बाल बाल बचे, कुछ देर यातायात बाधित। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश से एक राजमार्ग सहित 15 सड़कें बंद, 3 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। एमपी के मुरैना में बाढ़ के पानी के कारण मंदिर में फंसा साधु, रात बचाव टीमें पहुंची तो लौटने से किया इनकार। 24 घंटे की बारिश में स्मार्ट सिटी बरेली, बेहाल, वीआईपी और रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी, घर दुकानों में घुसा बारिश का पानी। बेगूसराय में बाढ़ का कहर बढ़ा, 5 नगर निगम वार्ड समेत 8 प्रखंडों के करीब 200 गांव प्रभावित, 4 लाख से ज्यादा आबादी पर संकट। जिस पुलिया से सीएम सम्राट चौधरी ने 5 सितंबर को किया था बाढ़ का निरीक्षण, वहां पर अब 4 फीट ऊपर बह रहा पानी, पेयजल शौचालय की समस्या से पलायन को मजबूर। ग्रेटर नोएडा में स्कूल में घुसकर छात्रों को पीटा गया, वीडियो वायरल, 12वीं के छात्रों से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। नवसारी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, वीडियो वायरल। मुंबई के दहिसर में कार के बोनट के अंदर मिला अजगर, बोनट खुलते ही मची अफरा तफरी, स्नेक रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकालकर किया मेडिकल चेकअप। इंदौर में बारिश आंधी के बीच बड़ा हादसा, चलती कार पर गिरा पेड़, हादसे में 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। गुजरात के मांडिया में भीषण सड़क हादसा, कार को पीछे से गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, एक महिला की मौत, 4 की हालत गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का उग्र आंदोलन, 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, 7 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। भोपाल की 80 फीट सड़क की हालत बदहाल, सड़क पर 3 फीट गहरे गड्ढे से राहगीर परेशान। धनबाद में आर एन केल्विन के कार्यक्रम में मचा बवाल, जमकर हुई तोड़फोड़, मारपीट से मची अफरा तफरी, पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराया। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का कहर, भरभराकर गिरा मकान, बाल बाल बचा परिवार। उधम सिंह नगर में बारिश के बीच बड़ा हादसा, कार पर गिरा बोल्डर, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। गुजरात के नवसारी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से मची अफरा तफरी, लाखों का हुआ नुकसान। वडोदरा में आवारा गाय का आतंक, मां बेटे पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई में 10 लाख से ज्यादा की हाई क्वालिटी नकली करेंसी बरामद हुई, 1 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में करोड़पति दवा कारोबारी हत्याकांड का बड़ा खुलासा, बहू निकली 6 लाख रुपए की सुपारी देकर ससुर की हत्या की साजिश, नौकर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट, 8 से 10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी वीडियो वायरल। झांसी में रील बनाने के जुनून ने पहुंचाया अस्पताल, 30 फीट ऊंचे बांध से युवक ने लगाई छलांग, चट्टान से टकराया युवक। नूह में कुएं में गिरने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई, हादसे में मां गंभीर रूप से घायल। बदायूं में टेम्पो डंपर की टक्कर की वजह से पति पत्नी समेत 3 की मौत, 7 सवारी घायल, हादसे में बाद डंपर चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में मणिपुर के रहने वाले शख्स की पीट पीट कर हत्या, घर के सामने डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों के शोर शराबे और हंगामे का किया था विरोध। गोरखपुर में अंतिम संस्कार में गए 2 वकीलों पर गिरी बिजली, दोनों की मौके पर मौत। बस्ती में दरोगा सुसाइड केस में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में बाढ़ सर्वे के नाम पर अवैध वसूली, हंगामे के बाद लेखपाल और मुंशी ने लौटाई रकम। इटावा में चलती डबल डेकर बस बनी आग का गोला, 40 यात्रियों का लाखों का सामान खाक हुआ।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 2:42 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 4:39 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, पारिवारिक तनाव से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

में काम ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मकर राशि, काम का दबाव कम होगा, धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर ले तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, लेकिन बेवजह की दौड़ भाग आज करनी पड़ सकती है। अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: वो असत्य निकेतन ही रहा होगा। वो भ्रष्टाचार, बेईमानी और आपराधिक लापरवाही के ईंटगारों से बनी कोई इमारत ही रही होगी। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में आर के पूरम इलाके के पास दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के पीजी की तरह काम कर रहा हॉस्टल डेज, हॉस्टल डेथ सिर्फ इसीलिए नहीं बना क्योंकि इमारत ही कमजोर थी। ये इमारत इसलिए गिरी क्योंकि एमसीडी के अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन की नीयत भी कमजोर थी। 3 मंजिला इमारत गैर कानूनी तरीके से 5 मंजिला कैसे बनी? बेसमेंट में खुदाई हुई, पानी भरा, तब शासन भी धृतराष्ट्र बना बैठा था और प्रशासन भी। जरूर रविवार के हादसे के बाद जवाबों की तलाश कर रहे सरकारी तंत्र ने बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल को भिवाड़ी से पकड़ लिया है, लेकिन पीजीडीएवी कॉलेज के छात्र अक्षत सिंह यादव की जिंदगी का मोल कैसे चुकाया जा सकेगा? कैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के छात्र अर्पित के परिवार वालों के टूटे सपनों को फिर जोड़ा जा सकेगा? जिन 7 युवा जिंदगियों को सिर्फ पढ़ने के लिए देश की राजधानी में रहने की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ी, उसकी भरपाई कैसे हो सकेगी? सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली के एलजी से लेकर मुख्यमंत्री तक मौके पर पहुंचे थे। हादसे पर एक्शन के नाम पर दिल्ली नगर निगम में साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, साउथ जोन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, साउथ जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार, साउथ जोन के असिस्टेंट इंजीनियर सुनील चौहान और साउथ जोन के जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ कुछ लोगों पर कार्रवाई करने भर का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था से है जो सबक नहीं लेती। सत्य निकेतन में बॉयज का हॉस्टल डेज ढह गया, लेकिन उसी इलाके में ऐसी और भी खतरनाक इमारतें हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में पढ़ने आए देश के हजारों छात्रों के लिए एक अदद छत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना मजबूरी है।
1: अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे? उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
2: ये सत्य निकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे।
3: ये पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं और ऐसी 6-6 मंजिल, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं उसमें भी अंदर। वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी?
4: यहाँ के सारे बिल्डिंग्स में ये है ना कि यहाँ पिलर्स नहीं है। लाइक इनिशियली उन्होंने सोचा होगा कि अपने लिए घर बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट से घर बना दिए, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा एक फ्लोर। इसलिए यहाँ पे मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं है किसी बिल्डिंग में।
5: तार यहाँ बारिश में पानी भरना और बिल्डिंग्स की हालत, तो अभी जब आप किसी चीज को सोचते हो, जब वो सच में आपके आगे हो जाती है, तो एकदम से दिल कहीं ना कहीं घबरा जाता है।
0: हादसों के बाद शासन प्रशासन वादे हर बार करता है, इस बार भी हुआ है। पूरी दिल्ली में अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया गया है और हादसे के पास के सभी पीजी और इमारतों की जांच की जा रही है। अगर वाकई में किसी हादसे के बाद कोई बख्शा नहीं जाता है तो शायद अगला हादसा इंतजार नहीं करता, मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आज वडोदरा में पीएम मोदी के मेगा इवेंट का इंतजार। पहली बार बुक माय शो से रजिस्ट्रेशन एक घंटे में फुल हो गई। सारी सीटें, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। अयोध्या में आज सीएम योगी देंगे बुनकरों और आंगनबाड़ी महिलाओं को सौगात। आओ सुने और सुनाए कहानी की शुरुआत। तिरुपति से लौटने के बाद देवस्थानम के क्राउड मैनेजमेंट की तारीफ। जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे जयकारों से अलग है सर तन से जुदा के नफरती नारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, अदालत ने खारिज की बरेली हिंसा केस में तौकीर रजा की जमानत। दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। राजधानी में सभी पीजी का होगा ऑडिट। आष्टा की सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की न्यू इंडिया की बात। कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत। सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब।

0: स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिना ब्रेक के सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में बिल्डिंग हादसे पर ताबड़तोड़ एक्शन, कल से अब तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या होगा, पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। वडोदरा में पीएम मोदी के इवेंट को लेकर जबरदस्त क्रेज, एक घंटे में बुक हो गई सारी सीट्स, 42,000 लोग अब भी हैं वेटिंग में, इस खबर पर रहेगी नजर। बिहार में क्या है बाढ़ का हाल, सीधे ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 100 शहर 100 खबर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे की। यहां पर हादसे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में मौजूद सभी पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अवैध रूप से बनी 5 मंजिला इमारतों को सील करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस बीच सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। हादसे वाली बिल्डिंग उर्मिला के नाम थी, जबकि उनके पति के नाम बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन था। उनका बेटा महेश बिल्डिंग की मैनेजमेंट संभालता था, इसीलिए उसे कस्टडी में लिया गया है।
1: बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लौट गईं, एनडीआरएफ के जवान अपने स्टेशनों पर लौट गए। अब दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में सन्नाटा है। कल जिस जगह मलबे का ढेर था वो अब साफ हो चुका है। सत्य निकेतन में जिस 5 मंजिला इमारत के गिरने से 7 लोगों की मौत हुई, उसके मलबे को 27 घंटे के मैराथन ऑपरेशन के बाद हटा लिया गया है। कल दिल्ली में एक तरफ मलबों में जिंदगी की तलाश हो रही थी, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे थे। कई जगहों पर छापेमारी के बाद आखिरकार राजस्थान के भिवाड़ी से बिल्डिंग की मालकिन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल है उर्मिला, जिसके नाम बिल्डिंग थी। दूसरा शख्स है हरिराम, जिसे पहले बिल्डिंग का मालिक माना जाता था लेकिन बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन हरिराम के नाम था। तीसरा आरोपी है हरिराम और उर्मिला का बेटा महेश, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट का काम देखता था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी की वजह से बिल्डिंग गिरी।
2: इसके हरिराम गुप्ता थे, इनसे जब पूछताछ करी तो इन्होंने बताया कि कुछ ये रिनोवेशन वर्क करा रहे थे बेसमेंट के अंदर, और जो लेबर जो अभी सरवाइव करी है, जो इंजर्ड है, उनसे भी थोड़ा पूछताछ करा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे अंडर जो बेसमेंट था उसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही थी, थोड़ा रिनोवेशन वर्क चल रहा था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई।
1: तीनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया। हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस को 2 दिन के लिए महेश की रिमांड दी गई है। सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन में है। अब तक के एक्शन पर गौर कीजिए, एमसीडी कमिश्नर समेत 5 अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं। दिल्ली में मौजूद तमाम पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर, सत्य निकेतन, साकेत जैसी जगहों पर खास नजर है। नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई 5 मंजिल वाली अवैध बिल्डिंगों को तत्काल सील किया जाएगा।
3: क्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है। नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो पब्लिक यूटिलिटी की कोई भी सर्विसेज वहां शुरू करे, चाहे वो पीजी हो, नर्सिंग होम हो, स्कूल हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो पब्लिक डोमेन की कोई एक्टिविटी उस बिल्डिंग में बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते। इस पे सख्त नियम लाया जाएगा।
1: कल एलजी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे अहम है दिल्ली में आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए FAR में एडिशनल छूट देने का फैसला।
4: FAR में जरूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए FAR में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना, पीजी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो जस्टिस गुआबा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी की रिपोर्ट बन रही है, पीजी को रेगुलेट करना, इन सब विषयों पर सब विभागों के साथ चर्चा हुई है।
1: एक्शन में है सरकार। काश ये चीजें पहले से हुई होती तो 7 जिंदगियां बच जाती। सुशांत मेहरा और अंशुल सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली बिल्डिंग हादसे में 3 गिरफ्तारियों पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल से बात की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने, सुनिए।
5: हमारे साथ एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु सिंह है, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है और उनकी भूमिका है?
2: इसमें हमने जो कल बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था सत्यनिकेतन एरिया के अंदर, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इनिशियली हमें लगा था कि हरिराम गुप्ता ओनर है इसके, उनको वो भागे हुए थे इस इंसिडेंट के बाद, उनको इमीडिएटली हमने 10 टीम बनाई अलग अलग लोकेशंस पे, उनके रेजिडेंस पे भी भेजा गया, बट फाइनली भिवाड़ी से उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनके नाम था और उनका बेटा उसके साथ ऑपरेट करता था इस पूरे पीजी को, बट जो इसकी ओनर है उनकी वाइफ थी, तो इस हिसाब से 3 लोग इस फैमिली के अरेस्ट हुए जो इसको ओनर थे और इसको पीजी को ऑपरेट करते थे।
5: बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है, क्या पूछताछ में उसने बताया, क्या पूरा
2: जो एक्यूज है उनकी इंटरोगेशन करी गई तो पता चला कि बेसमेंट में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबर वर्कर्स भी वहां पे काम कर रहे थे, उनकी भी स्टेटमेंट ली गई। उन्होंने बताया उस कंस्ट्रक्शन को रिनोवेशन को काम को करते समय वो बिल्डिंग मिसहैप की वजह से कुछ कोलैप्स कर
5: गया। उनसे बात करने के लिए ये थे अरविंद सिंह, जिनका कहना कि इस हादसे में 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे घटनास्थल से। पीयूष, क्या सारा मलबा हटा लिया गया है और ये कैसे सुनिश्चित किया गया कि मलबे के भीतर अब कोई भी नहीं?
6: जी बिल्कुल, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर लगातार मौजूद रहे, एमसीडी के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और उसके बाद पूरा मलबा हटाने के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि अंदर अब कोई नहीं फंसा हुआ या कोई दबा हुआ नहीं है और उसके बाद अब पूरा इलाका जो है वो खाली करा लिया गया। मैं एक बार तस्वीर आपको सीधे दिखा दूं, आप देखिए जहां पर बिल्डिंग गिरी थी उस पूरे इलाके के चारों तरफ जो है वो दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है और उसके साथ वाली जो बिल्डिंग है उसको भी अब गिराने की तैयारी कर ली गई है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वाली बिल्डिंग भी काफी खतरनाक है और अधिकारियों का यह मानना है कि पिछले काफी लंबे समय से वो खतरनाक रही है, लेकिन अब समय आ गया उसको गिराने का। और आप देख सकते हैं जो सामने जहां पर बिल्डिंग गिरी थी उस इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया, हालांकि वहां पर पानी जो पहले भी दिख रहा था वो फिलहाल दिख रहा है और इसी पानी की वजह से जो बेसमेंट में भर गया था वो बिल्डिंग की जो इमारत की जो नींव है वो कमजोर हुई, जिसके बाद वो बिल्डिंग गिर गई। लेकिन अभी की अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, मलबे को हटा लिया गया है वहां से, एनडीआरएफ के जवान यहां से जा चुके हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को यहां पर लगाया गया है और एक पट्टी लगा दी गई है ताकि आम इंसान यहां तक ना पहुंचे क्योंकि असुरक्षा का भाव भी लोगों में आ गया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पीयूष। तो दिल्ली के सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल अभी भी कायम है। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी?
6: मेरी मौजूदगी इस वक्त मुखर्जी नगर में है और मुखर्जी नगर में इसी तरह की गलियां हैं, इसी तरह के तारों के जंजाल हैं और इसी तरह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जिनकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है। कई जो दीवारें हैं उनमें जो प्लास्टर है वो उतर चुका है, लेकिन इन्हीं कंडीशंस में छात्र रहने को मजबूर होते हैं। एक ये गली देखिए कितनी पतली गली है, अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड का पहुंचना, एम्बुलेंस का पहुंचना ना के बराबर हो जाएगा। और देखिए किस तरह से छोटी छोटी गलियां हैं और छोटे छोटे मकान हैं और इन्हीं मकानों के जो हैं काफ़ी भारी संख्या में रेंट छात्रों को देने पड़ते हैं। हम मौजूद हैं एक ऐसे घर में जहां पर रेंट पर छात्र रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अंदर चलेंगे और उन छात्रों से बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन स्थिति में वो रहने के लिए मजबूर हैं। लगभग 5 से 6 मंजिला इमारतें जो हैं वो मुखर्जी नगर में आपको देखने को मिल जाएंगी। अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर ये किस तरह से छात्र जो हैं रहते हैं। अगर इसी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी 5 माले इसमें हैं और 4 माले तक जो है वो परमिशन दी जाती है एमसीडी के द्वारा। लेकिन इस डर के माहौल में भी छात्र जो है वो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर छात्र इस छोटे से इलाके में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर वायरिंग है और अगर इसमें आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर यहाँ से जाना काफी मुश्किल यहाँ होगा, यहाँ से बचना काफी मुश्किल रहेगा। हमारे साथ इस वक्त 6 से 7 छात्र हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इस डर के माहौल में वो जीवन जी रहे हैं। ओम भाई, आपने सत्य निकेतन में जो घटना हुई उसके बारे में सुना होगा।
7: बिल्कुल सुना है भाई साहब, और मुझे लगता है कि ये सत्य निकेतन की जो घटना हुई है वो केवल ईंट पत्थर और सीमेंट से बनी दीवारों का ढलना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के सपने का टूट जाना है। मुझे लगता है कि ये जो मलबा है वो केवल मलबा नहीं है, ये उस बच्चे के सपने का मलबा है जो क्या कहते हैं कि आज से कई साल पहले अपने घर से निकला था, जिस सपनों को सजो करके, उस चीज का मलबा है।
6: आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी स्थिति ऐसी?
8: हाँ, सेम टू सेम ऐसे ही कंडीशन के हैं।
6: बिना पिलर के सारे?
8: कहीं नहीं, बिना पिलर तो है ही नहीं कहीं पे, बस ईंट जोड़ा हुआ है बस केवल।
6: ना सिर्फ सत्य निकेतन बल्कि मुखर्जी नगर में कई इलाके हैं जिसमें पटेल चेस्ट, नेहरू विहार, इंदिरा विहार जैसे इलाके हैं जहां पर काफी कमजोर हालत में बिल्डिंग्स हैं, और जैसा हमने कई छात्रों से बात की उन्होंने बताया कि डर के साए में वो यहां पर रहकर कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी सालों सालों तक करते हैं। मेरे सहयोगी संजय साहब ने पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात दिल्ली में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड की। यहां पर केलोकरी गांव में मणिपुर के 54 साल के म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने घर के सामने ढाबे पर शोर शराबा कर रहे ढाबा कर्मचारी और डिलीवरी बॉय को शांत करने के लिए कहा। आरोपी है कि इसी के बाद ढाबा कर्मचारी और डिलीवरी बॉय ने उनकी पिटाई कर दी जिससे उनकी जान चली गई।
1: We need protection, justice for Vikram. दक्षिणी दिल्ली के सनलाइट थाना में सुरक्षा और इंसाफ की मांग करते नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये कैंडल मार्च निकाला गया मणिपुर के म्यूजिक टीचर 54 साल के सी विक्रम सिंह की हत्या के विरोध में। कैंडल मार्च से पहले बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोग सनलाइट थाने में भी जमा हुए और वहां भी जमकर नारेबाजी की।
9: यहाँ पे हम ये मांग कर रहे हैं कि कल्प्रिट को अप्रहेंड करिए और जो जो जो पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो सजा मिलना चाहिए, उसको मिलने के लिए हम यहाँ पे मांग करने के लिए आए हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट अ लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट।
1: पूरी वारदात किलोकरी गाँव की सोमवार देर रात की है। बताया जाता है कि जिस जगह सी विक्रम सिंह रहते थे वहीं स्थित एक ढाबे में देर रात शोर शराबा हो रहा था। शोर शराबे से परेशान विक्रम ने जब ढाबे में मौजूद लोगों से शांत होने को कहा तो बताया जाता है कि इसी बात पर ढाबा स्टाफ और वहां मौजूद डिलीवरी बॉय उस पर टूट पड़े। बुरी तरह जख्मी हालत में विक्रम को होली फैमिली अस्पताल ले जाया जा सका लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
9: यहाँ का जो लोकल है दारू पी के बहुत शोर शराबत कर रहा था, तो जब शोर शराबत किया था एक मणिपुरी का लड़का है, वो गिटारिस्ट है, बहुत जाने माने गिटारिस्ट है, मणिपुरी गिटारिस्ट है, तो उसने रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए और यहाँ पे शोर शराबत मत कीजिए क्योंकि काफी दिनों से उधर उस एरिया पे शोर शराबत कर रहा था। तो जब उसने ये बताया, उसको रिक्वेस्ट किया गया था, उसको एसओ की गई है।
1: बहरहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। आशुतोष कुमार के साथ अरविंद ओंझा, दिल्ली आज तक।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, किस बात पर दरअसल इतनी मार पिटाई हुई, क्या महज यही कारण था जो कि वहां के लोगों ने देखा या समझा?
10: देखिए, शोर शराबा जो अब तक की जानकारी में आया है कि देखिए यहीं पर ऊपर थर्ड फ्लोर पर उनका घर है। बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के करीब वो कुछ कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए बाहर की तरफ आए थे। जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर बाहर की तरफ आए थे और यहां पर 5-7 लड़के खड़े थे जो आसपास के ढाबों में काम करते हैं जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। उन लड़कों से उनकी बहस होती है इसी बात पर और इसके बाद वो वापस जाते हैं। जब वो वापस की तरफ जाते हैं तो आरोप है कि कुछ ही देर में वो लड़के वापस ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पर मारपिटाई होती है। बकायदा उनको बेहद करीब उनके चेहरे पर कई मुक्के मारे जाते हैं और इसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। उनका बेटा आता है, बीच बचाव करता है और बेटे के बीच बचाव के बाद जब वो लड़के वहां से निकलते हैं तो उनको लेकर के हॉस्पिटल जाया जाता है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। अब पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके अरेस्ट कर लिया है, जिसमें 8 लोगों को जो पकड़ा है उनमें एक नाबालिग है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम के समझने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो आई विटनेसेस के बयान दर्ज किए जा रहे हैं कि जो आई विटनेस यहां मौजूद थे कि जो झगड़ा शुरू हुआ वो जाहिर तौर पर शोर शराबा कर रहे थे, ये बात पुलिस के सामने आ चुकी है। लेकिन झगड़ा बढ़ा किस बात पर, जब वो यहां पर मना किए तो अब तक की जांच में यह भी आया है कि किसी ने शराब नहीं पी रखी थी, तो इतनी मतलब इतना गुस्सा किस बात पर कि अगर कोई आपको जरा
0: ठीक है मानशु, ये कल देर रात की वारदात जिसमें शख्स की जान चली गई। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात और महाराष्ट्र दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी 35,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के करीब 326 किलोमीटर लंबे 3 खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। साथ ही 9,700 करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत वाले 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 6,000 युवा प्रोफेशनल्स को संबोधित करेंगे। और वडोदरा में प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त क्रेज दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम की सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, सारे टिकट्स बिक चुके हैं। पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए बुक माय शो से रजिस्ट्रेशन कराया गया, लेकिन पहले घंटे में सारी सीट्स बुक हो गई, जबकि 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग में है। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी के पवेलियन में रखा गया है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में करीब 6,000 युवा अपनी जेन जी उपस्थित रहेंगे। पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम में बुक माई शो के जरिए रजिस्ट्रेशन किया गया, जो पहले घंटे में हाउसफुल हो गया। एक घंटे में कार्यक्रम की सारी सीट्स फुल हो गई, कई लोग अभी वेटिंग में हैं। तो ये वडोदरा में प्रधानमंत्री का जादू पहले से ही दिखाई दे रहा है। यहां पर जेनजी को संबोधन देना है उन्हें, 6,000 युवा इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। तस्वीरें ये वडोदरा की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम छात्र उत्साहित दिख रहे हैं और वहां पर पोस्टर बैनर उनके स्वागत के लगाए गए। ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, आज का क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वडोदरा में?
11: देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नमो फॉर विकसित भारत नाम दिया गया है, जिसमें वडनगर से वडोदरा और वडोदरा से वाराणसी तक की जो सफर है प्रधानमंत्री की, उस पर बात होगी किस तरह से ये विकास यात्रा चली है। हम लोग अभी जो है जहाँ पे ये संवाद होने वाला है वहीं पे है। ये जो डोम बनाया गया है इसी में प्रधानमंत्री जो है वो एक वाई शेप का जो है स्टेज बनाया गया, जिसपे प्रधानमंत्री चलकर आएंगे, छात्रों और जो प्रोफेशनल्स हैं उनका अभिवादन करेंगे और उसके बाद जो है उनके साथ संवाद होगा। यहाँ से करीबन 35,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी जो है गुजरात को दी जाएगी, जिसमें 20,000 करोड़ से ज्यादा के केंद्रीय प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी जो है राज्य सरकार की योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर 35,000 करोड़ के विकास कार्य जो है उसका शिलान्यास और खात जो है लोकार्पण यहाँ पे होगा। और साथ ही प्रधानमंत्री जो है वो बात करेंगे जिस तरह से बुक माई शो पे, ये पहला इवेंट है प्रधानमंत्री का जिसके अंदर बुक माई शो पे जो है वो ऑनलाइन बुकिंग की गई थी, फ्री एंट्री है, लोगों को बुकिंग किया था। एक ही घंटे में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बुक हो चुका था। 5 तारीख को इसका बुकिंग शुरू हुआ था और एक ही घंटे में ये बुक कर दिया था। उसके बाद जो है करीब 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग में थे और पहले 6,000 की कैपेसिटी रखी गई थी।
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के राज्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक को उनके कार्यालय में किया गया, 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली और मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज, सुधार और नई पहलों का ब्यौरा प्रधानमंत्री को सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं परियोजनाओं की टाइम बाउंड डिलीवरी, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। मंत्रियों से सोशल मीडिया एंगेजमेंट, जनता से जुड़ाव और विकसित भारत 2047 के विजन पर जानकारी ली गई। और अब बात सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर छिड़े सियासी घमासान की करेंगे। जिस जगह मस्जिद गिराई गई वहां कुआं मिला और कुआं सामने आने के बाद इस पर अब नए तरह की सियासत शुरू हो चुकी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या क्या अब इस कुएं की जो जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो ASI की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है।
0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला, स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है, और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए, और जब खुदाई होगी अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहाँ आज भी है, मेरे यहाँ चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी, तो वो ही है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये ASI की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है? दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला, इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात यूपी के संभल की करेंगे, जहां पर शाही मस्जिद से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है। शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे का आदेश निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। वहीं हिंदू पक्ष ने मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने का विरोध किया है। और अब बात बिहार की बाढ़ की करेंगे। बिहार के 13 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा गंडक समेत तमाम नदियों में जबरदस्त तूफान है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए बिहार में बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
5: चारों ओर पानी ही पानी, गांव डूबे, घर डूबे, स्कूल डूबे, रास्ते डूबे, और अब लोगों के सामने घर छोड़ने की मजबूरी बन गई। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो बिहार पर बाढ़ का सितम लेकर आया है। ये बिहार के नौगछिया की तस्वीरें हैं, जहां मदरौनी इलाके में बाढ़ ने कहर मचाया है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं, स्कूल जलमग्न हैं और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। करीब 20 दिनों से लोग बाढ़ के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। गंगा की फान के चलते कोसी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। आवाजाही का एकमात्र सहारा अब नाव ही है। मुंगेर में भी हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी इलाकों के साथ अस्पताल और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। लोगों के सामने इलाज से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक का संकट खड़ा है। बेगूसराय में भी बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। 5 नगर निगम वार्डों में पानी भरने के बाद बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। उधर सुपौल में कोसी नदी में नाव पलटने से 6 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वहीं मनेर में नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेताओं का दौरा भी जारी है। पप्पू यादव बाढ़ पीड़ित के घर पहुंचे, वहीं सम्राट चौधरी ने सोनपुर पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। अब चुनौती सिर्फ पानी से बचाने की नहीं बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो हमारे संवाददाता बिहार के अलग अलग बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच रहे हैं। रोहित सिंह बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नवगछिया से उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
6: नवगछिया के इस वक्त मधुरानी गांव में हम लोग मौजूद हैं और जहां पर मैं खड़ा हूं ये तस्वीर सिर्फ देखिए और समझिए कि किस तरीके से गंगा या कोसी का पानी जो इस पूरे इलाके में जो है पूरे गांव में फैल चुका है। गंगा को की उफनाई हुई है तो कोसी का पानी को भी निकलने का जगह नहीं मिल रहा है। उसके वजह से कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं। परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए मैं जहाँ खड़ा था उसके नीचे आप जैसे ही आइए तो आपको पानी का लेवल जो है काफ़ी बढ़ता हुआ ये आपको नज़र आएगा। देखिए कितना गहरा ये पानी है। अभी तक जांग कमर भर जो है वो लेवल तक पानी है और चारों तरफ आप देखिए इधर भी आप देख सकते हैं सब कुछ जो आपको डूबा डूबा हुआ दिख रहा होगा। ग्राउंड फ्लोर आप देखिए, झोपड़ियां देखिए, हर कुछ जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और हर साल की भांति एक बार फिर इस इलाके के लोगों के पास बाढ़ की विभीषिका झेलने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
4: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आज वडोदरा में पीएम मोदी के मेगा इवेंट का इंतजार। पहली बार बुक माई शो से रजिस्ट्रेशन एक घंटे में फुल हो गई सारी सीटें। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिलेगी हरी झंडी। अयोध्या में आज सीएम योगी देंगे बुनकरों और आंगनबाड़ी महिलाओं को सौगात। आओ सुने और सुनाए कहानी की शुरुआत। तिरुपति से लौटने के बाद देवस्थानम के क्राउड मैनेजमेंट की तारीफ। जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे जयकारों से अलग है सर तन से जुदा के नफरती नारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। अदालत ने खारिज की बरेली हिंसा केस में तौकीर रजा की जमानत। दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में पीजी मालिक हरिराम और पत्नी की ओर 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। राजधानी में सभी पीजी का होगा ऑडिट। आज तक की सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की न्यू इंडिया की बात। कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत। सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही हैं करारा जवाब। इंदौर में भारी बारिश और आंधी के बीच बड़ा हादसा। ये खबर आपको दिखाएंगे। अब वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। इंदौर में भारी बारिश और आंधी के बीच बड़ा हादसा। चलती कार पर गिरा पेड़। हादसे में 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। गुजरात के मांडा में भीषण सड़क हादसा। कार को पीछे से गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। एक महिला की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का उग्र आंदोलन। 3 दिन से लगातार धरने पर बैठे लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। 7 किलोमीटर तक ही वाहनों की लंबी कतार। भोपाल की 80 फीट सड़क की हालत बदहाल। सड़क पर 3 फीट गहरे गड्ढों से राहगीर परेशान। धनबाद में आयरन केल्विन के कार्यक्रम में बचा बवाल। जमकर तोड़फोड़ और मारपीट से मची अफरा तफरी। पुलिस ने कराया कार्यक्रम बंद। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का कहर। भरभराकर गिरा मकान। बाल बाल बचा परिवार। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा। कार पर गिरा बोल्डर। 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। गुजरात की नवसारी में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। धुएं के गुबार के बीच अफरा तफरी। वडोदरा में आवारा गाय का आतंक। मां बेटे पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। मुंबई में 10.64 लाख की हाई क्वालिटी नकली करेंसी बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई। आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। सत्य निकेतन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। 7 लोगों की मौत, 5 घायलों का इलाज जारी। ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। हरिराम के नाम बिजली का कनेक्शन। बेटा महेश बिल्डिंग के मैनेजमेंट देखता था। प्रॉपर्टी ऑन पेपर हरिराम की पत्नी उर्मिला के नाम थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली बिल्डिंग घटना मामले को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी। दिल्ली मौजूदा सभी पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट के दिए गए आदेश। बिहार में 13 जिलों में बाढ़ का कहर। 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित। पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर तक पानी पानी। बिहार की विनाशकारी बाढ़ पर भी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। 5 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की अपील। नवगछिया के ब्रह्मोत्तर बांध पर मंडराया बाढ़ का खतरा। 5 जगह रिसाव से मचाड़ कम। कई जगह कटाव के बाद गांव की ओर बढ़ा पानी। नवगछिया के 3 टंगा दियारा में बाढ़ का कहर। स्कूल कॉलेज और पशु अस्पताल में घुसा पानी। बच्चों ने ट्यूब को बनाया नाम। मुंगेर में बाढ़ का कहर। थानाध्यक्ष का आवास और गाड़ियां डूबी। फरियादी के साथ साथ पुलिसकर्मियों में को हो रही है परेशानी। कटिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच मेगा कम्युनिटी किचन चालू। पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था। लखनऊ में भीषण बारिश के बीच सड़क पर गिरा भारी भरकम नीम का पेड़। कार और स्कूटी चपेट में। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश से राजमार्ग सहित 15 सड़कें बंद। 3 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। एमपी के मुरैना में बाढ़ के पानी में मंदिर में फंसा साधु। राहत बचाव की टीमें पहुंची तो लौटने से किया इनकार। 24 घंटे की बारिश से स्मार्ट सिटी बरेली बेहाल। वीआईपी और रिहायशी इलाकों में कमर तक है पानी। दिल्ली में कोचिंग हॉस्टल पीजी की सुरक्षा की जांच होगी। एलजी बैठक के बाद मंत्री आशीष सूद बोले सभी विभाग मिलकर तय समय में पूरी करेंगे जांच और ऑडिट। मुखर्जी नगर में यूपीएससी अभ्यर्थियों का रेंट माफिया के बीच गुजर बसर। जर्जर मकानों में रहने को मजबूर है छात्र। 25,000 तक मासिक खर्च, न किराया अग्रीमेंट, न मकान मालिकों का अता पता। चोरी के डर से सेमी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ब्रोकर ज्यादा किराया देने वाले मिलते ही कर देते हैं कमरा खाली। बिहार में 400 बिना रजिस्ट्रेशन वाले पीजी हॉस्टल चिन्हित। सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया पत्र। एसपी को कार्रवाई और संचालकों से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश। पीजी हॉस्टल्स पर पुलिस दीदी की हर महीने निगरानी। छात्रों से बातचीत कर सुरक्षा का लिया जा रहा है फीडबैक। एडीजी बोले इमारतों की उम्र और सुरक्षा का ऑडिट जरूरी। पीएम मोदी आज वडोदरा नवसारी मुंबई के दौरे पर। 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवसारी दौरे की तैयारियां पूरी। देश का पहला एआई तकनीक से लैस आधुनिक गमलम तैयार। हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद के बीच बीजेपी का अन्य जिलों में सामाजिक सौहार्द संकल्प प्रदर्शन। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्रियों समेत नेताओं ने दिया धरना। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर होगा उपचुनाव। 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद होने वाला कार्निवल बंद। सीएम शुभेंदु अधिकारी का ऐलान। ममता बनर्जी सरकार की पहल पर कोलकाता के रेड रोड पर होता था भव्य आयोजन। वडोदरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए बुक माई शो पर फ्री रजिस्ट्रेशन। खुलते 1 घंटे के बाद सभी सीटें फुल। 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में। आज तक की सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही। आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत। सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। निशु आजाद के अपने घर पर हुए पथराव के दावे पर उठे सवाल। सोसाइटी के लोगों ने कहा यहां नहीं हुई कोई ऐसी घटना। सागर जहरीली शराब कांड पर कांग्रेस नेता उमंग सिंगार का हमला। बोले हिंदुओं के नाम पर डर फैलाने से नहीं चलेगा काम। 13 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों को बांदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 के खिलाफ मामला दर्ज। 14 को हिरासत लिए जाने का मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन और पूजन किए। सीएम ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम व्यवस्थाओं की सराहना की। सीएम योगी ने आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। लखनऊ से अयोध्या तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अहम कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ होगा। इस कॉन्क्लेव में बुनकरों कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। यूपी में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए आज से सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में आओ सुने और सुनाए कहानी अभियान शुरू होगा। अयोध्या में आज नए सीओ जितेंद्र मिश्र की नई जिम्मेदारी। राम मंदिर और प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभालेंगे। रामलला के दर्शन के बाद कार्यभार संभालेंगे सीओ जितेंद्र मिश्र। मंदिर की व्यवस्था को लेकर नई कार्य योजनाओं पर मंथन। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के सामने राम मंदिर की जिम्मेदारी। श्रद्धालुओं का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती। बंगाल बरेली हिंसा मामले मौलाना तौकीर रजा की जमानत खारिज। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरतन से जुदा इस नारे को हिंसा के लिए उकसाने वाला बताया। इसकी तुलना धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती। संभल में जाम मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वे के आदेश पर है सबकी नजर। संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। उत्तराखंड में 2027 चुनाव की तैयारी। बीजेपी अध्यक्ष नवीन का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा 9 सितंबर से। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी मंथन। नितिन नवीन कमजोर सीटों और संगठन की रणनीति पर करेंगे बैठक। बीजेपी विधायकों के टिकट पर नजर। नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से लेंगे ग्राउंड फीडबैक। पंजाब के कर्मचारी आंदोलन तेज। 8 सितंबर से सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी। 18% लंबे डीए और ओपीएस की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम आवास तक निकालेगी मार्च। शो कॉज नोटिस वापस लेने की मांग। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। पंजाब में फिर बड़े आंदोलन की तैयारी। कर्मचारियों ने मंत्री और विधायकों के घेराव का किया ऐलान। डीए पुरानी पेंशन वेतन जुड़े मुद्दों पर आर पार की लड़ाई। 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी फिर आंदोलन के मूड में। झारखंड सीजीएल पेपर लीक मामले पटना से गिरफ्तारी। एसआईटी ने कारोबारी राजन कुमार को पकड़ा। पेपर लीक के आरोपी राजन पर बड़ा आरोप। कोलकाता बुलाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र की जानकारी देने का दावा। झारखंड में एलजेपी के विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण के बाद रांची पुलिस ने सकुशल बरामद किया। 11 सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल। ब्रिक्स समिट को देखते हुए लिया गया फैसला। एनएस सुदर्शनी ने स्पेन के बार्सिलोना में पोर्ट कॉल को पूरा किया। लोकायन 26 अभियान के तहत भारतीय नौसेना की सेल ट्रेनिंग शिप का दौरा। स्पेनिश नौसेना और समुद्री पदाधिकारियों से पेशेवर संवाद। बार्सिलोना में आईएनएस सुदर्शनी पर हुआ डेक रिसेप्शन। भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों ने जहाज और प्रशिक्षुओं से की मुलाकात। दुबई में एआईएम कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एमपी पवेलियन का किया उद्घाटन। फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिवसीय कार्यक्रम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे मुख्य अतिथि। महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर। कार्यक्रम में ओम बिरला ने आजादी से राष्ट्र निर्माण तक महिलाओं की भूमिका को बताया अहम। कहा विकसित भारत के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। कश्मीर में सजा सिनेमा और संस्कृति का महामंच। घाटी पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख समेत कई सितारे फेस्टिवल में पहुंचे। निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और रमेश सिप्पी बने आयोजन का हिस्सा। कश्मीर को ग्लोबल सिनेमा से जोड़ने की शानदार पहल। 41 देशों की 135 फिल्में प्रदर्शित। 10 सितंबर तक चलेगा ये फिल्म फेस्टिवल। प्रयागराज में 60,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी। शिक्षक सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी में पुराना नियम वाली लागू करने की
किए जाने की मांग पर छात्रों का आमरण अनशन, धरने पर बैठे सैकड़ों छात्र। मेरठ में पेपर लीक और फर्जी तरीके से पास कराने वाले 20,000 का इनामी मोनू और प्रशांत कुमार गिरफ्तार, दिल्ली से पकड़ा गया। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट, 8 से 10 युवाओं ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी में वीडियो वायरल। कानपुर में करोड़पति दवा कारोबारी हत्याकांड का बड़ा खुलासा, बहू निकली हत्यारी, 6 लाख रुपए की सुपारी देकर ससुर की हत्या की साजिश। झांसी में रील बनाने के जुनून ने पहुंचाया अस्पताल, 30 फीट ऊंचे बांध से युवक ने लगाई छलांग, चट्टान से टकराया युवक। बदायूं में टेम्पो डंपर की टक्कर में पति पत्नी समेत 7 की मौत, 3 की मौत, 7 घायल। हादसे के बाद डंपर चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी के फाइनल में पहुंची, भारत के लिए पद किया सुनिश्चित। शीतल का फाइनल के कजाकिस्तान के ज्यादा सिदान से होगा मुकाबला, गोल पर होंगी निगाहें। भारत को एक और पद की उम्मीद, ब्रॉन्ज के लिए दावा पेश करेंगी पैरा खिलाड़ी सरिता। फिल्म ताली के प्रोड्यूसर क्रिएटर कार्तिक ने बताया, श्री गौरी सावंत के किरदार नहीं सुष्मिता सेन नहीं बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहले किया गया था अप्रोच। बड़े बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री को पाकिस्तान के नंबर से मिली धमकी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। रूस के पर्म इलाके में यूक्रेनी ड्रोन से भीषण हमला, रिहायशी इमारत से टकराया ड्रोन, 1 की मौत, 4 घायल। कीव और मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के बीच बातचीत के बाद एक बड़ा बयान, पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत की संभावना, वार्ता कब और कहां होगी इस पर इनकार नहीं। नॉर्वे में सैन्य पर भड़का रूस, क्रेमलिन ने कहा नॉर्वे की सैन्य तैयारी रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, नॉर्वे में कई एडवांस तकनीक की मिसाइलें हैं तैनात। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान, हॉर्मुज को सुरक्षित मार्ग बनाने को लेकर ईरान और ओमान के बीच समझौता अंतिम चरण में। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में यूएन परमाणु एजेंसी IAEA, ईरान ने दी सख्त चेतावनी का, अगर यूएन की परमाणु निगरानी संस्था उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव अपनाती है तो तेहरान भी वैसा ही जवाब देगा। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप नाउरू ने यरूशलम में खोला अपना पहला दूतावास, इसराइल के विदेश मंत्री और नाउरू के उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला, 9 की मौत, 11 लोग घायल, मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल। रूस और उत्तर कोरिया के तुमेन नदी पर बने अपने पहले सड़क पुल का किया गया उद्घाटन, देशों ने इसे सामरिक साझेदारी का अहम हिस्सा बताया। ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ बंदरगाह पर प्रवासियों के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। जर्मनी के राजनाम में दुर्ग दक्षिणपंथी पार्टी AfD की ऐतिहासिक जीत, 44% वोट हासिल कर बनी सबसे बड़ी पार्टी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: ओ ला ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
7: ओ ला बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
3: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
4: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
3: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
5: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में। अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: चुनाव का मौसम हो तो ढाई जा रही इमारतों पर उगती सियासत की रवायत एक बार फिर सहारनपुर में दिख गई। शासन ने दो दिन पहले जिस इमारत को अवैध ठहरा दिया था उसके मलबे पर राजनीति अभी बाकी।
1: क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में 13 घंटे में मस्जिद को गिरा दिया जाए? ये सोची समझी रणनीति साजिश है जिसके तहत पूरे प्रदेश को ये अपने अधिकारियों के माध्यम से कम्युनल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।
0: एक तरफ विपक्षी दल सहारनपुर की घटना पर सांप्रदायिकता का सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सहारनपुर जाते रोके जाने के आरोप लगा रहे हैं। एसपी की इकरा हसन से कांग्रेस के अजय राय और ओएसी पार्टी तक के नेताओं ने कहा है कि सहारनपुर जाते हुए पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया।
1: हमारे सभी सांसद सभी नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई है। ये पुलिस चोर डकैत बदमाशों को नहीं पकड़ रही है, पॉलिटिकल लोगों को घेराबंदी कर रही है।
0: प्रशासन ने एहतियातन नेताओं को सहारनपुर जाने से जरूर रोका, लेकिन दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम उस कुएं की पड़ताल करने जरूर पहुंच गई, जिसकी खुदाई की मांग हिंदूवादी संगठन करने लगे। दरअसल सहारनपुर में 5 सितंबर को तड़के 4 बजे जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उसमें कचहरी की जमीन पर अवैध मस्जिद गिराई गई थी। इसे 16 जुलाई 2026 में सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज वडोदरा में पीएम मोदी के मेगा इवेंट का इंतजार। पहली बार बुक माय शो से रजिस्ट्रेशन 1 घंटे में फुल हो गई सारी सीटें। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मिलेगी हरी झंडी। मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में पीट पीट कर हत्या के बाद नॉर्थ ईस्ट तक आक्रोश। ढाबे पर शोर का विरोध करने पर कत्ल। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी। कई जगह कैंडल मार्च। जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे जयकारों से अलग है सरतन से जुदा के नफरती नारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। अदालत ने खारिज की बरेली हिंसा केस में तौकीर रजा की जमानत। सत्य निकेतन हादसे में पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बेटे को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। दिल्ली में सभी पीजी का होगा ऑडिट। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की न्यू इंडिया की बात। कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत। सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही हैं करारा जवाब।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के सागर की, जहां जहरीली शराब से कई लोगों की जान जा चुकी है। इस घटना को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि दिल्ली में मणिपुरी म्यूजिक टीचर के कातिल आखिर कौन, जिन्होंने उन्हें मार डाला। और साथ ही जिक्र करेंगे पीएम मोदी के गुजरात और महाराष्ट्र दौरे की, आज गुजरात को मिलने वाला है तोहफा। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं दूसरी खबर से। दो शहरों से सदमे की ऐसी खबर आई है, ऐसी सच्चाई आई है जो रूह कपाने वाली है। मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की जान चली गई है, तो दिल्ली में अवैध रूप से निर्मित इमारत धराशायी हुई और इसमें 7 लोगों की जान चली गई। उन 7 लोगों में 5 तो छात्र थे, जो अपने सपने की ऊंची उड़ान भरने दिल्ली पहुंचे थे। आखिर इन दोनों शहरों में 20 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल है कि क्यों आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है। एक शहर में एक घटना बीतती है और किसी और शहर में फिर कोई लापरवाही हो जाती है, फिर वैसी ही मौत होती है और यह सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा है। सवाल है कि आखिर असल मुजरिम कौन है? सिस्टम ऐसे हादसों को, प्रशासन ऐसे हादसों को, सरकार ऐसे हादसों को रोकने में आखिर लाचार क्यों है? ये बड़े सवाल हैं। तो बात करते हैं पहले मध्य प्रदेश के सागर की, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। ये सरकारी आंकड़ा है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वैसे इस मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं, जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस अब दावा कर रही है कि सागर में मरने वालों की संख्या दरअसल 50 से भी ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार इन आंकड़ों को झूठा बता रही है और कह रही है कि अब तक 13 ही लोगों की जान गई है, जिसे लेकर अब कठोर कार्रवाई भी की जा रही है, उनका दावा है। जहरीली शराब के मामले में अब तक 30 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है, 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

0: तो चलिए आपको बता देते हैं किस तरीके से मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रही है। सरकार कहती है कि मौत 13 लोगों की ही हुई है, वहीं विपक्ष कहता है कि दरअसल 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है। तो सागर में पीड़ित लोगों से और उनके परिवार वालों से मिलने के लिए कल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पहुंचे थे और राज्य के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी पहुंचे थे। जीतू पटवारी ने मौत के आंकड़ों को लेकर गंभीर सवाल उठाए तो डिप्टी सीएम ने उस पर पलटवार कर दिया।
1: प्रशासन है, सरकार है, मौतें छुपा रही है। 50 से ज्यादा मौतें हुई है, 33 जगह का खुद परिवारजनों से मिलकर आया। परिवारजनों की वेदना, एक साल की बेटी है, पिता मौत पे चले गए, यतीम हो गई। 30 साल की पत्नी है, दो बच्चे हैं, पति चला गया, तीनों अनाथ हो गए। एक घर है जिसमें 3 पुरुष थे, 2 पुरुष मर गए शराब पी के, सब महिलाएं बच्चे, एक भर्ती है।
2: कोई आंकड़े नहीं छिपा रही है, सबके सामने है, जनता के सामने है, आप लोगों के सामने है, छिपाना क्यों छिपाना
3: है? आज कितनी
2: जो स्थिति हुई है वो सब सामने है। 13 लोगों के बारे में मैंने बताया कि 13 लोगों की डेथ हुई है जिनका पोस्टमार्टम हुआ है और 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 30 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है और कोई भी जो भी लापरवाही करी होगी, जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही करी होगी, अभी भी जांच में जो भी सामने आएंगे उनके खिलाफ
3: कड़ी।
0: तो साफ है कि जहरीली शराब कई जिंदगियां निकल गई है। मृतकों में से एक राजेंद्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह उनके घर पहुंचे।
4: रक्षाबंधन का त्योहार था, बहन राखी बांधने आई थी और साथ ही में जो भाई है उसके पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से राजेंद्र जो है फिर वो इंदौर नहीं गया, वो यही रहा अपने गाँव में और शनिवार को जहरीली शराब पीने से आखिर राजेंद्र की मौत हो गई। अब देखिए सामने बहन है, ये राजेंद्र की बहन है जिन्होंने कुछ दिन पहले इन्हीं हाथों से उसको राखी बांधी थी। आज राखी बीत जाने के चंद दिनों के बाद आप देखिए वो बहन जिस भाई की सलामती की दुआ के लिए उसने राखी बांध के प्रार्थना की होगी सलामती की अपने भाई की, आज वो अपने भाई के शव को देखकर किस तरीके से बिलख रही है। ये मृतक राजेंद्र की बहन है, वो सामने भाई है जो आप देख रहे हैं, राजेंद्र का भाई है जो इस वक्त बदहवास है पूरी तरीके से, क्योंकि राजेंद्र को तो इस गांव में रुकना ही नहीं था, उसे तो मजदूरी के लिए इंदौर निकलना था, लेकिन इससे पहले कि वो इंदौर जा पाता त्योहार आ गया, वो गाँव में रुक गया त्योहार मनाने और फिर ये हादसा हो गया। बेहद गरीब लोग हैं, मजदूरी करते थे और इस जहरीली शराब ने इन छोटे छोटे गांव वालों के जो सपने होते थे उसको पूरी तरीके से यहां पे तबाह करके रख दिया है। गांव में चीख पुकार मची हुई है, रुदन मचा हुआ है और ये तमाम लोग जो हैं यहां पे जहरीली शराब से के सेवन के बाद से जो हालात बने हैं उसकी बताया। हम गाँव वालों की बात करने की कोशिश करते हैं, बताइए भैया ये शराब जो बिकती थी इसमें कोई रोक नहीं लगती थी क्या यहाँ पे?
5: नहीं सर, गाँव में नहीं लगती है, क्या कोई शिकायत ही नहीं करता है?
4: कोई शिकायत नहीं करता,
5: नहीं,
4: सब गरीब है ऐसे ही तो ये सस्ती वाली पी लेते थे।
5: जी जी।
4: इससे पहले कभी ऐसा हुआ यहाँ पे?
5: नहीं,
4: कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ?
5: जी।
4: अच्छा, तो हमने देखा इस गांव में कई जगह घरों के बाहर शराब की बोतलें रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, सब आती कहाँ से थी, कुछ पता चल पाया? क्योंकि लाइसेंसी दुकान
5: अब जे कौन भी भेजते हैं, वे गाड़ी वाड़ी उसे सप्लाई करते हैं,
4: गाड़ियों से सप्लाई।
5: जी,
4: ये सब नकली शराब?
5: जी,
4: ये जो बाहर सड़क पर पड़ी सब नकली शराब?
5: जी जी, अब दारू भेजते हैं।
4: देख सकते हैं गांव के लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि नकली शराब जो है गाड़ियों से सप्लाई होती है, दुकानों से नहीं मिलती है शराब, और ये माफिया जो है शराब माफिया वो अलग अलग जगहों पर जाकर के गाड़ियों से दुकानों के जरिए छोटी छोटी जो दुकानें सड़क किनारे बनी रहती है वहां से ही इस तरीके की नकली शराब को सप्लाई करते हैं और जिसका खामियाजा इन गरीब गांव वालों को आज भुगतना पड़ा जब जहरीली शराब की वजह से सागर जिले के बंडा में लगभग एक दर्जन लोगों की मौत हुई है। कैमरामैन अमरीश सदा रवीश पाल सिंह, सागर, आज तक।
0: तो सुना आपने कैसे खुले में धड़ल्ले से नकली शराब मिल रही थी, जहरीली शराब मिल रही थी और अब वही कहा जा रहा है जो अक्सर कहा जाता है कि मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
3: इस घटना में जो घटना के क्या कारण रहे, किन ऐसी घटनाक्रम क्या बना जिसके कारण की ये घटना घटित हुई है, इसके पीछे कौन लोग जवाबदार हैं, घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो इसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इन सभी विषयों पर ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन किया गया है। और ये जो मजिस्ट्रेट हैं ये अपनी जाँच उन्होंने आज से शुरू कर दी है, तो ये अपनी जाँच रिपोर्ट इन विषयों को समेकित करते हुए यहाँ पर सौंपेंगे।
0: तो चलिए, इंक्वायरी तो होती रहेगी, लेकिन आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह सागर में उस ढाबे तक पहुंचे जहां से जहरीली शराब बेचे जाने का आरोप है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
4: बंडा के पास नौराज गांव है और बिल्कुल सड़क से लगा हुआ ये एक छोटा सा अवैध ढाबा है जहां पे अवैध तरीके से शराब मिलती थी। गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर दिन रात मेला लगा रहता था, लोग यहाँ पे शराब खरीदने आते थे और लालच होता था सस्ती दारू का। हम इस ढाबे के अंदर जाकर के पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या ढाबे जैसा कुछ है या फिर खाने की व्यवस्था थी या नहीं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ढाबे की शुरुआत है, यहाँ पे लोग बैठते थे, यहाँ पानी मिलता था, ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये अवैध रूप से बना हुआ एक तरीके का अहाता ही था ये शराब की बोतल। पुलिस की एफआईआर में जिस शराब का जिक्र है वो बोतल भी यहाँ पे हमको आपको दिखाते हैं, वो ये बोतल पड़ी है। ये देखिए, ये शराब की बोतलें हैं, ये है सागर गोल्ड, ये देखिए यहाँ रखी हुई है। ये इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जिस शराब का नाम एफआईआर में आ चुका है वो शराब की बोतलें इस तरीके से अवैध रूप से इन ढाबों पर पाई जाती थी, यही मिलती थी, इन्हीं ढाबों में मिलती थी। और ऐसी कई सारी बोतलें हैं, काफ़ी बोतलें छुपा दी गई हैं, यहाँ अगर आप देखें तो जलाने की कोशिश की गई है, कई बोतलें जल भी चुकी है। लेकिन हमारी सामने वो बोतल है जो हमने आपको दिखाई, सागर गोल्ड, ये वो बोतल है जिसको पी कर के लोग मरे हैं, पुलिस की एफआईआर में जिक्र है इसका। और इस तरीके की जो अवैध शराब है जो जहरीली थी जिसमें बड़ी संख्या में मिथाइल अल्कोहल पाया गया है, वो यहाँ पर अवैध रूप से बने इन ढाबों में लोगों को मिलती थी। और सस्ती शराब के चक्कर में जो ग्रामीण हैं, जो गांव के युवा हैं, दूसरे लोग हैं, वो यहाँ आते थे, ये शराब पीते थे, लेकिन शायद उनमें से किसी को नहीं पता था कि एक दिन सस्ती शराब का यही लालच उन्हें भारी पड़ जाएगा और उनकी जान चली जाएगी।
0: आइए अब रुक करते हैं दूसरे हादसे का, सरकारी तंत्र की लापरवाही से हुए हादसे का। बात करते हैं दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे की, जिसे लेकर ताबड़तोड़ एक्शन अब हो रहा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में मौजूद सभी पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही अवैध रूप से बनी 5 मंजिला इमारतों को सील करने का फरमान भी जारी कर दिया है। इस बीच सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार हरिराम और उर्मिला, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उर्मिला के नाम ये बिल्डिंग थी और हरिराम के नाम बिजली कनेक्शन था, जबकि उनके बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, जो कि इस पूरी बिल्डिंग का मैनेजमेंट संभालता था। तो आपको दिखा रहे हैं उन 3 आरोपियों के चेहरे इस वक्त जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले हरिराम गुप्ता, जिनके नाम पर बिजली का कनेक्शन था, उनकी पत्नी उर्मिला, जिनके नाम पर वो बिल्डिंग थी, और बीच में उनका बेटा जो दरअसल इस पूरे पीजी को मैनेज करता था, वही चलाता था, वो अब कस्टडी में है। उधर सरकार की तरफ से अब आदेशों का लगातार सिलसिला जा रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप स्ट्रक्चरल ऑडिट कीजिए, अगर आपकी बिल्डिंग मजबूत है तो ही आपको किसी तरह की अनुमति मिलेगी पब्लिक सर्विसेज को चलाने की। ये बात कही है रेखा गुप्ता ने, मुख्यमंत्री ने, और ये वो इलाके हैं जहां पर ये आदेश जारी होगा। हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में पीजी चलाना ये एक पुराना धंधा है, और एक नजरिए से देखें तो जरूरतें होती हैं छात्रों की, इसलिए ये धंधा पनपा है, लेकिन सरकार अब किस तरीके से तय करेगी कि यह धंधा मौत का कुआं ना बन जाए इन छात्रों के लिए?
6: जी बिल्कुल, जिस छत के नीचे छात्र रहते वही छत उनके लिए मौत का कारण बनी और ये कहीं ना कहीं अब इस घटना के बाद सरकार जागती हुई नजर आ रही है। रेखा गुप्ता ने कल देर रात तक बैठक की, उनके साथ कई मंत्री मौजूद थे और उसके बाद सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। उसमें से सबसे बड़ा फैसला ये है कि जितने भी पीजी और रेंटेड अकोमोडेशन है उन सबकी बिल्डिंग्स की का ऑडिट होगा, उन सबकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली जाएगी और इसी के साथ साथ दिल्ली भर के सभी एमसीडी के दोनों और को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जितनी भी दिल्ली में बिल्डिंग से सभी का ऑडिट कराएं और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें। इसी के साथ साथ सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि आगे से पीजी और रेंटेड अकोमोडेशन किसको देना है उसको लेके कुछ नियम आएंगे और इन सब चीजों को लेकर जल्द सरकार एक पूरी गाइडलाइन भी जारी करने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों जब कोई एक हादसा हो जाता है तभी सरकार जागती है, तभी इस तरह के फैसले सरकार करती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सत्यनिकेतन के उसी कोलैप्स्ड साइट पर है जहां पर बिल्डिंग गिरी थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जहां पर बिल्डिंग गिरी थी वहां का जो मलबा है वो फिलहाल हटा लिया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर भारी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी डरावनी बात जो इस वक्त सत्यनिकेतन वासियों के लिए है वो ये कि जो बिल्डिंग कल 6 तारीख को जो धराशायी हो गई थी उसके साथ वाली बिल्डिंग भी अब उसमें कहीं ना कहीं खतरा पनपने लग गया है और अब एक दो दिन में ऑडिट करने के बाद उस बिल्डिंग को गिराने की तैयारी भी सरकार कर रही है और उसको लेकर अधिकारी यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। इसी पूरे मामले के अंदर कुछ कार्रवाई भी की गई है, 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसी के साथ साथ एक ही परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिसमें से हरिराम जो है वो उनके नाम पर बिजली का बिल था और मिला जो उनकी पत्नी है वो उनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी और जो उनके पुत्र है महेश वो इस पूरी बिल्डिंग का मैनेजमेंट करते थे। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। अब इन सब चीजों के बाद रेखा गुप्ता
0: जी
6: एक्शन में मोड में नजर आ रही है।
0: एक्शन तो होता हुआ दिख रहा है लेकिन सवाल यही है कि आखिर आगे नीति क्या बनाई जाएगी इस सब को लेकर। सत्यनिकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान अब जैसा कि हमने आपको बताया सामने आ रही है। दिल्ली एम्स ने जानकारी दी है कि मृतकों में 5 छात्र हैं, उनमें एमपी के रहने वाले अर्पित राज जिनकी उम्र 19 वर्ष है और अक्षत सिंह उनकी उम्र भी 19 वर्ष है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ दुर्ग के रहने वाले युवराज सोनी जिनकी उम्र 20 वर्ष है, उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार उनकी उम्र 20 वर्ष है और यूपी औरैया के पवन कुमार हैं वो महज 17 साल के थे। 5ों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज के छात्र थे। सभी मृतक छात्र उस बिल्डिंग में रहते थे, पैसे देते थे उस बिल्डिंग में रहने का जो बिल्डिंग गिर गई है। सोमवार को इनका पोस्टमार्टम एम्स में करा दिया गया। तो हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस की अब जांच तेज हो चुकी है।
7: सर, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है और इनकी भूमिका?
8: इसमें हमने कल बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था सत्यनिकेतन एरिया के अंदर, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इनिशियली हमें लगा था कि हरिराम गुप्ता ओनर है इसके, उनको वो भागे हुए थे इस इंसिडेंट के बाद, उनको इमीडिएटली हमने 10 टीम बनाई अलग अलग लोकेशंस पे, उनके रेजिडेंस पे भी भेजा गया बट फाइनली भिवाड़ी से उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनके नाम था और उनका बेटा उसके साथ ऑपरेट करता था इस पूरे पीजी को, बट जो इसकी ओनर है उनकी वाइफ थी। तो इस हिसाब से 3 लोग इस फैमिली के अरेस्ट हुए जो इसको ओनर थे और इसको पीजी को ऑपरेट करते थे।
7: बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है, क्या पूछताछ में उसने बताया, क्या हो रहा था?
8: जो एक्यूज है उनकी इंटरोगेशन करी गई तो पता चला कि बेसमेंट में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबर वर्कर्स भी वहां पे काम कर रहे थे, उनकी भी स्टेटमेंट ली गई। उन्होंने बताया उस कंस्ट्रक्शन को रिनोवेशन को काम को करते समय वो बिल्डिंग मिसहैप की वजह से कुछ कोलैप्स कर गई।
0: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में इस बिल्डिंग हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार बीजेपी सरकार का वही शर्मनाक पैटर्न है कि हादसों से पहले रोकथाम नहीं, उनके बाद बयानबाजी होती है, कुछ छोटे अफसरों पर जिम्मेदारी मढ़ दी जाती है और असली गुनहगार जवाबदेही मुक्त रहते हैं।

0: जो बोल रहे हैं उस पर लगातार जवाब भी आ रहे हैं। विपक्ष के सवालों को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी उनके इस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ छोटे अफसरों पर कार्रवाई की जाती है।
1: आम आदमी पार्टी वाले के लोग स्वयं घोषित बेरोजगार नेता हैं। दे नीड ट्रैक्शन एंड चैनल्स एंड रिपोर्टर्स लाइक यू गिव देम ट्रैक्शन। देखिए, मैं इस समय दोषारोपण की स्थितियों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं दोषारोपण में नहीं पढ़ना चाहता हूं। किसी की जान गई है। आज कोई ये पूछे कि पिछले 27 साल की जिम्मेदारी किसकी थी, इस प्रकार की काम उन बेरोजगार नेताओं को करने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आपको लगता है कि बाकी चीजों के लिए इनमें ट्रैक्शन है, हमारे लिए बच्चों की सिक्योरिटी और 27 साल से इस प्रशासन में ए टीम और बी टीम ने जो सड़ा गला तंत्र खड़ा किया है उसको भी सुधारना है और गुड गवर्नेंस भी देनी है।
0: और आइए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से ही है एक और बड़ी खबर, जहां एक सनसनीखेज हत्या हुई है। दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर के 54 साल के म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने घर के सामने एक ढाबे पर जो शोर शराबा हो रहा था, जो लोग कर रहे थे, उन ढाबा कर्मचारियों और डिलीवरी बॉय को शांत होने को कहा था। आरोप है कि इसी के बाद ढाबा कर्मचारियों और डिलीवरी बॉय ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी एक जगह जुटे थे, रात का वक्त था और वो लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर म्यूजिक टीचर आए और झगड़ा इसी बात पर शुरू हुआ। अभी तक किसी भी आरोपी के शराब पीने के सबूत तो नहीं मिले हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये जो पूरा मुद्दा है, इसको लेकर सिर्फ एक महज हत्या की बात नहीं हो रही है, जो पूरी कम्युनिटी है वो इस मुद्दे को अलग से देखने को नहीं कह रही है, इसे एक बड़ी बात और एक बड़े प्रॉब्लम और जो मानसिकता है उसको लेकर भी कह रही है कि इस पर कार्रवाई हो।
2: बिल्कुल, जिस तरीके से अभी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचना शुरू हुए हैं, खासतौर से मणिपुर के लोग, उनका कहना है कि जब रविवार रात 12 बजे की ये घटना है और उसके बाद सोमवार सुबह से ही उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आने लगी थी। यहाँ पर अलग अलग देखे बयान है। जो नर्मदा जी आई हैं, जो मणिपुर की रहने वाली हैं, विक्रम को जानती थी, उनका कहना है कि चेहरा देख के अंतर करते हैं कुछ लोग, ये समस्या है और ये समझना होगा। ये उनका कहना है, जो अपने आप में बड़ी बड़ी बड़ी बात है। और दूसरी, जो यहाँ पे संगीता जी पहुंची थी, उन्होंने कहा कि उनकी विक्रम के पत्नी जो म्यूजिशियन थे, उनकी पत्नी से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। रात तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास, जब विक्रम जी जो रात का कुछ छोटा मोटा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है वो फेंकने के लिए और थोड़ा वॉक करने के लिए आते हैं, शोर यहाँ पर हो ही रहा था, तो शायद उन्होंने उन लोगों को मना किया कि शोर मत करो, बस इसी बात पर यहीं से मारना शुरू किया।
0: जी बिल्कुल, इतनी छोटी बात पर मामला इतना बढ़ गया, चौंकाने वाली बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम मोदी के गुजरात और महाराष्ट्र दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के करीब 336 किलोमीटर लंबे 3 खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से ब्रजेश जोशी। आएंगे सीधा रुक करते हैं ब्रजेश का। ब्रजेश, जो खबरें आ रही थी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, उसमें कहा जा रहा था कि काफी भीड़ जमा होने वाली है। आज का जो ये दौरा है वो किस तरीके से अहम रहेगा?
3: देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से वडोदरा में जोम और जुलसा है। हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री आज जो है युवाओं के साथ बात करने वाले हैं, कितने युवा यहाँ पे आएंगे, क्योंकि पहले दिन बात थी 22,000 तक का वेटिंग था, कितने लोगों को आप यहाँ पे समा पा रहे हैं?
4: आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वडोदरा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, आनंदित है। और जिस प्रकार से सिर्फ दो घंटे में बुक माई शो के अंतर्गत सभी पासेस फुल हो गए और 40,000 से ज्यादा वेटिंग है और यहाँ पे कॉन्सर्ट जैसा माहौल दिख रहा है, लोग गरबा करते हुए आ रहे हैं, लोग भजन गाते हुए आ रहे हैं और अभी तो कार्यक्रम को देरी है। आप अगर अंदर देखेंगे
0: जी ब्रिजेश, लगातार हमारी नजर रहेगी इस कार्यक्रम पर। फिलहाल रह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: पापा।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वडोदरा में पीएम मोदी के मेगा इवेंट का इंतजार, पहली बार बुक माई शो से रजिस्ट्रेशन, एक घंटे में फुल हो गई सारी सीटें, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मिलेगी हरी झंडी। मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में पीट पीट कर हत्या के बाद नॉर्थ ईस्ट तक आक्रोश, ढाबे पर शोर का विरोध करने पर कत्ल, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी, कई जगह कैंडल मार्च। जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे जयकारों से अलग है सर तन से जुदा के नफरती नारे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, अदालत ने खारिज की बरेली हिंसा केस में तौकीर रजा की जमानत। सत्य निकेतन हादसे में पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बेटे को 2 दिन की पुलिस कस्टडी, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, दिल्ली में सभी पीजी का होगा ऑडिट। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की न्यू इंडिया की बात, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही हैं करारा जवाब।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली की ही जहां सत्य निकेतन में जो हादसा हुआ उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि FIR से जो दिल्ली पुलिस ने की है उससे एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप लगाया गया है इस FIR में कि मंजिलें बढ़ाई गई थी, बिना परमिशन के मंजिलें बढ़ाई गई थी, किराए के लालच में मंजिलों को बढ़ाने का आरोप लग रहा है। जितनी परमिशन है उससे ज्यादा फ्लोर बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को वहां किराए पर दिया जा सके, पीजी दिया जा सके। अब ये आरोप दिल्ली पुलिस की FIR में लगाए गए हैं कि परमिशन से ज्यादा मंजिलें इस इमारत में थी, जिसमें 5 छात्रों सहित 7 लोगों की मौत हुई है क्योंकि ये बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या आरोप लगे हैं FIR में हिमांशु?
1: देखिए, आरोप जो लगे हैं FIR में कि जो बेस बनाया गया था बिल्डिंग का, वो बेस महज 1 या 2 मंजिल का भार उठा सकने के लायक था, लेकिन लालच इतना ज्यादा था कि उसके ऊपर देखते देखते 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। अब बेस तो इतना वजन उठा नहीं सकता था, उसके ऊपर आपने किराए का लालच की, एक पहले मंजिल बनी, उसके ऊपर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, किराया ज्यादा आने लगा। ये भी नहीं सोचा कि इतना ही बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग को मजबूती की जरूरत है, एक और मंजिल चौथी बना दी, उसके ऊपर भी टीन शेड डाल दिया आपने। तो इस तरीके से किराए के लालच में एक मंजिल के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, लगातार मंजिलें फ्लोर डलते गए। और सबसे बड़ी बात है कि तो फ्लोर डल रहे थे तो जो सिविक एजेंसियां हैं या पुलिस है, किसी ने नहीं देखा, सबने आंख बंद करके रखे थे। और आंख बंद करने की वजह भी बिल्कुल क्लियर है कि भ्रष्टाचार एक ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से ये इमारत बनती रही और लोग आंख बंद करके बैठे रहे। और जो बेस महज 1 या 2 फ्लोर संभाल सकता था, उसके ऊपर 4 मंजिला इमारत, 5 मंजिला इमारत बन गई। आप देखिए अंजलि, जो बगल वाली बिल्डिंग है जो क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे खाली कराया गया है, लोहे के पिलर लगाए जा रहे हैं, उसकी दीवार अगर देखी जाए तो महज 1 इसकी सिंगल सी दीवार है। अब इसके ऊपर आप देखिए 5 मंजिला है, ऊपर 3 शेड भी है।
0: तो नींव डली थी महज 2 फ्लोर की और उसके बाद लालच में बढ़ा दिए गए और फ्लोर। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं सत्य निकेतन की, जहां बिल्डिंग हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो गया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। बिल्डिंग मालिक हरिराम, उनकी पत्नी जो कि जिनके नाम पर यह बिल्डिंग है, और उनके बेटे जो इसका मैनेजमेंट करते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने एक्शन लेते हुए MCD के 5 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है। इसके अलावा आज तक के ऑपरेशन हॉस्टल डेथ के जरिए सत्य निकेतन इलाके का ऐसा सच सामने आया है जो झकझोर देने वाला है, जहां छात्रों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा था। तो आइए यही सच आपको दिखाते हैं, कैसे एक पीजी की इमारत ढहने से 7 जिंदगियां मौत के मलबे में दब गई। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी पड़ताल जो सत्य निकेतन की सच्चाई की सारी परतें उधेड़ देती है। एक पीजी की बिल्डिंग गिरने के बाद भी यहां अवैध और जर्जर इमारतों में पीजी चल रहे हैं, यानी मजबूर छात्रों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन हॉस्टल डेथ।
2: अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली में हॉस्टल डेथ की ऐसी पड़ताल जो पीजी में रहने वाले छात्रों की मजबूरी और पीजी बालिकों की हकीकत दोनों को उजागर करती है। आज तक की टीम ने सत्य निकेतन इलाके में पड़ताल शुरू की तो 7 जिंदगियों के मलबे में दबकर मरने के बावजूद अब भी कमरे बेधड़क किराए पर दिए जा रहे हैं। यह है हॉस्टल डेथ से महज 100 मीटर की दूरी पर साई प्रॉपर्टीज। जिस बिल्डिंग में दुकान है उसी बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर का पीजी चल रहा है। हमारी मुलाकात पीजी को चलाने वाले ब्रोकर धनराज से होती है।
3: वैसा रूम वगैरह मिल सकता है? रूम बच्चे के लिए चाहिए। दस से 12,000 की उसमें चाहिए, मिल जाए वन सिंगल रूम। कैसा मिलेगा? और एसी नहीं होगा? 18,000 में। और कितना बड़ा रहता है रूम?
4: रूम कैसा होता है?
3: मतलब
4: 8x10
3: का रूम रहता है।
4: 8x10 का
3: और रेंट क्या? मतलब 18,000 रुपए। और ये नॉर्मल जो आप बता रहे पंखे वाला?
2: इसके बाद हमने धनराज से सस्ते कमरे के लिए पूछा और ये भी पूछा कि शर्तें क्या क्या होंगी। तो कमरा देने की शर्त ये थी कि 1 महीने का किराया एडवांस और 15 दिन का कमीशन और कम से कम 6 महीने का एग्रीमेंट।
4: एग्रीमेंट किराया है 1 महीने की सिक्योरिटी है और 20 दिन की, लेकिन आते 15 दिन का लेंगे।
3: 15 दिन का किराया और कोई एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है? एग्रीमेंट
4: कमजोर लोगों के लिए 6 महीने का होता है, कमजोर 6 महीने रहना पड़ेगा।
3: अच्छा 6 महीने रहना पड़ेगा है? और
2: यकीन मानिए इस इमारत के अंदर हम दिन के उजाले में दाखिल होते हैं, फिर भी अंधेरा पसरा रहता है। सीने पर लाइट नहीं, जगह जगह सीलन और गंदगी।
3: ये पानी की पाइपलाइन जा रही है? ये पानी की पाइपलाइन से?
4: हाँ पानी आता है ना से,
3: वो ये अंधेरा बहुत है। तो सीलन बहुत है? सीलन बहुत है?
4: सीलन
3: है? सीलन बहुत है।
4: बारिश में आदमी गीले हो गए।
3: इसका आपने क्या बताया था रूम रेंट?
4: नहीं
3: तो किचन कहाँ है इसकी?
2: इसी बातचीत के बीच ब्रोकर धनराज हमें बताता है कि कैसे हॉस्टल डेज की इमारत गिरने के बाद से बच्चे उनके पास कमरा मांगने आ रहे हैं।
4: बिल्डिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, कोई चीज छोड़ छोड़ के।
3: मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं।
4: मैं तो आज बिल्डिंग को लेना बिजली की। बच्चे आ रहे हैं लेने के लिए। फिर सारे स्टूडेंट आ रहे हैं।
3: कितने स्टूडेंट्स होंगे बाबूजी आपके पास? कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे, रहते हैं यहाँ पर?
4: हाँ रहते हैं।
3: कितने स्टूडेंट्स
4: इस बिल्डिंग में? 17 लोग।
3: अच्छा
0: तो सत्य निकेतन का ये सत्य डराने वाला है। हॉस्टल डेज की इमारत गिरने के बाद एमसीडी के 5 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन शासन और प्रशासन का जेब गरम करके इस इलाके में धड़ल्ले से पीजी चल रहे हैं। अब आपको इस इलाके का पूरा सच दिखाते हैं। जिन इमारतों में छात्रों को पीजी रूम दिए जा रहे हैं वो न सिर्फ अवैध रूप से बनी है बल्कि जर्जर भी है। आइए देखते हैं डीयू छात्रों का हॉस्टल डेथ, मौत के कितने असत्य निकेतन।
2: सत्य निकेतन इलाके में हादसे की जगह से सटे मोती बाग की ये इमारत इतनी संकरी गली में है कि कोई हादसा हो जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमारी बात पीजी की मालकिन वीरवती से फोन पर होती है और फिर उसका बेटा कमरा दिखाने आता है। नवीन पहली मंजिल पर रहता है और बाकी ऊपर की 3 मंजिल किराए पर दे रखी है। हर फ्लोर पर 3 कमरे हैं जिसमें छात्र और छात्राएं रहती हैं। नवीन हमें 5वीं मंजिल के फ्लोर पर ले जाकर कमरा दिखाता है।
3: ये कौन से फ्लोर पर है?
5: ये है फोर्थ।
3: मेरे ख्याल फिफ्थ हो गया, ये फिफ्थ फ्लोर हो गया।
5: ग्राउंड
3: बनाए
5: होंगे तो फिफ्थ ग्राउंड, हाँ फोर्थ हो गया। ग्राउंड लगा के फिफ्थ
3: हो गया। ये तो अभी बनाए हैं लगता है।
5: हाँ ये तो अभी बनाए।
3: इसका क्या रेंट होगा?
5: इसका तो वही बताएंगे हम।
3: तो कोई एग्रीमेंट का यार
2: होगा। अब आप सोचिए कि जिस गली में घुसना मुश्किल है उस गली में 50 गज के मकान में 5वीं फ्लोर पर नए कमरे बनाए हैं।
3: ये तो बिल्कुल नया रूम कंस्ट्रक्टेड है।
5: ये तो अभी बनाया, एक महीना भी नहीं हुआ।
2: आज तक की टीम की मुलाकात सत्य निकेतन इलाके के एक और ब्रोकर से होती है। नाम है ओम। ओम इसी इलाके का पुराना ब्रोकर है। ओम को अच्छे से पता है कि सत्य निकेतन और उससे सटे मोती बाग गांव में अधिकतर पीजी इमारतें गैर कानूनी तरीके से बनी हुई हैं। फिर भी उसने हमें एक पीजी रूम की डील दी। ब्रोकर ओम से मुलाकात हादसे की जगह से महज चंद कदम की दूरी पर होती है।
6: मेरे पास अब जो रूम है ना, बस 2 रूम सेट पड़ा हुआ है, 1 बेडरूम डाइनिंग। और उसका रेंट होगा आपका 15-16 के बीच में, दो कमरे जिसमें आपको अलमीरा, बेड, एसी, ये चीज़ें मिल जाएंगी।
3: कौन सा फ्लोर पर होगा
6: वो? लेकिन एक फोर्थ है, एक थर्ड है, लेकिन वो ये फोर्थ वाले में थोड़ा हवा पानी मिल जाएगा, थर्ड वाले में बिल्कुल अंधेरा है। जो गलियों और गलियों के अंदर यहाँ तो अरे यहाँ लेंगे, यहाँ एक कमरा भी 20-22 से कम नहीं देगा कोई।
3: और वो कितने का है?
6: वो आपको 16,000 में दो कमरे मिल जाए।
3: कहाँ मिलेगा
6: वो? इधर ही आगे ब्रिज मुतिबाग में सीरिए, ये सप्तनिकेतन है। हाँ।
2: इसके बाद ओम हमें एक पुरानी बिल्डिंग में पांचवी मंजिल पर कमरा देने के लिए कहता है।
6: ये ब्रिज मुतिबाग, यहाँ से ब्रिज मुतिबाग है, लेकिन वो साइड में मिलेगा रूम। अभी मतलब काम वाम कराया उन्होंने, अभी टॉयलेट वोट इंडियन टॉयलेट था, इंग्लिश टॉयलेट के बारे में सही टाइल लगा।
2: इसके बाद ओम हमें कमरा दिखाने के लिए संकरी अंधेरे वाली गलियों में से लेकर जाता है। इसी बीच ओम ने बताया कि जिस बिल्डिंग में कमरा है वो पुरानी इमारत है।
3: ये जहाँ आप दिखा रहे
6: हैं बिल्डिंग, सर देखो सामने आप बिल्डिंग है पुरानी, लेकिन ये नहीं है वैसे, ठीक है आप देख लेना इन ऐसे। आप ये इतना मैं भी नहीं कह सकता जाती जमा पे, तो कोई कैसे ही हैं ये मकान है, ये आपके 15-20 साल पुराने हैं। नीचे जो होता है वो सबसे पुराना ही होता है, ऊपर ना रहते हैं लोग। मैंने
3: ये भी करीब होगा पाँच फ्लोर का, हम पांचवें फ्लोर पे हैं।
6: ग्राउंड से लगे तो फिफ्थ कहेंगे।
3: ये वाला है।
2: इतना ही नहीं, ब्रोकर ओम हमें छत से इलाके की गैर कानूनी इमारतें भी दिखाता है जिनमें बच्चे रहने के लिए मजबूर हैं।
6: ये देखो कितने और फ्लोर, ये देखो सामने बन रहे हैं।
3: तो मैं कुछ कहता नहीं है, मतलब ये फ्लोर इसके ऊपर भी,
6: अरे छज्जा, इनका छज्जा देखना कितना बड़ा है, जितना ये दिख रहा है ये छज्जा बड़ा हुआ है इतना सा।
2: ओम दिल्ली के शांतिनिकेतन इलाके में 299 इमारतों का दावा करता है और ये भी दावा करता है कि इनमें से करीब 200 में पीजी चल रहा है।
6: मतलब वो कहते हैं रूम ना खत्म है, चॉइस ही नहीं है, बहुत कम रूम है। रूम इसलिए कम है क्योंकि पीजी ज्यादा है। अच्छा। टोटली पीजी है, अब 299 मकान है शांतिनिकेतन में टोटल।
3: हाँ।
6: 299 में तो ये लगा के चलो 200 तो पीजी है, अब रहने की जगह नहीं है बच्चों की, तो रूम मिलते नहीं है।
2: यानी छात्रों की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जा रहा है उसका पूरा सच आपके सामने है। जर्जर इमारतें, अवैध रूप से बनी इमारतें पीजी के तौर पर धड़ल्ले से चल रही हैं। नितिन जैन, दिल्ली आज तक।
0: अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, बात बिहार में मॉनसून के कहर की। बिहार में गंगा, कोसी गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और बागमती नदियों के उफान से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बिहार के 13 जिलों में 27 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राहत के लिए 190 कम्युनिटी किचन और 1429 नावें तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और भागलपुर में राहत व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। पटना में गांधी घाट और हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर के उच्चतम बाढ़ स्तर तक पहुंचने के बाद अधिकारियों ने नदी के निचले इलाकों में पहले ही अलर्ट जारी किया है। तो बिहार में आई बाढ़ से हालात काफी खराब होते जा रहे हैं, खास तौर पर गंगा किनारे वाले जिलों में हालात ज्यादा खराब दिख रहे हैं। इसके अलावा गंडक नदी भी खूब तबाही मचा रही है, लाखों लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट।

0: बिहार बाढ़ से बेहाल है। कई जिलों में गंगा का पानी कहर बरपा रहा है। अपडेट ये है कि बिहार के 13 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया और अरवल। कुल 74 प्रखंडों की 423 ग्राम पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं और इन क्षेत्रों में करीब 27 लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ राहत और बचाव के लिए 10 एनडीआरएफ और 27 एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। गंगा किनारे बसे जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पटना के गांधीघाट पर गंगा 50.57 मीटर पर है, जो पिछले हाईएस्ट फ्लड लेवल से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। इसी तरह से दानापुर में गंगा 52.63 मीटर है, जो पिछले एचएफएल से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। बांका घाट पर भी गंगा करीब 49.5 मीटर पर है, जो पिछले एचएफएल से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बुरा हाल है। पिछले कई दिनों से पानी भरा हुआ है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में स्कूलों और पंचायत भवनों में इलाज की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ डॉक्टर और नर्सों की तैनाती की गई है।
1: महिलाओं हो, शिशु हो, दिव्यांग हो या गरीब गंभीर रोग से ग्रसित है, उनके लिए हमने रेफर करने के स्थिति में अस्पताल चिन्हित कर लिया है। हम 60 तरह की दवा दे रहे हैं, जिसमें कि आपका एंटी रेबीज वैक्सीन है, एंटी स्नेक वेनम है और पैरासीटामोल है, जिंक टैबलेट है, ब्लीचिंग पाउडर, लाइम की सब 60 तरह की दवा हम लोग वितरित कर रहे हैं। हम मोबाइल टीम बनाए हैं, मेडिकल टीम और स्वास्थ्य शिविर का गठन हर जिले में किया जा रहा है। चिकित्सक है, नर्स है, एएनएम है, पैरामेडिकल की रोस्टर ड्यूटी तैयार की गई है। हम बाढ़ की स्थिति में नौका से स्वास्थ्य सेवा देंगे।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने वैशाली और सारण जिले का निरीक्षण किया। सम्राट चौधरी सबसे पहले हाजीपुर के जड़वा पहुंचे और यहां राहत शिविर का जायजा लिया। बाढ़ के दौरान डूबने से जान गंवाने वाले करीब आधा दर्जन लोगों के आश्रितों को मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा।
2: बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है, लगातार पानी घट रहा है। लगभग 17-18 सेंटीमीटर गंगा का पानी नीचे गया है और लगातार सभी पदाधिकारी इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। फरक्का में लगभग 15 लाख क्यूसेक पानी प्रत्येक दिन छोड़े जा रहे हैं। हमको लगता है कि अगले 2-3 दिनों में अच्छी स्थिति बनेगी और सब लोगों को राहत मिलेगी।
0: बिहार के मुंगेर जिले का क्या हाल है, ये देखिए। यहाँ निचले इलाके के साथ साथ कई शहरी इलाके भी जलमग्न हैं। ये बरियारपुर थाने की तस्वीरें हैं, जहाँ पूरा थाना ही बाढ़ में डूब चुका है। जब्त की हुई गाड़ियाँ और थानाध्यक्ष का आवास पानी में डूबा हुआ है। पूरा परिसर जलमग्न हो चुका है। फरियादियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
3: और आप सबसे पहले देखिए कि थाना में जो थाना परिसर है वो किस तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है। यहाँ के स्टाफ हो या फरियादी हो, इसी तरह से करीब 2-3 फीट पानी में घुसकर आना जाना कर रहे हैं। तमाम जो वो कार्य हैं वो पानी में घुसकर ही आ जाकर किया जा रहा है। जो जब्त की हुई गाड़ियां हैं वो आप देखिए किस तरह से डूबी हुई हैं। ट्रैक्टर आप देखिए, बाइक जो है वो इसके अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है। यानी पूरा परिसर पानियों से लबालब भरा हुआ है।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
5: इन एसोसिएशन विद
10: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: What is the difference between normal cold, allergy and sinus?
13: Jo inhalers log use karte hain, that unfortunately becomes a crutch in times of crisis. Main koi inhaler le lu, mujhe thoda acha lagega. whereas there is no relationship between the two. Horns and jo traffic noise hai, India is a very very loud country. Wahan se bhi kahin na kahin hearing loss hota hai. Humne Hindi mein earwax ko mail keh diya. Wo mail nahi hai. Wo kaan ko bacteria, virus, aisi cheezon se bacha ke rakhta hai. Kaan mein tel nahi dalna. इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप ये नहीं कर सकते।
12: सर, हियरिंग लॉस के अर्ली साइंस क्या होते हैं?
13: द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन ऑफ अर्ली हियरिंग लॉस विल बी आस्किंग पीपल टू रिपीट। क्या कहा आपने? क्या कहा?
14: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
15: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए? पढ़ लो।
16: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
15: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
17: आगे दलदल का इलाका है, भटकुशी के एकदम किनारे पर खड़े हैं और बटार में देखे ये सोलर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पता तो चले कि किनके अपने लापता है, क्योंकि बहुत सारे लापता लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है। सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं। सब बरामद हो, उनकी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, उन लोगों की चीजें बरामद की जा सकती
18: है।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं।

ये तस्वीर आपने देखी होगी हॉस्टल डेज की, जो कि जो महिला पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, वो यहाँ पे जो चल रहा है विमेन्स वाला, बगल में ही बॉयज वाला था और ये गर्ल्स वाला पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। और यहाँ पे आप देखिए, हालांकि बाहर इस तरफ ताला पड़ा हुआ है, ठीक है, जरा ये देखिए ताला पड़ा हुआ है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। और ऊपर आप देखिए कपड़ा डाला हुआ है हॉस्टल डेज के अकोमोडेशन पे। लेकिन अगर भीतर जाके अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई यहाँ पे, एक सेकेंड आइए पवन, अंदर आइए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में ये चल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी पॉपुलर था, काफी पोस्टर बैनर प्रमोशन इसके पूरे इलाके में है। और जो रेट था, मुझे छात्रों ने बताया कि इसका रेट बाकी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से ज्यादा है।

ये तस्वीर आपने देखी होगी हॉस्टल डेज की, जो कि जो महिला पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, वो यहाँ पे जो चल रहा है विमेन्स वाला, बगल में ही बॉयज वाला था और ये गर्ल्स वाला पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। और यहाँ पे आप देखिए, हालांकि बाहर इस तरफ ताला पड़ा हुआ है, ठीक है, जरा ये देखिए ताला पड़ा हुआ है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। और ऊपर आप देखिए कपड़ा डाला हुआ है हॉस्टल डेज के अकोमोडेशन पे। लेकिन अगर भीतर जाके अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई यहाँ पे, एक सेकेंड आइए पवन, अंदर आइए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में ये चल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी पॉपुलर था, काफी पोस्टर बैनर प्रमोशन इसके पूरे इलाके में है। और जो रेट था, मुझे छात्रों ने बताया कि इसका रेट बाकी छात्र बाकी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये कितना संकरा है, ये हॉस्टल डेज गर्ल्स आप देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ की सुविधा बता रहे हैं। वही बिल्डिंग जो बगल में ढह गई है, इसी तरह की सुविधा बता रहे होंगे, नंबर भी दिए हुए हैं जो फरार चल रहा है आरोपी यहाँ पे। और ये देखिए कि वाईफाई, लॉन्ड्री, एसी रूम, गीजर, हाउसकीपिंग, ये सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सीसीटीवी, चार बारी मील मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, वार्डन मिलेगा और पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन नाम के लिए ये बैनर है, सुविधा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे 0/0 है यहाँ पे। और इसी तरीके की पूरा यहाँ पे अगल बगल में आपको बता दें कि पीजी अकोमोडेशन को लेके कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है, जबकि ये पता है कि हजारों छात्र और खास तौर से फर्स्ट ईयर के छात्र पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे बाहर इस तरीके से हॉस्टल डेज जो गर्ल्स वाला है, वहां पे ये तारों का जाल आप देख रहे हैं, उसकी बालकनी में हम लोग खड़े हुए हैं। बगल में वो बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है और यहाँ पे ये कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये छुपाया गया है। ये है हॉस्टल डेज, हॉस्टल डेज का ज्वाइन द डेज। और यहाँ जगह जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर है, इसी तरीके का 4 मंजिला जो बिल्डिंग का टावर है वो भी गाइडलाइंस को पूरे खुला खेल का फरुखाबाद यहाँ पे चल रहा है, गाइडलाइंस को वायलेट करता है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना पाछने वाला है यहाँ पे।

0: सरकारी सीटें 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिलेगी हरी झंडी।
1: मणिपुर के म्यूजिक टीचर के दिल्ली में पीट पीट कर हत्या के बाद नॉर्थ ईस्ट तक आक्रोश। शोर ढाबे पर शोर का विरोध करने पर ही हुआ कत्ल। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी। कई जगहों पर कैंडल मार्च।

0: हिंसा में तौकीर रजा की जमानत।
1: सत्य निकेतन हादसे में पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, बेटे को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। दिल्ली में सभी पीजी का ऑडिट होगा।

0: को आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11 आपके साथ हुए नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के साथ। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपी हरि राम और पत्नी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, बेटे महेश को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी। सत्य निकेतन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 7 लोगों की मौत, 5 लोगों का इलाज जारी, ड्रोन तस्वीरों से तबाही का मंजर दिखा। हरि राम के नाम पर बिजली का कनेक्शन था, बेटा महेश बिल्डिंग का मैनेजमेंट देखता था, प्रॉपर्टी ऑन पेपर हरि राम की पत्नी उर्मिला के नाम पर थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली बिल्डिंग घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, दिल्ली सरकार और एनसीडी को नोटिस। दिल्ली में मौजूदा सभी पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के आदेश दिया गया। दिल्ली में कोचिंग हॉस्टल और पीजी की सुरक्षा की जांच होगी, एलजी बैठक के बाद मंत्री आशीष सूद बोले सभी विभाग मिलकर तय समय में पूरी करेंगे जांच, छात्रों की रेजिडेंशियल सुविधाओं का गैप भरने पर भी जोर। मुखर्जी नगर में यूपीएससी अभ्यर्थियों का रेंट माफिया के बीच में गुजर बसर, जर्जर मकानों में रहने को मजबूर है और 25,000 रुपए तक मासिक खर्च, न किराया अग्रीमेंट न मकान मालिकों का कोई अता पता। चोरी के डर से सेमी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ब्रोकर ज्यादा किराया देने वाला मिलते ही कमरा खाली कर देते हैं और छात्रों का दावा है कि इमारतों में पिलर तक नहीं है और हादसा कभी भी हो सकता है। यार में 400 बिना रजिस्ट्रेशन वाले पीजी हॉस्टल चिन्हित, सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया पत्र, एसपी को कार्रवाई और संचालकों से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के निर्देश। पीजी हॉस्टल पर पुलिस दीदी का हर महीने निगरानी छात्रों के बीच में करके सुरक्षा का फीडबैक लिया जा रहा है, एडीजी बोले कि इमारतों की उम्र और सुरक्षा का ऑडिट जरूरी।
0: आज विदेश के तिरुमला पहुंचे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम व्यवस्थाओं की सराहना की। सीएम योगी ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। लखनऊ से अयोध्या तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई अहम कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 में बुनकरों, कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। यूपी में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए आज से सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में आओ सुने और सुनाए कहानी अभियान होगा शुरू। अयोध्या में आज से नए सीईओ जितेंद्र मिश्र की नई जिम्मेदारी, राम मंदिर के प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभालेंगे अयोध्या पहुंचे राम मंदिर के नए सीईओ। रामलला के दर्शन के बाद कार्यभार संभालेंगे सीईओ जितेंद्र मिश्र, मंदिर की व्यवस्था को लेकर नई कार्य योजना पर होगा मंथन। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के सामने अब राम मंदिर की जिम्मेदारी, श्रद्धालुओं का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर तन से जुदा जैसे नारे को हिंसा के लिए उकसाने वाला बताते हुए कहा कि इसकी तुलना धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती।
1: संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वे के आदेश पर सबकी नजर। संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल अहम, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। उत्तराखंड में 2027 चुनावों की तैयारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा 9 सितंबर से। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी मंथन, नितिन नवीन कमजोर सीटों और संगठन की रणनीति पर बैठक करेंगे। बीजेपी विधायकों की टिकट पर भी नजर, नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से लेंगे ग्राउंड फीडबैक। पंजाब में कर्मचारी आंदोलन तेज, 8 सितंबर से सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी है। 18% लंबे डीए और ओपीएस की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम आवास तक मार्च निकाला जाएगा। शोकॉज नोटिस वापस लेने की भी मांग, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पंजाब में फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी, कर्मचारियों ने मंत्रियों और विधायकों के घेराव का भी ऐलान किया। डीए, पुरानी पेंशन और वेतन से जुड़े मुद्दों पर आर पार की लड़ाई, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी फिर आंदोलन के मूड में।
0: झारखंड सीजीएल पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तारी, एसआईटी ने कारोबारी राजन कुमार को पकड़ा। पेपर लीक के आरोपी राजन पर बड़ा आरोप, कोलकाता बुलाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र की जानकारी देने का दावा। झारखंड में एलजीपी के विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण के बाद रांची पुलिस ने सकुशल बरामद किया। 11 सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल, ब्रिक्स समिट को देखते हुए लिया गया है फैसला। पीएम मोदी आज वडोदरा, नवसारी और मुंबई के दौरे पर 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के नवसारी दौरे की तैयारी, प्रधानमंत्री के नवसारी दौरे की तैयारियां पूरी, देश का पहला एआई तकनीक से लैस आधुनिक कमलम तैयार। हल्द्वानी शुद्धिकरण विभाग के बीच बीजेपी का 19 जिलों में सामाजिक सौहार्द संकल्प प्रदर्शन। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्रियों समेत नेताओं ने दिया धरना। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजी नगर सीट पर उपचुनाव। 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के बाद होने वाला कार्निवल बंद। सीएम शुभेंदु अधिकारी का ऐलान।
1: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात की। कहा कि आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत। सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रहे हैं करारा जवाब। निशु आजाद के अपने घर पर हुए पथराव के दावे पर उठे सवाल। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि यहां पर नहीं हुई है कोई ऐसी घटना। सागर जहरीली शराब कांड में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार पर हमला। उनका हमला, बोले कि हिंदुओं के नाम पर डर फैलाने से काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। 13 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग बांदा के अस्पताल में भर्ती। 30 से ज्यादा के खिलाफ मुकदमा। 14 को हिरासत में लिए जाने के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर टीएमसी का दावा। 10 घंटे की तलाशी में कुछ नहीं मिला। महुआ मोइत्रा का बंगाल पुलिस पर हमला। FIR पोर्टल पर अपलोड न होने का भी आरोप है। तेलंगाना में KTR और हरीश रावत समेत BRS नेताओं पर FIR। पुलिस से धक्का मुक्की का आरोप। तमिलनाडु विधानसभा में टीवी के विधायक की मांग। हर MLA को 500 वर्ग फुट का कमरा। फंड 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाए। तमिलनाडु विधानसभा से DM के विधायकों को किया गया बाहर।
0: कश्मीर में सजा सिनेमा और संस्कृति का महामन। घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। कश्मीर ग्लोबल सिनेमा से जोड़ने की शानदार पहल। 41 देशों की 135 फिल्में होंगी प्रदर्शित। 10 सितंबर चलेगा फिल्म फेस्टिवल। प्रयागराज में 7,500 प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी। शिक्षक भी प्रदर्शन करने को मजबूर। प्रयागराज में TGT PGT में पुरानी नियमावली लागू किए जाने की मांग पर छात्रों का आमरण अनशन। बेंगलुरु में स्विगी इंस्टामार्ट और लियो मार्ट पर छापेमारी। फास्ट फूड प्रोडक्ट्स मिलने के बाद की गई कार्रवाई। बुलंदशहर के शादी समारोह में दूल्हे ने पिस्टल की सिर की ताबड़तोड़ फायरिंग। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। शादी के 4 साल बाद फायरिंग का वीडियो वायरल। अवैध हथियार से जश्न मनाने का मामला। पुलिस जांच में जुटी। पुंछ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार का भयानक एक्सीडेंट। हादसे में 4 शिक्षक घायल। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुंबई मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार कार चलाने वाले 6 से 7 चालकों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस पहचान करने में जुटी। दावणगेरे में कार की चपेट में आया तेंदुआ। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए ने किया हमला।
1: प्रयागराज में यमुना में छलांग लगा रहे बच्चे। हेलीपैड बना खतरनाक स्टंट का डब वीडियो भी वायरल। जालौन में बेखौफ बदमाशों ने युवक को घेर कर गोली मार दी। फिर चाकू से गोदा। गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। ग्वालियर में उफनती नदी के तेज बहाव में बहा युवक। दोस्तों को बचाने की कोशिश नाकाम। मेरठ में पेपर लीक और फर्जी तरीके से पास कराने वाले 20,000 का इनामी मोनू और प्रशांत कुमार गिरफ्तार। दिल्ली से पकड़ा गया। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट। 8 से 10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना CCTV में कैद। इंदौर में बारिश आंधी के बीच में बड़ा हादसा। चलती कार पर गिरा पेड़। हादसे में 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। गुजरात के मांडिया में भीषण सड़क हादसा। कार को पीछे से गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। 1 महिला की मौत। 4 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का उग्र आंदोलन। 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। 7 किलोमीटर तक वाहनों की लगी कतार। भोपाल में 80 फीट सड़क का हाल खराब है। सड़क पर 3 फीट गहरे गड्ढों से राहगीर परेशान है। धनबाद में आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में बचा बवाल मच गया। जमकर यहां तोड़फोड़ और मारपीट भी हुई है। पुलिस ने कार्यक्रम बंद करवाया।
0: पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का कहर। भरभराकर गिरा मकान। बाल बाल बचा परिवार। उधम सिंह नगर में बारिश के बीच बड़ा हादसा। कार पर गिरा बोल्डर। 1 की मौत। 3 की हालत गंभीर। गुजरात की नवसारी में कबाड़ गोदाम में लगी आग। धुएं के गुबार से मची अफरा तफरी। लाखों का नुकसान। वडोदरा में आवारा गाय का आतंक। मां बेटे पर किया जानलेवा हमला। CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात। मुंबई में लगभग 10 लाख की हाई क्वालिटी करेंसी बरामद। नकली करेंसी बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर। 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर तक पानी पानी। बिहार की विनाशकारी बाढ़ पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, 5 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की अपील। नवगछिया के ब्रह्मोत्तर बांध पर बन रहा बड़ा खतरा, 4-5 जगह रिसाव समाचार कम, कई जगह कटाव के बाद गांव की ओर बढ़ा पानी। नवगछिया के 3 टंगा दियारा में बाढ़ का कहर, स्कूल कॉलेज और पशु अस्पताल में घुसा पानी, बच्चों ने ट्यूब को बनाया नाव। मुंगेर में बाढ़ का कहर, थानाध्यक्ष का आवास और गाड़ियां डूबी, फरियादी के साथ साथ पुलिसकर्मियों को हो रही परेशानी।
1: मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी के फाइनल में वो पहुंची, भारत के लिए पद किया सुनिश्चित। शीतल का फाइनल में कजाकिस्तान के जेदा सीडान के साथ होगा मुकाबला, गोल्ड पर होगी सबकी निगाह। भारत को एक और पदक की उम्मीद है और ब्रॉन्ज के लिए दावा पेश करेंगे पैरा खिलाड़ी सरिता। फिल्म ताली के प्रोड्यूसर क्रिएटर कार्तिक ने बताया कि श्री गौरी सावंत के किरदार के लिए सुष्मिता सेन नहीं बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहले किया गया था अप्रोच। बड़े बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री को पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिली, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को अरेस्ट किया। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब का गाना रिलीज, फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी नजर आएंगे। फिल्म प्रेम कीटाणु का रोमांटिक ट्रैक का तीसरा गाना आया सामने, इस फिल्म में एक्टर वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना और आफिया सैयद नजर आएंगे। फिल्म तेरा साई की रिलीज डेट आई सामने, अगले साल 5 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। भक्तिभाव से भरपूर फिल्म हारे का सारा बाहबा, खाटू श्याम हमारा नाम की फिल्म की घोषणा, अगले साल रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 32 दिनों में फिल्म ने 155 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन।
0: ट्रंपिंग एरिया के हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बॉम्बार्डियर के दो को दी धमकी, कहा अगर वो अमेरिका में अपना विमान बेचना चाहती है तो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया, इसमें न्यू मैक्सिको राज्य का नाम बदलकर न्यू अमेरिका करने का समर्थन किया गया है। क्यूबा के विदेश मंत्री पेरिला ने कहा अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही भविष्य में बातचीत की कोई योजना है। अमेरिकी पूर्वी प्रशांत महासागर में रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हमला किया, कहा समुद्र में गैरकानूनी ड्रग्स तस्करी में शामिल नाव में तेल भरने का काम कर रहा था रिफ्यूलिंग स्टेशन। मिस्र की राजधानी कायरा में अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी गांवों पर हो रहे लगातार हमले का विरोध। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी गांव हज्जा पर बोला धावा, 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अल्बानिया की राजधानी तिराना में सरकार के खिलाफ एक बार फिर भारी विरोध प्रदर्शन, ट्रंप के दामाद की कंपनी को लग्जरी रिजॉर्ट बनाने के लिए संरक्षित जमीन दिए जाने का विरोध। ब्राजील में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य सैन्य परेड, राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने दी सलामी, ये कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वहां पर हालात गंभीर हैं। अमेरिका की वेस्ट इंडियन कम्युनिटी ने अपनी संस्कृति और जड़ों का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क की सड़क पर निकाली परेड। एलिना रिबाकीना यूएस ओपन के क्वालिफाइनल में पहुंची, पूर्व यूएस ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका को 6-4 से हराया।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंची। उसके बाद उन्हें क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
1: कि उनका इलाज जो है पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और इन जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे। हमने परिवारों को भी आश्वस्त किया है और परिवारों से मैं स्वयं मिलके आई हूँ। जिन परिवारों के बच्चे अब नहीं रहे हैं वो सभी लोग अपने बच्चों की डेड बॉडी लेकर के दिल्ली से जा चुके हैं और उनकी सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की थी और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं। किसी भी तरह की कोई ज़रूरत के घड़ी में सरकार उनके साथ
2: खड़ी है। और भी वस्तुओं की जान खतरे में है, जहां पर बगल में बिल्डिंग है,
1: वो बिल्डिंग डेंजरस है, उसे डेंजरस घोषित कर दिया गया है, उस बिल्डिंग को गिराया जाएगा और कल की डेट में वो बिल्डिंग गिरेगी।
3: बात आपने सुना और हमारे संवाददाता सुशांत भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे मुख्यमंत्री मिले भी हैं, उनकी हालत कैसी बनी हुई है?
4: देखिए राजीव, कुल 12 लोगों को रेस्क्यू करके एम्स के जो है ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था। ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री का यहाँ पे विजिट है और इसमें से अगर कहा जाए तो 7 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, लेकिन इसमें 2 मजदूर थे जो जिनको रेस्क्यू करके लाया गया था, उसमें से 1 मजदूर की जान गई है, लेकिन 1 मजदूर को फिलहाल सेफली जो है वो बचा लिया गया। उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा। बाकी जो 4 लोग हैं उनकी स्थिति जो है वो अगर कहा जाए तो अभी गंभीर है, उनका इलाज जो है वो चल रहा है, उनकी जान बचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एक बड़ा जो है ये हादसा था, उसके बाद से सरकार के ऊपर भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े हुए थे। एमसीडी पर खास तौर पर सवाल खड़े हुए कि आखिरकार इस तरीके की बिल्डिंग जो बनी बनाई थी उस पर आखिरकार कैसे रिनोवेशन का काम हो सकता है, और यही वजह थी जिसके कारण एक जोन के 5 अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया गया। ऊंचे स्तर से लेकर के निचले स्तर के तमाम अधिकारियों पर एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से किया गया और इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑडिट के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। यानी दिल्ली के तमाम इलाकों में, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, सत्या निकेतन, इन तमाम इलाकों में जो पीजी चल रहे हैं उनके स्ट्रक्चर ऑडिट के आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जहां ये बिल्डिंग 14 नंबर सत्य निकेतन पे गिरी थी, उसके पास की भी बिल्डिंग जो है वो डेंजर घोषित जो है वो कर दी गई है, उसका भी डेमोलिशन जो है वो होगा। एमसीडी की टीमें अब दिल्ली के तमाम इलाकों में जहां पर
0: शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात दिल्ली में हुए एक संसदीय केस हत्याकांड की। दिल्ली के किलोकड़ी गांव में मणिपुर के 54 साल के म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की पीट पीट कर हत्या कर दी गई।
3: और उनका कसूर क्या था आपको पता है? बस इतना से कसूर था कि उन्होंने घर के सामने ढाबे पर शोर शराबा कर रहे ढाबा कर्मचारियों और डिलीवरी बॉयज को सिर्फ शांत होने के लिए कहा था कि थोड़ा खामोश हो जाएं, इतना चीखिए चिल्लाइए मत, शोर शराबा मत करिए। और आरोप है कि इसी के बाद ढाबा कर्मचारियों और डिलीवरी बॉय ने उनकी पिटाई कर दी और इससे उनकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी एक जगह पर जुटे थे, फिर रात का समय था और वो लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से शोर शराबा हो रहा था, झगड़ा इसी बात से शुरू हुआ। अभी तक किसी भी आरोपी के शराब पीने के सबूत नहीं मिले हैं।
0: हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पुलिस क्या डिटेल्स बता रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या?
5: देखिए नहीं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जो पूरे घटनाक्रम थे, जो पुलिस को फुटेज मिला है उससे क्लियर हो गया है। क्योंकि जहां पर मैं मौजूद हूं, नया आपको पूरा घटनाक्रम समझाता हूं। वो रात तकरीबन 11 से 11:30 के बीच विक्रम जी बाहर निकलते हैं, कुछ कूड़ा था और रात में वो हल्का फुल्का टहल भी लेते थे डिनर के बाद। वो कूड़ा फेंके यहीं पर करीब करीब 7-8 लोग के आसपास मौजूद थे, जिसमें आसपास के ढाबे में काम करने वाले लोग थे, कोई डिलीवरी बॉय था, कोई पैकिंग का काम करता था, तो वो लोग शोर मचा रहे थे। अब ऊपर 3rd फ्लोर पर उनका घर है, तो वो नीचे आए, उनको शायद ऊपर आवाज आ रही थी, उन्होंने यहाँ पे मना किया, और जब मना किया तो इस बीच उनके बीच आपस में कुछ कहा सुनी हुई, और जब कहा सुनी हुई तो उन लोगों ने मारपीट हुई, और उसके बाद विक्रम जी अंदर की तरफ भागते। अब आप देखिए 3rd फ्लोर पे नेहा जी, यहाँ से वो ऊपर की तरफ विक्रम जी भागते हैं और पीछे से सारे लड़के ऊपर की तरफ भागते हैं, और ऊपर की तरफ वो अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं और मदद की मांग करते हैं तो अंदर जो उनकी वाइफ थी उनके पास आवाज जाती है, वो दरवाजा खोलती हैं और उसके बाद वो लड़के दिखते हैं, भागते हुए भी दिखते हैं, मारपीट भी पूरी कैप्चर हुई है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उनकी मौत हो गई। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मारपीट की गई, वजह भी लगभग साफ है कि सिर्फ शोर मचाने से मारा गया।
3: हिमांशु कितने गिरफ्तार हुए इस मामले में?
5: सिर्फ शोर कम करो इसकी, देखिए 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 जुविनाइल था जिसे अप्रीहेंड किया गया है, इसलिए कुल मिलाकर हम कहें तो 8 आरोपी पुलिस ने अभी तक पकड़े हैं जिनमें 1 जुविनाइल भी शामिल है। 8 की ही बात, जो हमारी बात हुई तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, उनका भी कहना है कि 8 आरोपी थे क्योंकि 8 जो वीडियोज है, जो CCTV है, उसमें से वो सीढ़ी से भागते हुए साफ नजर आए, तो उनके चेहरे एकदम क्लियर थे। सुबह जब डेथ डिक्लेयर किया गया हॉस्पिटल से तो उसके बाद लोकल पुलिस ने इस मामले में कत्ल की धारा में FIR दर्ज की और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी जो आरोपी लोग जिनके चेहरे कैद हुए थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। राजीव,
3: बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मणिपुर के म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उनके घर के आसपास रहने वाले कुछ महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने, आपको सुनाते हैं।
6: परसों रात को ऐसा कुछ एक हादसा हुआ कि यहाँ पे बहुत सिलम सिलाई चल रहे थे वहाँ पे, मतलब जैसे कुछ लोग मिलके, जैसे कि उन लोग ने बहुत हल्ला वल्ला करना वो सब भी सुनाई दे रहा था पहले। तो उसके बाद ना अचानक से उसकी वाइफ और उसके बच्चे को दरवाजा खोलने के लिए उसकी जो विक्रम जी है उसके आवाज सुनाई दिया, दरवाजा खोल दो, इस तरीके का चिल्लाना शुरू किया। तब उसकी वाइफ ने उसकी लड़की को पूछा कि पापा कहाँ है, फिर तब पता चला कि वो नीचे में कूड़ा फेंकने के लिए गया होगा या ऐसे ही कुछ वॉक के लिए निकल गया होगा। तो वैसे करके जब तक उन लोग ने दरवाजा, उसका आवाज सुनने के बाद दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि 8 लोग उसके पीछे पीछे भाग के दौड़ दौड़ मतलब मिल के उसको मार रहे थे। और आपने कल फुटेज भी देख लिया होगा जो जब उसकी वाइफ और उसकी लड़की ने जब दरवाजा खोल दिया तो खोलने के बाद जब उन्होंने चिल्लाया हेल्प के लिए चिल्लाया तब जाके ये लोग नीचे नीचे भाग गए थे। और इस तरीके से और जब ये
0: दिल्ली में हुए हत्याकांड को लेकर मेघालय के CM कॉनराड संगमा ने संवेदना व्यक्त की और साथ ही दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की। उन्होंने अपने एक्सपोज में लिखा है कि इस घटना से राजधानी में 39 के लोगों के साथ होने वाले अत्याचार को दर्दनाक घाव को एक बार फिर से ताजा कर दिया है।
3: ये उनका पोस्ट है और इस घटना के बाद से फिर सवाल खड़े हो रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के युवकों के साथ, लोगों के साथ मारपीट के मामले के रूप में से दिखाया जा रहा है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि शोर शराबे को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसी का विरोध कर रहे थे और उस पर ढाबा पर काम करने वाले डिलीवरी बॉयज ने उनको पीटा।
0: इसी के साथ यहां रुकेंगे फिर से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
3: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
4: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
3: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: In association with
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
3: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
2: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी हैं।
3: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
4: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
2: मैं आशुतोष मिश्रा,
4: रोहित सिंह,
3: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
5: सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, कहीं बाइक समेत बहा युवक तो कहीं गांवों का संपर्क टूटा। नदियां उफान पर और बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब गईं और कई घरों में भी पानी घुस गया। जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के सोनीपत में भी बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। सड़कें तालाब बन गईं और जगह जगह जलभराव है। लोग नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था और मानसून तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ के पानी को पार करते वक्त एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि युवक सुरक्षित बच निकला, लेकिन उसकी बाइक पानी में बह गई। धौलपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें पानी में डूब गईं और कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। नदियों और बांधों के बढ़े जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी बारिश का असर गंभीर है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के पानी से विजयपुर के करीब 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बारिश और उफनती नदियों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं घरों में पानी है, कहीं सड़कें डूबी हैं और कहीं गांवों का संपर्क टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: का इंतजार। पहली बार बुक माई शो से रजिस्ट्रेशन एक घंटे में फुल हो गई सारी सीटें। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिलेगी हरी झंडी।
1: मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में पीट पीट कर हत्या के बाद नॉर्थ ईस्ट का आक्रोश। ढाबे पर शोर का विरोध करने पर कत्ल, पुलिस खंगाल रहे है सीसीटीवी कई जगहों पर कैंडल मार्च।
0: जय श्री राम हर हर महादेव जैसे जयकारों से अलग है सर तन से जुदा के नफरती नारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, अदालत ने खारिज की बरेली हिंसा केस में तौकीर रजा की जमानत।
1: सत्य निकेतन हादसे में पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, बेटे को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, दिल्ली में सभी पीजी का होगा ऑडिट।
0: बिहार में आज थोड़ा कम हुआ गंगा, सोन और पुनपुन नदी का पानी, लेकिन 13 जिलों में अब भी त्राहिमाम। पीएम को तेजस्वी ने लिखी चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।

0: और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में होंगे, जहां उनका एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम अपने आप में अनोखा है। देश में पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में सीटें आरक्षित कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग हुई और सभी टिकटें एक घंटे के अंदर बुक हो गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम इस लिहाज से भी बहुत अलग है कि आज प्रधानमंत्री मोदी 6,000 से ज्यादा युवा प्रोफेशनल से संवाद करेंगे और 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को जो सौगात है वो गुजरात को दी जाएगी।
2: जो अब तक कभी नहीं कहीं नहीं हुआ वो आज वडोदरा में होने जा रहा है। वडोदरा में पीएम मोदी का ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये विशाल मंच उसी आयोजन के लिए तैयार किया गया है और इस कार्यक्रम के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। पीएम मोदी के शो को लेकर इस कार्यक्रम पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने एक्स पर लिखा, वोट नहीं मोदी जी दिल जीतते हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम बेहद खास इसलिए है क्योंकि पहली बार इस कार्यक्रम में ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब कि ऑनलाइन इसकी बुकिंग की गई थी। हालांकि ये फ्री एंट्री है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फिर भी ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन किया गया और 5 सितंबर को जब इसकी बुकिंग शुरू हुई सिर्फ एक घंटे में जो सारी सीटें थी वो पैक हो गई। जो वेटिंग था वो करीब 42,000 तक पहुंचा, यानी कि जो लोगों में जो क्रेज था वो यहां पे प्रधानमंत्री के लिए देखने को मिला। और पहली बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इस तरह का नया प्रयोग हुआ है कि जहां पे जिस तरह से कॉन्सर्ट्स होते हैं कॉन्सर्ट में टिकटिंग प्लेटफॉर्म पे जो बुकिंग होता है ठीक उसी तरह यहां पे भी बुकिंग हुआ और QR कोड से यहां पे एंट्री दी जा रही है।
2: तो ऐसा है पीएम मोदी का जलवा कि रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद भी बुकिंग कराने वालों का तांता लगा रहा। खबर है कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 6,000 से ज्यादा यंग प्रोफेशनल्स से सीधा संवाद करेंगे, यानी जेन ज़ी से पीएम मोदी सीधे रूबरू होंगे। इसके पीछे की वजह भी साफ है।
3: किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करेंगे, युवा और प्रोफेशनल्स के साथ ये बात होने वाली है। नमो फॉर विकसित भारत इसका थीम रखा गया और नमो फॉर विकसित भारत में वडनगर से लेकर वडोदरा और वडोदरा से वाराणसी तक की विकास यात्रा की बात होनी है। साथ ही एक वाई आकार का जो है वो रैंप बनाया गया है, स्टेज है जिस पे चलकर प्रधानमंत्री आएंगे और वहां पे इन युवाओं का जो है वो अभिवादन करेंगे, साथ ही उनको संबोधन करेंगे। आमतौर पर प्रधानमंत्री का जो स्टेज होता है संबोधन का वो फिक्स रहता है, पर इस बार यहां पे एक विशेष प्रयोग किया गया है। वाई शेप का जो है वो रैंप बनाया गया और वहां पे प्रधानमंत्री जो है पहुंचकर अभिवादन करेंगे। तो आज का संबोधन पे जो है सबकी नजरें बनी है, किन मुद्दों पे प्रधानमंत्री बात करेंगे और युवाओं के साथ कौन से मुद्दों के साथ जो है युवाओं को जोड़ा जाएगा उस पे, इसी वजह से जो है आज का कार्यक्रम बेहद खास माना जा रहा है।
2: इस कार्यक्रम में पीएम मोदी विकास योजनाओं की झड़ी लगाने वाले हैं। पीएम मोदी वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से यात्री और माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, यातायात जाम कम होगा और गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ब्रजेश दोषी, वडोदरा आज तक।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग का आइडिया कहां से आया है, उसको लेकर कैसा रिस्पांस रहा, इसके बारे में बता रहे हैं गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी।
4: वडोदरा के नगरजनों ने साथ में मिलकर मोदी जी के आगमन को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये टिकट बुकिंग चालू करते ही करीबन एक घंटे में पूरी टिकट सोल्ड आउट हो गई, हाउसफुल हो गया। कई लोगों की रिक्वेस्ट आई, हमने कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की, जितनी कैपेसिटी बढ़ पाई थी उतने लोगों को और भी टिकट्स दी गई। प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों को खास तौर पे जो उत्साह है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, वो बिल्कुल अलग है। मतलब एक घंटे में हाउसफुल हो जाए, शायद देश और दुनिया ने पहली बार ऐसा देखा होगा।
1: और हमारे संवाददाता ब्रजेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए हैं। ब्रजेश, बहुत अलग इस बार हमें देखने को मिला, जब लोग टिकट लोगों ने ऑनलाइन लिया है पीएम को सुनने के लिए, वो आएंगे, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ खास रहने वाला, क्या अलग ये कार्यक्रम, कैसे अलग रहने वाला है?
3: देखिए, आमतौर पर प्रधानमंत्री जब भी विकास कार्यों की बात करते हैं तो उनका एक स्टेज सेट होता है और उस स्टेज से वहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास की झंडी दिखाई जाती है और उसके बाद उनका एक संबोधन रहता है। इसके अलावा यहाँ पे एक अलग चीज की गई है, वाई शेप का एक स्टेज बनाया गया है जिसपे चलकर प्रधानमंत्री आएंगे या फिर बीच में हो सकता है वो बात करें। पूरी चीजें हमको नहीं बताई गई, पर माना जा रहा है कि जिस तरह से जो है वो प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद उनका एक संबोधन तो रहेगा ही, विकास कार्यों के साथ जो संबोधन रहने वाला है, उसके अलावा वो बात कर सकते हैं, युवाओं के साथ उनका संवाद हो सकता है, ऐसी जानकारी जो है प्राथमिक दी गई है कि वो एक कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री शायद संवाद करें या फिर वहां से जो है अभिवादन करके वो मुख्य स्टेज तक पहुंचेंगे और मुख्य स्टेज तक पहुंचने के बाद जो है वहां से संबोधन होगा। तो ये एक नया प्रयोग किया गया है, पहली बार प्रधानमंत्री कार्यक्रम में ऑनलाइन जो है बुकिंग की गई,
0: ऑनलाइन बुकिंग के जरिए वहां पर लोगों ने अपनी अब जगह सुरक्षित कर ली है। इस बीच आपको टेक्सटाइल कॉन्क्लेव लिए चलेंगे जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं।
5: जो फैब्रिक होता है वो यूपी से प्राप्त होता है, यूपी के अंदर तैयार होता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो वह ये वस्त्र उद्योग का सेक्टर है। भारत आज विश्व का वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखने की व्यवस्था भी यूपी के अंदर हम लोगों ने तैयार की है। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक 350 बिलियन यूएस डॉलर की टेक्सटाइल अपैरल इकोनॉमी और 100 बिलियन यूएस डॉलर की टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट को का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी पूरी शक्ति के साथ भागीदारी कर सके। पिछले 6 वर्ष में प्रदेश के वस्त्र परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 56% की यूपी के अंदर वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। प्रदेश के उत्पाद आज सैकड़ों इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच रहे हैं। वर्ष 2025-26 में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के वस्त्र परिधान और हस्तशिल्प निर्यात के साथ गौतम बुद्ध नगर देश के प्रमुख जो निर्यातक जनपद हैं उनमें से गौतम बुद्ध नगर जनपद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारा प्रयास है कि गौतम बुद्ध नगर की सफलता का यह मॉडल प्रदेश के अन्य जनपदों पर भी पहुंचे। प्रत्येक क्लस्टर का उत्पादन, उसकी डिजाइन, उसकी गुणवत्ता, लॉजिस्टिक और उसको एक्सपोर्ट से जोड़ने की कार्रवाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें और हम लोगों ने इसके लिए एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना भी हम लोगों ने प्रदेश में अलग अलग जनपदों में इसे प्रारंभ किया है। और टेक्सटाइल के सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो लगभग 35 से अधिक जनपदों में वस्त्र और हैंडलूम से जुड़े हुए जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इस स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने उसको एक नई पहचान दी है। प्रदेश के 17 टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी अब तक प्रदेश में यानी इसको जीआई टैगिंग में प्राप्त हुई है। जीआई टैग उत्पाद की विशेषता, उसकी गुणवत्ता, उसके उत्पादन क्षेत्र और उसकी परंपरा, उससे जुड़े कारीगरों की सामूहिक पहचान का एक सम्मान होता है।
1: आगे बढ़ते हैं, यूपी की ही बात करेंगे जहां सहारनपुर में मस्जिद के नीचे कुआं मिलने के बाद से नई खलबली मची है और एएसआई मस्जिद की जांच करवा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू मुसलमान वाली जो नई सियासत है वो भी शुरू हो गए है। उधर संभल में शाही मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सरतन से जुदा, ये जो नारा है सरतन से जुदा की तुलना जय श्री राम हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती है। अब ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। अदालत ने कहा कि सरतन से जुदा जैसे नारे भारत की आजादी को सीधा चुनौती देते हैं। तो सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर छिड़े सियासी संग्राम की हम बात करें, जहां पर मस्जिद गिराई गई वहां पर कुआं मिला है और कुआं सामने आने के बाद से इस पूरे मामले पर नई तरह की सियासत शुरू हो गई। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं।
6: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
7: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था उस कुएं की जांच करने के लिए एएसआई की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम एएसआई की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जाँच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा और क्या क्या अब इस कुएं की जो जाँच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो एएसआई की टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है।
6: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
8: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
9: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहाँ आज भी है, मेरे यहाँ चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी, तो वो है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
6: कुएं की कहानी क्या है ये एएसआई की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है? दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। कुआं यूं
0: वहीं पंजाब के संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। गुलजार सिंह ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने ड्रग्स की खुलेआम बिक्री का मुद्दा उठाया था। आरोपी है कि उन पर माफी के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुलजार सिंह ने आत्महत्या कर ली। बड़ी खबर इस पूरे मामले में, संगरूर गुलजार सिंह सुसाइड केस में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये वीडियो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था।
1: और इसी पर भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
10: क्या भगवंत मान एक शब्द बोल पाए? क्या संवेदनशीलता दिखा पाए? क्या ये जो ड्रग्स का खुला व्यापार हो रहा है उनकी नाक के नीचे, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, क्या वो इस पे कोई सख्त कार्रवाई कर पाए? उत्तर है नहीं। तो हम यहां से मांग करते हैं, पहला, भगवंत मान जब रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बने रहने का कोई हक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तुरंत इस्तीफा दे भगवंत मान। दूसरा, क्योंकि हमारा भाई ऐसी समाज से आता था, क्या आपने ठोस कार्रवाई करी है? एससी एसटी एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बीएनएस धारा 108 में 10 साल की सजा है। क्या एफआईआर रजिस्टर हुई और उसमें यह धारा जोड़ी गई? एससी एसटी एक्ट का प्रावधान क्या उसमें है? तीसरा, क्या आपने अपने मंत्री हरपाल सिंह चीमा को बर्खास्त किया है? और यह मैं क्यों कहता हूं, यह जो वीडियो हमने देखा यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इन लॉ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। जो व्यक्ति दम तोड़ रहा हो, वो जब खुद अपना वीडियो बना के किसी को जिम्मेदार बता रहा है, उसकी बहुत ही ज्यादा एविडेंट्री वैल्यू होती है। और अगर किसी मंत्री का नाम ले रहा है जो अभी भी मंत्री बना है, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? इसीलिए भगवंत मान जी को और मंत्री हरपाल सिंह चीमा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह हमारे भाई के परिवार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। और इसी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक मां, 5 जिनके बच्चे थे, 5 की मौत हुई ड्रग्स से। एक और भाई मोहनजीत सिंह शेरो, इन्होंने भी कुछ दिन पहले पटियाला में आवाज उठाई, ये जो ड्रग्स का व्यापार चल रहा है उसको लेकर, ये उनकी तस्वीर है मेरे हाथ में। जैसे गुलजार सिंह को धमकाया गया, डराया गया, विवश कर दिया कि वो अपनी जान ले ले, आत्महत्या करे, वैसे ही मोहनजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी पिटाई करी, उसके जख्मों पे बताया जाता है नमक डाला। और ये हमारा भाई अभी भी पटियाला में अस्पताल में है, इमरजेंसी में। ये उदाहरण, 3 ऐसे उदाहरण है हजारों में, जो वहां पंजाब की जनता जब आवाज उठा रही है, बता रही है भगवंत मान को तुम एक विफल मुख्यमंत्री हो और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जो ड्रग माफिया है उनके खिलाफ, तब जो पीड़ित है उन्हीं के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करना, प्रताड़ित करना, यह बहुत ही गंभीर मसला है। मैं सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात को विराम दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, हमारी प्रतिबद्धता एक है, पंजाब को नशा मुक्त करा के ही दम लेंगे।
0: टीगर 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: सीएम योगी जुलाई से सितंबर के एक हफ्ते के अंदर यूपी के 43 से अधिक जिलों में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं तो 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी ला चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी प्रचार शुरू कर चुकी है लेकिन कांग्रेस का पता नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस के नेता परेशान है कि समाजवादी पार्टी जल्दी ही उनकी सीट क्लियर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने घोषित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रचार की शुरुआत पिछले हफ्ते ही कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनसंपर्क शुरू भी कर चुके हैं। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 2012 से 2017 के विकास कार्यों को जनता के सामने बताया जा रहा है लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश से दिल्ली तक के नेता परेशान हैं कि उनकी सीटें क्लियर क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस की ओर से बार बार की अपील के बावजूद समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन पर बातचीत आगे बढ़ाने को लेकर संजीदगी नहीं दिख रही है। इमरान ने पंचायत आज तक में भी कहा था कि अक्टूबर से पहले सीटों के नाम तय हो जाने चाहिए लेकिन सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अभी सीट फाइनल करने के मूड में नहीं है। वैसे यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर दिल्ली से लखनऊ तक लगातार बैठकें हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंतरिक बैठक में नेतृत्व के सामने 150 से ज्यादा सीटों की लिस्ट दी है। कांग्रेस का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी 62 सीटें लड़कर 37 सीटें जीती और कांग्रेस 17 लड़कर 6 जीती तो उस जीत में समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी 60% और कांग्रेस की हिस्सेदारी 35% थी। इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस ने करीब 150 सीटों की लिस्ट तैयार की है लेकिन खबर है कि 120 से 107 सीट के बीच कांग्रेस सीटों पर अड़ सकती है लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों के बंटवारे पर फिलहाल कोई हरकत नहीं दिख रही। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश राहुल की मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी पहले सीट शेयरिंग कमेटी बनाएगी तब सीटों पर बात आगे बढ़ेगी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।

0: त्योहारी सीजन आने वाला है और इसके साथ ही हर घर की रसोई का बजट हिलने लगा है। पकवानों की तैयारी के बीच आम आदमी की जेब पर महंगाई का तगड़ा प्रेशर साफ दिखने लगा है। दाल के तड़के से लेकर मीठे तक के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। प्याज और चीनी की चर्चा के बीच अब अरहर दाल की महंगाई भी जेब पर दबाव बढ़ाने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल के अंदर अरहर दाल के रेट 27% तक बढ़ गए हैं। मार्केट में कम सप्लाई और सीमित स्टॉक की वजह से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। चिंता की बात है कि अरहर के साथ ही मसूर दाल भी महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं। कनाडा में उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर भारत में मसूर दाल की कीमतों पर पड़ सकता है। दाल के साथ साथ सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला प्याज भी लोगों को रुला रहा है। दिल्ली में प्याज की कीमत 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। हालांकि आम आदमी को इस महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का प्लान तैयार है, जिसके तहत दिल्ली में 35 रुपये किलो के रियायती रेट पर प्याज बेचा जाएगा। इसके लिए 800 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच रही है। नाफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर्स के जरिए ये प्याज जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। ये मौजूदा एवरेज रिटेल कीमत से करीब 36% सस्ता है। दाल और प्याज की टेंशन के बीच मीठे के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर भी है। चीनी के एक्स मिल रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के मुताबिक चीनी के दाम नीचे आ गए हैं और आने वाले दिनों में आम जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चीनी का एक्स मिल रेट 12 रुपये घटकर 55 रुपये प्रति किलो हो गया है। पिछले हफ्ते के 67 रुपये के रिकॉर्ड हाई रेट से इसमें 18% की कमी आई है। इम्पोर्ट को मंजूरी देने और जमाखोरी पर कड़े एक्शन लेने की वजह से ये रेट गिरे हैं। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और कुछ मिलों की ओर से कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई थी। थोक भाव कम होने का असर जल्द ही रिटेल मार्केट में भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर त्योहारों में रसोई का बजट संभालने के लिए एक तरफ सरकार एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ दाल और प्याज जैसी जरूरी चीजों की महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लाल सिंह चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर राजनीति हुई शुरू। बीजेपी का मुख्यमंत्री मान पर सीधा अटैक, कहा कुर्सी छोड़ें विफल मुख्यमंत्री और चीमा भी। वडोदरा में शुरू होने वाला है पीएम मोदी का मेगा इवेंट, पहली बार बुक माई शो से रजिस्ट्रेशन, एक घंटे में फुल हो गई सारी सीटें, 35,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलेगी। मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में पीट पीट कर हत्या के बाद नॉर्थ ईस्ट तक आक्रोश, ढाबे पर शोर का विरोध करने पर कत्ल, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी, कई जगहों पर कैंडल मार्च। सत्यनिकेतन के घायलों से मिलकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया 5-5 लाख का चेक, कहा पीड़ितों की करेंगे पूरी मदद। पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, बेटा पुलिस कस्टडी में। बिहार में आज थोड़ा सा गम हुआ, गंगा सोन और पुनपुन नदी का पानी, लेकिन 13 जिलों में अभी त्राहिमाम। पीएम को तेजस्वी यादव ने लिखी चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।

0: बजे 12 रिपोर्ट में सबसे पहले रिपोर्ट वडोदरा से, जहां पर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में होंगे और वहां पर उनका एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जिसकी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पीएम वडोदरा पहुंच चुके हैं और ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा होने वाला है। देश में पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में सीटें आरक्षित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ। बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुक माई शो का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ एक घंटे के भीतर सारी टिकट्स बुक होगी, यानी कि अपनी सीटें लोगों ने रजिस्टर कर ली, बुक करवा ली। प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम इस लिहाज से भी अलग है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6000 से ज्यादा युवा प्रोफेशनल्स के साथ संवाद करने वाले हैं और 35,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात भी गुजरात को देने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह की परियोजनाएं। हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी इस खबर पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, पीएम वडोदरा पहुंच गए, लेकिन अब कार्यक्रम कितने बजे शुरू होने वाला है, सिलसिलेवार बताएं क्रमानुसार कि क्या क्या रहेंगे कार्यक्रम?
1: देखिए, पीएम पहुंच चुके हैं और पीएम की एंट्री हो चुकी है कार्यक्रम स्थल पे और कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होगा। अभी जो वाई आकार का स्टैम्प रैम बनाया गया था उस पे चल के पीएम अंदर जा रहे हैं और वहां जो है उनका अभिवादन किया जा रहा है। जो लोग बैठे हैं यहां से उनकी गूंज सुनाई दे रही है किस तरह से पीएम का स्वागत किया जा रहा है। पीएम यहां पे पहुंच चुके हैं सभा स्थल पे और कुछ ही देर में स्टेज पे पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जो है पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद उनका शाम को यहाँ से 2 बजे निकलेंगे और 4 बजे नवसारी, 3 बजे नवसारी पहुंचेंगे, वहां पे भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन होगा और उसके बाद 4 बजे सूरत से वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ जो है पीएम पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वो स्टेज पे पहुंचेंगे। उसके बाद उनका
0: एक बार कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी दिखाएं, वहां पर इस समय किस तरह की रौनक है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं।
1: देखिए, अभी जो है हम लोग कार्यक्रम स्थल के बाहर हैं, अंदर कैमरों को एंट्री नहीं दी गई है। मैं फिर भी कैमरामैन को कहूंगा आपको वो तस्वीरें दिखाए कि जिस तरह से यहाँ पे जो है ये कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पे जो है पूरी तरह से ये सभी लोग यहाँ से अंदर प्रवेश किए हैं। पीएम की गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी है और पीएम जो है यहाँ से अंदर जा चुके हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम था वो तैयार हो चुका था और अब पीएम की एंट्री हो चुकी है। पीएम जो है वो स्टेज पे पहुंचे और उसके बाद वो स्टेज पे पहुंचने के बाद उनका संबोधन होगा और 35,000 करोड़ से ज्यादा के जो विकास कार्य है उसकी सौगात दी जाएगी।
0: अब इस ब्रजेश स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, आपके पास हम लौटेंगे, आप नजर बनाए रखें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको बताते हैं कि कल स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के राज्य मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री कार्यालय में कल ये बैठक लगभग 3 घंटे से ज्यादा चली। मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज और सुधारों नई पहलों का ब्यौरा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। पीएम मोदी ने योजनाओं और परियोजनाओं की टाइम बाउंड डिलीवरी, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने के निर्देश दिए। अब सीधी तस्वीरें इस समय आप देखिए, हजारों युवाओं के साथ संवाद करना है, एक ग्रैंड एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आमतौर पर जब शो होते हैं, बड़े बड़े जो है कॉन्सर्ट्स होते हैं, उस वहां पर ऐसे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पीएम उसी तरह से एंट्री ले रहे हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी लेता है या कोई सिंगर या कोई फिल्म स्टार, लेकिन ये पीएम का ये शो शुरू हो गया।

0: धन सेवक वाला वडोदरा पधारा एने मने माया लगाड़ी रे
1: धन सेवक वाला वडोदरा पधारा
2: कर करोड़ों रुपए लागत।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर अब पहुंच गए हैं और इसके बाद से जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन आपने जो वेलकम देखा वो बिल्कुल डिफरेंट था। एक रेड कार्पेट बिछाया गया था और प्रधानमंत्री मंच के एक छोर से दूसरे छोर तक आए और दोनों ही तरफ बैठे हुए लोगों की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, मुख्यमंत्री रहते हुए फिर प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री के हमने बहुत कार्यक्रम देखे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग रहा है। एक छोर से दूसरे छोर तक प्रधानमंत्री लोगों के बीच से होकर आए।
4: बिल्कुल, देखिए पहले हम देख चुके हैं कि जब वो प्रधानमंत्री वडोदरा से वो जो है पहला चुनाव जीते हैं लोकसभा का और प्रधानमंत्री बने थे, दो सीटें लड़े थे वडोदरा से और वाराणसी से, तो वडोदरा फिर सीट उन्होंने खाली की थी। तो वडोदरा के साथ उनका जुड़ाव पहले से रहा है। वडोदरा ने हमेशा नरेंद्र मोदी को, गुजरात, पूरे गुजरात ने हमेशा नरेंद्र मोदी को प्यार दिया है, बतौर चीफ मिनिस्टर भी और बतौर प्राइम मिनिस्टर भी। तो आज का ये वेलकम जो है वो उसी एक झलक है कि किस तरह से उनका एक अलग वेलकम यहाँ पे किया गया। हमने पहले भी देखा है कि चुनावी जनसभाओं में रोड शो की तरह जो है वो जीप में सवार होके सभा स्थल तक पहुंचते थे, लोगों का वेव ऑफ करते हुए, अभिवादन करते हुए, और वो भी गुजरात से ही शुरुआत हुई थी। उसी तरह फिर बाकी राज्यों में भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो आज ये वडोदरा शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम अन्य प्रदेशों में भी देखे जाएंगे। ये एक झलक है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का गुजरात में जो स्वागत और प्यार अभिवादन जनता करती है, किस तरह से लोगों ने जो गाने भी बजे, आपने गाने भी सुने, कुछ गुजराती गाने भी थे और हिंदी गानों की भी धुन थी। तो गुजराती गानों में जो है एक सीधा संदेश था कि क्यों गुजरात इतना प्यार करता है नरेंद्र मोदी से और किस तरह से उन्होंने जो पूरे काम किए हैं उसकी बातें की गई। प्रधान सेवक के तौर पे, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के तौर पे वो किस तरह से जनता की बातें करते हैं, वो सारी चीजें उन गानों में भी बजाई गई थी। तो वो एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो यहाँ से हुई है।
3: ऐसा लगता है कि इसी कार्यक्रम के लिए ये गाने भी लिखे गए थे। लेकिन ब्रजेश, अब सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं कि 35,000 करोड़ की परियोजनाओं के सौगात, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या सौगात मिलने वाली, जरा वो भी बताइए।
4: देखिए, जो सौगात की बातें मैं करूं तो 35,000 करोड़ में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की केंद्रीय परियोजनाएं हैं, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली बॉम्बे, उसका तीन जो भाग है उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो एक है। उसके अलावा रेल परियोजनाओं की बात है, फिर गुजरात सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना जो है उसके कुछ मकान हैं उनका भी जो है वो लोकार्पण किया जाएगा। तो पूरी तरह से जो है केंद्र और राज्य सरकार की मिला के 35,000 करोड़ से ज़्यादा की जो योजनाएँ हैं, विकास परियोजनाएँ, उसका शिलान्यास और साथ ही लोकार्पण यहाँ पे होने वाला है। रेलवे की जितनी भी ज़्यादा परियोजनाएँ हैं उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहती है, तो केंद्रीय प्रोजेक्ट्स वो है। उसके अलावा नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी जो है आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। तो नेशनल हाईवे के भी चार बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो फ्लाईओवर बनाए गए थे उनका भी जो है लोकार्पण होना है। तो इस तरह से पूरी जो विकास परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण आज होगा।
3: अलग अलग सेक्टर में अब आते हैं, जेन ज़ी की भी जरा बात कर लेते हैं। गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले जेन ज़ी संवाद गुजरात में आपसे पहले कब हुआ या अपने आप में ये पहली बार हो रहा है? संवाद तो सबके साथ होते थे, लेकिन विशेषकर 6,000 जेन ज़ी के साथ पीएम मोदी संवाद करने वाले हैं।
4: नरेंद्र मोदी हमेशा समय से आगे रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी युवाओं के साथ उनका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता था, युवाओं के साथ वो कनेक्ट करते थे। ऐसे मतदाता, ऐसे लोग की जो 18 साल से कम हो, जो भविष्य मतदाता बनने वाले हो, उनके साथ भी उनका कनेक्शन या इंटरेक्शन रहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने वो चीज़ चालू रखी थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार वो ऐसे कार्यक्रम करते रहे। पर आज का ये कार्यक्रम अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, युवा भी हैं, जो जिनको हम जेन ज़ी कहते हैं। तो जेन ज़ी के साथ जो है ये पहली बार सीधा संवाद प्रधानमंत्री का होने वाला है। संवाद की प्रारूप जो है वो तय नहीं किया गया था या डिस्क्लोज नहीं किया गया था। यहाँ पे जो कार्यक्रम,
3: ब्रजेश, केंद्रीय मंत्री अश्विनी
5: हाय, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, आज वर्चुअली जुड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र भाई फडणवीस जी और मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री सावित्री जी ठाकुर, गुजरात और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्रीगण और उपस्थित सभी सांसद विधायक जो कई स्टेशंस पे कई जगह पे वर्चुअली हमारे साथ आज जुड़े हैं, मीडिया के साथी और सभी नौजवान युवा साथी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज दादरी से JNPT डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर संपूर्ण हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना हाईवे के स्वर्ण चतुर्भुज, श्रद्धेय अटल जी ने जब स्वर्ण चतुर्भुज बनाया था उसके साथ साथ की गई थी, लेकिन 2004 में जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार चली गई उसके बाद में कांग्रेस की सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली, उससे पहले तक फ्रेट कॉरिडोर का 1 किलोमीटर भी काम नहीं हुआ था, 1 किलोमीटर भी काम नहीं हुआ था। मोदी जी ने आने के बाद में एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फ्रेट कॉरिडोर की जितनी भी दिक्कतें थी, फंड्स की दिक्कत, डिजाइन की दिक्कत, लैंड एक्विजिशन की दिक्कत, उन सबको कंप्लीट किया, सॉल्व किया और उसके बाद में एक एक करके सेक्शन ओपन होने लगे। पहला सेक्शन 2020 में कंप्लीट हुआ, कोविड आया, कोविड की प्रॉब्लम्स आई, फिर काम स्पीड पकड़ा और एक एक करके कई सेक्शन कंप्लीट हुए। आज दादरी से JNPT तक कंप्लीट फ्रेट कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में और खासकर जो यंग जनरेशन आज जुड़ी हमसे, ये आपकी जनरेशन के लिए काम है, ये रेलवे का मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सारे सिस्टम्स रेलवे के, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रैक हो, चाहे ऊपर जो बिजली का तार होता है OHE या सिग्नलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। 100 साल पुरानी संस्था है, 100 से ज़्यादा साल पुरानी संस्था है, एक एक करके सिस्टमेटिकली इसको मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और आपकी जनरेशन पहली जनरेशन है जिसने वंदे भारत में ट्रेवल किया है और अब तो वंदे भारत स्लीपर भी एक के बाद एक आने लगी है, अमृत भारत, नमो भारत और अब वंदे भारत की कार्गो ट्रेन्स भी बनने लगी है। 280 स्टेशंस का कंप्लीट रीडेवलपमेंट, नवनिर्माण कंप्लीट हुआ है। 36,000 किलोमीटर पटरियां नई बनी है दोस्तों, 36,000 किलोमीटर, और अब कवच भी इस्टेब्लिश हो गया है, सारी दुनिया उसको देख रही है। साथियों, हमारी जनरेशन ने जब देखा था श्रद्धेय अटल जी का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्ण चतुर्भुज, उससे हाईवे का एक टोटली नया स्वरूप आया था। आज वैसा ही बदलाव रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। जो रेलवे के 7 बड़े कॉरिडोर हैं, भारत का नक्शा दिमाग में लाइए, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उसकी, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ये हुआ स्वर्ण चतुर्भुज। अब इसकी डायगनल्स, दिल्ली से चेन्नई, मुंबई से कोलकाता और उसके बाद में दिल्ली से गुवाहाटी, इन 7 कॉरिडोर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाइनिंग कर रहे हैं, 4 लाइनिंग, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, कई सारी नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे और जिस तेजी से नई गाड़ियां चलने लगी हैं, जिस तेजी से काम चल रहा है, साथियों जो आज कॉलेज में पढ़ने वाले युवा युवतियां हैं, आप जब कॉलेज से बाहर निकलोगे आप देखोगे रेलवे का एक टोटली नया स्वरूप आपके सामने है। कंप्लीट इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे नेटवर्क का एक रूट है जो बड़ोदरा से रतलाम, आज इसकी 4 लाइनिंग का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से है। साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, रिजर्वेशन सिस्टम हो और पुराने मैनुअल्स, कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था, इन सब को रिफॉर्म कर रहे हैं, इन सब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नई डिज़ाइन के वैगन बन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सॉल्ट के लिए एकदम स्पेशल डिजाइन माननीय प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से बनी है। आने वाले समय में जो भारतीय रेलवे का आधुनिक स्वरूप सामने आ रहा है, इसका लाभ आने वाली कई जनरेशन्स को मिलने वाला है। चेनाब का ब्रिज आप सबने देखा फोटो उसका या वीडियो, चेनाब का ब्रिज मिजोरम को रेलवे से जोड़ना, कई ऐसे पुराने प्रोजेक्ट थे वो अब कंप्लीट हुए, और अब बुलेट ट्रेन का इंतजार भी जल्दी खत्म होगा। काम तेजी से चल रहा है। सूरत से वापी सेक्शन का कंस्ट्रक्शन इसी साल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। जो बुलेट भारत में बन रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से, उस ट्रेन का पहला बॉडी फ्रेम परसों बनकर स्क्वीज टेस्ट के लिए चला जा चुका है, और अगले साल मई जून तक भारत में बनी हुई भारत की बुलेट ट्रेन पटरियों पे आएगी टेस्टिंग के लिए। दो तीन महीने के टेस्टिंग के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। और जब बुलेट ट्रेन में बैठोगे ना बड़ौदा के दोस्तों, यहां से मुंबई 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। कितने में? क्या भाई सुन रहे हो, 1.5 घंटे में बड़ोदरा से मुंबई। ये है आने वाले समय का रेलवे का आपके सामने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी उस भविष्य की नींव रख रहे हैं, उस फाउंडेशन को रख रहे हैं आज, जो आपकी जनरेशन को, भारत के भविष्य को, और आप सबके लिए एक नया भारत, एक उज्जवल भारत, एक ऐसा भारत जो 2047 तक विकसित भारत होगा, उस भारत की मजबूत नींव को रखने के लिए आज मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, और जिस जोश के साथ आपने यहाँ पर अपना बड़ौदा का संस्कारी रूप दिखाया है, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। भारत के विकास में गुजरात ने हमेशा जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभाई है। विकसित गुजरात से विकसित भारत की यात्रा पर अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ गुजरात राज्य के लोकप्रिय मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से प्रासंगिक उद्बोधन के लिए।
6: वडोदरा खाते विविध विकास कामों लोकार्पण खातमुहूर्त प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित नवा भारतना सपना दृष्टा।
3: थोड़ी देर बाद पीएम का संबोधन होगा, एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। फिलहाल रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
4: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
5: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
4: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंचे, जहां पर वो 35,000 करोड़ की सौगात गुजरात वासियों को देने वाले हैं। इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन शुरू करेंगे। जेनजीज के साथ सीधा उनका संवाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वडोदरा पहुंचे, किस तरह से उनका वेलकम हुआ, आपको दिखाते हैं।

विकास प्रवाह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। 30,700 करोड़ से अधिक की लागत से आज भारतीय रेल के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास एवं लोकार्पण हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, जो देश के उद्योगों को बंदरगाहों से सीधे जोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, जिससे माल की तेज, सुगम और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को नई गति और नई क्षमता प्रदान करेगा। छोटा उदयपुर धार परियोजना के तहत जोबट टांडा रोड रेल खंड का उद्घाटन, जिससे आदिवासी क्षेत्र राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। साथ ही वडोदरा रतलाम मल्टी ट्रैकिंग, मियागाम करजण चोरंदा मालसर लाइन और विश्वामित्री डभोई डबलिंग का शिलान्यास, और होने जा रहा है टांडा रोड वडोदरा ट्रेन सेवा के साथ 4 फ्रेट ट्रेनों का शुभारंभ। रफ्तार और सुविधा के इस सफर को नया विस्तार देगा नेशनल हाईवे नेटवर्क। 1,780 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स के तहत NH-48 पर कामरेज चलथान 6 लेन, तापी और नर्मदा नदी पर नए आधुनिक पुल, NH-53 के 3 जंक्शनों पर नए फ्लाईओवर का शिलान्यास हो रहा है। और आम नागरिक की ईज ऑफ लिविंग हेतु गुजरात सरकार वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आई है 916 करोड़ से ज्यादा के जन सुविधा प्रोजेक्ट्स, 524 करोड़ के रिंग रोड फेज 2 और नए BMC भवन का शिलान्यास। बूडा के 11 गांवों और आजवा भायली में शुद्ध पेयजल, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और 14,000 से अधिक परिवारों को उनके अपने पक्के घर की चाबी। सशक्त गुजरात के संकल्प को नई शक्ति देंगे ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के 580 करोड़ से अधिक के सोलर व ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, मार्ग एवं मकान विभाग के 390 करोड़ से ज्यादा के नए स्टेट हाईवेज व रिवर ब्रिजेस तथा पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक बस स्टेशन और उद्योग जल आपूर्ति के कई अन्य विकास कार्यों की शुरुआत हो रही है।

0: हमारे सेवावर्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में आज वडोदरा से देश की ग्रोथ स्टोरी को मिल रही है एक नई स्पीड और नया स्केल। विकसित भारत 2047 के विजन को समर्पित ये मेगा प्रोजेक्ट्स भारत को एक सशक्त और ग्लोबल पावर हाउस बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। वंदे मातरम, जय हिंद।
1: तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है, उससे पहले क्या क्या विकास की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक जानकारी दी गई। पीएम मोदी का आज किस अंदाज में वेलकम हो वो भी, और अब समय आप तस्वीरें कि शिलान्यास होने वाला है योजनाओं का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर रहे हैं और इसका शुभारंभ हो गया है।

0: अभी तो वो झलकियां दिखाए जा रहे हैं किस किस सेक्टर को क्या क्या सौगात इस समय मिल रहे हैं, तो आप विस्तार से बताएं कितना समय इन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में लगा। अतुल,
1: बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और खास करके वडोदरा में फिलहाल उनकी मौजूदगी है और उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं के बीच में उनकी एंट्री हुई है, ये एंट्री ही बहुत कुछ कह रही है। 35,200 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका लोकार्पण किया गया है और इन प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें बड़े पैमाने पर रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका लोकार्पण हुआ है। रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश से गुजरात की कनेक्टिविटी हो या गुजरात के इंटरनल कई क्षेत्रों की कनेक्टिविटी हो, उस पर सीधे तौर पर रेलवे की तरफ से पिछले कई महीनों में जो काम किया गया था उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेकर लोकार्पण किया गया है। आने वाले दिनों में जो माल वहन रेलवे के माध्यम से होता है उन क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर हमें कहीं ना कहीं जो रेलवे की तरफ से प्रयास किए गए थे उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी और जो रेलवे ट्रैक्स पर अब तक जो मालवाहक जो ट्रेनें जो चल रही थी उनके लिए भी अलग से जो ट्रैक बनाए गए हैं उनका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज किया गया है। वडोदरा के अंदर जिस प्रकार के आज का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है वो अब लोकार्पण के बाद सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री आज जब जंजी के बीच रहेंगे और जंजी को जब संबोधन करेंगे तो अपने संबोधन में किन किन मुद्दों को लेकर वो बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि दीयू में भी प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया।
0: इस बीच में ट्रेनों को अतुल हरी झंडी भी दिखाई जा रही है, वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी इन ट्रेनों को दिखा दी है और केंद्रीय मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने आप जानकारी भी दी कि किस किस तरह से वंदे भारत उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं और रेलवे को बड़ी सौगात मिली है। रेलवे रोड प्रोजेक्ट्स, एसटीपी प्लांट्स, बहुत तरह की योजनाओं का शुभारंभ आज हुआ है और इस बीच में ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हुए और इसमें कार्गो ट्रेन भी एक पैसेंजर ट्रेन तो एक कार्गो ट्रेन दिखाई दे रही है। अतुल, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं क्या नया इन ट्रेनों में हुआ है।
1: देखिए, नई ट्रेन जो है वो तो अलग अलग सिटीज के बीच में चलाई गई है, लेकिन इसके पहले भी मैंने जिस प्रकार से आपको कहा कि कार्गो ट्रेन को लेकर और खास करके कुछ लाइन के डबलिंग करना था, ये सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर पिछले कई लंबे समय से जो रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सारे पूर्ण हुए हैं।
0: अतुल, अब बने रहे आप हमारे साथ, लाइव एक बार चलते हैं क्योंकि अब पीएम का संबोधन शुरू होने वाला है।
2: जिनके एक वीडियो से सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स बदल जाते हैं, He is the OG trendsetter, a global leader. भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने वाले नव भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। सादर निवेदन, नम्र निवेदन प्रधानमंत्री जी से।
3: भारत माता की गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इस कार्यक्रम में ऑनलाइन हमारे साथ अनेक राज्यों के महानुभाव जुड़े हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम श्रीमती सुनेत्रा पवार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और वहां पर भी इकट्ठे हुए लाखों नागरिक भाई बहन, यहां मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव, उप मुख्यमंत्री, युवा नेता हर्ष संघवी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अने खास एटले माड़ा वडोदराना महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का ये मैदान अलग अलग फील्ड में काम करने वाले सभी साथियों का साथ और विकास का ये उत्सव, यहां सब कुछ एक साथ हो रहा है। साथियों, आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले यहां देश के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस विकास पर्व पर आप सभी ने जिस सेवा भाव से और सेवा भाव के साथ पूरे वडोदरा शहर में स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया है, इसके लिए मैं वडोदरा के हर एक नागरिक को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और ये जो आपने रंग दिखाया ना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, सीना चौड़ा हो गया, वाह क्या मेरा वडोदरा। और अब तो गणेशोत्सव की तैयारी, बाद में नवरात्रि, और गणेशोत्सव और नवरात्रि पूरा गुजरात का ध्यान वडोदरा पर होता है। और आज आपने, मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से हर परिवार में वातावरण बन गया स्वच्छता का। मुझे लगता है कि इस बार जब गणेश जी पधारेंगे ना, सारे आशीर्वाद वडोदरा पर बरसने वाले हैं। साथियों, इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो। वडोदरा तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी का शहर है। आज यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आखिरी कड़ियां भी जुड़ गई हैं। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था, यानी यहां मैं सारे नौजवान देख रहा हूं, जब इसका विचार शुरू हुआ आप में से बहुत लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय शुरू हुआ था। 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम करने के लिए, और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रही, फाइलें टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ, फाइलें अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी। और 2014 में बड़ोदरा के और गुजरात के और देश के लोगों ने मुझे गुजरात से निकाल करके दिल्ली भेज दिया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई। और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद 3-4 पीढ़ी आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। साथियों, 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया। और आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। पहले पैसेंजर ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती थी उसी ट्रैक पर मालगाड़ी भी चलती थी, यानी ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट दोनों धीमा था। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने इस स्थिति को बदल दिया है। आज पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर पर हर रोज 430 से ज्यादा मालगाड़ियां चलती हैं, प्रतिदिन 430 मालगाड़ी। और पहले जो मालगाड़ी 6.5 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करती थी और अब वही मालगाड़ी आधे से भी कम समय में 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। जिस जगह पर ट्रक से सामान भेजने में सामान्य तौर पर 30 घंटे लगते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर यही दूरी 10-12 घंटे में पूरी हो जाती है। यानी इस कॉरिडोर पर मालगाड़ी के चलने से ट्रक और ट्रेन में लगने वाला फ्यूल बचता है, किराया भाड़ा का खर्च कम हुआ है, समय बचा है, पर्यावरण को फायदा हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट एक ट्रैक पर किया और फायदे अनेक सारे हुए हैं। साथियों, इस फ्रेट कॉरिडोर से पूर्वी और पश्चिमी भारत के किसानों की उपज अब तेजी से बड़े बाजार तक पहुंच पा रही है। कई तरह के फूल, कई तरह की सब्जियां, कई तरह के फल, यानी जो चीजें मौसम के हिसाब से जल्दी खराब होती हैं, उनके लिए भी सही समय पर मंडियों और लोगों के बीच पहुंचने का रास्ता बना है। इससे किसान का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर एक और वजह से कमाल का है। हाल ही में JNPT मुंबई, JNPT पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है। यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया, यानी अब बड़ी मात्रा में सामान तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएगा। साथियों, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहां जो आदिवासी क्षेत्र हैं वे भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा रेल से जुड़ रहे हैं। पहले की सरकार में बजट में 1-2 ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है। आज भी इस कार्यक्रम में कई नई ट्रेन शुरू हुई है। नई ट्रेन से वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, रोड, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गरीबों का घर, जब देश में करोड़ों लोगों के लिए चीजें बनती हैं तो इससे लोगों का जीवन आसान होता है और साथ ही छोटे से बड़े कामगार को रोजगार के लाखों लाख अवसर मिलते हैं। आप रेलवे का ही देखिए, इस वर्ष का रेल बजट 3.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये 12 वर्ष पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। यानी रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा खर्च हजारों हजार नए रोजगार बना रहा है और ये रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान तो बनता ही है। एक बार रोड, रेल, पाइपलाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट बन गया तो फिर उसके आसपास नए उद्योग लगना शुरू हो जाते हैं, नए बिजनेस आते हैं, ये फिर नए रोजगार बनाते हैं। वहां कुछ लोग, वो बेटी चित्र लेके कब से खड़ी है, वो सज्जन भी कुछ कला लेकर के आए हैं, जरा हमारे साथी उसको कलेक्ट कर लें। ये आगे पहुंचा दीजिए। हाँ, एक और भी है कोई? हाँ, ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने देश के सामने विकसित भारत की जिन सप्त धाराओं का विजन रखा है उनमें एक धारा मैन्युफैक्चरिंग की भी है और वडोदरा शहर इसकी ताकत अच्छे से जानता भी है, समझता भी है। एजुकेशन, स्किल और इंडस्ट्री का कॉलेब कैसे होता है, ये वडोदरा करीब 150 साल से इसका प्रतिबिंब है।

बड़ा हब बन गया है। और मुझे याद है जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था तो वडोदरा का मेरे पर स्पेशल अधिकार रहा है हमेशा, तो हर हफ्ते कोई न कोई डेलीगेशन आता था, बस हमारे वडोदरा में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का हो, क्योंकि यहां पर आते थे तो या तो ज्योति या एलएमबिक या तो जीएसएफसी, यही सब दिखता था और कुछ सुनता नहीं देता। आज कहां से कहां बदल गया है, अब तो ये शहर देश के पहले मेड इन इंडिया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी जाना जा रहा है। C-295 एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट यहां आसमान देख चुकी है। मैं वडोदरा के लोगों को ये गौरव पाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बीते एक दशक में भारत रेल कोच मेट्रो कोच बनाने का, रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक भारत ने करीब 50,000, ये आंकड़ा सुनिए, 2014 के बाद भारत ने अब तक 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट नहीं बना सकती थी।

50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं। 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए और आज हम इसमें 200 गीगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी विकसित कर चुके हैं। और ऐसी ही आत्मनिर्भरता के कारण आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार हो रहा है। अब तक देश में 55 लाख परिवार अपने छत पर, टेरेस पर सोलर प्लांट लगा चुके हैं और इसमें 11 लाख परिवार हमारे गुजरात के हैं। यहां इतने सारे परिवार बिजली उत्पादक बन चुके हैं और इसके कारण प्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन और सर्विस तक कितने ही युवाओं को रोजगार मिला है, कितने नए वेंडर्स आए हैं। साथियों,

कष्ट की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है।

0: हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है। साथियों, आने वाले दौर में हर आधुनिक सेक्टर बिजली से ही चलेगा, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम पर निर्भर होगा। जैसे चिप इंडस्ट्री है, डेटा सेंटर और एआई से जुड़ी इंडस्ट्री है, इनका खाद पानी बिजली ही है। इसलिए अगर हमें एआई में दुनिया के सामने सुपर पावर बनना है तो देश को उसकी तैयारी, उसका इकोसिस्टम भी बनाना होगा। यही काम भारत ग्राउंड पर कर रहा है, तभी किसी देश से यूरेनियम के लिए समझौते हो रहे हैं, किसी से क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर समझौते किए जा रहे हैं। ये सारी मेहनत देश के युवाओं के फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करके की जा रही है, आपके भविष्य के लिए किया जा रहा है। साथियों, दुनिया तेजी से बदल रही है तो दुनिया की जरूरतें भी बदल रही है, और इसी प्रकार हमारी पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके भी बदल रहे। पहले फोकस सिर्फ डिग्री पर होता था, लेकिन अब डिग्री के साथ साथ स्किल पर भी फोकस है, स्किल का महत्व बढ़ रहा है। नौजवानों के पास स्किल हो और वो स्किल समय समय पर अपग्रेड हो, एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। और इसलिए आज हम अपनी शिक्षा नीति को, शिक्षण और ट्रेनिंग के संस्थानों को नए रूप में ढाल रहे हैं, और इसी भाव के साथ ही मैंने लाल किले से भी युवा शक्ति के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है। पहली घोषणा देश की पारंपरिक जरूरत से जुड़ी है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहां लाखों नौजवान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल हमारे मिडिल क्लास परिवारों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों की कोचिंग पर खर्च हो जाता है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मिडिल क्लास के इससे बच्चे की परिवारों के पैसों की बचत हो, और इसलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर के द्वारा उनके कोचिंग हो। हमारे जो नौजवान अपनी तैयारी कर रहे हैं उनकी कोचिंग का ध्यान सरकार खुद रखेगी। साथियों, भारत के नौजवानों को एआई में पारंगत होना उतना ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की पीढ़ी एआई के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है एआई सीखने वालों की जरूरत सिर्फ आईटी सेक्टर में है। अगर कोई स्किल को जानता है तो वो खेती के लिए नया एआई सॉल्यूशन बना सकता है, आरोग्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, रोबोटिक्स में अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास देश और दुनिया की इंडस्ट्री के लिए एआई को समझने वाले और एआई का इस्तेमाल करने वाले युवा हो। सरकार इसके लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। साथियों, भारत का ये कालखंड अभूतपूर्व है। ये भारत की युवा शक्ति का उत्कर्ष काल है। ये समय फिर भारत के जीवन में लौट कर नहीं आएगा और इसलिए हमें 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखना है। हमें भारत को विकसित बनाकर ही रहना है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें मारू एक काम करू पड़ो वडोदरा वाला है करसो पाके पाए तमे वडोदरा आटलू बधु स्वच्छ बनावी दीधु केटली बधी मेहनत करवी पड़ी हूँ जो तो बधा नौ जुवानी आओ दिवस रात सफाई में लागेला हता। पण एक बार आपने नक्की करिए कि हवे आपने वडोदरा ने गंदु थवाज नथी देवु। हूँ पोते गंदगी नहीं करू आ संकल्प करिए तो वडोदरा गंदु थाय वडोदरा गंदु थाय तो दिवाली आवी चकाचक जाए कि ना जाए नवरात्रि शानदार जाए कि ना जाए गणोत्सव में चार चार लागे कि ना लागे तो आटलू काम थसे। शाबाद धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: तो गुजरात के वडोदरा में जेनजी से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपना भाषण वंदे मातरम की गूंज के साथ खत्म किया और यह भी कहा कि झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर मौजूद हैं, जेनजी को उनसे सावधान रहना होगा। पूरे जोश के साथ यहां पर जेनजी से संवाद प्रधानमंत्री का, उससे पहले हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और हर जेनजी में ये दरअसल वहां होड़ और ललक दिखाई दे रही थी कि वो प्रधानमंत्री की तस्वीरें ले सकें। और पूरे संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने इस देश में किस तरीके के हालात हैं उसके बारे में बताया और ये कहा कि भारत का युवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हर तरीके से वो प्रतिभाओं से लबरेज है और ऐसे में हमारे देश का भविष्य उज्जवल है।
0: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है। 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम करने के लिए और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रही, फाइलें टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ, फाइलें अटकती थी लटकती थी भटकती थी। जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए 7-8 वर्ष में एक किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद तीन चार पीढ़ी आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
1: ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि झूठ से बहुत सारे भरमाने वाले जेंजी को मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें सच को पहचानने की जरूरत है। शायद कहीं ना कहीं उनका इशारा यहां दिल्ली में जंतर मंतर जो प्रदर्शन हुआ और देश भर में जो तमाम प्रदर्शन हुए, जिसमें ऐसे भी एलिमेंट्स हमने देखे जिन्होंने छात्रों को किसी ना किसी तरह से भड़काने की कोशिश की, और मुद्दा वही था या फिर कुछ और था, इस पर भी उनको अंधेरे में रखा।
2: देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, बिना नाम बोले उन्होंने कहा कि झूठ की गूंज आपको हर चौराहे पे मिल जाएगी जो युवाओं को भरमाना चाहती है, पर युवा जो है वो सच के साथ चलना चाहते हैं और उनको वो सच देखना होगा कि कौन उनके लिए काम कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने अपने कामों की लिस्ट गिनाई कि हमने कितने काम किए, पहले की सरकारों में कितने काम होते थे, हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने बड़ी बात की कि हम ये जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं, युवाओं का जो भविष्य है वो बेहतर बने, चाहे किसी देश के साथ हम यूरेनियम का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी देश के साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की बात हो, चिप से लेकर शिप तक हम बना रहे हैं यहाँ पे भारत में, तो ये जो चीजें हैं वो युवाओं के भविष्य के लिए हैं। आपका भविष्य ये सरकार कर रही है कि आपका भविष्य बेहतर बने उसके लिए काम कर रही है, वो युवा समझे। तो एक सीधा मैसेज प्रधानमंत्री ने यहाँ से दिया है कि जो युवाओं को सीधी बात वो करना चाहते थे। साथ में उन्होंने शिक्षा की बात भी जोड़ी कि शिक्षा नीति के जरिए भी उन्होंने अपनी बात दोहराई कि मैंने 15 अगस्त को लाल किले से युवाओं के लिए शिक्षा नीति को लेकर दो बड़ी घोषणाएं की थी। वो दोनों घोषणाएं ऐसे ही नहीं की थी, वो जैसे जमाना बदल रहा है वैसे हम भी बदलना चाहते हैं और हम भी अपने काम करने के तरीकों में बदलाव ला रहे हैं, ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा नीति में भी जो है बदलाव कर रहे हैं ताकि युवाओं को जो है जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा जो उन्होंने लाल किले से भी कहा था और यहाँ पे भी उन्होंने दोहराया कि मिडिल क्लास की कमाई का एक बड़ा हिस्सा परीक्षाओं की तैयारियों में जाता है, तो उसको लेकर भी जो उन्होंने बात कही वो साफ तौर पर बातें थी युवाओं को समझाने के लिए कि युवा जो है सच जाने। और इसीलिए उन्होंने बिना नाम लिए झूठ की गूंज कहा। हम जानते हैं कि विपक्ष के नेता का कार्यक्रम चल रहा है छात्रों की गूंज, तो सिमिलर रूप से
1: झूठ की गूंज वाला बयान प्रधानमंत्री का सुनवा देते हैं आपको।
0: अब तक देश में 55 लाख परिवार अपने छत पर टेरेस पर सोलर प्लांट लगा चुके हैं और इसमें 11 लाख परिवार हमारे गुजरात के हैं। यहां इतने सारे परिवार बिजली उत्पादक बन चुके हैं और इसके कारण प्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन और सर्विस तक कितने ही युवाओं को रोजगार मिला है, कितने नए वेंडर्स आए हैं। साथियों, झूठ की गूंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है।

0: और अब बात दिल्ली में ब्रिक्स समिट की तैयारी की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा एजेंसी ने कमर कस ली है। समिट के दौरान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। इसी सुरक्षा तैयारियों के तहत दिल्ली के कई अहम स्थानों पर एनएसजी ने बड़ा सुरक्षा मॉक ड्रिल किया। देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट।
1: से स्लीदरिंग में देख रहे हैं कि ये स्लीदरिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से ये लोग उतरे हैं, और उसके बाद जो है अब ये तमाम कमांडो जो हैं जिस जगह इनको डिप्लॉय किया जा रहा है वहां पर ये लोग यहां से पहुंचेंगे। दरअसल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए इस तरीके का कदम जो है एनएसजी के कमांडो बढ़ाते हैं, ब्लैक कैट कमांडो। ये तमाम कमांडो जो है यहाँ की आसपास की जो होटल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी इनको तैनात किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये कमांडोज जो हैं पूरी तरीके से अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। दिल्ली पुलिस और जो इनसे जुड़े हुए तमाम दूसरे स्वाट कमांडोज हैं उनको भी सिक्योरिटी में तैनात किया गया है। तो एनएसजी के कमांडो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए उतरे, और उसके साथ ही ये जो अलग अलग लोकेशन है वहां पर एनएसजी के कमांडोज को तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जो भारत मंडपम की सुरक्षा, इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां पर एनएसजी का एंटी ड्रोन सिस्टम वो भी लगाया जाएगा। जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं करीब 5,000 के आसपास जो एनएसजी के जवान हैं वो, और इसके साथ ही जो दूसरी सुरक्षा बल हैं वो सब तैनात रहेंगे। तो आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की जो स्वाट टीम है उसको भी यहां पर तैनात किया गया है। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जो है वो सुरक्षा एजेंसियों का इस वक्त यहां पर दिखाई पड़ रहा है, और तमाम एजेंसियां जो है मिलकर के इस वक्त यहां पर काम कर रही हैं, जिससे कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। और 5 स्तरीय सिक्योरिटी लेयर जो है उसको बनाया गया है, जिससे कि ये हो सके कि बहुत अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं भारत में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। तो उस दौरान हर एक स्तर की सुरक्षा को देने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज का एक कोऑर्डिनेटेड ड्रिल यहां पर किया जा रहा है, जिससे कि ये सुरक्षा चाक चौबंद और पुख्ता दिल्ली में रहे।
0: बात महाराष्ट्र की, जहां के छत्रपति संभाजी नगर में पेपर लीक मामले के खिलाफ छात्र छात्राओं का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक होने के विरोध में संभाजी नगर के क्रांति चौक में सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्रों का यह आरोप है कि एमपीएससी की परीक्षाओं के पेपर आए दिन लीक हो जाते हैं। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांग है एमपीएससी के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार और आयोग की ओर से उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
2: जो किसान के बच्चे खास करके वो स्पर्धा परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कभी नौकरी मिलनी चाहिए, उनका भविष्य अच्छा बनना चाहिए, लेकिन ये भविष्य के साथ पूरी खिलवाड़ हो रही है। पूरे बच्चे आज रस्ते पे उतर गए कि जो पेपर फूटने वाले हैं और जो पेपर फोड़ रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, वो कोई और नहीं कि जो ऑलरेडी आईएएस अधिकारी उसमें बैठे वाले हैं, वो अधिकारी पेपर लीक कर रहे हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम का दबाव ले रहेगा। तो हमारा ये मतलब है कि आज के ये जो आंदोलन हमारा चल रहा है, मोर्चा चल रहा है, तो हमारे एक डिमांड है, हमारी एक मांगनी है कि जो हमारे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनका हम राजीनामा चाहते हैं।
3: हमारी डिमांड यही है कि जो एग्जाम हो रही है उसमें
0: बात यूपी के हापुड़ की, जहां पर धौलाना के केमिकल फैक्ट्री भीषण आग से खलबली मच गई। ये फैक्ट्री दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में स्थित है। आग से उठता धुआं का गुबार काफी दूर तक दिखाई दिया। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
8: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
9: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
8: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
10: दरख्तों को देख करके आप समझ में आएंगे कि त्रिशूली की धारा कितनी ताकतवर थी। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ बह गया, ध्वस्त हो गया। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। 9 दिन पहले एक भरा हुआ शहर अब बंजर रेगिस्तान कब्रिस्तान की तरह दिखाई देने लगा। जो अपने आप में मिरेकल हाउस थे, जो बचे रहे लोग इनकी छतों पर खड़े रहे, अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। यहां पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव, कहा ट्रेड कॉरिडोर से नाराज फूफा को भी काम मिला। बड़ोदरा में जेएनजी मन से बिना नाम लिए प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर सीधा हमला, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर मिलेंगे भारत का नौजवान, सच की ओंकार से चलता है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर तेज हुई राजनीति, बीजेपी का सीएम मान पर सीधा अटैक, कहा कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में पीट पीट कर हत्या के बाद 9:30 तक आक्रोश, ढाबे पर शोर का विरोध करने पर कत्ल, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी, कई जगह कैंडल मार्च।

0: आपके साथ हूँ मैं नेहा बातम। सबसे पहले बात करेंगे आमेर से। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, जयपुर के आमेर में माफ्ठा क्षेत्र में सोमवार को हुई चाकूबाजी की वारदात में गंभीर रूप से घायल टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की मंगलवार में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मनीष ने सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही आमेर में आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने आमेर कस्बे को बंद करके विरोध जताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रिदम जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या मांग रखी जा रही है अब जो मृतक है उसके परिवार वालों की तरफ से, और कैसे ये मौत हुई है?
1: बिल्कुल नेहा, ये बहुत ही पीड़ादायक मामला है जहां पर कल सुबह एक टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की बहस हुई जीप चालक आजम से, और जिस बहस ने अंजाम दिया है उसकी मौत का, मौत उसी मौके पर नहीं हुई थी। पर ये जो मामला है इसमें ये हुआ है कि जो जीप चालक है आजम, उन्होंने टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी को चाकू पेट में मारा, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको SMS हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जिसके बाद उनके इलाज के बीच में रात को मौत हो गई है। अब यहाँ पे जो आमेर माउठा क्षेत्र है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किस तरीके से उनका परिवार, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स और साथ ही में जो टूरिस्ट गाइड कमेटी है, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। न्याय मांगा जा रहा है, सख्त कार्रवाई मांगी जा रही है। हालांकि जो आरोपी है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्त में है, पर फिर भी अभी ये कुछ मांग है जो की जा रही है, जिसमें जो आरोपी का परिवार है उनका ये कहना है, मृतक का जो परिवार है उनका कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह मामला ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, और साथ ही में उनका ये कहना है कि जो आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। यहाँ पे सभी महिलाएं और पुरुष सब बैठे हैं। 1 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन है वो मांगा जा रहा है, साथ ही में सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। समय पे आचार संहिता भी क्योंकि राजस्थान में चल रही है, तो कोई बड़ा अधिकारी जो है वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, जो नेता है कोई भी वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से जो भी इनकी डिमांड्स है उनके लिए कुछ किया नहीं जा पा रहा है अभी तक के लिए। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि मैम क्या मांग है आपकी इस समय पे?
2: देखिए, हमारी ये मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि इन्हें मिलनी चाहिए, एक डेयरी बूथ और गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि मनीष जी के अलावा कोई भी अर्निंग पर्सन परिवार में नहीं था। इनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, 1 की उम्र 6 साल है, 1 की उम्र 1.5 साल है, जो अभी तक ढंग से शायद पापा बोलना भी नहीं सीखी है। हमें ये पता है उस सहायता राशि से वो पापा को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उन बच्चियों का भविष्य हम सुधार सकते हैं, इसलिए हमारी ये डिमांड है। दूसरी हमारी ये डिमांड है कि उस जिसने भी ये कांड किया है उसे यहीं पे उसका एनकाउंटर होना चाहिए, और यूपी की तर्ज पे उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा आमेर में ना हो।
1: बिल्कुल, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाना चाहिए। और नेहा, मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो आरोपी है इसके खिलाफ पहले भी यहाँ पे उनके पीछे कुछ कार्रवाई चल रही थी, कुछ केसेस है जो फाइल हुए हुए थे, यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही कि वी वॉन्ट बुलडोजर। सर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: न्याय दो, वी वॉन्ट।
1: लगातार ये नारेबाजी यहाँ पे चल रही है, न्याय की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि उनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए, घर पे बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। पहले भी हम देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो आरोपी है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिदम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ से बेहाल बिहार।

0: और अब बात सितंबर में मॉनसून के कहर की, जो पहाड़ों से लेकर मैदान तक अपना कहर बरपा रहा है। जहां एक तरफ बिहार में नदियों के उफान के चलते 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते 27 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एमपी में भारी बारिश के चलते, तेज आंधी और तूफान के चलते हड़कंप मचा हुआ है। तेज आंधी के चलते एक पेड़ गाड़ियों पर गिर गया, जिसमें एक महिला की जान चली गई है। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से आए मलबे से 15 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। इस बीच बड़ी खबर बिहार से ही, जहां पर मॉनसून का कहर जारी है। यहां पर गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और बागमती नदियों का उफान जारी है। बाढ़ जैसे हालात इनके आसपास के इलाकों में है। बिहार के 13 जिलों में 27 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। हालांकि पटना में गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद बढ़ गई है। गंगा का जलस्तर 50.58 मीटर के रिकॉर्ड स्तर से घटकर 50.4 मीटर पर आ गया है। भागलपुर से मेरे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, तस्वीरों के जरिए दिखाइए कितनी मुश्किलें वहां पर हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाके जो आपने कवर किए हैं वहां पर काफी ज्यादा त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग वहां से पलायन भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल नेहा, देखिए अभी हम लोग इस वक्त भागलपुर में हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर यातायात बिल्कुल बंद कर दिया गया है कल से, क्योंकि ये है नेशनल हाईवे संख्या 80, नेशनल हाईवे 80 है और ये पीछे ये रास्ता जो है एनएच का झारखंड और बंगाल को जोड़ता है। लेकिन आप नेशनल हाईवे पे देखिए, 2 फीट तक पानी गंगा का जो है वो चढ़ चुका है, जिसकी वजह से इस हाईवे पर जो है यातायात प्रशासन ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आपको दूसरी तरफ इधर भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सब गंगा का पानी है। और एनएच के आसपास जितने भी गांव, जितने भी घर हैं, आप ये देखिए जेसीबी मशीन, आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन आधा जो है वो बिल्कुल डूब चुका है। तो जाहिर सी बात है जो हालात हैं वो पटना से लेकर भागलपुर तक कहीं भी अभी डेंजर लेवल से पानी नीचे नहीं गया है। पटना में भी डेंजर लेवल से अभी 1.5 मीटर ऊपर पानी बह रहा है। हालांकि कुछ वहां पर पानी का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन उसके बाद बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर में हर जगह जो है वो राइजिंग ट्रेंड है गंगा का। और नेशनल हाईवे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है, कि 2 फीट पानी इस वक्त गंगा में जो है वो इस हाईवे पर बह रहा है और प्रशासन ने इस पर यातायात पूरी तरीके से रोक दिया है। नेहा,
0: ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन मोड में है। सीएम सम्राट चौधरी ने वैशाली और भागलपुर में राहत व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी और बचाव कार्य में तेजी करने के निर्देश भी दिए हैं। पटना में गांधी घाट और हाथीदह पर गंगा नदी के जलस्तर के उच्चतम बाढ़ स्तर तक पहुंचने के बाद अधिकारियों ने नदी के निचले इलाकों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान, 13 जिलों में बाढ़ चपेट में, 27 लाख से ज्यादा लोग, सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं तो इतना पानी घर से निकलता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: नहीं, कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते इतना पानी, बच्चा बुतरा से बचते हैं,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गांव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर है। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
4: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहाँ पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
5: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास, सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर दी हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल आए इसके लिए लड़ रहे हैं, यह स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: वहीं बिहार के नवगछिया के मंदरौनी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कोसी नदी का पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते मंदरौनी के कई गांव डूब चुके हैं। घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही के नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में और नवगछिया अनुमंडल के हम इस वक्त मदरौनी गांव में मौजूद हैं और मदरौनी गांव में दरअसल इतना पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम यहां पहुंचे हैं, पानी काफ़ी गहरा है। हम एक नाव के ज़रिए अभी फ़िलहाल इस इलाके में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इस इलाके में जो तमाम घर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। कई जगहों पर 2 फुट 3 फुट 4 फुट जो है वो पानी लगा हुआ है और ख़ासकर ग्राउंड फ्लोर जो है निचला तल्ला तो पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न हो चुका है, जिससे लोगों को मुश्किल हो रही है, छतों पर रहना पड़ रहा है। और चारों तरफ आप देखिए, इस तरफ भी आप देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलाका पानी से लबालब है कि गंगा पहले से ही पैक है, कोसी को निकलने का जगह नहीं मिल रहा है और कोसी का पानी आप देखिए किस तरीके से और ज़्यादा फैलता जा रहा है। यानी गंगा उफनाई हुई है, दूसरी तरफ कोसी के पानी को निकलने की जगह नहीं मिल रही है और आप देखिए सब कुछ यहाँ नवगछिया में खासकर मदरौनी गांव में देखिए हम जो दिखा रहे हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में, सब कुछ डूबा डूबा सा है, जिससे लाखों की आबादी, तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा आबादी जो है इस बार के बाढ़ में बिहार में बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं। रोहित सिंह, नवगछिया, भागलपुर, आज तक।
6: वहीं बिहार की उफनाती नदियों ने लोगों को भारी मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी के जलस्तर में जलस्तर बढ़ जाने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इसने अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन के निचले तल की शाखाओं में भी पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने को मजबूर है। देखिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह की ये रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नजर आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
6: तो बिहार में जहां एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक बार फिर पप्पू यादव पटना के दियारा इलाके पहुंचे। इस दौरान पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, लोगों को 500-500 रुपए के नोट बांटे। पप्पू यादव ने बिहार सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि इनके द्वारा बांटे गए करोड़ों रुपए जा चुके हैं और सरकार इसकी जांच करवा सकती है।
7: पीएम मौजूद हैं पटना के दीघा इलाके के जनार्दन घाट पर। दियारा से जो लोग प्रभावित हैं वो अभी यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो लोग, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे जो है घाट के किनारे पहुंचे हैं जनार्दन घाट पे। और यहाँ पे इन लोगों का जो है रहने की व्यवस्था की गई है। और ये देखिए पप्पू यादव अब यहाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ देखिए एक बार फिर से पप्पू यादव आज पैसे बांट रहे हैं यहाँ पे। और जो महिलाएं हैं जो साफ तौर पे कह रही हैं कि यहाँ दियारा से तो आ गए हैं लेकिन यहाँ भी उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी है?
8: तब का करी परेशानी, यही में रह थी खटाल में, स्कूल में रह
7: खटाल में रह रहे हैं आप लोग,
8: यही में रह गए।
6: वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
12: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौट आओ।
1: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
3: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
4: अब्बा साईं,
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
1: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
3: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
4: अब्बा साई,
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जंजीर से भरे वडोदरा के हॉल में धुरंधर सॉन्ग के साथ पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। कहा फ्रेड कॉरिडोर से नाराज फूफा को भी काम मिला। वडोदरा के जेंजी मंच से बिना नाम लिए पीएम मोदी का राहुल गांधी पर सीधा हमला। का झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर मिलेंगे। भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। जयपुर में आमेर के किले में एक गाइड की चाकू मारकर हत्या। उग्र लोगों का प्रदर्शन। पीड़ित को मुआवजा और आरोपित के घर बुलडोजर एक्शन की मांग। आमेर का किला फिलहाल बंद। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर गर्म हुई राजनीति। बीजेपी का सीएम मान पर सीधा अटैक। कहा कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। सत्य निकेतन के घायलों से मिलकर सीएम रेखा गुप्ता ने दिया 5-5 लाख का चेक। कहा पीड़ितों की करेंगे पूरी मदद। पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बेटा पुलिस कस्टडी में।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। और जैसा हमेशा होता है, दो बजे के न्यूज रूम लाइव में पहले हम बताते हैं कि कौन सी खबर हम लेने वाले। तो सबसे पहले आपको यह बता देते हैं, दो बजे में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में एक मामला सामने आता है, गुलजार सिंह की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एक सवाल पूछा था, एक मुद्दा उठाया था ड्रग्स से जुड़ा हुआ, और उसके बाद अब इस मामले में क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको दिल्ली के बारे में भी बताएंगे, जहां पर एक म्यूजिक टीचर की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद माहौल बहुत ज्यादा गर्म दिखाई देता है। इस खबर के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे और डिटेल में इसमें आपको बताएंगे कि दिल्ली में आखिर मर्डर हुआ, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, तो आगे क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो खबर होगी पंजाब के संगरूर से, जहां पर गुलजार सिंह की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलजार सिंह वही है जिनकी तरफ से एक मुद्दा उठाया गया था और उसके बाद अब इस मुद्दे की गूंज दूर तलक सुनाई दे रही है। बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज की। तो दूसरी ओर अब से कुछ देर पहले पंजाब में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की CBI जांच की मांग की। ये बता दें कि सुसाइड करने वाले गुलजार सिंह ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने ड्रग्स की खुलेआम बिक्री का मुद्दा उठाया था। अब यह आरोप है कि उन पर माफी के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से गुलजार सिंह ने आत्महत्या कर ली। तो पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। NHRC ने भी इस पूरे मामले में अब संज्ञान ले लिया है और गुलजार सिंह पर दबाव बनाया जा रहा था माफी मांगने का, ऐसा बताया जा रहा है।
1: सरपंच है वहां पे, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका नाम लिया, ये चारों के नाम लिए। हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी FIR होगी, हमें इनकी FIR पे कोई विश्वास नहीं है। हम कहते हैं CBI की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
0: तो ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा। बीजेपी की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है गुलजार सिंह का, जिसमें वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं।
2: चीमा भी जिम्मेवार है जी, गल का मेरी बहुत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत का जिम्मेवार है।
3: की सवाल किया जी ने?
2: मैं चिट्टे बारे सवाल किया जी।
3: चिट्टे तो तुम क्यों किया? थोड़े घरे कोई चिट्टा पींदा?
2: हाँ जी, मेरा मुंडा पींदा है।
3: अच्छा, तुम पीड़ित होते तो?
2: हाँ जी।
3: थोड़े घर की किन्नी मतलब बर्बादी की?
2: मेरे सारी सारा कुछ ही बेचता जी।
3: अच्छा जी, ठीक है।
2: मैं इन्ना बेरोजगार करता ना जी, मंगण तो ही मजबूर हो गया, और सरपंच ही क्यों मजबूर है?
3: सरकार तो कहने चिट्टा बंद करता जी, इसने
2: चिट्टा कोई बंद नहीं हुआ।
0: तो देखिए, बहुत से पहले का गुलजार सिंह का वीडियो है, बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और बीजेपी के नेता हैं फतेह सिंह। अब उनसे बात की हमारी सहयोगी कमलजीत संधू ने और फतेह सिंह इस वक्त मांग कर रहे हैं CBI जांच की, इस मामले की जांच होनी चाहिए, सुनिए।
4: संगरूर सुसाइड मामले में मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता फतेह सिंह बाजवा हैं, सीधा मिले हैं बीजेपी की डेलीगेशन गवर्नर के साथ। सर, आप ही से बात करते हैं,

0: आप लोग कह रहे हैं कि एफआईआर से संतुष्ट नहीं है, हरपाल चीमा का नाम उसमें नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्या आपने मेमोरेंडम दिया है गवर्नर को, क्या आपको आश्वासन मिला है इस पूरे मामले में?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है भी हर रोज ये ड्रग के साथ, हेरोइन के साथ पंजाब में डेथ हो रही है और पुलिस जो है सरकार के साथ मिली हुई है। अगर ईडी ये बोलती है भी फलाने इनके ओएसडी के ऊपर एफआईआर करो, नहीं करते, आप क्या समझते हैं अभी कोई भी पर्चा अगर ये लोग बोलेंगे तो पुलिस करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और जहां पर मंत्री का नाम आता है वहां तो बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। देखिए, ये नादरशाही सरकार है, कोई भी चीज अगर आप मुख्यमंत्री सुबह से ही नशे में रहते हैं और पंजाब में क्या हालात है, बोलते हैं भी हम नशे के विरुद्ध हम पंजाब को निकालना चाह रहे हैं।
2: तो देखिए, सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और अकाली दल की तरफ से बात की जाए तो विक्रम सिंह मजीठिया वो किस तरह से सवाल उठा रहे हैं और क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर जो बहुत चर्चित है, सुनिए।
3: उसने आखिर में वो जहरीली दवाई पी ली, सल्फाज पी लिया और उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में बोला है कि मेरी मौत का जुम्मेवार हरपाल चीमा है और पंचायत है। अब इसकी मौत का जुम्मेवार हरपाल चीमा है, हर ड्रग की मौत के जुम्मेवार भगवंत मान है और इस केस में स्पेसिफिकली क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन है गुलजार की, इस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए, इमीडिएट डिसमिसल होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। मगर इट इज ऑल अ कवर अप सिचुएशन टू सेव हरपाल चीमा, और हरपाल चीमा नहीं बच पाएगा इस केस में और हम सब उस परिवार के साथ हैं एंड वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन।
2: तो देखिए, आपसे कहा था ना कि चौतरफा घेराव इस वक्त भगवंत मान सरकार का हो रहा है, नेता विपक्ष है प्रताप सिंह बाजवा, वो भी भगवंत मान पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
4: आप बहुत हद तक अगर शांत करवाया तो पंजाब पुलिस की वहां काफी हद तक कामयाबी भी रही, मगर आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि केजरीवाल ने, सिसोदिया ने और भगवंत मान ने पंजाब की प्राइवेट जो पुलिस है आज इसको एक प्राइवेट मिलिशिया बना दिया। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सरकारी मुलाजमों को हो, वो खेत मजदूरों के हों, मनरेगा वर्कर्स के हों, आशा वर्कर्स के हों, किसानों के हों, स्टूडेंट्स के हों, वहां ब्रूटल जो पुलिस का आपने देखा है, ब्रूट पुलिस फोर्स इस्तेमाल की जा रही है।
2: कमलजीत संधू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस मामले पर बारीकी से नजर भी बनाए हुए हैं। कमलजीत, अब इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, कैसे भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं?
0: देखिए, आपको बता दें पिछले 24 घंटे में संकट के बादल हरपाल चीमा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब पे, उन पे मंडरा रहे हैं। आपको बता दें पंजाब पुलिस ने एफआईआर जरूर की है 5 लोगों पर, लेकिन उसमें हरपाल चीमा का नाम नहीं है। एनएचआरसी ने नोटिस ले लिया है, उसमें हरपाल चीमा का नाम लिखा गया है। विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने अपना अटैक तेज कर दिया है। बीजेपी की डेलीगेशन कुछ देर पहले यहां पे गवर्नर हाउस में जाके मिलकर आई है, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है। यहां तक केवल ढिलन है जो वो बोल रहे हैं कि एफआईआर तो होना ही चाहिए लेकिन गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक वीडियो के सामने आने से और उसके साथ ही साथ आपका अगर पिछले 24 घंटे में जिस तरह से गुलजार सिंह है जिसका खुद का बेटा एक नशेड़ी था, वहां पे उसने कहा कि भाई मैंने सिर्फ अपनी बात रखी थी और कहा कि चिट्टा बिक रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम बात करते हैं प्रदेश में युद्ध नशे विरुद्ध जो कैंपेन पंजाब की भगवंत मान सरकार चला रही है, वहां पे अब खुद के ही इसी घेरे में आ चुकी है भगवंत मान की सरकार, क्योंकि सवालिया निशान उठाया जा रहा है। एक तरफ से पंजाब सरकार का कहना है कि निशाना बनाया जा रहा है उन्हें और कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन एक जो वीडियो है, जब हम लोगों ने पुलिस से पूछा उन्होंने कहा कि जो बेटे की कंप्लेंट है उसे हमने आधार माना है, वीडियो को आधार नहीं माना गया है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो विपक्ष है अब कोई आसानी से हटने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि कल 600 जगहों पर वो बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और बड़े पैमाने पे हमने देखा है कि विपक्ष हमला कर रही है आम आदमी पार्टी
2: हो चुका है। विपक्ष यानी यहाँ पर लगातार घिराव कर रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, ये तो बात हो गई पंजाब की, लेकिन अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान से एक ऐसा मामला सामने आया है, जयपुर में आमिर के लिए पर्यटक बहुत पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर एक टूरिस्ट की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अब लोगों में बहुत आक्रोश है। चाकूबाजी में घायल गाइड की मौत हो गई है। अब इस बात से लोग बहुत नाराज है और आज बाजार बंद भी है। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया मावथा के पास, जीप को आमिर किले की ओर ले जाने को लेकर विवाद में टूरिस्ट गाइड पर हमला हुआ था और अब उसकी मौत की खबर है। दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जयपुर के आमिर महल के पास मावथा क्षेत्र में सोमवार को चाकूबाजी ने टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी उसमें घायल हुए थे, लेकिन आज उनकी मौत की खबर है। अब SMS अस्पताल में मनीष की मौत की सूचना पहुंचते ही, आमिर पहुंचते ही पूरे कस्बे में आक्रोश इस वक्त फैल गया है। रिदम जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रिदम, इस वक्त क्या हालात है वहां, क्या माहौल शांत हुआ है, पुलिस का एक्शन कहां तक पहुंचा?
5: बिल्कुल हिमांशु, ये नहीं कह सकते हैं कि माहौल शांत हुआ है, क्योंकि अभी भी आक्रोश जो है वो यहाँ आमेर क्षेत्र में मावठा झील के पास में देखा जा रहा है, जहां पर मनीष सोनी की मौत को लेकर सभी के चेहरों पे आक्रोश है। उनका परिवार, आमेर क्षेत्र के लोग और साथ ही में टूरिस्ट गाइड कमेटी के लोग यहां पे मौजूद हैं। कुछ डिमांड्स हैं जो लोगों ने यहां पर रखी है, उनके परिवार ने रखी है, जिसमें आता है कि करीब 1 करोड़ का मुआवजा जो है वो इनके परिवार को दिया जाए, इनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ में बुलडोजर एक्शन जो है वो जो अक्यूज है उसके घर पर वो एक्शन लिया जाए, उसका घर जो है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। ये कुछ मांग है जो उनका परिवार रख रहा है। सभी लोग यहाँ पे इस समय पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार न्याय की मांग की जा रही है। जगह जगह पे इस वक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, कई सारे डायवर्जन जो है वो किए गए हैं। जल महल से आगे से ही आमेर आने वाला जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ में आमेर फोर्ट के लिए आज के दिन टूरिज्म स्थगित किया गया है, हाथी की सवारी बंद कर दी गई है, बोटिंग बंद कर दी गई है। तो ये सब एक्शंस जो हैं जो अभी तक लिए गए हैं, जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये जो डिमांड्स हैं उसके लिए, क्योंकि आचार संहिता अभी राजस्थान में लगी हुई है, तो कोई भी नेता या मंत्री अभी समय पे यहाँ पे नहीं आ रहा है। हालांकि बालमुकुंद आचार्य कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे।
2: देखिए, हम देख रहे हैं आपके पीछे लोगों की भारी भीड़ है जो बहुत ज्यादा आक्रोशित है, जिनके मन में नाराजगी है। जरा वो तस्वीरें आप वहां पर दिखाइए कि लोगों का रिएक्शन किस तरह का है और कितने बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है, तस्वीरों के जरिए समझाइए।
5: बिल्कुल, मैं दिखाती हूँ तस्वीरें। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों यहाँ पे बैठी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी इसमें हैं, टूरिस्ट कमेटी जो है, टूरिस्ट गाइड कमेटी वो भी यहाँ पे है, और साथ ही में इस क्षेत्र के जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। सबके चेहरों पे वो गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है, डिमांड्स इनकी बहुत ही ज्यादा क्लियर है। मैं कोशिश करती हूँ इनके परिवार वालों से भी बात करने की कि यहाँ पर इनकी क्या डिमांड्स है वो हमें बता पाए। और अभी भी मनीष के लिए जो न्याय है उसकी मांग की जा रही है, क्या कुछ मांगे हैं?
6: जी, हमारी मांगे ये हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए नगद दिया जाए, जो महिलाएं उनकी पत्नी हैं उन्हें गवर्नमेंट सर्विस दी जाए, एक डेयरी बूथ दिलाया जाए, क्योंकि इनकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं जिनका पालनहार आज कोई भी नहीं रह गया। मनीष गढ़ में सिंगल अर्निंग पर्सन थे, और उसका एनकाउंटर किया जाए या फिर फास्ट कोर्ट चला के उसे फांसी की सजा दी जाए जल्द से जल्द। और यूपी सरकार जिस तरह से बुलडोजर चलाया करती उसी तरीके से वहां जाके उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। बस हमारी यही मांग है, जब तक ये पूरी नहीं होती यहां से कोई भी नहीं ले।
5: फास्ट ट्रैक कोर्ट पे यहाँ पे केस जाने की मांग की जा रही है। और हिमांशु, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले भी कुछ केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, कुछ वीडियोस जो हैं वो भी वायरल हो रहे हैं कि पहले भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी वो वीडियोस जो हैं गिरफ्तारी के बना के अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो नजर आ रही है, पुलिस की गिरफ्त में अभी वो है।
2: पर देखिए पुलिस की एक्शन लेती है, देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी। और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में 54 साल के मणिपुर के म्यूजिक टीचर की हत्या हो जाती है, और उसके बाद अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आता है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। म्यूजिक टीचर जिनका नाम था चौंगथम विक्रम सिंह, उनकी हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बेहद फूल पकड़ चुका था, रात में जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद इनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है।
7: इतना दुखद है कि जान चले गए। पुलिस से बात करते समय पूरा जांच का पता तो लग गया है। अब पुलिस ने मुझे बताया कि 8 दिन के लगभग अंदर में, मैंने विद इन 2 सप्ताह में बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जशीट भी फाइल कर देंगे कोर्ट में, कड़ी सजा होना चाहिए। 8ों का 8 अलग अलग समुदाय अलग अलग राज्यों से है, यहाँ काम करते हैं, बाहर से आए हैं सब लोग, और अभी तो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन चार्जशीट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यही बात हुआ है। जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय हैं, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने का बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है, इसलिए मैंने कहा कि चार्जशीट कब तक होगा, तो दिल्ली पुलिस ने मुझे बताया कि लगभग 8-9 दिन के अंदर में चार्जशीट दायर हो जाएगा कोर्ट में, ताकि उनका सजा जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत कठोर सजा मिलना बहुत जरूरी है।
2: अब आप सोचिए, क्या कभी किसी की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उसके घर के बाहर शोर हो रहा था और वो शोर ना करने के लिए कहता है, और इसी बात को लेकर डिलीवरी बॉय और जो ढाबा के कर्मचारी हैं वो पीट पीट कर इनकी हत्या कर देते हैं। महज इस बात को लेकर कि रात के वक्त जो सोने का वक्त होता है वहां पर शोर शराबा होता है, इनको आपत्ति होती है और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, और इसी बात पर बात बढ़ जाती है और फिर मारपीट के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
8: वो रात तकरीबन 11 से 12:30 बजे के बीच विक्रम जी बाहर निकलते हैं, कुछ कूड़ा था और रात में वो हल्का फुल्का टहल भी लेते थे डिनर के बाद, वो कूड़ा फेंके यहीं पर करीब करीब 7-8 लोग के आसपास मौजूद थे, जिसमें आसपास के ढाबे में काम करने वाले लोग थे, कोई डिलीवरी बॉय था, कोई पैकिंग का काम करता था, तो वो लोग शोर मचा रहे थे। अब ऊपर 3rd फ्लोर पर उनका घर है, तो वो नीचे आए, उनको शायद ऊपर आवाज आ रही थी, उन्होंने यहाँ पे मना किया, और जब मना किया तो इस बीच उनके बीच आपस में कुछ कहा सुनी हुई, और जब कहा सुनी हुई तो उन लोगों ने मारपीट हुई, और उसके बाद विक्रम जी अंदर की तरफ भागते। अब आप देखिए 3rd फ्लोर पे नेहा जी, यहाँ से वो ऊपर की तरफ विक्रम जी भागते हैं और पीछे से सारे लड़के ऊपर की तरफ भागते हैं, और ऊपर की तरफ वो अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं और मदद की मांग करते हैं, तो अंदर जो उनकी वाइफ थी उनके पास आवाज जाती है, वो दरवाजा खोलती हैं और उसके बाद वो लड़के दिखते हैं, भागते हुए भी दिखते हैं, मारपीट भी पूरी कैप्चर हुई है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उनकी मौत हो गई। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मारपीट की गई, वजह भी लगभग साफ है कि सिर्फ शोर मचाने से मना किया, कुछ ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ी बात हो। देखिए 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 जुविनाइल था जिसे अप्रीहेंड किया गया है, इसलिए कुल मिलाकर हम कहें तो 8 आरोपी पुलिस ने अभी तक पकड़े हैं, जिनमें 1 जुविनाइल भी शामिल है। 8 की ही बात जो हमारी बात हुई तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, उनका भी कहना है कि 8 आरोपी थे, क्योंकि 8ों जो वीडियोस हैं, जो CCTV हैं, उसमें से वो सीढ़ी से भागते हुए साफ नजर आए, तो उनके चेहरे एकदम क्लियर थे। सुबह जब डेथ डिक्लेयर किया गया हॉस्पिटल से, तो उसके बाद लोकल पुलिस ने इस मामले में कत्ल की धारा में FIR दर्ज की, और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी जो आरोपी लोग जिनके चेहरे कैद हुए थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया।
2: और देखिए मामला गंभीर है, पुलिस के अधिकारी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली साउथ ईस्ट DCP विनीत कुमार इस मामले में जांच की बात कर रहे हैं, उनको सुनते हैं।
8: इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए DCP साउथ ईस्ट विनीत कुमार जी हैं। क्या हुआ था, मौत जो हुई वो वजह क्या थी, झगड़े की वजह क्या?
9: देखिए अभी तक जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें यही सामने आया है कि रात को 11:30 से 12 बजे के करीब कुछ लोग जो पास के एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनसे शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
8: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
9: देखिए ये अपने घर में थे तब बालकनी में, ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ, और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
8: कोई पुरानी कभी कोई रंजिश तो नहीं थी कि पुराना भी कभी ऐसा हुआ हो कि वहां पे शोर शराबा होता रहा हो, इन्होंने रोका हो?
9: देखिए हम लोग इन सब पहलुओं पे अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी तक ये सब बातें कुछ सामने नहीं आई है, बट स्टिल वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स।
10: जो आरोपी हैं उनके प्रोफाइल क्या है, क्या वो आसी पास के हैं?
9: जी आरोपी वहां पर जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट्स है उनमें या तो काम करते हैं या डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, एज अ वर्कर काम करते हैं।
10: किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड
9: नहीं? अभी तक किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं।
10: शराब पीने की बात
9: देखिए सबका मेडिकल कराया गया है और उस मेडिकल रिपोर्ट पे हम ले एंगल भी देख रहे हैं।
10: अभी तक नहीं आया?
9: अभी तक नहीं आया पर हम देख रहे हैं।
2: महिलाओं ने सवाल उठाए हैं, तो देखिए अब जैसा बता रहे थे हमारे सहयोगी, ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ गया है ये मामला और नॉर्थ ईस्ट की बहुत सी जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं कि दिल्ली में आखिर वो कितनी सुरक्षित है।
11: परसों रात को ऐसा कुछ एक हादसा हुआ कि यहाँ पे बहुत सिलम सिलाई चल रहे थे वहाँ पे, मतलब जैसे कुछ लोग मिलके जैसे कि उन लोग ने बहुत हल्ला वल्ला करना वो सब भी सुनाई दे रहा था पहले, तो उसके बाद ना अचानक से उसकी वाइफ और उसके बच्चे को दरवाजा खोलने के लिए उसकी जो विक्रम जी है उसके आवाज सुनाई दिया, दरवाजा खोल दो इस तरीके का चिल्लाना शुरू किया। तब उसकी वाइफ ने उसकी लड़की को पूछा कि पापा कहाँ है, फिर तब पता चला कि वो नीचे में कूड़ा फेंकने के लिए गया होगा या ऐसे ही कुछ वाकई लिए निकल गया होगा। तो वैसे करके जब तक उन लोग ने दरवाजा उसका आवाज सुनने के बाद दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि 8 लोग उसके पीछे पीछे भाग के दौड़ दौड़ मतलब मिल के उसको मार रहे थे।
12: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए, और उसके बाद क्या हुए थे क्योंकि वो किसी से वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति, और मैं भी यहाँ पे 8 साल से ज़्यादा हो गया उसकी वजह से। मैंने उसी रात को हमारे मैम है तो उसी रात को शोर आया एकदम डराने वाला है ना, एकदम शोर बोर मच रहे थे बहुत सारा ऐसे ऐसे आए थे। उसके बाद है ना मुझे लगा था क्या हुआ, कभी कभार होते हैं ना आपस में कुछ हो रहा होगा इधर उधर बहुत सारा फ्लैट है या पार्टी मतलब कुछ कर अजीब सा तो है बहुत, मतलब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश किया था और मेरी दरवाजा में चेन भी लगी थी तो मेरे को उसी टाइम पे सेफ फील नहीं हुआ।
13: मैं तो सुबह सुबह एक फोन आया था कि विक्रम जी ऐसा घटना हुआ है महारानी बाग में, तो मैंने सोचा था कि ऐसे लड़ाई में स्पेशली नॉर्थ इंडियन लोग जो है नॉर्थ ईस्ट लोग को नीचा दिखाते हैं, मतलब हम लोग ह्यूमैनिटी है, हम लोग भी इंडियन है नहीं सोचते हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है, राहुल गांधी की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर बयान जारी किया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप जरा सोचिए कि दिल्ली में जब इस तरह से मौत हो गई है की और उसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, तो राहुल गांधी यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का परिवार अब यही सवाल पूछ रहा है दिल्ली में रहने वाला, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? राहुल गांधी ने पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ बढ़ रही इस अराजकता को रोकने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले की जल्द जांच की मांग की है। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना,
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: देखे जन्म पहला पहला कदम।
10: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: In association with
2: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
1: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
2: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
1: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
3: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

0: जनजीत से भरे वडोदरा में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार से चलता है। मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में हत्या से उठे आक्रोश पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन, सभी आरोपित गिरफ्तार, ये राजनीति का नहीं कार्रवाई का वक्त। जयपुर में आमेर के किले में एक गाइड की चाकू मारकर हत्या, उग्र लोगों का प्रदर्शन, पीड़ितों को मुआवजा और आरोपित के घर बुलडोजर एक्शन की मांग, आमेर का किला फिलहाल बंद। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर गर्म हुई राजनीति, बीजेपी का सीएम मान पर सीधा हमला, का कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। सत्य निकेतन के घायलों से मिलकर सीएम रेखा गुप्ता ने दिया 5-5 लाख का चेक, कहा पीड़ितों की करेंगी पूरी मदद। पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बेटा पुलिस कस्टडी में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: देखिए गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन हुआ है, भगवंत मान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है और उनके इस्तीफे की मांग की गई है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर इस वक्त किया हुआ है और कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं जो जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये देखिए बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की जाती है, हालांकि बैरिकेडिंग वहां पर की हुई है ताकि आगे ना निकल सकें, लेकिन अभी आप तस्वीरें देखिए, जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ से है जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। अभी देखिए बैरिकेडिंग को पार करने की कितनी कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी तादाद में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर दिया गया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है ताकि भीड़ को काबू में किया जा सके। और जो कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है बैरिकेडिंग पार करने की, उसमें उनको सफल नहीं होने दिया जाए। भगवंत मान सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त जारी है और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है, हाथ में कांग्रेस के जो झंडे हैं और मांग है कि भगवंत मान इस्तीफा दें, उनकी मांग है कि भगवंत मान इस्तीफा दें। देखिए रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए ये प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, भगवंत मान सरकार का घेराव किया जा रहा है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं, हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसके बावजूद काबू नहीं किया जा रहा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश। और जो लोगों की भीड़ वहां पर एकजुट हुई थी, अब बताया जा रहा है कि उनको बस में भर के ले जाया जा रहा है, जो सांकेतिक हिरासत होती है, एक तरह से हिरासत में लिया जाता है। जो लोग वहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस की तरफ से उठाकर अब बस में ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भगवंत मान सरकार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। असीम बसी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, किस तरह की हालात है इस वक्त, क्या हो रहा है वहाँ?
2: जी अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अभी तो प्रोटेस्ट जो है फिलहाल खत्म हो गया है, यहाँ से सब जो कांग्रेस के लोग आए हुए थे भारी गिनती में यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन एक गुस्सा था आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। कांग्रेस के जो प्रधान है राजा बड़िंग, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, खास करके जो सुसाइड केस हुआ है गुलजार सिंह वाला, वो इशू को लेकर सरकार को घेरा है विभिन्न अपोजिशन पार्टीज ने। तो आज पंजाब कांग्रेस ने बड़ा प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन क्योंकि ये मार्च करना चाहते थे आगे को, तो पुलिस ने बहुत बैरिकेडिंग लगाई थी, उसको उनको स्कैटर करने के लिए वाटर कैनन यूज किया गया और पुश किया गया, कुछ लोगों को डिटेन किया गया। लेकिन फिलहाल जो है सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, ट्रैफिक भी चल पड़ा है और जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ,
0: और क्या मांग थी इनकी, किन मुद्दों को लेकर मान सरकार का घेराव कर रहे थे?
2: ये फेलियर फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट जो अलग अलग इश्यूज पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, ड्रग्स को लेके, अलग अलग इश्यूज को लेकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि पंजाब में गवर्नेंस है वो ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे थे कि मुख्यमंत्री इन सभी इश्यूज पर जवाब दे बाहर आके, प्लैकर्ड हाथ में लेके जवाब मांग रहे थे मुख्यमंत्री से कि सारे इशू, चाहे वो गुलजार सिंह वाला इशू हो, लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू हो, ड्रग्स वाला इशू हो,
0: तो उसी मुद्दे का घेराव कर रहे थे और ये तस्वीरें आज दिखाई दी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें आपने देखी चंडीगढ़ से। अब हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब गुजरात गए तो क्या खास हुआ।

0: देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो गुजरात में जो विधानसभा चुनाव है वो 2027 के अंत में होना है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई और उन तैयारियों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की तरफ से क्या खास तैयारियां की गई हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत धमाकेदार एंट्री होती है, मेगा परियोजनाओं की सौगात गुजरात को दी जाती है और ये बताया गया मंच से सम्मान हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ज्यादातर जो आज वडोदरा स्पेशल की बात की जा रही है तो ज्यादातर यहाँ पर बताया जा रहा है कि युवा लोग थे, युवा लोग, और उनसे कनेक्ट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश भी की गई। इस कार्यक्रम की विशेषता ही यह है कि इस कार्यक्रम में नौजवानों की बड़ी भागीदारी रही। लेकिन सबसे खास बात जो आज देखने को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज धमाकेदार एंट्री हुई और वो धमाकेदार एंट्री थी जो शायद आपने भी पहले कभी ऐसी एंट्री नहीं देखी होगी। और ये बताया जा रहा है धमाकेदार एंट्री जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनसे कनेक्ट करने की एक कोशिश थी। आप भी देखिए।
1: वडोदरा के शो में पीएम मोदी की कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री हुई। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो नेपथ्य में धुरंधर का गाना बज रहा था। दर्शकों में नौजवान और नेपथ्य में धमाकेदार गानों की धुन। मोदी के एंट्री के साथ गानों पर झूम रहे थे वो नौजवान। पीएम मोदी जिनसे आज संवाद करने यहां आए थे, इस शो की प्लानिंग बड़े ही करीने से की गई थी। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ा। और जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो माहौल कुछ अलग ही किस्म का था।
2: 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
1: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रमाल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा था नौजवानों से पीएम मोदी का संवाद।
2: मैंने लाल किले से भी युवा शक्ति के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहां लाखों नौजवान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल हमारे मिडिल क्लास परिवारों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों की कोचिंग पर खर्च हो जाता है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मिडिल क्लास के इससे बच्चे की परिवारों के पैसों की बचत हो, और इसलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत के नौजवानों को एआई में पारंगत होना उतना ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की पीढ़ी एआई के लिए तैयार हो।
1: पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में अगले साल यानी 2027 में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन पीएम मोदी अभी से एक्टिव हैं और शायद यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। बृजेश दोषी, वडोदरा, आज तक।
0: और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए रेल परियोजनाओं की सौगात का ऐलान कर रहे थे, लेकिन इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसमें भी कुछ लोगों को खामियां कहीं ना कहीं वो निकाल ही लेंगे।
2: तो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया, यानी अब बड़ी मात्रा में सामान तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएगा। साथियों, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहां जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा रेल से जुड़ रहे हैं। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है। आज भी इस कार्यक्रम में कई नई ट्रेन शुरू हुई है। नई ट्रेन से वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, रोड, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गरीबों का घर, जब देश में करोड़ों लोगों के लिए चीजें बनती हैं तो इससे लोगों का जीवन आसान होता है और साथ ही छोटे से बड़े कामगार को रोजगार के लाखों लाख अवसर मिलते हैं। आप रेलवे का ही देखिए, इस वर्ष का रेल बजट 3.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये 12 वर्ष पहले की तुलना में कई गुना अधिक है।
0: देखिए, राहुल गांधी की तरफ से भी एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम है छात्रों की गूंज, जो अलग अलग शहरों में उनकी तरफ से किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर उनका नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कुछ लोग झूठ फरमाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये देश के नौजवान सच की हुंकार से चलते हैं।
2: झूठ की गूंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है।

0: साथ साथ ही ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
1: अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो बहुत सारे छात्र मौजूद थे, उन छात्रों के साथ चौपाल की हमारे सहयोगी ब्रजेश जोशी ने, अब वो आपको सुनवा देते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में जो है लोगों के साथ बात की, जेन जी का मामला था, युवाओं की बात थी, उन्होंने आज अपनी सरकार के कामकाज की बात की, साथ ही युवाओं को कहा कि उनकी सरकार उनके भविष्य के लिए काम करे। हमारे साथ वडोदरा के युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि वो कितना समझे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कितना असर उनको देखने को मिलता है, किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री के भाषण को, आज संबोधन किया युवाओं की, आज उन्होंने बात की है।
3: एक बार आप फिर से
2: क्या मानते हैं आज का संबोधन पीएम का कैसा रहा?
4: सर संबोधन बहुत अच्छा रहा, पीएम सर ने देश में एआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और ये बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि जो एआई है वो इंजीनियरिंग फील्ड या कंप्यूटराइज फील्ड में ज़्यादा पता होते हैं, बट अलग अलग डिपार्टमेंट वाले जैसे आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या फार्मा डिपार्टमेंट वाले, तो सबको एआई का नॉलेज होना चाहिए।
3: उन्होंने जो जेन जी लोगों के लिए जो बात कही, जो गाइडेंस दिया, वो बहुत अच्छा था, उससे बहुत इम्पैक्टफुल पड़ेगा।
5: 2047 तक का लिया है, जो रेलवे का है, जो सोलर का उन्होंने बोला, वो बहुत अच्छा था, हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा।
6: जो विकसित भारत के लिए मोदी जी ने बात की, वो बहुत हमें अच्छा लगा कि अगर 2047 तक विकसित भारत बन जाते तो हमें बहुत खुशी होगी एज ए जेन जी भी।
7: मुझे ऑलमोस्ट सारे अच्छे लगे, कुछ एआई को रिलेटेड उन्होंने काफी कुछ अच्छे मार्गदर्शन दिए जो कि काफी जरूरी थे जेन जीज के लिए, एंड जेन जीज जस्ट लव नरेंद्र मोदी।
8: द ऑरा दैट पीएम मोदी हैव, ये परफेक्ट वेलकम था उनके लिए, और आई बिलीव कि जो हमारी कंट्री है वो राइट हैंड में है, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर इज द पिलर ऑफ द कंट्री, और जिस तरह उन्होंने हाईलाइट किया इन्वेस्टमेंट ऑन रेलवेज, 43 मालगाड़ीज डेली चल रही है, विच इज इनक्रेडिबल, सो वी लव यू सर।
9: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उन्होंने ये बताया कि हमारे युवाओं को इतना महत्व दिया है, उन्होंने हमारे लिए प्रोत्साहन दिया है, हमारी युवा शक्ति को कभी भी उन्होंने नीचे गिरने नहीं दिया, आज भी उन्होंने पूरी स्पीच में हम लोग को ऊपर ही बढ़ावा दिया है, हमारी सारी नई टेक्नोलॉजीज, हमारे सारा नॉलेज को अच्छी तरीके से यूज़ करना, एआई को यूज़ करना, सारी चीज़ों को जितने अच्छे से उन्होंने बढ़ावा दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
10: कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई अब फ्यूचर है इंडिया का, सो राइट नाउ ही इज टेकिंग ईच एंड एवरीवन टुगेदर, सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सारे युवक को इन्वॉल्व कर रहे हैं सब भारत के बेहतर भविष्य के लिए, और वेलकम की तो मतलब बहुत अच्छा वेलकम था, ही हैज अ ऑरा एंड आई थिंक ही ट्रूली डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑन एंड ऑन फॉर फर्दर मोर इयर्स, ही इज अ पर्सन हु कैन बी बोर्न इन अ डिकेड ओनली, सो अमेजिंग पर्सन।
2: आपको क्या लगा?
11: आई विल से वन वर्ड फॉर मोदी जी, ही कैरीज लॉट्स ऑफ ऑरा, एंड आज का जो उनका वेलकम था, किसी सेलिब्रिटी या किसी उससे भी सबसे बढ़िया उनका वेलकम था, और कहीं पे भी वो जाते हैं तो ही कैरीज दैट ऑरा एंड कैरिस्मेटिक की, मतलब उनकी वो पावर उनके वॉक एंड सब में दिखती है कि हाँ ही इज द लीडर, ही इज द विजनरी लीडर ऑफ आवर इंडिया।
1: देखिए वो आपको बरेली के मौलाना याद है तौकीर रजा, वही मौलाना जो हमेशा विवादों में रहते हैं और जिनको कोर्ट की तरफ से दोषी पाया गया था बरेली में हिंसा का, अब उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी जमानत की और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, क्योंकि उनका यह कहना है कि अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा के नारा सेम नहीं हो सकते, सर तन से जुदा का जो नारा है वो भारत के संविधान को चुनौती देता है।
12: बरेली में मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में एक साल पहले सड़क पर उपद्रव की कोशिश हुई थी, आई लव मोहम्मद मामले में प्रदर्शन का ऐलान करने वाले मौलाना ने धारा 144 को तोड़ते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज में रैली बुलाई, इसी रैली के दौरान वो तमाम गैर कानूनी हरकतें हुई थी जिसके कारण इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान पिछले एक साल से जेल में हैं। तौकीर रजा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, इसी दौरान हाईकोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा जैसे नारे की तुलना नाराय तकबीर अल्लाहु अकबर जो बोले सोनेहाल सत या काल जय श्री राम या हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती।
13: तौकीर रजा की प्रयागराज हाईकोर्ट के द्वारा जमानत रद्द किया जाना इस बात का प्रमाण है कि अभी भी बहुत सारे लोग हमारे प्रदेश में रहते हैं जो उत्तर प्रदेश की सामाजिक फिजा को बदलने के लिए तन से सर जुदा करने जैसे नारे देकर दहशत गर्दी को फैलाने का काम करते हैं। जमानत रद्द होना कम से कम आज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए संदेश है जो लोग नफरत की सियासत करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं।
12: मौलाना तौकीर रजा पर आरोप है कि पिछले साल सितंबर में हुई घटना के दौरान आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान हिंसा कराई गई। बीएनएसएस 163 की रोक के बावजूद रैली में सिर तन से जुदा वाले नारे लगे। पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम तक से हमला हुआ। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि तौकीर रजा के वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखने की कोशिश की। तमाम आरोपों में तौकीर रजा सीधे तौर पर कहीं शामिल नहीं है, लेकिन उस दिन लगाए गए नारों को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त धार्मिक नारे ईश्वर अथवा गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं, जबकि सर तन से जुदा जैसा नारा कानून के शासन, भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाला है। ऐसा नारा लोगों को हिंसक विद्रोह और हथियार उठाने के लिए उकसाता है, जो कानून के तहत दंडनीय अपराध है।
14: राजा ने अपनी ताकत का, अपने जो उनका संगठन है उसको किनारे करते हुए, नारा तकबीर किनारा न लगाते हुए उन्होंने जो सर तन से जुदा का जो नारा दिया है वह जो है बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से तमाम दंगे हुए बरेली में और मौलाना तौकीर रजा जैसे व्यक्तियों को जेल से बाहर निकालने का बिल्कुल भी जो है प्रयास नहीं होना चाहिए।
12: दरअसल तौकीर रजा के वकील अदालत को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सिर तन से जुदा वाला नारा केवल पैगंबर के प्रति सम्मान और अपनी धार्मिक नाराजगी व्यक्त करने का एक तरीका था, इसलिए इसे अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देखा जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। आज तक ब्यूरो।
1: यार कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पेपर लीक को लेकर छात्र छात्राओं की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर छात्र छात्राओं की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि आए दिन इस तरह के पेपर लीक होते रहते हैं जिससे छात्राओं के भविष्य के सामने एक संकट मंडरा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए और जितनी भी बद इंतजामी इस परीक्षा मामले में है उसको दूर करना चाहिए।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जेंजी से भरे वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को बताया विकसित भारत की नींव। कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच के हुंकार से चलता है। मणिपुर के म्यूजिक टीचर के दिल्ली में हत्या से उठे आक्रोश पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन, सभी आरोपी गिरफ्तार, ये राजनीति का नहीं कार्रवाई का वक्त। जयपुर में आमेर के किले में एक गाइड की चाकू मारकर हत्या, उग्र लोगों का प्रदर्शन, पीड़ित का को मुआवजा और आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की भी मांग। आमेर का किला फिलहाल बंद। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर गर्म हुई राजनीति। बीजेपी का मुख्यमंत्री मान पर सीधा हमला, कहा कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। सत्यनिकेतन के घायलों से मिलकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया 5-5 लाख का चेक, कहा पीड़ितों को करेंगे पूरी मदद। पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, बेटा भी पुलिस कस्टडी में।

6000 से ज्यादा युवा छात्र युवा शामिल हुए। देश के युवाओं और जेंजी को प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम, युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। पीएम मोदी का मेगा इवेंट के लिए पहली बार बुक माई शो से रजिस्ट्रेशन, 1 घंटे में ही सारी सीटें हुई फुल। डिजिटल एम टिकट्स और QR कोड के कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम में एंट्री हुई और पहली बार निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन हुआ और एंट्री व्यवस्था को बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ोदरा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में घायलों से मिलने के लिए एम्स अस्पताल पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जाना घायलों का हालचाल। सीएम रेखा गुप्ता ने घायलों को 5-5 लाख का चेक भी सौंपा, इलाज का पूरा खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी बच्चों के परिवार वालों से मैं मिली हूं, सभी के साथ टच में है। दिल्ली बिल्डिंग हादसे के बाद एक्शन में सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जो बिल्डिंग डेंजरस है उसको गिराया जाएगा कल। सत्यनिकेतन हादसन की FIR में बड़ा खुलासा हुआ, किराए के लालच में 4 मंजिला इमारत बना दी। दिल्ली PG हादसे के बाद से NHRC का UGC और दिल्ली सरकार को नोटिस, DU हॉस्टल पर रिपोर्ट मांगे गए। सत्यनिकेतन PG हादसा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सभी निजी हॉस्टल्स के ऑडिट की भी मांग। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि बेटे महेश को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में। सत्यनिकेतन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 7 लोगों की मौत, 5 घायलों का इलाज जारी, ड्रोन तस्वीरों में तबाही का मंजर दिखा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार ने आत्महत्या कर दी, उसके बाद राजनीति, बीजेपी ने कहा कि विफल मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ें। लखनऊ में यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी ने किया यूपी टेक्स मित्र पोर्टल का शुभारंभ, टेक्सटाइल सेक्टर की मंजूरी की शुरुआत। सीएम योगी ने टेक्सटाइल कॉन्क्लेव को किया संबोधित, कहा कि यूपी विकास की राह पर दौड़ रहा है, दुनिया भर में यूपी के कपड़ों की डिमांड बढ़ी। सीएम योगी बोले कि अब यूपी में कोई भी माफिया खुली जीप में पिस्टल लहराकर घूम नहीं सकता। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम व्यवस्थाओं की सराहना की, सीएम योगी ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या में आज से नए CEO जितेंद्र मिश्र की नई जिम्मेदारी, राम मंदिर के प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभालेंगे। राम मंदिर के CEO जितेंद्र मिश्र बोले कि जल्द ही बताएंगे मंदिर के आगे की कार्य योजना, राम मंदिर कार्यालय में कोषाध्यक्ष महेश भागचंद का के साथ बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवी पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र के सामने अब राम मंदिर की जिम्मेदारी है और श्रद्धालुओं का भरोसा जीतना भी एक बड़ी चुनौती है। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरतन से जुदा जैसे नारों को हिंसा के लिए उकसाने वाला बताया, कहा कि इनकी तुलना धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती। संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, सर्वे के आदेश पर सबकी नजर। संभल मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उत्तराखंड में 2027 चुनावों की तैयारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा, 9 सितंबर से। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी मंथन, नितिन नवीन कमजोर सीटों और संगठन की रणनीति पर बैठक करेंगे। बीजेपी विधायकों के टिकट पर नजर, नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से ग्राउंड फीडबैक लेंगे। कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी, राहुल गांधी ने 30 नेताओं के राष्ट्रीय सचिव पद के लिए इंटरव्यू लिया है। जालंधर में कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ FIR शुद्धिकरण विवाद पर जताया विरोध। मणिपुर के संगीतकार की हत्या पर राहुल गांधी का सवाल, बोले कि क्या दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोग सुरक्षित हैं। दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर के 54 साल के म्यूजिक टीचर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उनका कसूर क्या था, सिर्फ शोर शराबे की शिकायत की थी और उसे कम करने के लिए कहा था। मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में हत्या पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, बोले कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, सभी आरोपी गिरफ्तार। अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि अखिलेश जी अपने खासम खास यूट्यूबर्स के साथ आप PC करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और गलती से कोई ढंग का पत्रकार सवाल पूछ दे तो अनदेखी करते हैं।
सागर जहरीली शराब कांड पर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का

हमला बोले कि हिंदुओं के नाम पर डर फैलाने से काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। 13 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग बांदा के अस्पताल में भर्ती, 30 के खिलाफ मामला दर्ज, 14 हिरासत में ले जाने के बाद अब मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश। पंजाब में कर्मचारी आंदोलन तेज, 8 सितंबर से सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी। 18% लंबी डी और ओपीएस की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम आवास तक निकलेगा मार्च। झारखंड सीजीएल पेपर लीक केस में पटना से गिरफ्तारी, एसआईटी ने कारोबारी राजन कुमार को पकड़ा, आरोपी राजन ने कोलकाता बुलाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र की जानकारी दी। झारखंड में एलजेपी के विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण के बाद रांची पुलिस ने सकुशल किया बरामद। ब्रिक्स समिट से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, समिट में प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई बड़े नेताओं की मेजबानी की जाएगी। 18 सितंबर को दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल, ब्रिक्स समिट को देखते हुए लिया गया फैसला। टीएमसी के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी पर टीएमसी का दावा, 10 घंटे की तलाशी में भी कुछ नहीं मिला। महुआ मोइत्रा का बंगाल पुलिस पर भी हमला, एफआईआर पोर्टल पर अपलोड न करने का आरोप लगाया। तेलंगाना में केटीआर और हरीश राव समेत बीआरएस के नेताओं पर एफआईआर, पुलिस के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। तमिलनाडु विधानसभा में टीबी के विधायक की मांग, हर एमएलए को 500 वर्ग फुट का कमरा मिले और फंड 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाए। तमिलनाडु विधानसभा में डीएम के विधायकों को बाहर किया गया। कर्नाटक में पानी के संकट पर बोले बसवराज बोम्मई, कम बारिश के चलते बिगड़े हालात को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कश्मीर में सिनेमा और संस्कृति का महामंच सजा, घाटी में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। बेंगलुरु में स्विगी, इंस्टामार्ट और लियो मार्ट पर छापेमारी, एक्सपायर्ड फूड मिलने के बाद से कार्रवाई की गई। बेंगलुरु में बड़ा फूड सेफ्टी विभाग का यह एक्शन, डार्क स्टोर से 1,38,00,000 एक्सपायर्ड और मिजरेबल खाद्य पदार्थ बरामद हुए। आगरा में जलभराव से ग्रामीण बेहद परेशान और अनोखा प्रदर्शन, भजन कीर्तन करते हुए ट्रैक्टर से तहसील तक पहुंच गए। बिहार बाढ़ पर मीसा भारती ने ललन सिंह को घेराया, एनडीए सरकार की तैयारियों पर सीधा सवाल उठाए। पटना के दीघा में बाढ़ प्रभावितों से मिले पप्पू यादव, हर परिवार को 500 रुपए की मदद की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर गिरावट के बाद अब स्थिर हुआ, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। बाराबंकी में सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से जीवन प्रभावित हुआ है, प्रशासन ने ग्रामीणों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। फरुखाबाद में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन प्रभावित। आमेर में टूरिस्ट गाइड की चाकू घोंपकर हत्या, जयपुर में फूटा लोगों का गुस्सा, 6 मांगे परिवार की तरफ से मांगे जा रहे। बुलंदशहर के शादी समारोह में दूल्हे ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने केस किया दर्ज। पुंछ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार का भयानक एक्सीडेंट, हादसे में 4 शिक्षक घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई में मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार कार चलाने वाले 6 से 7 चालकों के खिलाफ एफआईआर, पुलिस पहचान करने में जुटी। दावणगेरी में कार की चपेट में एक तेंदुआ आ गया, रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के अधिकारियों पर तेंदुए ने हमला किया। प्रयागराज में यमुना में छलांग लगा रहे बच्चे, हेलीपैड या खतरनाक स्टंट का एक अड्डा बना, वीडियो वायरल। जालौन में बेखौफ बदमाशों ने युवक को घेर कर मारी गोली, फिर चाकू से गोदा, गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। ग्वालियर में उफनती नदी के तेज बहाव में बहा युवक, दोस्तों के द्वारा बचाने की कोशिश हुई लेकिन नाकाम। मेरठ में पेपर लीक और फर्जी तरीके से पास कराने वाले 20,000 का इनाम मोनू और प्रशांत कुमार गिरफ्तार, दिल्ली से पकड़ा गया। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट, 8 से 10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल। इंदौर में बारिश आंधी के बीच बड़ा हादसा, चलती कार पर गिरा पेड़, हादसे में 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। गुजरात के मांडिया में भीषण सड़क हादसा, कार को पीछे से गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, 1 महिला की मौत, 4 घायल। रामगढ़ में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, 7 किलोमीटर लंबा जाम। भोपाल की 80 फीट सड़क पर हालत बदहाल है, 3 फीट गहरे गड्ढे हैं, राहगीर परेशान है। धनबाद में आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में मचा बवाल, जमकर हुई तोड़फोड़, मारपीट, अफरा तफरी, पुलिस ने कार्यक्रम करवाया बंद।
पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का कहर, भर भरा कर गिरा एक मकान, बाल बाल बचा परिवार। उधम सिंह नगर में बारिश के बीच बड़ा हादसा, कार पर गिरा बुलडोर, एक की मौत, तीन घायल। गुजरात के नवसारी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, धुएं के गुबार से मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। बड़ोदरा में आवारा गाय का आतंक, मां बेटे पर किया जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई में 10 लाख से ज्यादा की हाई क्वालिटी नकली करेंसी बरामद हुई है, एक आरोपी गिरफ्तार। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी में फाइनल में पहुंचे, भारत के लिए पदक किया सुनिश्चित। शीतल का फाइनल में कजाकिस्तान में एजादा सीडान से मुकाबला होने वाला है और गोल्ड पर होगी निगाह। भारत को एक और पदक की उम्मीद है, ब्रॉन्ज के लिए दावा पेश करेंगे पैरा खिलाड़ी सरिता। फिल्म ताली के प्रोड्यूसर क्रिएटर कार्तिक ने बताया कि श्री गौरी सावंत के किरदार के लिए सुष्मिता सेन नहीं बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहले अप्रोच किया गया। बड़े बिजनेस में थे इम्तियाज खत्री को पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिली, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को पकड़ा। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म में वाइब का गाना रिलीज, दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी इसमें नजर आए। फिल्म प्रेम कीटाणु का रोमांटिक ट्रैक सामने आया और इस फिल्म में एक्टर वीर पहाड़िया, पारशक्ति खुराना और आफिया सैयद है। फिल्म 13 साई की रिलीज डेट आई सामने, अगले साल 5 फरवरी को रिलीज होगी। भक्तिभाव से भरपूर फिल्म हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा नाम की फिल्म का ऐलान हुआ और अगले साल रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा, 32 दिनों में फिल्म ने 155 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कनाडा की हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बॉम्बार्डिया को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, कहा कि अगर अमेरिका में विमान बनाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करनी होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैप किया पोस्ट, इसमें न्यू मैक्सिको राज्य का नाम बदलकर न्यू अमेरिका करने का समर्थन किया। क्यूबा के विदेश मंत्री पेड्रिला ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही भविष्य में कोई बातचीत की योजना भी। अमेरिका का पूर्वी प्रशांत महासागर में रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हमला, कहा कि समुद्र में गैर कानूनी ड्रग तस्करी में शामिल नावों में तेल भरने का काम कर रहा था यह रिफ्यूलिंग स्टेशन। मिस्र की राजधानी कायरा में अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी गांवों में हो रहे लगातार हमले का विरोध। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी गांव हज्जा पर बोला धावा, 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर उनकी हत्या हुई और 3 घायल हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में सरकार के खिलाफ एक बार फिर भारी विरोध प्रदर्शन, ट्रंप के दामाद की कंपनी को लग्जरी रिसोर्ट बनाने के लिए संरक्षित जमीन दिए जाने का विरोध। ब्राजील में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य सैन्य परेड, राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ली सलामी, कार्यक्रम समाप्त हुआ। अमेरिका की वेस्ट इंडियन कम्युनिटी ने अपनी संस्कृति और जड़ों का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक परेड निकाली। अब बिहार की करते हैं, जहां पर मानसून का कहर है, बाढ़ बारिश से जिंदगी बेहाल है। बिहार में गंगा नदी, कोसी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, पुनपुन और बागमती नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात हैं। बिहार के 13 जिलों में 27 लाख से ज्यादा की आबादी इस समय बाढ़ की चपेट में है। हालांकि पटना में गंगा के जलस्तर में अब गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद जरूर बढ़ी है। गंगा का जलस्तर इस समय 58 सेंटीमीटर के रिकॉर्ड स्तर से घटकर अब 50 मीटर के नजदीक है, लेकिन 50 मीटर से ऊपर ही बना हुआ है। तो बिहार में नदियां उफान पर हैं और पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, नदियों में इतना बेहिसाब पानी आ गया है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और भागलपुर में राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी करने और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया गया है। वहीं पटना में गांधी घाट और हाथीदह पर गंगा नदी के जलस्तर के उच्चतम बाढ़ स्तर तक पहुंचने के बाद से अधिकारियों ने नदी के निचले इलाकों में पहले ही अलर्ट भी जारी कर दिया है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान, 13 जिलों में बाढ़ चपेट में, 27 लाख से ज्यादा लोग, सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं इतना पानी घर से नीचे आता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: नहीं, कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते इतना पानी, बच्चा बुतरा सब मस्त है,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
4: अब जहाँ जाए घोटे कहाँ जाए भाई, अब घोट डूबे के लिए काम की कर जाए, घोट डूबे के लिए तब जहाँ जाए घोटे कहाँ जाए भाई, ऊपर दाब कर रहा भाई।
2: क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब ये चीज डूब गए हैं एकदम, घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गाँव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहां पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर दी हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: JK Max Paints, खुशियों के रंग।
11: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
3: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
4: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
3: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
5: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में। अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: We need protection.
3: No, no.
2: Yes, sir.
4: We need protection. Justice for Vikram.
5: Resident. Resident. Vikram.
4: दक्षिणी दिल्ली के सनलाइट थाना में सुरक्षा और इंसाफ की मांग करते नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये कैंडल मार्च निकाला गया मणिपुर के म्यूजिक टीचर 54 साल के सी विक्रम सिंह की हत्या के विरोध में। कैंडल मार्च से पहले बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोग सनलाइट थाने में भी जमा हुए और वहां भी जमकर नारेबाजी की। पूरी वारदात किलोकरी गांव की सोमवार देर रात की है। बताया जाता है कि जिस जगह सी विक्रम सिंह रहते थे वहीं स्थित एक ढाबे में देर रात शोर शराबा हो रहा था। शोर शराबे से परेशान विक्रम ने जब ढाबे में मौजूद लोगों से शांत होने को कहा तो बताया जाता है कि इसी बात पर ढाबा स्टाफ और वहां मौजूद डिलीवरी बॉय उस पर टूट पड़े। बुरी तरह जख्मी हालत में विक्रम को होली फैमिली अस्पताल ले जाया जा सका लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बहरहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। आशुतोष कुमार के साथ अरविंद ओंझा, दिल्ली आज तक।
6: नवगछिया के इस वक्त मधुवानी गांव में हम लोग मौजूद हैं और जहां पर मैं खड़ा हूं ये तस्वीर सिर्फ देखिए और समझिए कि किस तरीके से गंगा या कोसी का पानी जो इस पूरे इलाके में जो है पूरे गांव में फैल चुका है। गंगा को की उफनाई हुई है तो कोसी का पानी को भी निकलने का जगह नहीं मिल रहा है। उसके वजह से कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पे जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं। परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है और देखिए हम मैं जहाँ खड़ा था उसके नीचे आप जैसे ही आइए तो आपको पानी का लेवल जो है काफ़ी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए देखिए कितना गहरा ये पानी है। अभी तक जांग कमर भर जो है वो लेवल तक पानी है और चारों तरफ आप देखिए इधर भी आप देख सकते हैं सब कुछ जो आपको डूबा डूबा हुआ दिख रहा होगा। ग्राउंड फ्लोर आप देखिए, झोपड़ियां देखिए, हर कुछ जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और हर साल की भांति एक बार फिर इस इलाके के लोगों के पास बाढ़ की विभीषिका झेलने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जेन जी से भरे वडोदरा में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार से चलता है। मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में हत्या से उठे आक्रोश पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन, सभी आरोपी गिरफ्तार। ये राजनीति का नहीं, कार्रवाई का वक्त है। जयपुर में आमेर के किले में एक गाइड की चाकू मारकर हत्या, उग्र लोगों का प्रदर्शन, पीड़ित को मुआवजा और आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की मांग। आमेर का किला फिलहाल बंद। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर गर्म हुई राजनीति। बीजेपी का सीएम मान पर सीधा अटैक, कहा कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। सत्य निकेतन के घायलों से मिलकर सीएम रेखा गुप्ता ने दिया 5-5 लाख का चेक, कहा पीड़ितों की करेंगे पूरी मदद। पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, बेटा पुलिस कस्टडी में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या केस में पंजाब में सियासत हो रही है। इस मामले में बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर अब से कुछ देर पहले पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। आपको बता दें कि सुइसाइड करने वाले गुलजार सिंह ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स की खुलेआम बिक्री का मुद्दा उठाया था। आरोप है कि उन पर माफी के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से गुलजार सिंह ने आत्महत्या कर ली।
2: सरपंच है वहाँ पे, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका नाम लिया, ये चारों के नाम लिए। हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है। हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
3: चीमा भी जिम्मेवार है, ये गल का मेरी बहुत भी जिम्मेवार है। एक पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
4: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
3: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
4: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
3: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
4: ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ?
3: ਹਾਂਜੀ।
4: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ?
3: ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ।
4: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
3: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ।
4: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਸਨੇ?
3: ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
0: ये जो वीडियो आप देख रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं गुलजार सिंह का जारी किया है जिनकी तरफ से ड्रग्स का मुद्दा उठाया गया था और जिन्होंने आत्महत्या कर ली। बीजेपी नेता फतेह बाजवा ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू से बातचीत में उन्होंने पंजाब सरकार पर हमला बोला, कहा कि पंजाब पुलिस की एफआईआर से बीजेपी संतुष्ट नहीं।
5: संगरूर सुसाइड मामले में मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता फतेह सिंह बाजवा हैं, सीधा मिले हैं बीजेपी की डेलीगेशन गवर्नर के साथ। सर, आप ही से बात करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि एफआईआर से संतुष्ट नहीं है, हरपाल चीमा का नाम उसमें नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। क्या आपने मेमोरेंडम दिया है गवर्नर को? क्या आपको आश्वासन मिला है इस पूरे मामले?
6: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है भी हर रोज ये ड्रग के साथ, हेरोइन के साथ पंजाब में डेथ हो रही है और पुलिस जो है सरकार के साथ मिली हुई है। अगर ईडी ये बोलती है भी फलाने इनके ओएसडी के ऊपर एफआईआर करो, नहीं करते। आप क्या समझते हैं अभी कोई भी पर्चा अगर ये लोग बोलेंगे तो पुलिस करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और जहां पर मंत्री का नाम आता है वहां तो बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। देखिए, ये नादरशाही सरकार है। कोई भी चीज अगर आप मुख्यमंत्री सुबह से ही नशे में रहते हैं और पंजाब में क्या हालात है, बोलते हैं भी हम नशे के विरुद्ध हम पंजाब को निकालना चाह रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, ये जो व्यक्ति की मौत हुई है उसने सिर्फ इतनी बात कही, हरपाल सिंह चीमा आए दिड़बा, इनके अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात हुई, उन्होंने कहा भी मेरा बेटा मेरा घर बेच गया, मेरा सब कुछ बेच गया, आप कृपा करके इसके चट्टे को बचाओ पंजाब को। इतनी बात कहने की देर थी भी पुलिस वालों और गांव के जो सरपंच थे उन्होंने उस आदमी को घसीट के पीछे ले गए, उसको मारा पीटा। उसकी जलालत में उसने ये बात बोली भी अगर अच्छा मेरे को मैं अपनी बात ही नहीं कह सकता, मेरे सारे मेरे बच्चे ने मेरा घर उजाड़ दिया, तो उसने सल्फास पी के इस सरकार के खिलाफ और डाइंग डिक्लेरेशन दिया भी इसके पीछे कौन कसूरवार है भी हरपाल सिंह चीमा।
0: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है।
7: पंजाब बहुत हद तक अगर शांत करवाया तो पंजाब पुलिस की वहां काफी हद तक कामयाबी भी रही, मगर आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि केजरीवाल ने, सिसोदिया ने और भगवंत मान ने पंजाब की प्राइवेट जो पुलिस है आज इसको एक प्राइवेट मिलिशिया बना दिया। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सरकारी मुलाजमों को हो, वो खेत मजदूरों के हों, मनरेगा वर्कर्स के हों, आशा वर्कर्स के हों, किसानों के हों, स्टूडेंट्स के हों, वहां ब्रूटल जो पुलिस का आपने देखा है ब्रूट पुलिस फोर्स इस्तेमाल की जा रही।
0: आपको यह भी सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर अकाली दल की तरफ से क्या कहा गया है, विक्रम मजीठिया क्या कह रहे हैं।
8: उसने आखिर में वो जहरीली दवाई पी ली, सल्फास पी लिया और उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में बोला है कि मेरी मौत का जुम्मेवार हरपाल चीमा है और पंचायत है। अब इसकी मौत का जुम्मेवार हरपाल चीमा है, हर ड्रग की मौत के जुम्मेवार भगवंत मान है और इस केस में स्पेसिफिकली क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन है गुलजार की, इस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए, इमीडिएट डिसमिसल होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। मगर इट इज ऑल अ कवर अप सिचुएशन टू सेव हरपाल चीमा, और हरपाल चीमा नहीं बच पाएगा इस केस में और हम सब उस परिवार के साथ हैं एंड वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन।
0: इस मामले पर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध ली।
9: जिथे एक बंदे ने अपना सुसाइड कर लिया,
0: मणिपुरी म्यूजिक टीचर की हत्या महज इस बात के लिए कर दी गई कि उन्होंने अपने घर के सामने ढाबे पर शोर शराबा कर रहे ढाबा कर्मचारियों और डिलीवरी बॉयज को शांत होने को कहा था। आरोप है कि ढाबा कर्मचारियों और डिलीवरी बॉयज ने उनको पीटा जिससे उनकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी एक जगह जुटे थे, रात का वक्त था और वो लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, शोर हो रहा था, झगड़ा इसी बात पर शुरू हुआ। चश्मदीदों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि झगड़े की वजह और पूरा घटनाक्रम सही रूप में सामने आए। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी पकड़ा है।
10: वो रात तकरीबन 11 से 12:30 बजे 11:30 बजे के बीच विक्रम जी बाहर निकलते हैं, कुछ कूड़ा था और रात में वो हल्का फुल्का टहल भी लेते थे डिनर के बाद। वो कूड़ा फेंके यहीं पर करीब करीब 7-8 लोग के आसपास मौजूद थे, जिसमें आसपास के ढाबे में काम करने वाले लोग थे, कोई डिलीवरी बॉय था, कोई पैकिंग का काम करता था, तो वो लोग शोर मचा रहे थे। अब ऊपर 3rd फ्लोर पर उनका घर है तो वो नीचे आए, उनको शायद ऊपर आवाज आ रही थी, उन्होंने यहाँ पे मना किया और जब मना किया तो इस बीच उनके बीच आपस में कुछ कहा सुनी हुई और जब कहा सुनी हुई तो उन लोगों ने मारपीट हुई और उसके बाद विक्रम जी अंदर की तरफ भागते। अब आप देखिए 3rd फ्लोर पे नेहा जी, यहाँ से वो ऊपर की तरफ विक्रम जी भागते हैं और पीछे से सारे लड़के ऊपर की तरफ भागते हैं और ऊपर की तरफ वो अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं और मदद की मांग करते हैं तो अंदर जो उनकी वाइफ थी उनके पास आवाज जाती है, वो दरवाजा खोलती हैं और उसके बाद वो लड़के दिखते हैं, भागते हुए भी दिखते हैं, मारपीट भी पूरी कैप्चर हुई है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उनकी मौत हो गई। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मारपीट की गई, वजह भी लगभग साफ है कि सिर्फ शोर मचाने से मना किया, कुछ ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ी बात हो। देखिए, 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 जुविनाइल था जिसे अप्रीहेंड किया गया है, इसलिए कुल मिलाकर हम कहें तो 8 आरोपी पुलिस ने अभी तक पकड़े हैं जिनमें 1 जुविनाइल भी शामिल है। 8 की ही बात, जो हमारी बात हुई तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, उनका भी कहना है कि 8 आरोपी थे क्योंकि 8 जो वीडियोस हैं, जो सीसीटीवी हैं, उसमें से वो सीढ़ी से भागते हुए साफ नजर आए, तो उनके चेहरे एकदम क्लियर थे। सुबह जब डेथ डिक्लेयर किया गया हॉस्पिटल से तो उसके बाद लोकल पुलिस ने इस मामले में कत्ल की धारा में FIR दर्ज की और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी जो आरोपी लोग जिनके चेहरे कैद हुए थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया।
0: पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश तेज कर दी है। साउथ ईस्ट दिल्ली के DCP ने आज तक को अपनी जांच के बारे में क्या बताया, सुनिए।
10: इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए DCP साउथ ईस्ट विनीत कुमार जी हैं। क्या हुआ था, मौत जो हुई वो वजह क्या थी, झगड़े की वजह क्या थी?
11: देखिए, अभी तक जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें यही सामने आया है कि रात को 11:30 से 12 बजे के करीब कुछ लोग जो पास के एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनसे शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
10: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
11: देखिए, ये अपने घर में थे तब बालकनी में, ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है ये अपने घर से बाहर आए और उसके बाद जो हमारे अक्यूज्ड है वो भी इनका आमना सामना हुआ और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
10: कोई पुरानी कभी कोई रंजिश तो नहीं थी कि पुराना भी कभी ऐसा हुआ हो कि वहाँ पे शोर शराबा होता रहा हो, इन्होंने रोका हो?
11: देखिए, हम लोग इन सब पहलुओं पे अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी तक ये सब बातें कुछ सामने नहीं आई है बट स्टिल वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स।
10: जो आरोपी है उनके प्रोफाइल क्या है, क्या वो आसी पास के हैं?
11: जी, आरोपी वहां पर जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट्स है उनमें या तो काम करते हैं या डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, एज अ वर्कर काम करते हैं।
10: किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड
11: नहीं? अभी तक किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं।
10: शराब पीने की बात?
11: देखिए, सबका मेडिकल कराया गया है और उस मेडिकल रिपोर्ट पे हम ले एंगल भी देख रहे हैं।
10: अभी तक नहीं आया?
11: अभी तक नहीं आया पर हम देख रहे हैं।
0: राहुल गांधी ने इस हत्याकांड को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक पिता की हत्या उनके ही घर के बाहर कर दी गई। ऐसी कई घटनाओं के बाद आज दिल्ली में रहने वाला हर नॉर्थ ईस्ट का परिवार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या हम यहां सुरक्षित हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ बढ़ रही अराजकता को रोकने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस क्या कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की जल्द जांच की मांग की। दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर के 54 साल के म्यूजिक टीचर चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
12: ना इतना दुखद है कि जान चले गए। पुलिस से बात करते समय पूरा जांच का पता तो लग गया है। अब पुलिस ने मुझे बताया कि 8 दिन के लगभग अंदर में, मैंने विदिन 2 सप्ताह में बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जशीट भी फाइल कर देंगे कोर्ट में, कड़ी सजा होना चाहिए। 8ों का 8 अलग अलग समुदाय अलग अलग राज्यों से है, यहाँ काम करते हैं, बाहर से आए हैं सब लोग और अभी तो अरेस्ट हो गए हैं लेकिन चार्जशीट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यही बात हुआ है। जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं या कोई विक्टिम होता है तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं, वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय हैं, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है जो खाना वाना पहुँचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द, ये लोग तो भाग गए थे और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है। इसलिए मैंने कहा कि चार्जशीट कब तक होगा, तो दिल्ली पुलिस ने मुझे बताया कि लगभग 8-9 दिन के अंदर में चार्जशीट दायर हो जाएगा कोर्ट में ताकि उनका सजा जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत कठोर सजा मिलना बहुत जरूरी है।
0: सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो नवसारी में इस समय चल रही।
13: सौथी वधारे मत थी तमे भाई सीआर ने जिताड़ी ने मोकल्या था એટલે આખો દેશ નકશામાં સોચતો ના નવસારી છે ક્યાં, એટલે તમે તો આવા બધા કમાલ કરનારા લોકો છો, આટલી બધી સિદ્ધિ મળે આટલો બધો પ્રેમ મળે કોઈને એમ થાય ચાલો ને અમે થોડા આડા પડીએ જરા આરામ કરીએ, પણ ના, આ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, અમારે ત્યાં આરામ હરામ એના ખાલી નારા નથી લાગ્યા, અમારો એક એક કાર્યકર્તા દિવસ રાત એનાથી બનતા પ્રયત્ન જનસેવા માટે કર્યા જ કરતો હોય છે। આપ વિચાર કરો આખા જિલ્લાના ગામડે ગામડે માઇક્રો ક્લિનિંગ આ અભિયાન ઉપાડવામાં આવે અને જનભાગીદારીથી ઉપાડવામાં આવે, આટલી મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો નગરજનો સ્વચ્છતાને ઉત્સવ બનાવી દે, સરકારી માધ્યમોથી નાના મોટા કામ થાય તો બહુ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ જન સામાન્યની તાકાતથી જ્યારે પરિવર્તન આવે ને એ પરિવર્તન સ્થાયી હોય છે, એ પરિવર્તન નવો વિશ્વાસ પેદા કરતું હોય છે।
0: गुजरात में विधानसभा चुनाव यूं तो 2027 के आखिर में है लेकिन वहां से चुनावी गूंज अभी से सुनाई दे रही है। नवसारी से पहले पीएम मोदी ने आज वडोदरा में एक मेगा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में नौजवानों की बड़ी भागीदारी रही, ये इस कार्यक्रम की विशेषता रही। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए मंच पर धमाकेदार अंदाज में एंट्री की। सुपरहिट फिल्मों की धुनों पर पीएम मोदी की ऐसी एंट्री पहले कभी नहीं देखी गई। उनके इस अंदाज को जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
14: वडोदरा के शो में पीएम मोदी की कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री हुई। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो नेपथ्य में धुरंधर का गाना बज रहा था। दर्शकों में नौजवान और नेपथ्य में धमाकेदार गानों की धुन। मोदी के एंट्री के साथ गानों पर झूम रहे थे वो नौजवान। पीएम मोदी जिनसे आज संवाद करने यहां आए थे, इस शो की प्लानिंग बड़े ही करीने से की गई थी। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ा और जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो माहौल कुछ अलग ही किस्म का था।
13: 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
14: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रमाल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा था नौजवानों से पीएम मोदी का संवाद।
13: मैंने लाल किले से भी युवा शक्ति के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहां लाखों नौजवान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल हमारे मिडिल क्लास परिवारों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों की कोचिंग पर खर्च हो जाता है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मिडिल क्लास के इससे बच्चे की परिवारों के पैसों की बचत हो, और इसलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत के नौजवानों को एआई में पारंगत होना उतना ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की पीढ़ी एआई के लिए तैयार हो।
14: पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में अगले साल यानी 2027 में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन पीएम मोदी अभी से एक्टिव हैं और शायद यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। ब्रिजेश दोषी, वडोदरा, आज तक।
0: अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
17: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
18: सोच बदलो और बैंक भी।

0: वडोदरा के शो में पीएम मोदी की कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री हुई। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो नेपथ्य में धुरंधर का गाना बज रहा था। दर्शकों में नौजवान और नेपथ्य में धमाकेदार गानों की धुन। मोदी के एंट्री के साथ गानों पर झूम रहे थे वो नौजवान। पीएम मोदी जिनसे संवाद करने यहां आए थे, इस शो की प्लानिंग बड़े ही करीने से की गई थी। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ा। और जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो माहौल कुछ अलग ही किस्म का था।
1: 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
0: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रमाल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा था नौजवानों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में अगले साल यानी 2027 में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन पीएम मोदी अभी से एक्टिव हैं और शायद यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। ब्रिजेश दोषी, वडोदरा, आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। हादसे में 7 लोगों की जान गई है जबकि 5 लोग घायल हैं। हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एमसीडी के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल और उसकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जबकि बेटे महेश को 2 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, साथ ही दिल्ली में मौजूद सभी पीजी स्ट्रक्चरल ऑडिट के भी आदेश दिए हैं। हादसे के बाद सीएम रेखा एक्शन मोड में है। दिल्ली में अब बिना मंजूरी के बनी 5वीं मंजिल की इमारतों को तुरंत सील करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल एमसीडी से है, क्या इन निर्माणों और पीजी की जानकारी प्रशासन को नहीं थी? अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर कार्रवाई हुई थी तो ऐसे निर्माण और पीजी दोबारा कैसे संचालित होते रहे? अब दिल्ली सरकार ने बिल्डिंग सेफ्टी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। एलजी की अध्यक्षता में हुई संयुक्त समीक्षा मीटिंग में सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। बैठक में पीजी और छात्रावासों की सुरक्षा जांच, एजेंसियों की जवाबदेही और बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। सीएम रेखा ने पीजी और आसपास की इमारतों की जांच के आदेश दिए हैं। अब दिल्ली में बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक कमेटी पीजी के नियमों की समीक्षा करेगी। विश्वविद्यालयों, एमसीडी और डीडीए के जरिए छात्रों के लिए ज्यादा आवास की संभावनाएं भी तलाश की जाएंगी, साथ ही खाली पड़े डीडीए आवासों के इस्तेमाल पर भी विचार होगा। सबसे अहम, दिल्ली में मौजूदा पीजी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार के एक्शन के बाद असली परीक्षा अब होगी। क्या ये ऑडिट सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेगा या उन तमाम पीजी और इमारतों तक पहुंचेगा जहां दिल्ली के छात्र हर दिन रहते हैं? अब सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं, पूरे इलाके की बिल्डिंग सेफ्टी और निगरानी व्यवस्था का है। क्या दिल्ली में अवैध इमारतों पर शिकंजा कसेगा? सत्य निकेतन हादसा सिर्फ 7 मौतों की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम पर सवाल है जिसे हादसा होने से पहले खतरे को पहचानना था। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जेनजी से भरे वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार से चलता है। मणिपुर के म्यूजिक टीचर की दिल्ली में हत्या से उठे आक्रोश पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन, सभी आरोपी गिरफ्तार। यह राजनीति का नहीं कार्रवाई का वक्त है। जयपुर में आमेर के किले के गाइड की चाकू मारकर हत्या, उग्र लोगों का प्रदर्शन, पीड़ित को मुआवजा और आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की मांग। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने

0: छोड़े विपल मुख्यमंत्री और चीवा। सत्यनिकेतन के घायलों से मिलकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया 5-5 लाख रुपए का चेक। कहा पीड़ितों को ही करेंगे पूरी मदद। पीजी मालिक हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बेटा पुलिस कस्टडी में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।

नमस्कार, मैं हूँ गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो धार्मिक स्थल है उनके रिकॉर्ड्स और कब्जे को लेकर एक ऐसा बवंडर उठ रहा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गर्मा दिया है। दरअसल एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा उनको जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। सर तन से जुदा जैसे नारों पर अदालत ने ऐतिहासिक टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा है कि नफरत फैलाने वालों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। इस तरह की जो ऐतिहासिक टिप्पणी की है अदालत ने, उससे नफरत फैलाने वालों को बेनकाब कर दिया गया है। दूसरी तरफ संबल में जामा मस्जिद विवाद के बीच अब 50 करोड़ की आर्य समाज मंदिर की जमीन से लेकर मजार और 10 अवैध मकान हटाने का फरमान जारी हो चुका है। दूसरी तरफ संबल की ही जामा मस्जिद से 500 मीटर दूर एक और मस्जिद और मुसाफिर खाने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की जांच की तलवार अब उस पर लटक गई। वहीं सहारनपुर में 100 साल पुरानी मस्जिद पर चले बुलडोजर के बाद मलबे में एक कुआं निकला है। ऐसा कुआं जिसने 2027 के सियासी एजेंडे का जो रुख है उसे मोड़ना शुरू कर दिया है। क्या 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव इन मुद्दों के इर्द गिर्द होगा और इन सभी जमीनी मामलों में प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? बुलेटिन में हम आपको एक एक खबर विस्तार से बताएंगे क्योंकि ये बेहद जरूरी है आपके लिए जानना कि सच्चाई है क्या। सबसे पहले बात मौलाना तौकीर रजा की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की लकीर को लांघने का दुस्साहस करने का जो आरोप है उसमें यह मौलाना पिछले एक वर्ष से सलाखों के पीछे है। उसने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई लेकिन राहत की जगह फटकार मिली। बड़ी खबर यह, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के मुख्य सूत्रधार और भड़काऊ बयानों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत याचिका पूरी तरह से उसे खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने ऐतिहासिक और सख्त फैसले में साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था और देश की अखंडता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने नफरत फैलाने वालों पर कड़ा प्रहार करते हुए एक बेहद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस तरह की बयानबाजी, और अब मैं कोट कर रहा हूं, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा जैसे खून खराबे और हिंसा के लिए उकसावे वाले नारे को धार्मिक नारा नहीं कहा जा सकता। यह साफ तौर पर अदालत ने कह दिया। अदालत ने कहा कि जय श्री राम या हर हर महादेव या जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, यहां तक कि नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, ये सब पवित्र नारे हैं। इनमें भगवान हो, ईश्वर हो, गुरुओं का मान हो, गुरुओं के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति और सम्मान झलकता है। जय श्री राम, कन्हैया जय कन्हैया लाल की, सत श्री अकाल, नारे तकबीर, ये सब ठीक है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा देश में कानून शासन, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता को सीधा ललकारने वाला एक हिंसक एजेंडा है। आप किसी से सर तन से जुदा नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। ये सीधा सीधा आम जनता को हथियार उठाने, बगावत करने, खून खराबा करने के लिए भड़काने वाला एक संगीन जुर्म है। हाईकोर्ट ने छद्म धर्म निरपेक्षता, बहुत महत्वपूर्ण बात है, छद्म धर्म निरपेक्षता यानी स्यूडो सेक्युलरिज्म और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सर तन से जुदा या नफरत बेचने वालों को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर हिंसा भड़काने और देश के कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले नारों को

0: कोई संरक्षण नहीं मिल सकता, कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। संगीन मामले और तौकीर रजा पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए अदालत ने तौकीर रजा को किसी भी तरह की कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया और तौकीर रजा की जो जमानत अर्जी है उसे कचड़े के डब्बे में डाल दिया। अदालत ने यह भी लिखा कि पिछले साल जब तौकीर रजा की ओर से बरेली में बुलाई गई भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तब हिंसा हुई, तब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यही नहीं, उस हिंसा में पुलिसकर्मी घायल भी हुए और सरतन से जुदा के नारे ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है।
1: माननीय उच्च न्यायालय ने मौलाना तौकीर रजा की कल जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट की सख्त टिप्पणी स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि सरतन से जुदा एक कम्युनल नारा है और एक धमकाने वाला देश की अखंडता को तोड़ने वाला नारा है, जबकि धार्मिक नारे जो हैं जैसे नारे तकबीर है, अल्लाह अकबर है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल या जय श्री राम, ये नारे जो हैं ये धार्मिक हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इससे कोई समाज नहीं टूटता है। लेकिन तौकीर रजा ने अपनी ताकत का, अपने जो उनका संगठन है उसको किनारे करते हुए, नारे तकबीर किनारा ना लगाते हुए उन्होंने जो सरतंत्र जुदा का जो नारा दिया है वह जो है बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से तमाम दंगे हुए बरेली में और मौलाना तौकीर रजा जैसे व्यक्तियों को जेल से बाहर निकालने का बिल्कुल भी जो है प्रयास नहीं होना चाहिए।
0: दरअसल पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उस कार्यक्रम में कुछ पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई भी की। बरेली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ 26 सितंबर 2025 को शुक्रवार के दिन भारी भीड़ जमा कर ली और इस दौरान हिंसा हुई और इसके बाद मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तौकीर रजा ने हिंसा से पहले और हिंसा के बाद क्या कहा था, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: छब्बीस सितंबर 2025 को बरेली की सड़कें अचानक हिंसा और उपद्रव का अखाड़ा बन गईं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के आह्वान पर हजारों की भीड़ सड़क पर उतरी थी। जुमे का दिन था, प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ा, जमकर पथराव हुआ और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। हिंसा की वजह बनी मौलाना तौकीर रजा की वो भड़काऊ अपील जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में जुटने और कड़ा विरोध जताने को कहा था। आरोप है कि उनके इस आह्वान और उत्तेजक बयानों ने ही भीड़ को उकसाया, जिसके बाद बरेली में जगह जगह हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा को ही हिंसा का मुख्य सूत्रधार और मुख्य आरोपी बनाया। हिंसा से पहले और फिर हिंसा के बाद 27 सितंबर को गिरफ्तारी से पहले मौलाना तौकीर के बयान सुनिए।
3: अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी।
4: इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। बार बार कह भी रहा हूं कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूं, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो।
2: मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा पिछले साल 27 सितंबर से ही जेल में है। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि सर तन से जुदा जैसा नारा कोई धार्मिक आस्था नहीं बल्कि कानून के शासन और देश की संप्रभुता को खुली चुनौती है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा भड़काने वाले बयानों को गंभीर माना। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: दरअसल इस हिंसा के बाद बरेली के अलग अलग थानों में 11 FIR दर्ज किए गए थे। पुलिस ने जांच के बाद दिसंबर 2025 में बकायदा एक चार्जशीट भी दाखिल की। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस की जांच में क्या क्या तथ्य सामने आए। तौकीर रजा की जमानत जब रद्द हुई उस चार्जशीट में किस तरह के गंभीर आरोप है सुनिए। 26 सितंबर 2025 को बरेली में जो मुस्लिम समुदाय को जोड़ा गया था जुमे की नमाज के बाद आखिर हुआ क्या था? उस दिन मुस्लिम समुदाय करीब 200 लोग इस्लामिया ग्राउंड में पहुंचे, मार्च हुआ, इकट्ठा हुए और पुलिस ने जब उन्हें रोका और वापस जाने को कहा तो पुलिस कर्मियों के साथ शुरू में धक्का मुक्की की गई, फिर भड़काऊ नारे लगाए गए और यहीं पर आपत्ति है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए, वो ठीक है, पुलिस पर पत्थरबाजी की, वो ठीक नहीं है, और फिर ये चीख चीख कर चुनौती देते हुए किस तरह के नारे लगाए गए आप खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। सर तन से जुदा के नारे, क्या ये सर तन से जुदा एक प्रजातंत्र में इस तरह के नारे लगने चाहिए? इस तरह के नारे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लगते हैं और पाकिस्तान किस तरह का एक गिरा हुआ देश है ये आप और हम सब जानते हैं। क्या अब हम ये अपने देश में चाहते हैं कि जिस तरह का कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान में है हम वहां जाएं? अब हम रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या जी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं।
5: बहन और भाइयों, अयोध्या को इसकी पहचान मिले। कल मैं आंध्र प्रदेश गया था, पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा वहां पर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए आज से 25 वर्ष पहले एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, उसकी रजत जयंती समारोह था। मुझे कल वहां पर भी और तिरुपति बालाजी मंदिर में भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं जहां जाता था चारों ओर से आवाज आती थी, योगी जी जय श्री राम जय श्री राम। यानी मैं जहां जाता था एक ही शब्द सुनाई देता था, दुनिया राम के प्रति विभूत है, रामलला के अयोध्या धाम में विराजमान को लेकर के विभूत है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहां अभी भी वीरानी छाई हुई है, ये भौचक हैं। अयोध्या में रामलला का मंदिर कैसे बन गया वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वे समझ ही नहीं पा रहे कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी कैसे हो गई, अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विकास कैसे हो गया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इतना बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण कैसे हो गया, ये भौचक है आज इस बात को लेकर के कि रेन बसेरा निषाद राज के नाम पे कैसे बन गया और यहां के भोजनालय माता सबरी के नाम पर कैसे बन गए। बहन और भाइयों, जिन्होंने समाज को बांटा हो उनसे उम्मीद करना कि वे समाज को जोड़ सकेंगे यह उम्मीद मुझे लगता करनी भी नहीं चाहिए। ये लोग सुरक्षा के लिए संकट थे, इन्होंने माफिया बच्चे के यानी उन मासूम बच्चों के पोषण आहार पर भी माफिया का सिकंजा बसा बैठा डाला था। प्रदेश की प्राइमरी स्कूल की दुर्गति उस समय की आप देख सकते हैं, न शिक्षक थे न भवन थे न छात्र थे, अराजकता की स्थिति थी, जर्जर भवन थे। ऑपरेशन कायाकल्प हो या निपुण भारत अभियान हो या माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट अलंकार की योजना हो, पीएम श्री के स्कूल हो या मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, ये सभी आज मॉडल बने हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र के मॉडल। बहन और भाइयों, करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत दिनों हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, शिक्षकों को, कैशलेस 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई, 15 लाख शिक्षक शिक्षा मित्रों देशक उससे लाभान्वित हुए। और मेरे सामने लगातार ये प्रस्ताव आ रहा था, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी इन सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए। और आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए। यहां पर मुझे याद है 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्या स्थितियां हुआ करती थी, प्रदेश के अंदर तब हम लोग जब कार्य करते थे, जब हम लोग आए थे तब उस समय मात्र 3,000 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उस समय मानदेय प्राप्त होता था। हम लोग आए, हम लोगों ने इसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया, यह राशि बढ़कर के 8,000 हुई। सहायिकाओं का मानदेय उससे भी कम था, यह 1500 मात्र था, इसको हम लोगों ने तत्काल 4,000 रुपए किया। और सचमुच मैं कह सकता हूं आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कार्यकर्तियों ने, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सहायिकाओं ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एएनएम आशा वर्कर के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार की योजनाओं को और महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई को जीतने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उस समय वे लोग आगे आए थे, उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। मैं जब जाता था जनपद में तो गांव गांव में मैं जाता था, कोरोना कालखंड में मैं जाता था, मैं देखता था, मुझे किसी गांव में आंगनवाड़ी की बहनें मिलती थी, किसी में आशा मिलती थी, किसी में एएनएम मिलती थी। जो उस समय के स्क्रीनिंग के अभियान में, दस्तक अभियान में कोविड महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी वे कार्य कर रही थी।
0: और आइए अयोध्या जी से अब रुख करते हैं संभल का, जहां शाही जामा मस्जिद का विवाद अदालत में तो चल ही रहा है। इस बीच वहां का जो आर्य समाज है ना, आर्य समाज पर कब्जे का एक बड़ा मामला सामने आया है। और इस बार प्रशासन ने ऐसा एक्शन लिया है कि अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। खबर यह है कि संभल प्रशासन ने फैसला सुना दिया है कि आर्य समाज और ग्राम सभा की जमीन से मजार और अवैध मकानों को तुरंत हटाया जाए। दरअसल यह पूरा मामला शेरखान सराय इलाके में है, जहां करीब 50 करोड़ रुपए की कीमत की 5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। कागजों में ये जो जमीन है ये दरअसल आर्य समाज के नाम से दर्ज की गई थी। आरोप ये है कि समय के साथ भू माफियाओं ने स्थानीय लोगों से इस पर कब्जा जमा लिया। स्थानीय लोगों ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कर जमीन को बेच दिया और देखते ही देखते जो आर्य समाज की जमीन थी वहां पर 10 पक्के मकान खड़े हो गए और इसी जमीन पर एक मजार यानी जियारत के लिए एक मजार भी बन गई। अब आर्य समाज मंदिर पक्ष ने इसकी शिकायत की, प्रशासन से की शिकायत, तो जो एसडीएम का कोर्ट है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसने पूरे 1 साल तक इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पुराने राजस्व के रिकॉर्ड खंगाले, तब जाकर सच सामने आया। सच क्या है, 1960 में जब चकबंदी हुई तो यह सारी जमीन साफ तौर पर आर्य समाज मंदिर के नाम थी। उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जमीन पर दर्ज 11 अवैध नाम जो है उन्हें खारिज कर दिया। 50 करोड़ की जमीन दोबारा आर्य समाज को आर्य समाज मंदिर के नाम पर दर्ज कर दी गई। फैसला आते ही जो तहसीलदार है और जो पूरी पुलिस की टीम है मौके पर पहुंची और जमीन का नाप तो वहां नाप जोखा जो है वो शुरू कर दिया। प्रशासन ने कब्जाधारियों को एक आखिरी चेतावनी दे दी है, या तो मकान और मजार वो खुद हटा ले या फिर प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा। दूसरी तरफ जो स्थानीय मौलाना है मुशर्रफ हुसैन का दावा अलग है। मौलाना मुशर्रफ हुसैन का कहना है कि यह मजार आज की नहीं, मौलाना के मुताबिक करीब 150 साल पुरानी है, अकबर बादशाह के जमाने की है। हालांकि मौलाना का इतिहास यहां थोड़ा गड़बड़ा जाता है क्योंकि अकबर का काल 150 साल से पुराना था। खैर, इतिहास बोध एक अलग बात। मौके पर इस समय क्या परिस्थिति है, प्रशासन ने क्या कहा, क्या चेतावनी प्रशासन ने दी है, ये रिपोर्ट देखिए।
6: ये बहुत पुराना 150 साल पुराना लगभग जो हम बुजुर्गों सुनते हैं, तो यहाँ पर वर्ष भी होता है, चार रोजा, बड़े बार के कव्वाल भी आते हैं, मेला लगता है यहाँ पर, दुकानें वगैरह सब यहाँ से सारे रास्ते पे।
7: काफी पुरानी है
6: करें लगभग 150 साल, तो मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने बुजुर्गों सुना। अब प्रशासन ये कह रही है कि उसमें आर्य समाज मंदिर में है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग जो यहाँ के मालिक को कहते हैं हमने फला से लिया, हमारा इधर का इसमें ऐसे दर्ज है। अब बाकी जो कार्रवाई है वो जानते हैं, आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, जो आपकी कोशिश है, जो सरकार की कोशिश है, वो सब एक दूसरे में लगे पड़े, बाकी अल्लाह की मर्जी है जो जैसा।
7: ये देखिए, ये वो मौलाना स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, जिनका फिलहाल कहना है कि मज़ार 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब जो बात कही गई उसको लेकर वो अपना पक्ष रखेंगे। और मेरे पीछे आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी जगह पर जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची थी और सामने आपको ये वो पूरी मजार बनी हुई नजर आएगी।
0: बड़ी खबर इस समय मुंबई से आ रही है। मुंबई में बीकेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है। उस कार्यक्रम से पहले दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले बड़ी खबर, दो संदिग्ध कुछ गड़बड़ कागजात के साथ वहां पर थे। रैली वाली जगह दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। शख्स के पास से एक बंदूक हिरासत में बरामद की गई है। दिव्येश्वर सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ये संदिग्ध खुद को पीएमओ का अधिकारी बता रहा था, क्या जानकारी है इन दो संदिग्धों के बारे में?
8: जी, आपको बता दें कि रोहन पारेख नामक ये एक व्यक्ति है जो नीता अंबानी कल्चरल सेंटर यहाँ पर पहुंचा था, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, और यहीं पर ग्लोबल फिनटेक का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होना है। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं उसके उद्घाटन के लिए। आपको बता दें कि वहां पर जांच चल रही थी, सुरक्षा जो कर्मी है वहां पर, जब उन्होंने जांच की तो रोहन पारेख ने एक आईडी कार्ड दिखाया जो कि पीएमओ, उसमें लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का वो आईडी कार्ड था। उसकी ठीक से जांच की गई तो पता चला कि ये आईडी कार्ड फर्जी है, और तब उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी था, और जिसको वो बॉडीगार्ड बता रहा था, और उसके पास एक हथियार यानी एक बंदूक भी थी, और इसीलिए दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों को क्राइम ब्रांच ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है, और आपको बता दें कि थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में, एस्टेनेट कोर्ट मुंबई में पेश किया जाएगा।
0: आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौट कर आऊंगा। संवेदनशील खबर है, दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक व्यक्ति खुद को पीएमओ का कर्मी बता रहा था, और उसके कथित रूप से पीएसओ के पास एक हथियार भी बरामद हुआ है। खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
2: In association with
3: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
4: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
5: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
6: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
5: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: आगे दलदल का इलाका है, भटकुशी के एकदम किनारे पर खड़े हैं। और बटार में देखिए, ये सोलर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
1: पता तो चले कि किन के अपने लापता है, क्योंकि बहुत सारे लापता लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है।
0: सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं।
1: सब बरामद हो, उनकी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, उन लोगों की चीजें बरामद की जा सकती
2: है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

तू खुद को बता रहा था पीएमओ का अधिकारी। जेन जी से भरे वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार से चलता है।

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त एनएचआरसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने का दिया निर्देश। अवैध पीजी के खिलाफ एमसीडी ने भी शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई।

विफल मुख्यमंत्री और चीमा। हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में पहली एफआईआर अज्ञात के खिलाफ, कोतवाली थाने में अज्ञात पर एफआईआर, एसपी क्राइम जगदीश चंद्र को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर दो संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल मुंबई में बीकेसी में, मतलब जो जियो कॉम्प्लेक्स है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिनटेक के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचने वाले हैं। उससे पहले रैली की जगह दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। दो में से एक अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारी बता रहा था, उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था वो उसे अपना पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बता रहा था। उसके पास से एक हथियार भी हिरासत में रिकवर किया गया है। दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, समय क्राइम ब्रांच कर रही है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, ये दोनों जो हिरासत में लिए गए हैं कौन है और बीकेसी जियो सेंटर में कर क्या रहे थे?
1: बिल्कुल, ये तो रोहन पारिश करके व्यक्ति है जिसका आइडेंटिफिकेशन सामने आया है। आप कह सकते हैं कि एक आईडी कार्ड के साथ पकड़ा गया है, जो कि फेक या फॉल्ड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ था। और ये आप कह सकते हैं क्योंकि जो गीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है NMAAC, उसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में जो इलाका है वहाँ पे ये फिनटेक का जो कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री को पहुंचना है, वहाँ सिक्योरिटी जब ब्रीफिंग चल रही थी, चेकिंग चल रही थी, तब एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। 24 वर्षीय नाम है, नाम जिसका
0: रही है मेरे साथ दिवेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, प्रारंभिक जांच में क्या निकल कर आया है? क्या केवल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच या फिर अब इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस जांच में शामिल हो रही हैं?
2: जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस एजेंसी भी अपने तरफ से इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा का मामला है। प्रधानमंत्री इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इनॉग्रेशन करने वाले थे, जो कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पर आयोजित किया गया है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। ये एक हाई प्रोफाइल इवेंट है, हाई सिक्योरिटी इवेंट है, जहां पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहने वाले हैं। इसीलिए सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए वहां पर SPG की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो SPG तैनात होती है वो रहते हैं, इसके अलावा मुंबई पुलिस की सुरक्षा रहती है, अर्धसैनिक बल की सुरक्षा रहती है, और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो अफसर होते हैं वो भी ध्यान रखते हैं कि किसी तरीके की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट यहां पर ना हो, इसीलिए ध्यान रखा जाता है। ये व्यक्ति PMO का आइडेंटिटी कार्ड लेकर इवेंट में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, ये कोशिश करते हुए कि ये आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर उसे एंट्री मिल जाएगी। और खासकर जब उसका जो PSO है, जिसे वो क्लेम कर रहा है कि उसका PSO है, उसका बॉडीगार्ड है, वो एक हथियार लेकर इस इवेंट में क्यों जा रहा था, इस बारे में जांच होनी है। इस बारे में जांच हो रही है और क्राइम ब्रांच को यह पूरी जांच सौंपी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों ही व्यक्तियों को, रोहन पारेख और उसका जो एलिजेड बॉडीगार्ड है, दोनों को कस्टडी में ले लिया है और दोनों से पूछताछ जारी है। दोनों को थोड़ी देर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट मुंबई में पेश किया जाएगा।
0: जी, इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? आखिर यह रोहन पारेख कौन है, कितने वर्ष का है, कहां से आया, क्यों यहां आया था, कोई जानकारी मिल पाई है?
2: जी, प्राथमिक जानकारी अभी इतनी ही मिल पाई है कि उस व्यक्ति का नाम रोहन पारेख है। वो क्लेम कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री के दफ्तर पर PMO में काम करता है, वहां पर तैनात है, और आगे की जानकारी अब पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है कि कौन है ये व्यक्ति, कहां से आया था, कहां का रहने वाला है, क्या इसके क्रेडेंशियल्स है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका, किससे जुड़ा हुआ है, ये सब पता लगाने की कोशिश कीजिए।
0: आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। अब रुख करते हैं उस युद्ध का जो पिछले 4.5 वर्षों से यूरोप में चल रहा है, एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन, और लगातार विकराल हो रहा है ये युद्ध।

कोहराम और त्राहिमाम शांति का प्रयास भी चल रहा है, युद्ध भी भीषण हो रहा है। यूक्रेन से डोनाल्ड ट्रंप के शांति दूत निकले भी नहीं कि रूस ने बमबारी शुरू कर दी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर इतनी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई कि चारों ओर तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। दरअसल 3 दिन का सीज फायर था। जैसे ही 3 दिन का सीज फायर खत्म हुआ, दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर जमकर बम बरसाना शुरू कर दिया। यह खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी समय कोहराम मचा हुआ है, किसी दूसरे देश की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी नीयत और नीति की वजह से। जैसा आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है, उसकी मुख्यमंत्री मरियम नवाज, वो पाकिस्तान के जो इस समय प्रधानमंत्री है शाहबाज शरीफ, उनकी रिश्तेदार भी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वो बेटी हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति में मरियम नवाज की एक बहुत महत्वपूर्ण समय भूमिका भी है। लेकिन एक बयान में मरियम नवाज ने साफ कर दिया कि उनके राज्य में, यानी पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, पाकिस्तान को पड़ोसी देशों से, यानी भारत से, या पाकिस्तान का दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान से, या तीसरा पड़ोसी ईरान से, भारत, अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान को खतरा नहीं है। पाकिस्तान को खतरा और पाकिस्तान के पंजाब सूबे को खतरा उसी के पड़ोसी राज्यों से है, देशों से नहीं, राज्यों से। यानी एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ सिंध, तो फिर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, कहां से खतरा है। दरअसल मरियम नवाज ने ये जो पड़ोसी राज्यों का बयान दिया, इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस बीच आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फील्ड मार्शल, उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। एक वायरल वीडियो में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में एक तरफ हाफिज सईद का बेटा है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध रहा है, मरते दम तक जिहाद का ऐलान कर रहा है, और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यूक्रेन से समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। आज सवेरे यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बड़ा हमला किया है। बीती रात में भी रूस ने एयर स्ट्राइक्स की थी, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 10 को घायल बताया जा रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की जो बमबारी हुई है, ये तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप के जो शांति दूत हैं, वो मॉस्को के बाद कीव में अपनी यात्रा खत्म करके सुरक्षित पोलैंड पहुंच गए थे। सीज फायर खत्म हुआ और बमबारी शुरू हुई।

0: मॉस्को के बाद कीव में चला पीस अभियान। बातों मुलाकातों से कैसे खत्म होगा घमासान? शांति दूतों के जाते ही शुरू हुई बमबारी, मचा कोहराम। कीव पर मिसाइल अटैक में दो की गई जान। बस कुछ ही घंटों के लिए मिसाइलों का शोर थमा था। न ड्रोन से बमबारी हुई, न शहर शहर तबाही हुई, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के दो दूत पीस प्लान को अंजाम देने के अभियान पर निकले हुए थे। फिर उनके जाते ही तबाही की ये तस्वीरें सामने आने लगी। कीव पर एक बार फिर रूस ने बम बरसाए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए इस हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की है और रूस पर बेकसूरों की जान लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन हमलों में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए हैं। जवाब देने में यूक्रेन भी पीछे नहीं रहा। उसका ड्रोन रूस के पर्म रीजन की एक रिहायशी इमारत से सीधा जा टकराया। हमले के फौरन बाद कई फ्लोर आग की चपेट में आ गए जिससे एक शख्स की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए। यूक्रेन की ओर से रियाजन में एक तेल रिफाइनरी पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग इन दिनों और भीषण हो गई है। पिछले एक महीने में दोनों देशों ने एक दूसरे पर इतने बम बरसाए हैं कि अभी तक नुकसान का जायजा तक नहीं लिया जा सका है। रूस हर दूसरे दिन कीव और आसपास के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है जिससे यूक्रेन का जान माल का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रूस की ई कॉमर्स और ऑयल रिफाइनरी लगातार निशाने पर है। इससे पहले ट्रंप के दूतों ने रूस और कीव का दौरा किया था। पहले उनका पड़ाव था मॉस्को, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की। पुतिन, कुश्नर और विटकॉफ के बीच 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बातचीत चली। मुलाकात हुई, ढेरों बातें हुई और फिर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने वाले बयान भी जारी किए गए। दोनों देशों के बीच हालात सुधारने के लिए मॉस्को और कीव के दौरों पर निकले अमेरिका के दूतों की कोशिशों का समर्थन करते हुए और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर 3 दिन के लिए हमलों को रोक दिया गया था। इसके बाद कुश्नर और विटकॉफ ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनसे भी कई मुद्दों पर बात हुई, हथियारों पर भी, सीज फायर पर भी और एनर्जी सप्लाई को लेकर भी। अभी जो हालात हैं, उनमें सीज फायर कम और युद्ध लंबा खींचने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। कुश्नर और विटकॉफ के सामने भी ज़ेलेंस्की ने जंग के फिलहाल सर्दियों तक चलने की आशंका जता दी और इसके लिए तैयारियों का खाका भी खींच डाला।
1: देशभक्तों और पीड़ितों दोनों के बारे में एक अच्छी बातचीत हुई जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज हमने सभी आह्वानों के लिए इस समय की उपयुक्तता तय कर ली है और हमें उम्मीद है कि हमारे अमेरिकी साझेदार, हमारे यूरोपीय साझेदार दूसरी तरफ देखते रहेंगे।
0: इससे पहले भी अमेरिका कई बार रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कब्जाई हुई जमीन, सेनाओं की वापसी और नेटो के किरदार पर पेच फंसता रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: भारत में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और क्रेमलिन के प्रवक्ता द्मित्री पेस्कोव ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी खबर यह कि आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप के सवाल के जवाब में द्मित्री पेस्कोव ने कहा कि ब्रिक्स का मकसद डॉलर को खत्म करना नहीं है, लेकिन अमेरिका खुद डॉलर को बर्बाद कर रहा है। द्मित्री पेस्कोव ने कहा कि जब हम पर डॉलर का बैन हुआ तो हमने अपनी करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी अमेरिका खुद अपने डॉलर की साख गिरा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के रूस से डॉलर और यूरो को का जो इस्तेमाल का हक है वो उनसे छीन लिया गया है।
3: डोनाल्ड ट्रंप द अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स डॉलर के खिलाफ एक मंच है। आपने खुद बताया कि रूस दूसरे ब्रिक्स देशों के साथ जो पेमेंट करता है उसका 90% हिस्सा अब नेशनल करेंसी में होने लगा है। ब्रिक्स में ऐसे देश भी हैं जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर नेशनल करेंसी पेमेंट सिस्टम को चुना है। ऐसे में रूस या ब्रिक्स खुलकर डॉलर का इस्तेमाल कम करने की बात करने से क्यों बचते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जो आरोप लगाते हैं कि ब्रिक्स डॉलर के खिलाफ एक मंच है, उस पर आप क्या कहेंगे?
4: धन्यवाद, यह बहुत दिलचस्प सवाल है। खैर, मैं फिर से दोहराऊंगा, ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। ब्रिक्स तो अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए है, और रूस भी ब्रिक्स देशों में से एक है। रूस से अमेरिकी डॉलर और यूरो इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी हैं, और अमेरिका ने हमें इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद की करेंसी क्यों ना इस्तेमाल करें। क्या इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है? नहीं, कुछ हद तक तो यह उससे भी बेहतर है। और हमने अलग अलग देशों को नेशनल करेंसी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देना शुरू किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ हैं, और हम किसी डी डॉलरलाइजेशन पॉलिसी का दावा भी नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है। तो मैं ये कहूंगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे, तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है, और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है, उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है, और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है, और जाहिर है सभी देश वही कर रहे हैं जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और अगर नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट नेशनल करेंसी में ही करेंगे, और यह किसी देश के खिलाफ की गई प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए अमेरिकी डॉलर को सबके लिए फायदेमंद बनाइए, इसे नेशनल करेंसी से ज्यादा फायदेमंद बनाइए, और हर कोई अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी प्रक्रिया इसके उलट है, और ऐसा हमारी वजह से नहीं हो रहा है।
5: Make US dollar more profitable than national currencies and everyone will use US dollar.
2: वहीं आज तक संवाददाता गीता मोहन के सवाल के जवाब में दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत पर तेल खरीदने के लिए लगाई गई अमेरिकी पाबंदी के खिलाफ है। रूस इस अवैध और अस्वीकार्य इसे मानता है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि ईरान और यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए व्यापार पर पाबंदी को रूस बिल्कुल नहीं स्वीकार करता है।
3: मैं इंडिया टुडे से गीता मोहन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर पेस्कोव, मैं आपसे उस बातचीत के बारे में पूछना चाहती हूँ जिसका आपने अभी जिक्र किया। आपने कहा कि एक यूनिपोलर दुनिया सबसे कठोर तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। मेरा मानना है कि आप यहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने अभी सीनेट में एक बिल पास किया है जो रूस ईरान प्रतिबंध बिल है। एक तरफ अमेरिका रूस के साथ बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह उन देशों पर भी प्रतिबंध लगा रहा है जो रूस के साथ व्यापार करते हैं, विटकॉफ, कुशनर। और वॉशिंगटन के साथ बातचीत में भारत को भी इसका सामना करना पड़ा है। क्या प्रतिबंधों और रूस के साथ व्यापार करने पर सजा पाने वाले देशों के बारे में भी बातचीत हो रही है?
4: सबसे पहले तो हम इसे स्वीकार नहीं करते, और इसे गैर कानूनी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से यह निश्चित रूप से गैर कानूनी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करना और दूसरे देशों या तीसरे पक्षों को दूसरों के साथ व्यापार करने पर धमकाना, हम इसे गैर कानूनी, अनुचित और अस्वीकार्य मानते हैं। तो प्रतिबंधों का मुद्दा भी एजेंडे में है, यह सबसे आगे नहीं है, क्योंकि समझौता ही सबसे मुख्य मुद्दा है। लेकिन जाहिर है कि यह यूक्रेन के शांतिपूर्ण समाधान के पूरे एजेंडे का एक अहम हिस्सा है।
5: of peaceful settlement around Ukraine, of course.
2: तो बस अब से चंद दिनों में 11 से 13 ब्रिक्स समिट भारत में होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों को यहां पर होस्ट भी करेंगे, डेलीगेशंस को होस्ट करेंगे. ये भी मैं आपको बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आ रहे हैं. अभी बिश्केक में हाल ही में दोनों की मुलाकात भी हुई थी और इस वर्ष 3 मुलाकात होने की उम्मीद है. बिश्केक में हो चुकी है, फिर ब्रिक्स समिट और फिर भारत रूस जो बायलैटरल समिट है उसके लिए भी रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होगी. और ये दोनों देशों के परस्पर रिश्तों को दर्शाता है और ब्रिक्स देशों की यूनिटी और उनका संबंध कितना ज्यादा और मजबूत हो रहा है, किस दिशा में भारत उसे ले जाना चाहता है, इन सभी मुद्दों पर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होगी. इस खबर पर रहेगी नजर. फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
7: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.

बरेली में मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में एक साल पहले सड़क पर उपद्रव की कोशिश हुई थी। आई लव मोहम्मद मामले में प्रदर्शन का ऐलान करने वाले मौलाना ने धारा 144 को तोड़ते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज में रैली बुलाई। इसी रैली के दौरान वो तमाम गैर कानूनी हरकतें हुई थी, जिसके कारण इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान पिछले एक साल से जेल में है। तौकीर रजा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान हाईकोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा जैसे नारे की तुलना नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, जो बोले सोनेहाल सत या काल, जय श्री राम या हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप है कि पिछले साल सितंबर में हुई घटना के दौरान आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान हिंसा कराई गई। बीएनएसएस 163 की रोक के बावजूद रैली में सिर तन से जुदा वाले नारे लगे, पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम तक से हमला हुआ, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि तौकीर रजा के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखने की कोशिश की। तमाम आरोपों में तौकीर रजा सीधे तौर पर कहीं शामिल नहीं है, लेकिन उस दिन लगाए गए नारों को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि उपरोक्त धार्मिक नारे ईश्वर अथवा गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं, जबकि सर तन से जुदा जैसा नारा कानून के शासन, भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाला है। ऐसा नारा लोगों को हिंसक, विद्रोह और हथियार उठाने के लिए उकसाता है, जो कानून के तहत दंडनीय अपराध है। दरअसल तौकीर रजा के वकील अदालत को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सिर तन से जुदा वाला नारा केवल पैगंबर के प्रति सम्मान और अपनी धार्मिक नाराजगी व्यक्त करने का एक तरीका था, इसलिए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत देखा जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। आज तक ब्यूरो।

0: मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले दो संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक के पास बंदूक मिली, खुद को बता रहा था पीएमओ का अधिकारी। जेंजी से भरे वडोदरा में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। कहा छूट की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार से चलता है। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त एनएचआरसी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के निर्देश। अवैध पीजी के खिलाफ एमसीडी ने भी शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन में पहले की सरकार पर योगी का हमला। कहा माफियों के पास जाता था केंद्र का पैसा। अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। शुद्धिकरण मामले में हल्द्वानी और नैनीताल में केस दर्ज। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली में भी संसद मार्ग थाने पहुंचे कांग्रेस के कई नेता।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत। आज का दंगल उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सियासत के बदलते रंगों पर है। आज खबर आई है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी छात्र सभा की पोशाक का रंग ही बदल दिया। लाल टोपी और लाल हरे कपड़ों में दिखने वाले समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता अब नीली रंग की पोशाक पे भी नजर आएंगे। ये देखिए तस्वीरें, नीले रंग के टी शर्ट में लाल टोपी पहनकर और लाल रंग की साइकिल भी उसी टी शर्ट पर होगी। पतलून भी लाल रंग की होगी लेकिन टोपी लाल रंग की रखी है। हालांकि अखिलेश की पार्टी वाला नीला रंग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम की राजनीति करने वाले दलों के नीले रंग से थोड़ा ज्यादा गहरा है, लेकिन अखिलेश ने कहा है कि नए जमाने की नई सोच के नौजवानों यानी जेन जी कनेक्ट के लिए नया रंग लाया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अब हर राजनीतिक कार्यक्रमों में बाबा साहब की प्रतिमा, पोस्टर, ये सारी चीजें प्रमुखता से दिखाने की रणनीति बनाई है। उसे आज से लागू कर दिया भी गया है क्योंकि आज खुद समाजवादी पार्टी के नेता नीले रंग का गमछा पहनकर कार्यक्रम में आए थे और इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी के नेता नीला गमछा पहनकर नजर आ रहे थे। अखिलेश की इस पहल को यूपी में दलित वोटों और जेंजी वोटों के लिए एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में इस बार 17 से 18 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। कुल जेंजी करीब 2 करोड़ से अधिक है। यूपी के कुल इलेक्टोरेट में 15% की हिस्सेदारी रखने वाला ये युवा वोटर वर्ग 80 से 120 सीटों के नतीजों पर उलटफेर कर सकता है और इसकी ताकत ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही ध्यान में रखकर यूपी में अब सियासी रणनीति भी बनाई जा रही है। एसपी के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी यूपी में दलित रणनीति बनाई है। कांग्रेस के तो यूपी चुनाव प्रभारी भी कांग्रेस एससी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम को बनाया गया है। 32 सांसदों की टीम बनाकर दलितों का मुद्दा वो उठाने जा रहे हैं। उधर मायावती ने भी जेंजी वोट को ध्यान में रखकर छोटे भतीजे ईशान आनंद को सियासी मोर्चे पर उतार दिया है। लेकिन क्या यह रणनीतियां कारगर साबित होगी, क्योंकि यह देखना होगा कि पिछले 4 से 5 साल में दलित वोट जबरदस्त शिफ्ट हो रहा है। इससे पहले नॉन जाटव वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ 2014 और 2019 में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 2024 की बात करें तो 10 से 12% दलित वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी को 30 से 35% दलित वोट मिल पाए हैं। जाहिर तौर पर रंगों में यह बदलाव की वजह और मकसद दोनों साफ हो रहे हैं। तो आज के दंगल में हम इसी दलित वोट और जेंजी वोट को लेकर जो सौगात बिछाई जा रही है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल की अपनी बिसात, अपने मोहरे, अपनी चाल है। कहीं वर्दी के रंग बदल रहे हैं, कहीं नेता, कहीं प्रभारी बदल रहे हैं, कहीं भतीजे। और इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने क्रांतिकारी तब्दीली कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जेंजी के दलित वोटों तक पहुँच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को

0: नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है। और जब हम यूनिफॉर्म में आ जाते हैं तो सब गैर बराबरी खत्म हो जाती है, एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी लाती है। इसीलिए आज छात्र सभा के नौजवान नई सोच नई विचारधारा के साथ नई यूनिफॉर्म में जाकर के छात्र नौजवानों को जुड़ने का काम करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका रहा है, जो हमारी एफर्मेशन है, एफर्मेटिव एक्शन है, हमारे जो डेमोक्रेटिक एक्शंस हैं, उनको छात्र नौजवानों तक कैसे पहुंचाएं, और जो लगातार पीडीए मूवमेंट चल रहा है, उस पीडीए मूवमेंट से कैसे छात्र नौजवानों को जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ें।
1: 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी संक्रांति काल से गुजर रही है। इसके संकेत 31 अगस्त को तो मिल ही गए थे, जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंगवस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था। लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है, जिसके जरिए अखिलेश यादव यूपी के जेंजी दलित वोटर तक अपनी पहुँच की रणनीति तैयार कर रहे हैं।
2: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
3: जीन्स हमारी इसलिए होगी, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
4: हमारे जो अंबेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश है। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
5: बहुजन समाज पार्टी से आए हुए नेता भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
6: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है, और उत्तर प्रदेश ये भी नहीं भूला है कि आजम खान कैसे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को ये देख करके बताते थे कि भू माफिया है, जिस तरफ इनकी उंगली है उस तरफ भी कब्जा होने वाला है। किस तरह से समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर स्मारक को अय्याशी का अड्डा कहा था, अब आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उनको याद सता रही है।
1: दलित वोटों तक पहुंच की समाजवादी कोशिश की वानगी कुछ ऐसी है कि अखिलेश किसी भी चुनावी मुद्दे का जिक्र करते हुए बाबा साहब को याद करना नहीं भूल रहे। पिछले दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बयान देते हुए भी बाबा साहब को याद कर लिया।
7: प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चोरी हुई तो सोचो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान और कानून उसी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि चोर पकड़े गए ना, तो चोरों के कार्रवाई कैसे हो रही है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, जो कानून है उसी के तहत तो पकड़े जा रहे हैं।
1: अखिलेश के अंबेडकर मंत्र के पीछे दरअसल चुनावी आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि 2022 में जहां समाजवादी पार्टी को बमुश्किल 10 से 12 फीसदी दलित वोट मिले थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर लगभग 35 से 40 फीसदी तक पहुंच गए थे। इंडिया गठबंधन की ओर दलितों के बढ़ते इस रुझान ने अखिलेश को उम्मीदों से भर दिया है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी छात्र सभा की ड्रेस से ही सही अपना लाल रंग छोड़ नीला होने को तैयार हो रही है। और नीले रंग की मुहिम कुछ ऐसी है कि 1942 में अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, तब उन्होंने इसके लिए गहरे नीले रंग का झंडा चुना। उस झंडे के केंद्र में अशोक चक्र स्थापित था। अंबेडकर खुद भी अक्सर नीले रंग के कपड़े पहनते थे, बाद में दलित सियासत करने वालों ने भी इसी नीले रंग को अपनाए रखा। और अब लोहिया के जमाने से लाल रंग के साथ सियासत करती आ रही समाजवादी पार्टी धीरे धीरे नीले रंग को अख्तियार करती दिख रही है। उधर यूपी में दलित वोट की सियासत के दो दावेदार और हैं, जिसमें कांग्रेस और बीएसपी की भी अपनी रणनीतियां हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली में दलित आदिवासी 32 सांसदों की विशेष बैठक करके रणनीति बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस के SC/ST मोर्चा अध्यक्ष और खुद यूपी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने रणनीति तैयार की है।
8: SC/ST का पार्लियामेंट्री फोरम हमारा बना है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें 32 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हुए

0: और हमने अलग अलग तमाम मुद्दे पे बात की। हम लोग पूरा फोरम बैठेगा, हमारे क्या मुद्दे हैं, और उसके लिए हम एक सेक्रेटरीट भी बना रहे हैं। उस सेक्रेटरीट में रिसर्चर्स होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो हमारे सम्मानित सांसदों को हर मुद्दे पे इनपुट्स भी देंगे, सारा रिसर्च वर्क करके देंगे, डेटा देंगे।
1: दलित वोटों की सियासत करने वाली बाकी बची बीएसपी, जिसने जेंजी वोटों के लिए अपनी रणनीति में नया प्रयोग मायावती के छोटे भतीजे ईशान आनंद के तौर पर किया है। ईशान को 15 राज्यों की समीक्षा की जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: तो 2027 का चुनाव अगर जीतना होगा तो नीले रंग का सफर तय करना होगा। शायद समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि अब नीले रंग की भी उन्हें जरूरत पड़ेगी, जिस रंग के जरिए समाजवादी पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते थे। चर्चा करेंगे दलित वोटों की राजनीति पर। हमारे साथ गुरुप्रकाश पासवान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर रतनलाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। थोड़ी देर में सुधीन्द्र भदौरिया पॉलिटिकल एनालिस्ट और शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनसे भी हम सवाल पूछेंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने। क्या समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा की पोशाक का रंग बदलने से दलित वोटों का फायदा होगा? क्या सिर्फ रंग बदलने से फायदा हो पाएगा? दूसरा सवाल, क्या 2027 में भी इंडिया गठबंधन को 2024 की तरह दलित वोट का फायदा मिल पाएगा? और तीसरा सवाल, क्या 2027 के नतीजों का दारोमदार दलित और जेंजी वोटों के रुझान पर ही निर्भर करेगा? क्योंकि ये ऐसे वोट है जो कहां जाएंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी, कांग्रेस के दलित सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले थे, उस हल्द्वानी खड़गे अपमान मामले में यह बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने मामला दर्ज कर लिया है। शुद्धिकरण केस में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। अधिवक्ता अंजू की शिकायत पर, जो पहली शिकायतकर्ता थी दरअसल इस पूरे मामले की, और उनकी शिकायत नहीं ली जा रही थी, और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वहां पर दौरा करने वाले थे, उससे पहले ये FIR दर्ज की गई है। SC ST एक्ट के तहत सेक्शन 3(1)(r) के तहत और उसके साथ साथ BNS की धाराओं के तहत भी ये FIR दर्ज कर ली गई है। BNS की धाराएं 196 और 299 के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है। अंकित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है देहरादून से। अंकित, आखिरकार सरकार पर दबाव बना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाकर सरकार को कहना पड़ा कि वो FIR दर्ज कर दे, हाई कोर्ट के सामने जाकर, तब जाकर वो पिटीशन रद्द की दरकिनार कर दी गई है।
3: जी बिल्कुल साहिल, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगले दिन मतलब कल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, उससे एक दिन पहले।
4: तो और सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी है। सर्वप्रथम मैडम अंजू ने कोतवाली हल्द्वानी में आकर विधिवत तहरीर, जो विधिवत फॉर्मल तहरीर के रूप में उन्होंने एप्लीकेशन और बेसिकली तहरीर उन्होंने रिसीव कराया था थाने में, और तदोपरांत उन्होंने थानाध्यक्ष को और ऑफिसर्स को वीडियोस भी उपलब्ध कराए थे। अतः जो है विधि सम्मत विधिवत तहरीर के आधार पर हमने आज जो है अंजू की तहरीर पर, मैडम अंजू की तहरीर पर FIR नंबर 304/2026 हल्द्वानी प्रकरण में अंडर सेक्शंस 196, 299 एंड 31R SC ST एक्ट के अंतर्गत हमने अज्ञात के विरुद्ध जो है पंजीकृत किया है। दिस इज ऑल एज पर द एप्लीकेशन ऑफ मैडम अंजू। एंड आप सभी को मीडिया के माध्यम से अवगत है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी यही मांग था लगातार जब हल्द्वानी में प्रदर्शन हो रहा था कि अंजू मैडम की एप्लीकेशन पर कार्रवाई हो जाए। ये सब आपने मीडिया के माध्यम से ही देखा है, सभी का मांग यही था। तो अतः जो है विधि सम्मत रूप से भी और इनका डिमांड के अनुरूप भी यही सही था कि हम अंजू के एप्लीकेशन पर कार्रवाई करें। तो अतः हमने विधिक परिशीलन के उपरांत अंजू, मैडम अंजू के एप्लीकेशन पर FIR पंजीकृत किया है। अभी यह मामला FIR पंजीकरण के उपरांत विवेचनाधीन है। मामले का संवेदनशीलता के दृष्टिगत हमने हमारे जनपद का सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर, जो कि अभी वरिष्ठ PPS ऑफिसर है और अभी IPS में प्रमोट हुए हैं, IPS ऑफिसर श्री जगदीश चंद्रा जी, उनको हमने इसका विवेचना सौंपा है। अभी हम सभी को जिन्होंने भी ये एप्लीकेशन दिया है, जिन्होंने भी संपूर्ण हल्द्वानी में भी और पूरा स्टेट में एप्लीकेशंस दिए हैं, उन सब से हम अपील और अनुरोध करते हैं कि अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से संपर्क करें, इस प्रकरण के संबंध में जो भी आपके पास एविडेंसेस है तो इस पर सोशल मीडिया में ना साझा करें, आप कृपया करके आईओ को साझा करके उसमें विवेचना में सहयोग करें। तो अभी मामला विवेचनाधीन है, एविडेंस कलेक्शन इज इन प्रोग्रेस, एनीबडी हु हैज टू ऑफर एनी एविडेंस कैन प्रोवाइड इट टू श्री जगदीश चंद्रा जी, हमारा आईपीएस ऑफिसर है, सीनियर पीपीएस ऑफिसर भी है और हमारा एसपी क्राइम एंड ट्रैफिक नैनीताल है। थैंक यू।
2: ठीक है जी, यहाँ पर एसपी क्राइम अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे और एसएसपी नैनीताल के वो ये जानकारी दे रहे थे। अंकित, आखिर ये राजनीतिक दबाव मानकर चले क्योंकि पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रदर्शन कर रही थी।
3: बिल्कुल साहिल, देखिए कल नितिन नवीन जो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हल्द्वानी जाना है और 2 दिन का उनका दौरा है, उससे 1 दिन पहले ये एफआईआर दर्ज होती है और जो एफआईआर को लेकर जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था जिसमें 180 थानों में तहरीर दी गई थी, उसमें से एक तहरीर अधिवक्ता अंजू ने भी दी थी जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हैं और अनुसूचित समाज से भी आती हैं, और उन्होंने एसएसपी के सामने कहा भी था कि अगर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के और इतने बड़े नेता हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए हमारे साथ क्या होगा, तो ऐसे उनके वक्तव्य थे और उससे पहले भी उन्होंने तहरीर दी थी। तो सबसे पहले तहरीर देने वालों में से थी अधिवक्ता अंजू और जिस तरह से पूरा समीकरण बदला है, लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, देहरादून में 2 बार प्रदर्शन हो चुके हैं, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है और इसके साथ ही जो सांसद थे उन्होंने भी मांग करी राष्ट्रपति से मिलने के लिए, और कल नितिन नवीन आ रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरह से उनका जल्दी में जो दूसरा दौरा हुआ है,
2: जाहिर सी बात है कि कयास लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर हल्द्वानी आने वाले हैं, उससे पहले कोई राजनीतिक झगड़ा वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं चाहिए था, सरकार टाल रही थी और इसीलिए जब हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई उस मामले में भी सरकार ने साफ कर दिया था कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके बाद अदालत ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया था। शुरुआत इसी से करनी पड़ेगी क्योंकि मुख्य मुद्दे पर हमें आना है, लेकिन गुरुप्रकाश पासवान जरा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहिए, जो मांग की जा रही थी अगर पहले ही कर देते, उल्टा आपने वहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एफआईआर कर दी, अब आखिरकार जाकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एफआईआर करनी ही पड़ी इस पूरे मामले को लेकर, पहले ही कर देते मामला इतना बढ़ता नहीं, चुनाव भी आने वाले हैं वहां पर, बेवजह वहां पर आपको तकलीफ होने लगी अभी?
5: नहीं नहीं देखिए साहिल जी, सवाल ही नहीं खड़ा होता है, हमको कहां से तकलीफ होगा, ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी ने विषय कब उठाया, हुआ कब था, ये देखिए 21 दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी को याद आई कि खड़गे जी का अपमान हुआ है, खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मीटिंग में बोलना पड़ा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड है कि खड़गे जी ने मीटिंग में कहा कि भाई आप लोगों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो जाता आप लोग इस विषय को उठा ही नहीं रहे। तो 20 दिन के बाद 21वें दिन राहुल गांधी जी ने इस विषय पे प्रेस वार्ता किया, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जो एफआईआर वहां पे हुआ काउंटर एफआईआर, ये बीजेपी ने थोड़ी किया था, ये वहीं के 2 दलित समाज के युवकों ने एफआईआर किया था। राहुल गांधी जी उनको ये समझना चाहिए, और कितने एफआईआर करेंगे, देखिए साहिल जी मैं देख रहा था केरल में दलित समाज की इनकी महिला है रम्या हरिदास, उन्होंने अपने पार्टी के ही 7 लोगों के खिलाफ में एफआईआर किया है, क्योंकि रम्या हरिदास दलित समाज की महिला विधायक के खिलाफ में हिंसा का मामला सामने आया है। राजस्थान में बीकानेर के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मदन मेघवाल, दलित समाज के हैं, पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनकी पिटाई हो गई है। तो कितने एफआईआर करेंगे, कांग्रेस पार्टी को कम से कम अब ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी अंदर दलित समाज का
2: सुरक्षा। पूरे देश भर में कई सारे उदाहरण इस पूरे मामले पर दे सकते हैं कि कहां पर दलितों पर किसने अत्याचार किया है, क्या बोला है और किस तरीके से मामले दर्ज हुए हैं नहीं हुए हैं, हर सरकार को हम कटघरे में खड़े कर सकते हैं। लेकिन टाइमलाइन देख लीजिए ना, अंजू अधिवक्ता जो है वो जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है, शिकायत दर्ज करती है, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं दी जाती। अचानक वहां पर 2 दलित समाज के व्यक्ति खड़े होते हैं, कहते हैं कि समाज के भीतर झगड़ा पैदा करने की कोशिश राहुल गांधी वहां पर कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कर लीजिए, वो तुरंत फुर्ती से कर लिया जाता है एफआईआर, और अब अदालत में जब मामला जाता है तब कहा जाता है कि हम एफआईआर लेने को तैयार हैं। भाई टाइमलाइन से ही पता चल जाता है ना, देखिए उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव होने वाले हैं, दलित वोटों का मामला बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए सरकार ने को करना पड़ा, ये मानकर चले क्या हम?
5: नहीं नहीं देखिए साहिल जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आपको, जो मैंने आपको 2 घटनाओं का जिक्र किया आपके और आपके दर्शकों के लिए, ये कोई आम घटना नहीं थी, ये आम समाज की घटना नहीं थी। राहुल गांधी जो आज की तारीख में दलितों के बहुत बड़े हितैषी बने हुए हैं, दलित अधिकार के ठेकेदार बने हुए हैं, उनके पार्टी के अंदर का मामला है, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मामला है, उनके पार्टी के अंदर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं क्या, हम लोग टिकट नहीं बांटते हैं क्या? हमारे आपने सुना है कि किसी दलित की पिटाई हो गई, लेकिन यहां लगातार 2 तारीख को मदन मेघवाल की पिटाई हो जाती है दलित समाज कांग्रेस के अध्यक्ष की, अभी परसों देखा राम हरिदास जो महिला विधायक है दलित समाज की केरला में उनकी पिटाई हो जाती है। और दूसरी बात उत्तराखंड का देखिए, नहीं देखिए साहिल जी एक बात बताना चाहता हूं, उत्तराखंड में जो विलंब हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है, कांग्रेस पार्टी वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस इशू अनलेस अंटिल, जब खड़गे जी को बोलना पड़ा बैठक के अंदर कि मेरा अपमान हुआ है 21वें दिन। आप बताइए मुझे बात, 21वें दिन
2: पार्टी को भूल जाइए, वो अर्जुन जी बेचारे जाकर वहां पर मामला दर्ज करने की कोशिश कर रही थी, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी वहां पर, आप जाकर एसएसपी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पर मत डालिएगा, जो भी कहना है हमारे पास आइएगा, सोशल मीडिया पर मत डालिए, ये भी उनको सलाह दे रहे हैं एक तरीके से, वो भी एक अलग से कहीं ना कहीं डर है उसमें।
5: नहीं नहीं साहिल जी देखिए ये सरासर गलत बात है, अंजू जी वकील है, अंजू जी का एफआईआर कोई नहीं दर्ज करेगा। मैं यहाँ पे आपके शो पे बहुत चुनौती के साथ कहता हूँ, अंजू जी एफआईआर ये वीडियो दिखा दे कि भाई हम गए थे वहां पे घटना के दूसरे दिन एफआईआर करने, किसी ने एफआईआर नहीं लिया, किस प्रकार की बात है भाई? इस पूरे के पूरे
2: मामले का रतनलाल जल्दी से कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया, आपकी बात तो मान ली गई है, और इस बीच जो समाजवादी पार्टी का रंग बदला है कपड़ों का, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन रतनलाल जी पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए एफआईआर हो गई आखिरकार,
6: दो तीन मिनट
2: नहीं बोलने देंगे सर, ये डिबेट है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में रोकना भी पड़ेगा मुझे, चलेगा ना?
6: एक मिनट बोलने देंगे, मैं हिंदू कॉलेज में
2: पढ़ाता हूँ, बोलिए शुरुआत तो करिए। जी सर,
6: हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 29 साल पढ़ा लिया, दर्जनों किताबें हमने लिखी है और आर्टिकल्स लिखे हैं, और हिंदू कॉलेज में कैंपस में ही रहता हूँ, और यहाँ के चेयरमैन है गवर्निंग बॉडी का TCA रंगाचारी तमिल ब्राह्मण, कल पब्लिक व्यू में मुझे अपशब्द कहा, मुझे गालियां दी है सबके सामने, खाली फैक्ट रख रहा हूं, 10 साल से मेरे प्रमोशन रोके हुए, 8 साल से 10 साल से छुट्टी नहीं दे रहा है किताब लिखने के लिए, आप कैंपस में आइए, जो मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे घर पे आइए, एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो मुझे अलॉट किया गया था, खंडहर था, उसमें लाखों रुपए खर्च के करके मैंने पर्सनल लिवेबल बनाया, मेरे घर के चारों ओर प्रशासन कॉलेज प्रशासन कचरा फैलवाता है, ठीक है, गुरु प्रकाश जी के पिताजी मेरे दोस्त हैं संजय पासवान जी, बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो राष्ट्रपति के नॉमिनी थे, 2 बार वाइस चांसलर से उन्होंने मुझे मिलवाया, मैं इतने कितनी गुहार की कि भाई मेरे साथ न्याय किया जाए, चेयरमैन मुझे गाली दे रहा है, कोई वाइस चांसलर कोई अथॉरिटी, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि मैं हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर हूं, हाँ, 4 महीने इंस्टांसर दिए, 1 मिनट बीच में टोकिएगा ना, तब टोकिएगा मत, आपके पिताजी को सब कुछ पता है, और जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, खड़गे जी के साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचिए कि आरएसएस जो कि बीजेपी जो कि मनुस्मृति में विश्वास करती है, संविधान को नहीं मानती है, ये कागज ऑर्गेनाइजर का लेख मैं हर समय लेके चलता हूँ, 30 नवंबर 1949 का, इसमें कहते हैं कि संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है, हम मनुस्मृति को मानते हैं, ये है, देखिए दलितों के लिए चाहे कांग्रेस का राज रहा हो चाहे बीजेपी का, एज एक एडमिशन में अभी बात कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 के पहले तो गुरु प्रकाश तो बोलेंगे कि वहां पर घी की नदियां बह रही थी, अब मोदी के काल में घी की नदी बह रही है, अत्याचार हुआ है दलितों का कांग्रेस से,
2: आपने जो मुद्दा छेड़ा है ना, आप ये मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग होता रहेगा, अब ये मुद्दा और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके बगल में जो घनश्याम तिवारी बैठे हुए हैं ना, हाँ चलिए और 20 सेकंड लीजिए, लेकिन फिर भी आपका मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, और लीजिए लीजिए 20 सेकंड लीजिए,
5: लीजिए
2: लीजिए,
6: अरे 30 सेकंड और दीजिए, कांग्रेस का शासन काल में भी दलितों को उत्पीड़न हुए, ये मना नहीं कर रहा, लेकिन उस समय स्टेट मशीनरी एक्शन लेती थी, ये देखिए चिट्ठी 2 अगस्त 1973 का इंदिरा जी का चिट्ठी है, जो सारे सीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखे गए थे कि दलितों को बचाया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, सरकारी नौकरी में लाया जाए उनको, और मैं क्या बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए न्याय नहीं हो रहा है, खड़गे साहब के लिए न्याय नहीं हो रहा है, तो कौन सुनेगा? भाई चांस
2: दलितों पर अत्याचार की कहानी जो है ना, रतनलाल जी आप प्रोफेसर है, और मैं बड़ी नम्रता से आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दलितों पर अत्याचार की कहानी हर सरकार के कार्यकाल में लिखी गई है, और दलितों को अपने आप नहीं, हर हर सरकार के कार्यकाल में लिखी गई है, और अपने हक के लिए उन्हें हमेशा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। आखिरकार कांचीराम को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी, तब जाकर उत्तर प्रदेश के भीतर सत्ता नसीब हुई उनके उनके पास, वरना दलित समाज को बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का एक छोटा सेल बनाकर घूमना पड़ता था। यह सच्चाई है इस देश की राजनीति की। मुझे आप प्रोफेसर है, आप समझ सकते हैं, भले आप कांग्रेस पार्टी के होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दलितों को बड़ी आसानी से चीजें मिली है। ठीक है,
7: अब जरा
2: गुरु प्रकाश पासवान, नहीं जरा एक मिनट प्लीज, मैं अभी जरा मामला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि क्या है, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया हुआ है कि मनुस्मृति को मानने वाले। अब देखिए, घनश्याम तिवारी की पार्टी होले होले सनातन बनती जा रही है, सनातनवादी पार्टी, जो क्योंकि समाजवादी सनातन एक नई घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी। अब नीला रंग तो पहन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सनातन को भी मान रहे हैं। सनातन धर्म कहीं ना कहीं मनुस्मृति को भी मानता है घनश्याम तिवारी जी, तो आपका सनातन सिर्फ नीले कपड़े पहनकर राजनीति करेगा दलितों की, या कुछ और भी सोचेगा उस बात को लेकर? क्योंकि यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, कांग्रेस पार्टी की भूमिका बड़ी साफ है इस मामले को लेकर, आपकी भूमिका जरा बताइए, नीला रंग कहां से आ गया ये?
8: नमस्कार साहिल जी, आपको, दर्शकों को और को-पैनलिस्ट को। पहली बात तो मनुस्मृति इस देश में संविधान को हटा करके मनुस्मृति लाने का मिशन सिर्फ एक दल का है और एक संगठन का है, वह है आरएसएस और बीजेपी। न समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना है, न कांग्रेस पार्टी का इससे, देश में किसी भी व्यक्ति को जो कि बराबरी चाहता है उसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। जो महिलाओं की बराबरी चाहता है, जो पिछड़ों की दलितों की बराबरी चाहता है, वही लोग जो गैर बराबरी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोग इस देश पर राज करें, भारतीय जनता पार्टी को 25,000 करोड़ का चंदा दें जो कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में कमाया है, मुट्ठी भर पूंजीपति देश की सारी संपदा खा जाए जो इन्होंने बनाए हैं वो पूंजीपति, और देश के प्रधानमंत्री अपनी गरीबी को मार्केटिंग करते रहें और सबसे अमीर आदमी को अपनी जेब में रखते रहें। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, देश में किसी
2: शंकराचार्य का आशीर्वाद आपका आपको मिल रहा है, वो तो मानते हैं ना मनुस्मृति को, अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है, वो तो मानते होंगे ना कि नहीं मानते?
8: हमें उत्तर प्रदेश में और देश में सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। जब हम संसद में खड़े होते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पीड़ितों की बात करते हैं, ये शुद्धिकरण जो भारतीय जनता पार्टी कराती है, ये सिलसिला यहीं से थोड़ी शुरू हुआ था, ये तो आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था जब वो मुख्यमंत्री बने थे, कि जब अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री का घर छोड़ा था तो आदित्यनाथ जी आए और उन्होंने फिर सिलसिला शुरू किया शुद्धिकरण का, फिर वो एक दलित बस्ती में गए तो वहां पे साबुन और शैंपू माटा गया। तो ये जो जातिवादी सोच है, अछूत बनाने की परंपरा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की परंपरा है। ये आपको रंग के आधार पर अछूत बना सकते हैं, आप देशभक्त हैं कि नहीं इस सर्टिफिकेट के आधार पर अछूत बना सकते हैं, आप किस धर्म के प्रति आसक्ति रखते हैं उसके आधार पर अछूत बना सकते हैं, अगर आप किसान हैं और अपने मुद्दों के बात रखेंगे तो फिर आपको अछूत बना देंगे, आप छात्र हैं, आप दब गए मलबे के नीचे, इनकी 8 इंजन की सरकार है, आपके परिवार को अछूत बना देंगे, सिपाही को अछूत बना देंगे। तो ये परंपरा अछूत बनाने की भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की मूल परंपरा है।
2: ये जरा राजकाल भी समझा दीजिए ना घनश्याम जी, थोड़ा दर्शकों के लिए बात समझाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो हम तस्वीरें चला रहे हैं आज, समाजवादी छात्र सभा के जो आपके कार्यकर्ता है, लाल टोपी और नीले कपड़ों में वहां पर नजर आ रहे थे, आपका नीला थोड़ा गहरा रंग है, बहुजन समाज पार्टी वाला रंग नहीं आपने लिया हुआ है, ये नीला गहरा रंग का जरा रैशनल लॉजिक जो भी है समझा दीजिए उसमें।
8: देखिये, मुझे इस बात से खुशी है कि समाजवाद के सिद्धांत, जो कि एक बहुरंगी बहुजन समाज का सिद्धांत है, उसमें किसी हर रंग के प्रति आ सकती है। हम इस तरीके के नहीं है कि हमने एक रंग अपना लिया और बाकी सारे रंग के लोगों को गाली देंगे, बाकी सारे रंग को बोलें कि हम इनको कपड़ों से रंग से पहचान सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर रंग में रंग जाते हैं, हर समाज के लोगों से जिस रंग को वो पसंद करते हैं, जिस तरीके से वो प्रस्तुत होना चाहते हैं प्रस्तुत करते हैं। हमारा ध्येय है उत्तर प्रदेश में ये जो सांड बनाम साइकिल का चुनाव है, एक खुला सांड है जो सब कुछ तहस नहस कर रहा है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो जुल्म कर रहा है, और एक साइकिल है जो गरीब की साइकिल है जिससे लोग अपना रोजगार पाते हैं, जो हर किसी के लिए है, और वो उम्मीद की साइकिल है। हमारा प्रयास है कि उस उम्मीद की साइकिल से
2: आपका पीडीए जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके पीडीए की व्याख्या हर महीने नए तरीके से आप सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहली बार इस बार हमने देखा कि कांचीराम की जयंती मनाई गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, पीडीए दिवस मनाया गया पहली बार, जो कांचीराम एक वक्त के बाद समाजवादी पार्टी के धुर विरोधी बन गए थे, आज कांशीराम दिवस बनाया जा रहा है अखिलेश यादव से, ये चुनावी राजनीति नहीं है तो क्या है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है घनश्याम जी। लेकिन जरा गुरुप्रकाश जी आप पहले जवाब दीजिएगा, क्योंकि रतनलाल जी ने काफी सीरियस, घनश्याम जी आपकी बात खत्म करिए फिर गुरुप्रकाश।
8: बस एक वाक्य देखिए, एक है पार्टी जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करती है, चाहे वो रंग हो चाहे कौन कौन से समारोह मनाती है, दूसरा कि उसकी जो नीतियां हैं। हमारे देश में लगभग 10-15 साल से जातीय जनगणना की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी न जाने कितनी बार कितने राज्यों में सरकार में रही, अभी भी 20-25 कहीं कहीं पीछे डोर से, कहीं सरकार चुरा करके, कहीं दल चुरा करके देश भर में अनेक राज्यों में ये सरकार में है। एक भी राज्य है जिन्होंने यहाँ जहां पर उन्होंने कास्ट सर्वे सर्वे कराया है, इकलौती पार्टी जो कि देश के, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो देश के हर गरीब के खिलाफ खड़ी है, हर पिछड़े के खिलाफ खड़ी है, हर दलित के
2: खिलाफ। कांशीराम जयंती मनाने का लक्ष्य में समझने की कोशिश कर रहा था। घनश्याम जी जाति जनगणना पर तो हम बात कर चुके हैं, आपको इतने साल के बाद कांशीराम जयंती क्यों याद आ रही है ये भी तो समझना चाहिए ना। चुनावी वर्ष में अगर कृष्ण जन्मभूमि बीजेपी को याद आती है तो आपको कांशीराम की याद आ रही है, ये बात भी तो सही है ना। कहीं ना कहीं रंग बदले जा रहे हैं, नए रंग अपनाए जा रहे हैं,
8: इस बात पे आप टिप्पणी कर सकते हैं। और हमारा प्रयास है, हम ईमानदारी से उस प्रयास को प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में हम चाहेंगे कि जितने लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने खुले सांड की तरह जुल्म ढाया है, अत्याचार किया है, वो सारे लोग इस खुले सांड को पिंजरे में डालें और एक ऐसी सरकार बनाएं जो कि
2: गुरुप्रकाश पासवान अब जवाब देंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है इस बात को लेकर, वो भी हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद शांतनु गुप्ता के पास चलेंगे। लेकिन गुरुप्रकाश पासवान पहले आप।
5: नहीं देखिए, मैं सुन रहा था अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातों को, ये समाजवादी पार्टी के संस्कार हो सकते हैं। जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग नेशनल टेलीविजन नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इस पार्टी से और आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आज उनको दलितों की याद आ रही है। साहिल जी मेरा मन बहुत व्यथित है, दलित अधिकारों के लिए हम भी काम करते हैं, पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, आज दलित अधिकारों को रंगों में रोक दिया गया है। नीला मतलब दलित अधिकार। मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगेगी। बहुत बड़ा एहसान किया आपने, अब 21वीं सदी में रंग पहन करके तस्वीर लगा करके आप दलितों को लुभाने का काम करेंगे। दलितों को समझते क्या है आप जिस पशु का जिक्र कर रहे थे, आप दलितों को वो समझते हैं क्या? और मैं बताना चाहता हूं साहिल जी, मैं सुन रहा था इनकी बातों को, पहली बार यहां प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं वो इस बात को वेरीफाई करेंगे, पहली बार देश के सदन में आरक्षण का विरोध हुआ था, दलितों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, यही समाजवादी पार्टी ने किया था। पहली बार देश में दलित समाज की बेटी मुख्यमंत्री बनी, उनके हत्या का प्रयास, बकौल मायावती जी मेरी हत्या का प्रयास समाजवादियों ने करवाने का प्रयास किया है। और यही समाजवादी पार्टी, इनके नेता आजम खान कहते हैं देखो ये सबसे बड़ा भूमाफिया है, बाबा साहेब अंबेडकर को भूमाफिया बोलने वाला, मायावती जी की हत्या करवाने की साजिश रचने वाला, आरक्षण का संसद में विरोध करने वाला, अपने पार्टी में अपने परिवार के अलावा कितने दलित नेता है? मैं पूछना चाहता हूं, एक दलित नेता का नाम बताइए ना। अरे हमको मौका मिला, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में 3-3 दलित समाज की महिलाओं को कैबिनेट मंत्री बनाया है, यहां वही डिंपल यादव, वही शिवपाल यादव, वही रामगोपाल यादव, वही धर्मेंद्र यादव, वही अखिलेश यादव। अरे भैया आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों पर जितना उत्पीड़न अत्याचार और हिंसा हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं, एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखिए। बदायूं भूल गए हैं क्या? बदायूं में दो दलित समाज की बेटियों की रेप करके हत्या करके लटका दिया गया था। कौन गया था वहां पे? कोई नहीं गया था। तो मैं बताना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से बड़ा दलित विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई और पार्टी होगी। यहां कोई बैठा हुआ है अपने हृदय में,
2: तिवारी जवाब दीजिए उसके बाद रतनलाल
5: बता देंगे आपको। तथ्यात्मक रूप से मैं चुनौती देता हूं, अगर मेरा एक भी फैक्ट गलत हो तो आप मुझे बताइए।
8: मैं फैक्ट पे ही बात कर रहा हूं क्योंकि मैं गुरुप्रसाद का सम्मान करता हूं, इसलिए गुरुप्रकाश का सम्मान करता हूं, मैं कुछ फैक्ट सकता हूं। पहली बात जो उन्होंने कहा कि किन राज्यों में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़ों के बारे में बात की, आप पिछले 3 साल के आंकड़े उठाइए, कौन से राज्य हैं जिस राज्य में आप बैठे हुए हैं? बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अग्रणी है, लगभग 15,000 से 16,000 क्राइम हर साल, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलितों को स्थान नहीं देती, इस बार के 2024 के चुनाव में जहां प्रधानमंत्री स्वयं अपनी चुनाव की सीट हारते रहे, जहां पे उन्होंने विपक्ष के चुनाव को मुजरा कहा और देश के लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट किया, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में 7 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया गया। लगातार अगर आप 2022 के आंकड़े देखिए और 2024 के आंकड़े देखिए तो लगातार देश के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, इनका विश्वास प्रधानमंत्री जी के इस फैंसी ड्रेस प्रयास से, इंस्टाग्राम के प्रयास से हट गया है, जनरल शाह की बर्बरता से हट गया है और योगी जी की बुलडोजर से हट गया है और जिस तरीके की नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है उससे हट गया है। अब इन्होंने तीसरी बात कही कि समाजवादी पार्टी दलितों के खिलाफ है। अगर इनकी बात में जरा से भी सच्चाई होती तो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से इनकी सरकार ने कुछ भी ऐसा किया है, जिन राज्यों के मैंने नाम बताए या जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मैंने नाम बताए, अंतिम बात तरह तरह के उदाहरण दिए, भाई हाथरस का उदाहरण ले लीजिए, गांव का उदाहरण ले लीजिए, प्राजल रेवन्ना का उदाहरण ले लीजिए, ऐसा कोई अपराध नहीं है। 2000 एमपी और एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक दो नहीं, इसमें से 800 के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। इनका अपना एफिडेविट कहता है भारत के इतिहास का सबसे काला सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी राजनीति को क्रिमिनल्स और भ्रष्ट।
2: लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जब दलित राजनीति को आवाज देना और चेहरा देने की कोशिश कांचीराम के जरिए की गई, तब सबसे पहले उसका फायदा समाजवादी पार्टी ने उठाया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनका सपोर्ट लेने की कोशिश की थी लेकिन वो गठबंधन नहीं चल पाया था, और उसके बाद मायावती को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी बनाया था और वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। तो तीनों पार्टियां जो यहां पर बैठी हुई है, कभी ना कभी दलित वोटों की जरूरत उनको आ पड़ी है, ये बात देखनी होगी। और जरा दलित वोटों का रुझान भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा गुरुप्रकाश, जरा आपके पास आता हूं क्योंकि मुझे शांतनु जी के, अरे सर आता हूं आपके पास, जरा शांतनु जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, रतनलाल जी के पास भी जाना है। चलिए 10 सेकंड
5: चलिए देखिए, हाँ नहीं इतना लंबा बुलवाएंगे तो हम लोग जवाब तो देंगे ना, चुपचाप सुन रहे तुम की बातों को। नहीं, ये अपराधियों की बात कर रहे हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शाम में 6 बजे के बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ में कोई निकलता नहीं था, हत्या, नरसंहार, रेप, भ्रष्टाचार, सैफई को हेडक्वार्टर बना के रखा हुआ था, आज ये लोग भाषण देते हैं साहिल जी तो मुझे हंसी आती है। समाजवादी पार्टी मतलब गुंडाराज, समाजवादी पार्टी मतलब जंगल राज, जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल है वही बिहार में, वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है। ये जंगल राज और ये अपराध राज पुनः वापस लौट के नहीं आएगा, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का शासन पुनः लौट के नहीं आएगा, ये बात नोट करके लिख लीजिए आप।
2: ठीक है, चलिए अब जरा दलित वोटों का रुझान भी आपको दिखा देते हैं। और शांतनु जी, यहां पर मैं आपको लाना चाहूंगा क्योंकि डर कहीं ना कहीं इस बात का भी लग रहा है और समाजवादी पार्टी लगता है इस बात की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नॉन जाटव दलित वोट है करीब 56% इंडिया अलायंस के पास, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलायंस के पास चले गए थे, जाटव वोट करीब 25% उनको मिले थे, एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी और बाकी जो उनके अलायंस पार्टनर्स हैं उन्हें 24% और 29% वोट मिले थे जाटव और नॉन जाटव, जबकि बीएसपी का वोट प्रतिशत जाटव में 44% रहा, नॉन जाटव वोट उनका 15% तक आकर सिमट गया था। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पहुंच दलित वोटों में कांग्रेस पार्टी साथ होने की वजह से हो सकता है या किसी और कारण से हो सकता है बढ़ रही है, 15% से 35% का जंप उनके वोट में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नजर आ रहा है। शांतनु जी, ये टोटल वोट शेयर आप देख लें तो उससे समझ में आ जाएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी को नुकसान होता जा रहा है, समाजवादी पार्टी को फायदा होता जा रहा है, यही कारण है ये रंग बदलने का, नया रंग अपनाने का और आगे बढ़ने का।
6: नहीं साहिल जी, आप चाहे मुलायम सिंह यादव की राजनीति देखें या अखिलेश यादव जी की राजनीति देखें, वो कभी कभी विजन की राजनीति नहीं रही है। अगर अखिलेश यादव बताएंगे तो क्या बताएंगे, मेरे पिताजी ने क्या किया है, मैंने क्या किया है, तो उनके पास कुछ बड़ा बताने को नहीं है। वो कहेंगे हमने राम भक्तों पे गोली चला ली, ठीक है शायद उससे मुस्लिम वर्ग का कुछ वोट मिल जाए, उससे कह दें कि कल्याण सिंह जब चीटिंग के विरुद्ध कानून आया तो हमने हटा दिया, जब सिमी को बैन हुआ तो हमने सिमी के साथ खड़े हो गए, अगर आतंकवादी जेल में जाते हैं तो हमने उनको छुड़ाने के लिए लेटर लिखा, तो उनके पास ऐसा कुछ बताने को नहीं है। तो उनके पास केवल फॉर्मूला बेस्ड राजनीति है, थोड़ा एम लिया थोड़ा वाई लिया, अब एम वाई जो एक्सप्लॉइट कर सकते थे उससे 30% वोट आ चुका उनको, उसी से वो मुख्यमंत्री बने। अब उत्तर प्रदेश में गेम हो चुकी है 40-45% की, तो उन्हें अपना दायरा बढ़ाना है और मायावती का क्योंकि ग्राफ नीचे हो रहा है तो दलित वोट एक तरह से अप फॉर ग्रैब है, और दलित वोट जब भी मायावती से हटा तो भाजपा के पास आया। आप देख लीजिए, जब से अखिलेश यादव जी ने पार्टी छीनी है अपने पिताजी से, पिताजी को बाहर निकाला, पिताजी ने कहा भी कि ऐसा बेटा किस काम का जो अपने बाप को बाहर निकाल दे, वो किसका हो सकता है,
7: अपने चाचा को बाहर निकाला, सारे उसके बाद तुमने सारे 24 में जो गेन है ना उसको गेन क्यों कहूंगा, वो गेन इंडिया गठबंधन को कई जगह मिला, वो उनको हरियाणा में भी मिला, उनको महाराष्ट्र में भी मिला, उनको कुछ जगह मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जो 400 पार का नारा था उसको बड़ी चालाकी से ट्विस्ट कर दिया, इसे संविधान बदल जाएगा, इससे रिजर्वेशन चला जाएगा, खटाखट पैसे आ जाएंगे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से वो वीडियो डलवाया, मॉर्क वीडियो एडिटेड वीडियो डलवाया, तो उससे उनको लिमिटेड गेन मिला, लेकिन मेरे ख्याल से वो लिमिटेड गेन का जो एडवांटेज है वो साइफन ऑफ हो चुका है, वो हमने महाराष्ट्र में देख लिया, वो हमने हरियाणा में देख लिया, हमने वो वेस्ट बंगाल में देख लिया, जहां भी गेन्स हुए थे 24 में वो गेन वापस आ गए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों में चुनाव हुआ, जब उपचुनाव हुआ अगले ही साल 24 के बाद, उसमें वो सारे गेन्स वापस आ गए, 9 में से 7 सीटें भाजपा जीत गई। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जो राजनीति रही 17 से पहले वो अल्टरनेट रही, वो बसपा सपा के बीच में रही, और गांव गांव में वो राजनीति यादव बनाम दलित हो गई थी। तो दलित समाज को जब आप गांव में जाते हैं बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को यादव पार्टी बोलता है, वो उसको गुंडा पार्टी बोलता है, वो तो वो नेचुरल वोटर नहीं है उसका, वो कभी सपा के पास नहीं
2: आएगा। सही नहीं है शांतनु,
7: कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया
2: शांतनु, तो क्या ये बात सही नहीं है? नहीं एक मिनट, क्या यह बात सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो नॉन जाटव दलित वोट है उन्हें अपने पास लाने की कोशिश की थी, और उसी के आधार पर, क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि 2022 और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो नॉन जाटव दलित वोट है वो अपने पास लेकर आए, और उसके आधार पर उन्होंने अपनी सरकार भी वहां पर बनाने की कोशिश की थी। लेकिन 2024 के चुनाव में ये साफ नजर आ रहा है कि धीरे धीरे वो वोट इंडिया अलायंस के पास खिसक रहा है। अब उसके लिए आप कोई भी कारण रखिए, संविधान बदल का हिसाब रखिए या बाकी कुछ हिसाब रखिए, लेकिन वो दलित वोट ये भी तो देख रहा होगा कि अब की एससी एसटी एक्ट के तहत हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय जाता है, ये भी तो वो शायद देख रहा होगा। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ खिसकने की कोशिश करे या इंडिया अलायंस की तरफ जाने की कोशिश करे।
7: देखिए मैंने उसी बात को मैं दोबारा कहूंगा, वो एससी एसटी वोट किसी बड़े विजन के कारण, किसी नीति के कारण या समाजवादी पार्टी ने ऐसी कोई पहल करी उसके कारण नहीं हुआ, केवल वो आपने एक नारा जो चल गया कि संविधान बदल जाएगा, उसके झूठे वीडियो चले खूब सारे, अमित शाह जी का वीडियो एडिट करा गया, उसको चलाया गया। तो इस तरह का झूठ पर लंबा समय चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका प्रोडक्ट कुछ बढ़िया हो, आपने कुछ विजन लिया हो, आपने अपने प्रदेशों में जहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां पे दलितों के लिए कुछ करा, वहां पे नहीं करा, वहां पे आपने बल्कि रिजर्वेशन को कमजोर करके मुस्लिम को देने का प्रयास करा, तो जनता वो देख रही है। तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता बड़ा,
2: योगी आदित्यनाथ दलितों के लिए क्या विजन देंगे, क्या क्या विजन देंगे दलितों के लिए, क्या विजन देंगे कि आपको
7: योगी आदित्यनाथ की साढ़े नौ साल की सरकार में उन्होंने कभी किसी जाति वर्ग के लिए कुछ दिया भी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मैं रोड दूंगा, मैं आपको एयरपोर्ट दूंगा, मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा, 8.5 लाख सरकारी भर्तियां होंगी जिसमें हर भर्ती में रिजर्वेशन पाल हुआ है। पिछले 75 साल में ये पहले 10 साल है जिसमें 8.5 लाख भर्तियां हुई सरकारी, जो अखिलेश की भर्तियों से 6 गुना है, मुलायम सिंह यादव के में 3.5 गुना है।
2: आपने सुना नहीं क्या शास्त्र जी, आपने सुना नहीं क्या, अब तो कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रिजर्वेशन की मांग हो रही है, आपने सुना कि नहीं सुना? मायावती जी कह रही है कि कॉन्ट्रैक्टर्स में भी रिजर्वेशन लाइएगा, तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं उसमें भी रिजर्वेशन चाहिए उनको। जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो जरा एक बार सुना लेते हैं, फिर रतनलाल जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है मुझे। तो पहले जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो सुनाते हैं, उसके बाद रतनलाल जी के पास चलेंगे।
9: सरकार ने अयोध्या धाम के विकास के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, हमने सड़कों का चौड़ीकरण करना प्रारंभ किया, अच्छी सड़कें बनानी प्रारंभ की, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। हमने जब रेलवे स्टेशन के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया उसके खिलाफ, यानी वे सड़क नहीं बनने देना चाहते थे, वे रेलवे स्टेशन नहीं बनने देना चाहते थे। और जब हम लोगों ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, तब भी समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया कि नहीं एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। दुनिया राम के प्रति विभूत है, रामलला के अयोध्या धाम में विराजमान को लेकर के विभूत है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहां अभी भी वीरानी छाई हुई है। ये भौचक है, अयोध्या में रामलला का मंदिर कैसे बन गया वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी कैसे हो गई, अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विकास कैसे हो गया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इतना बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण कैसे हो गया। ये बौछक है आज इस बात को लेकर के कि रेन बसेरा निषाद राज के नाम पे कैसे बन गया और यहां के भोजनालय माता सबरी के नाम पर कैसे बन गए।
2: रतनलाल जी देखिए, यह भी एक अलग तरीके की राजनीति है, हर किसी के साथ नाम भी बताया जा रहा है।
7: ऐसा है, उन्होंने ये नहीं बताया कि सड़क में कितने गड्ढे हो गया, कमीशन कौन खा गया, ये तो नहीं बताया है ना। ये नहीं बताया कि स्कूल कितने बंद हुए, कितने खोले गए, कितने विश्वविद्यालय खोले गए, कितनी नौकरियां दी गई, ये तो बताया नहीं। गुरु प्रकाश जी अच्छे वक्ता है, उन्होंने एक बात के उसमें एक चीज उन्होंने छोड़ दिया कि सपा सरकार में मान लीजिए कि शहर के नाम भी बदले गए। भाई 10 साल से आप सरकार में है, आप अंडू कर देते ना, शहर का नाम काशीराम जी के नाम पे कर देते, प्रमोशन में रिजर्वेशन जो फाड़ा गया था बिल तो आप कर देते, आपने किया क्या? कुछ नहीं। इनसे जब पूछिए आरएसएस बीजेपी से, तो इनको लगता है कि खाली दलितों का दमन जो है ना कांग्रेस काल में हुआ है और बीजेपी आरएसएस घी की नदी बहा रही है जैसे डुबकी लगा रहे। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया और इनके पिताजी मेरे दोस्त हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज नंबर 1 कॉलेज में किस तरह से दलित दमन होता है, इसमें इनकी आवाज नहीं निकलेगी, आवाज नहीं निकलेगी। मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, सुनिए, मेरे हाथ में 2 चिट्ठी है। आरएसएस लिख रहा है कि हम संविधान नहीं मानते, भारतीयता नहीं है। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के शासन काल में एससी कमीशनर बन गया था। राजीव गांधी ने शेड्यूल कास्ट एससी एक्ट लाया था कानून, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1973 में चिट्ठी लिखा था सब सीएम और डीएम को कि दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है, इसको रोकना है और सारे नौकरियों में दलितों को लगाइए। ये चिट्ठी है, जाके देख लीजिए आर्काइव में, 2 अगस्त 1973 का है। अरे मोदी और शाह और आरएसएस बीजेपी दलितों से नफरत करता है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर उतना में तो स्वर्ण यही कहने वाला ना अमित शाह, माफी मांगना चाहिए
2: जवाब दीजिए
7: जनता से। और मुझे लगता है कि डर के मारे इस आरएसएस भाजपा वाले भी पहन लेंगे ब्लू कलर है ना। ये समझिए दलितों के गुरु
2: प्रकाश जी,
7: कितने वाइस चांसलर दलित बनाए हैं, कितने गवर्नर बनाए हैं, कितने प्रोफेसर हैं, ये
2: गुरु प्रकाश जवाब दीजिए।
7: सिंपल पे खेल
5: साहिल जी, वो लगातार बोल रहे हैं, उनके बारे में चुप था
2: बोलिए।
7: नाम पे विश्वविद्यालय
5: शांत तो कराइए ना, पहले ये वन साइडेड शो चल रहा है क्या?
2: धन्यवाद रतनलाल जी, जवाब भी सुन लेते हैं। ठीक
5: नहीं देखिए साहिल जी, बहुत दुख होता है, ये इतिहास में जा रहे थे, मैं जाना चाहता हूँ इतिहास में जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी देखकर क्या ही था। साहिल जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद साहिल जी, ये सुनिश्चित करना चाहिए फेयर डिबेट का ही अंश होता है। धन्यवाद। देखिए ये इतिहास में जा रहे थे, इतिहास में जाइए आप, जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी है मुख्यमंत्रियों को, आई अपोज एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। नेहरू आरक्षण का विरोध कर रहे, नेहरू सही कि राहुल गांधी सही? राजीव गांधी आगे आइए, 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध सदन के पटल में किया था, मार्च 1990 पढ़ के आइएगा, राजीव गांधी सही कि राहुल गांधी सही? इंदिरा गांधी ने कहा,
2: किसने किया था
5: साहिल जी,
2: सड़क पर किसने किया था
5: साहिल जी? साहिल जी या तो आपको हैकल कर रहा हूं आपको, नहीं नहीं नहीं साहिल जी सुनिए, ऐसे नहीं होता है,
2: नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं, नहीं नहीं सॉरी सॉरी,
5: साहिल जी देखिए इसी हैकलिंग में, साहिल जी इसी हैकलिंग में समय व्यर्थ हो जाता है, कांग्रेस पार्टी अपना आज पूरा एजेंडा चला,
2: बोलिए बोलिए,
5: नहीं नहीं सुनिए, नहीं मैं शिकायत तो करूंगा ना सर,
2: बोलिए,
5: आप मुझे बीच में रोक रहे हैं, आप मुझे बीच में रोक रहे हैं, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बीच में नहीं रोका, एक लाइन में उनको बोलने का मौका दिया। मैं प्रायः शिकायत नहीं करता हूं लेकिन आज बुरे महसूस हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, 1972 में जवाहरलाल नेहरू,
2: मैंने उनसे भी पूछा,
5: 1972 में जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्रियों को कहते हैं कि मैं आरक्षण का विरोधी हूं, आरक्षण से सेकंड क्लास ऑफिसर्स आते हैं, सिलेक्टेड वर्कर्स जवाहरलाल नेहरू, लेटर टू चीफ मिनिस्टर, पढ़ के आइएगा, मार्च 1990 में राजीव गांधी सदन के पटल पे अपना सबसे लंबा भाषण देते हैं, सबसे पैशनेट भाषण देते हैं और कहते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशें यदि लागू होती है तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। 2007 में अर्जुन सिंह जब आरक्षण लागू करते हैं तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए। मैं पूरी की पूरी संवेदनशीलता के साथ कहता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव में कैंपेन किया नेहरू ने, और किसको चिट्ठी लिखते हैं, एडविना माउंटबेटन को कि मैं आज आ।
10: तो
2: तो ये बहस अब दलित वोटों को लेकर हो रही है। समाजवादी पार्टी ने रंग क्या बदल दिया, सभी पार्टियां दलित वोटों को लेकर सजग हो रही है क्योंकि मामला 45% वोट शेयर का है। वो कैसे मिलेगा, दलित वोटों की जरूरत तो पड़ेगी, इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
3: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
4: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
3: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
5: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
6: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
5: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
6: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
7: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
5: मैं आशुतोष मिश्रा,
7: रोहित सिंह,
6: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: चुनाव का मौसम हो तो ढाई जा रही इमारतों पर उगती सियासत की रवायत एक बार फिर सहारनपुर में दिख रही। शासन ने दो दिन पहले जिस इमारत को अवैध ठहरा दिया था उसके मलबे पर राजनीति अभी बाकी।
1: क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में 13 घंटे में मस्जिद को गिरा दिया जाए? ये सोची समझी रणनीति साजिश है जिसके तहत पूरे प्रदेश को ये अपने अधिकारियों के माध्यम से कम्युनल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।
0: एक तरफ विपक्षी दल सहारनपुर की घटना पर सांप्रदायिकता का सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सहारनपुर जाते रोके जाने के आरोप लगा रहे हैं। एसपी की इकरा हसन से कांग्रेस के अजय राय और ओएसी पार्टी तक के नेताओं ने कहा है कि सहारनपुर जाते हुए पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया।
1: हमारे सभी सांसद सभी नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई है। ये पुलिस चोर डकैत बदमाशों को नहीं पकड़ रही है, पॉलिटिकल लोगों को घेराबंदी कर रही है।
0: प्रशासन ने एहतियातन नेताओं को सहारनपुर जाने से जरूर रोका, लेकिन दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम उस कुएं की पड़ताल करने जरूर पहुंच गई, जिसकी खुदाई की मांग हिंदूवादी संगठन करने लगे। दरअसल सहारनपुर में 5 सितंबर को तड़के 4 बजे जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उसमें कचहरी की जमीन पर अवैध मस्जिद गिराई गई थी। इसे 16 जुलाई 2026 में सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने अवैध घोषित किया था और 6,41,00,000 का जुर्माना भी लगाया था। जिला अदालत में अपील खारिज होने के फौरन बाद मस्जिद पर बुलडोजर चला दी गई। अखिलेश सवाल उठाते हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रहते हुए फौरन मस्जिद ढहाने की क्या जरूरत है? दरअसल सहारनपुर में ढाई गई मस्जिद को लेकर दावा किया गया था कि ये करीब 70 से 100 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसे सरकारी जमीन पर अवैध बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस हुआ, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे गलत बताए कि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला अदालत में मस्जिद कमेटी की अपील खारिज होते ही 5 सितंबर की सुबह 4 बजे बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। कचहरी परिसर के सभी 5 दरवाजे बंद करके 6 बुलडोजर ने 3300 वर्ग फीट की 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। अब उसके मलबों पर सियासत हो रही है, क्योंकि उसमें अभी एक कुएं का पता चल गया है और आम आदमी पार्टी के सांसद समेत विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि खसरा नंबर 539 के उसी भूभाग में एक मंदिर भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन या किसी अन्य पक्ष की ओर से उस पर कोई कानूनी कार्रवाई या अतिक्रमण का मुकदमा नहीं है। आज तक देखो
2: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का
3: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
4: राम और रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
4: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
5: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
6: अब्बा साई,
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले दो संदिग्ध गिरफ्तार, एक के पास बंदूक मिली, खुद को बता रहा था पीएमओ का अधिकारी, कोर्ट ने 11 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। जेन जी से भरे वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार से चलता है। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त एनएचआरसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के निर्देश, अवैध पीजी के खिलाफ एमसीडी ने भी शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन में पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब उत्तर प्रदेश में विकास पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। शुद्धिकरण मामले में हल्द्वानी और नैनीताल में केस दर्ज, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर, दिल्ली में भी संसद मार्ग थाना पहुंचे कांग्रेस के कई नेता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जवान नौजवान सच की हुंकार से चलता है।
1: नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं।
2: ये जितना सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन है ये कौन चला रहा है? भाजपा और भाजपा के लोग मिले हुए।
0: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज तय कर ही लिया जाए हल्ला बोल की बहस में कि नाराज फूफा कौन है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने दूसरी बार नाराज फूफा का जिक्र किया है। एजेंसी पर सियासत की लड़ाई तीखी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर नाराज फूफा वाला तंज किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा। वडोदरा में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 नए सेक्शन समेत प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में वो वडोदरा में थे। इन विकास परियोजनाओं को देश को सौंपते हुए जेंजी के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा झूठ की गूंज से नहीं, सच की हुंकार से चलता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम शुरू किया है। बीते कुछ समय में प्रधानमंत्री मोदी लगातार जेंजी से संवाद कर रहे हैं, उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, विपक्ष को घेर रहे हैं। वो लैंग्वेज, वो लिंगो जो कहता है जेंजी, वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो जेंजी करता है। जबकि पेपर लीक और कल दिल्ली में सत्य निकेतन जैसे हादसों के जरिए विपक्ष युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज चर्चा करें, मैं आपको बता दूं कि 2029 में जेंजी वोटर ही सबसे ज्यादा होंगे। ये फिर से सुनिए, 2029 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, हम संख्या बल के हिसाब से आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो जेंजी से ही होंगे। तो क्या अभी से जेंजी पर ये लड़ाई उसी जेंजी को क्लॉकेट करने का ट्रेलर है? भारत की रफ्तार पर नाराज फूफा कौन, राहुल की गूंज वर्सेस मोदी की हुंकार, फूफा नाराज, जेंजी पर सियासी आगाज, हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट।
1: द ओजी ट्रेंड सेटर, भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिला।
0: वडोदरा में 35,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज धुरंधर था। ये विकास की रफ्तार को जेएनजी की रफ्तार से मैच कराने वाला अंदाज था। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में अधिकतर युवा शामिल थे जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। 12 वर्षों में भारत की बदल गई कार्यशैली के प्रधानमंत्री के दावों में युवाओं को संदेश भी था और सियासत का जोरदार प्रहार भी।
2: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे।

लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर

0: अखाड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। राहुल गांधी कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रमों के जरिए युवाओं के सामने सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं।
1: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
0: राहुल जब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक और शब्द बाण से युवाओं के बीच पहुंचने की कोशिश की है। दिल्ली में SRCC के संबोधन में शामिल हुई नाराज फूफा वाली अभिव्यक्ति वडोदरा में एक बार फिर पीएम के भाषण का हिस्सा बनी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 नए सेक्शन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री का हमला कथित निराशावादियों पर फिर हुआ।
2: कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं, उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया।
3: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, अब फूफा जी को काम मिल गया। फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
0: JNG को दो अलग अलग भारत दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। 2014 से पहले के भारत को नहीं समझने वाले युवा को विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब क्लॉकिट करना चाहते हैं। कांग्रेस युवाओं को ये संदेश दे रही है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी की नकल कर रहे। अखिलेश यादव ने भी देश की समस्याओं की वजह BJP को बताया है।
4: सरकार के पास महंगाई रोकने का, सरकार के पास नौकरी देने की व्यवस्था, सरकार के पास इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितना आया है उसका कोई जवाब नहीं है। जहां जहां BJP है वहां वहां पानी भर रहा है।
0: भारत में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बिगड़ा हुआ है, इस पर हंगामा जारी है। 2027 के UP चुनाव और फिर उसके नतीजों के आधार पर 2029 के आम चुनाव तक इसकी गूंज जारी रह सकती है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता BJP के, यहां स्टूडियो में पहुंच गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी लखनऊ के स्टूडियो में हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमित जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनके बिल्कुल बगल में बैठे हुए लखनऊ के स्टूडियो में। सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहां पर प्रदीप भंडारी जी के बिल्कुल बगल में स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन मुंबई से जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि अब उस व्यक्ति की तस्वीर भी आ गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से पकड़े गए संदिग्धों का ये मामला है, जिसमें 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में उसे भेज भी दिया गया है और संदिग्ध को भेज दिया गया है। ये उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। BKC में फर्जी पहचान पत्र का मामला, खुद को PMO का अधिकारी बताया था इस शख्स ने। रोहन पारिक इसका नाम है और BKC में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, उसमें उस स्थल से पकड़े गए संदिग्धों का ये मामला है। और प्रधानमंत्री का जहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर यह है और कार्यक्रम स्थल से पकड़े गए संदिग्धों का मामला, रोहन पारिक इसका नाम बताया जा रहा है। और आप रोहन पारिक की तस्वीर इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसकी क्या मंशा थी, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद 11 सितंबर तक के लिए उसे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर किस मंशा से ये व्यक्ति वहां पर गया था, फेक आइडेंटिटी क्यों बता रहा था। रोहन पारिक ने वहां पर कहा कि मैं PMO में हूं, PMO में काम करता हूं। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, इस पर भी जैसे ही और जानकारी आती है आपको बताएंगे। BKC का ये जियो सेंटर जहां पर ये कार्यक्रम, और उसी कार्यक्रम से फेक आईडी बताकर कि PMO में काम करता हूं, रोहन पारिक को फिलहाल 11 सितंबर तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन इस विषय पर लौटते हैं, अगर उस बारे में कुछ और जानकारी आपके पास है कि ये रोहन पारिक कौन है और क्या मंशा हो सकती है, या कुछ आप लोगों को जानकारी है तो बताइएगा। ये नाराज फूफा वाला मामला क्या है, क्या ये जेंजी को लुभाने की कोशिश है?
5: देखिए अंजना जी, नाराज फूफा वो है जो जब भी देश में कुछ अच्छा होता है उसको डिनाय करता है और सिर्फ ऑपोजिशन के नाम पे अपोज करता है, और ये नाराज फूफा का एसेंस कांग्रेस पार्टी है। मैं प्रूफ करूंगा।

0: मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऑपोजिशन में हो, कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो ये तो स्वाभाविक है कि हर भारतवासी इस पे खुश होगा। पूरे भारत ने एक स्वर में बोला पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। कांग्रेसी नाराज सूफाओं ने बोला हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। अब सबको पता है कि अगर वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर आएगा तो इससे 55,000 का CO2 सेविंग होगा और 490 करोड़ का लॉजिस्टिक सेविंग होगा। पर ये नाराज सूफा कांग्रेस कह रही है, जो 2012 के अंदर रेलवे इनके समय मेस में था, वो इसका स्वागत नहीं कर पा रहे। एक और एग्जांपल दूंगा, इनकी मानसिकता ये थी कि यही नाराज सूफा के आधार पे ये कुछ करते ही नहीं थे। जैसे 1961 में सरदार सरोवर डैम का इन्होंने इनॉग्रेशन किया पर इसको कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में किया। जैसे इन लोगों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का इनॉग्रेशन 2006 में किया, कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये कुछ करते ही नहीं थे और वही नाराज सूफा वाली सोच थी कांग्रेस की। ये कहते थे चाइना पे बॉर्डर ही मत बनाओ। याद करिए एके एंटनी का स्टेटमेंट, हमको आके बॉर्डर बनाना पड़ा। और ये नाराज सूफा कौन है? जैसे ये कहेंगे कि ये जेंजी के साथ में खड़े, पर जब मैं डेटा इनको दिखाऊंगा नाराज सूफाओं को कि देश के अंदर राइट सबसे लीस्ट पे है, मर्डर सबसे कम स्थिति पे है पिछले पूरे आजादी के बाद में, डाउरी डेथ सबसे कम पे, रेप केसेस सबसे कम पे, तो ये नाराज सूफा कहेंगे गलत है डेटा। ऐसे ही जब ये नाराज सूफाओं को जब देश का GDP 7.8% आया तो ये नाराज सूफाओं ने बोला अरे अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, 2.8 है। दुनिया ने इनको समझाया कि ऐसा नहीं है। फिर मैं यहां पे भी इनको समझाऊंगा कि देखो इंडिया का जो कैपिटल गुड प्रोडक्शन का जो रेट है 14% है, डिफेंस के अंदर मेजोरिटी जो है वो भारत के अंदर अभी बड़ा है। तो ये मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं डेटा गलत है, डेटा गलत है। तो यही मानसिकता है नाराज सूफा कांग्रेस की कि जब कुछ अच्छा है, जो सत्य है, प्रमाणित है, तथ्य है, डेटा है, उसको ये अपने पक्ष के होने के संबंध में ये नाराज फूफा इसका अपोज करेंगे। जब देश का भला कांग्रेसी नाराज फूफा नाराज, ये है। ये विपक्ष की नहीं, राइट क्रिटिसाइज करना इनका अधिकार है, पर जो सत्य है उसमें क्यों झूठ बोल रहे हो?
1: जो सत्य है उसको भी आप झुठला देते हैं। आप नाराज फूफा हैं, जब देश की खुशी की भी खबर आती है उसमें भी आप नाराज हो लेते हैं। अखिलेश जी
2: देखिए, फूफा बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा ही नाजुक रिश्ता होता है। और प्रधानमंत्री जी आपके लोगों के द्वारा विपक्ष को तरफ इशारा करके बता रहे हैं, भाजपा के हमारे प्रवक्ता ने बता दिया है कि कांग्रेस नाराज फूफा है। तो भैया फूफा बहुत जिम्मेदार होता है, आप फूफा बता रहे हैं और खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जो सदन में हैं, तो ऐसे रिश्तेदारी निभाई जाती है? इस तरह से व्यवहार करेंगे आप? आजकल दो ही लोग इस देश में मोदी जी से नाराज हैं, सवाल कर रहे हैं, एक विपक्ष और एक जेंजी नौजवान। वो और दोनों को आप किसी पे लाठी बरसा रहे हो, किसी को गोली बरसा रहे हो, किसी पे आप जो है शुद्धिकरण कर रहे हो, कहना भी नहीं मान रहे हो, अपमानित कर रहे हो, संविधान बदलने की बात कर रहे हो, नौजवानों को ठोंक देने ठीक करने की बात कर रहे हो, और झूठे झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हो, झूठे झूठी बातें करते हो और चाहते हो कि आपसे कोई सवाल न करे। तो सवाल तो होंगे मेरे भाई, क्योंकि आप देश को बर्बाद करते जाओ, लोग खामोश रहे हैं। आप ही के आंकड़े बता रहे हैं कि 9 करोड़ नौजवानों के पास इस देश में आज के तारीख में न कोई काम है, न कोई पढ़ाई है, न कोई शिक्षा, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसकी डींगे हाँक रहे हो ना, उसमें 9 करोड़ नौजवानों के पास ये रफ्तार है। और 9 लाख पद केंद्र सरकार में रिक्त हैं जनाब, केंद्र सरकार में, जिसकी भर्ती नहीं करते हो, सब परीक्षा लीक करते हो, पढ़ाई खत्म कर रहे हो, विद्यालय बंद कर रहे हो, मदिरालय खोलते जा रहे हो, चीन से व्यापार डेफिसिट भयंकर होता जा रहा है, वो कब्जा करता जा रहा है, और आप उसे किस रिश्ते में नापते हो? भाई चुप हो, वो चुप हो, क्यों चुप हो? कौन सा रिश्ता है ये? रिश्ता क्या कहलाता है? अमेरिका आपको डायरेक्शन देता है, उसके कहने पर आप निर्णय लेते हो, बताते हो, इसरो तक को बेच रहे हो, IIT IIM में जो है लड़के बेरोजगार नहीं कहो जा रहे हैं, वहां पे सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहे आज के तारीख में। ये है, आपने बड़ी उद्घाटन शिलान्यास किया आदरणीय मोदी जी, यूपी में भी पिछले चुनाव के पहले 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, 7ों के 7ों बंद हैं। बड़ा अच्छा काम किया था आपने। तो एक्सप्रेसवे डूब रहे हैं, एक्सप्रेसवे बह जा रहे हैं, लाखों स्कूलों को और बंद होने की आगाज पे आ गए हैं। आप बता रहे हो बहुत कांग, आप क्या GDP क्या कर पाए? कांग्रेस जब 2004 में सत्ता में आई तो 0.71 trillion dollars इस देश की GDP थी। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 2.04% trillion डॉलर जीडीपी दे के गई, तीन गुना किया हमने 10 सालों में, आप तो 2 गुना भी नहीं कर पाए 11-12 सालों में। 10 साल में सिर्फ 3.76 ट्रिलियन कर पाए, और आंकड़े झूठ आपके तो दुनिया भर को पता है कि आप मोदी जी की किसी बात पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि दिन भर वो असत्य बोलते हैं, असत्य के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, तो करे क्या कोई करे।
1: ठीक है,
2: इस देश में दलितों के साथ जिस प्रकार से दलित नेता के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ मंच को अशुद्धिकरण करते हो, सदन में आश्वासन देने के बाद भी कि हम कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करते हो।
1: ठीक है,
2: नौजवानों को आप परीक्षा और शिक्षा में जो व्यवस्था बना रखे हो लूटने के लिए, आरएसएस की चैनल बना रखे हो, वो क्या नौजवान या देश समझ नहीं रहा है, बोझ बने बैठे हो, राम को भी लूट डाले हो, भगवान राम को शिला पूजन से लेके चढ़ावा तक सब खा गए, कोई अब झांसे में नहीं आने वाला है, उत्तर प्रदेश से विदाई शुरू है, 10 महीने और बचे हैं, राहुल जी ने 1 साल बताया था, 10 महीने बचे हैं सिर्फ, 2 महीने बीत गए, 10 महीने के बाद झोला उठा लेना पड़ेगा, शुरुआत यूपी से हो रही है।
1: चलिए भंडारी जी, एक सेकंड, एक सवाल भी तो सुन लीजिए, ये जेंजी वाले नंबर्स हमारे पास हैं कि कितने वोटर्स हो जाएंगे, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा चंक है, ये लगभग जो आप देख रहे हैं इस वक्त जेन अल्फा लगभग 27.6% है, जो 0 से 17 आयु वर्ग में है, अब आप जेन जी देखिए 38 करोड़, मतलब 25.1%, और ये जो जेन जी है जिसमें हम आपको बूमर्स भी दिखा रहे हैं वो लगभग 7.5 करोड़ हैं, 15.5 करोड़ जेनेक्स हैं, और लगभग 23.6% जो है वो मिलेनियल्स हैं, लगभग 35 करोड़ 36 करोड़, लेकिन असल तो ये जेनजी है 38 करोड़ जो वोटर बनकर आपके सामने है, ये क्या सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? और इसमें एक सवाल जोड़ रही हूं मैं प्रदीप भंडारी
0: जी,
1: मुझे नहीं पता कि आप दिल्ली के कौन से इलाके में रहते हैं, ना मुझे आपका एड्रेस जानने में कोई इंटरेस्ट है
0: जी,
1: लेकिन आज भी इसी दिल्ली में अनेकों ऐसे इलाके हैं, सत्य निकेतन या फिर लालच निकेतन, असत्य निकेतन तो सिर्फ एक है, अनेकों ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध तरीके से एमसीडी अपना हाथ गरम कर करके अवैध निर्माण होने देता है बच्चों की जिंदगियों को, वो ये देखिए, ये विजुअल देखिए कल का, आप शासन में हैं साहब तीनों जगह
0: जी,
1: अब ये बहाना नहीं चलेगा, 12 साल से आप केंद्र में हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, एमसीडी में भी आप हैं, ये क्या चल रहा है इस पूरे इलाके में? देखिए आपके एमएलए अनिल शर्मा का भी यहां से 650 किलोमीटर की दूरी पर एक रेंटेड ये है जो बच्चों को दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है, इसको क्यों नहीं रोकिएगा आप इस व्यवस्था को, क्या बोल के आए थे आप शासन में?
0: अंजना जी, 2 पार्ट्स में आपका सवाल है, पहले मैं इनका रिबटल करूंगा, फिर बाद में सत्य निकेतन भी जरूर जवाब दूंगा। देखिए ये खुद प्रूव करेंगे कि ये कैसे नाराज फूफा है, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक शुरुआत में बोली यही अखिलेश जी ने प्रूव करी, इन्होंने बोला इकोनॉमी की बात करी कि भाई हमने सब कुछ किया, ये मैंने यही बोला कि भाई ये झूठ की गूंज करते हैं और ये रही सच की हुकार, 29 जनवरी 2014 अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो फ्रजाइल 5 के अंदर देश को छोड़ के गए, फिर इनकी झूठ की गूंज, ये रही सच का हुकार, इन्होंने बोला सरकारी नौकरियां कुछ नहीं दी गई, ये रहा कांग्रेस शासन काल से करते करते करते सरकारी नौकरी का रेट ऑफ ग्रोथ हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं कि कब कुछ अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है, विकास का प्रोजेक्ट होता है, भारत जो है नक्सलिज्म खत्म करता है, अपने आप को दिमागी नक्सल कह देते हैं, यही सोच है, भारत को रोकने वाली सोच इनकी है, तभी जब इनके समय में 2 टेबल दिखाऊंगा, सब सेक्टर्स के अंदर चीन और यूएस आगे थे, इन सभी सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, भारत आगे है, और इन सबका विरोध कांग्रेस कर रही है, ये नाराज फुफा वाली माइंडसेट इनकी। अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल पे, बिल्कुल अंजना जी आपका सवाल जायज है, और हम हर इलीगल एनक्रोचमेंट के ऊपर बुलडोजर कानूनी रूप से चलेगा, ये 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, और अगर हमारा कोई भी व्यक्ति इसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर उसकी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी होगी या उसके अंदर यहां पे करप्शन करने के उसमें अगर 1% भी होगा तो उसमें भी कार्रवाई होगी। हम किसी भी चीज के अंदर जो है वो इफ बट कांग्रेस जैसे मंकी बैलेंस नहीं करते, हम एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है कि दलितों की बात करेगी और कांग्रेस तेलंगाना के अंदर अपनी दलित महिला एमएलए को हटा देगी, महिलाओं की बात करेगी कर्नाटक के अंदर 0 महिला जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर है, महिलाओं की बात करेगी हिमाचल प्रदेश में 0 महिला कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के अंदर है। तो हम आपका हक है और इस देश का हक है हमसे सवाल पूछने का, और हम जवाब दे इस देश को है, पर हम कांग्रेस को जवाब दे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस झूठी पार्टी है। जैसे ये देखिए अखिलेश जी, जरा आप देख रहे हो ना, आपके लिए दिखा रहा हूं मैं, आपने बड़ा बैंक बैंक बैंक किया करते थे, याद है ना, राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा जी ने। जरा ये देखो आपके समय का पूरा एनपीए, ये पूरा एनपीए आपके समय, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम पे बैंक का एनपीए, जिससे 40 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है वो बैंक क्रेडिट दिया गया है, ये यहाँ पे ग्रॉस एनपीए। अब इसका तो स्वागत करोगे कि नहीं करोगे, कि ये भी कहोगे नहीं नहीं नहीं गलत है डेटा, गलत है डेटा। तो ये मेरी मानसिकता है, सवाल पूछने का हक सबका है और लोकतंत्र में एक नहीं 100 सवाल है, पर झूठ बोलने का हक किसी को नहीं है जो कांग्रेसी नाराज फूफा कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर पे आप और मैं किसी डिफरेंट पेज पे होने चाहिए? क्या नक्सलिज्म पे मैं और अखिलेश जी डिफरेंट पेज पे होने चाहिए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 लाख करोड़ पे मैं और ये डिफरेंट पेज पे होने चाहिए? पर ये और मैं डिफरेंट पेज पे इसलिए है क्योंकि देश के विकास का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको कांग्रेसी नाराज फूफा कहा है।
1: और ये कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स के नंबर्स हमने भी जो रिलीज हुए हैं आपको अखिलेश जी आप भी देख लीजिए, उसके बाद से बोलिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स में जो कि जुलाई 2025 से लगभग 21% की वृद्धि हुई है, आप देख रहे हैं 1,99,00,000 से 2,40,00,000। इनकम टैक्स 3,55,00,000 से 4,42,00,000 हुआ है, और ऐसे ही जीएसटी कलेक्शन भी 6,61,00,000 से 7,21,00,000 हुआ है। हमारा सोर्स इस इंफॉर्मेशन का सीजीए और जीएसटी है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो वृद्धि हो रही है, ये तो आंकड़े हैं, इनको कैसे झुठला सकते हैं?
2: अंजना जी आपका भी जवाब दूंगा, सबसे पहले मैं भंडारी जी का जवाब देता हूं। बता रहे हैं बैंकों का एनपीए आज बहुत कम है। भंडारी जी जब 30-35 लाख करोड़ रुपया बैंकों का माफ कर दोगे ना, तो एनपीए अपने आप कम हो जाता है, समझे समझे मिस्टर भंडारी जी। जब 30-35 लाख करोड़ रुपया बैंकों के अपने मित्रों का माफ कर दोगे, विदेशों से और देश में कर्जा लेकर के मित्रों का कर्जा माफ करोगे, तो एनपीए जरूर कम होगा। ये चालाकी हमसे मत करो। और अंजना जी आपने बताया कि टैक्स बढ़ गया, टैक्स का रेशियो आपने बढ़ा दिया, मैक्सिमम चीजों में 28% जीएसटी में कर दिया। नए टैक्स, नए बिजनेस, नए कारोबार उससे नहीं आए, आप दोहन कर रहे हो देश की जनता का, उससे टैक्स बढ़ रहा है। और छोड़िए टैक्स की बात, आप ये भी तो बता दीजिए कि कर्जा कितना मोदी जी ने ले लिया।
0: चलो ये भी बता दो।
2: और भारत के बजट का कुल कितना कर्जे के सूद देने में मोदी जी को सरकार देनी पड़ रही है?
0: चलो
2: जितना हमारा बजट है उसका 35% मोदी जी द्वारा लिए गए कर्जे की सूद देनी पड़ रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो आंकड़ों की बाजीगरी आप दोनों लोग कर रहे हैं, ये देश को सबको पता है। तीसरी बात,
0: बाजीगरी
2: देखिए भाई प्रवक्ता महोदय
0: जी,
2: ये चीन रूस और कोरिया नहीं है कि हर कोई मोदी जी को देख के मैं थपथपा के मोदी मोदी मोदी करेगा। यहां सवाल होंगे, आपने अभी बोला कि हम देश को जवाब देंगे लेकिन विपक्ष को नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे, क्यों भाई? यही तानाशाही सोच, हमको सवाल करने के लिए सदन में बिठाया गया है। आपसे ज्यादा जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको विपक्ष ने दी है कि सरकार पे नकेल बना के रखना। आपके पास 36% जनादेश है,
0: 35%
2: अब बाकी सब विपक्ष के पास
1: देखेंगे खाली।
0: तो ये 5 सेकंड उसके बाद मैं शांत रहूंगा, मौन रखते रहूंगा पूरी डिबेट।
2: ये गलत फहमी में न रहिए,
0: यहाँ पे अमित भाई की इजाजत से मैं 5 सेकंड दूंगा।
2: पूरा देश बेच दिया, मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्यों 9 करोड़
1: कर्ज जो दिया है और कर्ज पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो जल्दी से बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
0: मैं बस दो इनकी झूठ की गूंज को एक्सपोज करूंगा सच के हुंकार के साथ। इन्होंने बोला कि भाई कुछ नहीं बढ़ा, ये देखिए एक और डेटा लेके आया हूं मैं। देश के अंदर मेजॉरिटी कंजम्पशन एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सब 70% से ज्यादा जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद में,
1: ये बताता है।
0: आ गया कर्ज पे मैडम, कर्ज पे भी आ गया मैं, कर्ज पे भी आ गया। एक और डेटा देखिए, कभी भी कर्ज की बात नहीं करते, डेट टू जीडीपी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी पूरी दुनिया में अमेरिका के ऊपर है, फिर चाइना के ऊपर है, जापान के ऊपर है, फ्रांस के ऊपर है, जर्मनी के ऊपर है। क्या इकोनॉमी लुट गई क्या? अगर इनको इकोनॉमी के बारे में बेसिक पता होता तो ये जानते कि भारत में लोएस्ट एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो भारत पे, ये रहा उसका पूरा डेटा पॉइंट, लीस्ट भारत पे, और डेट टू जीडीपी इंटरनल डोमेस्टिक भी सबसे कम भारत के अंदर है। इसीलिए भारत को करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की हेल्थ से भी मॉर्गन स्टैनली हो, वर्ल्ड बैंक को, IMF हो, सब कह रहे हैं कि इंडिया इज द शाइनिंग स्पॉट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो मेरे भाई झूठ की हुंकार, झूठ की गूंज बंद करो, सच की हुंकार के सच की हुंकार बोलोगे तो दस जवाब।
1: सत्य प्रकाश जी, ये जो बच्चे हैं इनको और अमित जमाई जी को भी दिखा दीजिए। सत्य प्रकाश जी, ये जो झूठ, एक सेकंड नहीं रुक जाइए, आप दोनों सिर्फ नहीं बोलेंगे, बाकी दोनों भी बोलेंगे, अब उनको भी विराम दे रहे हैं, आप लोग पानी पी लीजिए एक सिप, तब तक सत्य प्रकाश जी और अमित जमाई को दिखाइए। सत्य प्रकाश जी, ये झूठ की गूंज है, ये है वो है, आप विपक्ष से लड़ते रहिए, लेकिन जो जेंजी आंदोलन में जंतर मंतर पे छात्र पहुंचे थे, या जो झारखंड में रांची पे पहुंचे थे, या जो पटना की सड़कों पर निकले थे, उनको ये सब से मतलब नहीं है, उनको उनके मुद्दों से मतलब था। और जेंजी, अगर मैं कह रही हूं कि सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है वोटर्स का अगले चुनाव में, ये अभी भी इस जमाने में, आज के दिन में एक बिल्डिंग कोलैप्स करे और 7 बच्चों की मौत हो जाए, ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? और मतलब उस पूरे इलाके, मुझे नहीं पता आप भी गए हैं या नहीं गए हैं, हो सकता है बिहार से आए तो संघर्षरत दिनों में कभी पहुंचे होंगे, जहां पर पीजी में बच्चे रहते हैं, क्या स्थिति है? कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है, पीजी में ऐसी स्थिति है कि छे छे और सिंगल ब्रिक वाली ये घर बनाते रहते हैं, छे छे फ्लोर ले जाते हैं, वहां लोग रहते हैं, MCD आंख बंद, क्योंकि पैसा खाता है। कौन नहीं पैसा खाता है, ये बड़ा सवाल है ना, कि कौन इस व्यवस्था में पैसा नहीं खा रहा है? अब इतने साल से ये है, किस किस की जेब गर्म हो रही है?
3: आप सही कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देश का भविष्य है, यदि वो इमारतों के नीचे दबकर कुचलकर मर जाए, वो देश पर कालिख लगाता है, हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, और इसके लिए क्षमा भी कम है, कोई क्षमा भी मांग ले तो वो जायज नहीं है। मैं गया हूं, हर इलाके में गया हूं, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे सत्या निकेतन हो, वहां पे साउथ कैंपस है। देश को एक सही मौका है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के स्तर पर एक कानून जरूर ऐसा पारित करे कि अगर कॉलेज खुला है तो बाहर से आने वाले बच्चे के लिए 100% हॉस्टल का इंतजाम हो। जहां गए थे प्रधानमंत्री महोदय SRCC कॉलेज में, मेरा कोई पढ़ता है वहां, उसने कहा मुझे हॉस्टल नहीं मिला है। वो नोएडा में रहता है और SRCC में पढ़ता है, देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। तो ये नीति होनी चाहिए, ये मांग जायज है। दूसरी बात कि जेंजी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लगातार जो वार्ता है, उससे महसूस होता है कि वो बहुत ज्यादा उनके लिए सोच रहे और नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे उनके 15 अगस्त के भाषण को भी देख लीजिए। उन्होंने एक शब्द नया जरूर गढ़ा है SRCC से नाराज फूफा, प्रगतिशील नीतियों उसके मॉडल का घनघोर विरोध करना, उसको हास्यास्पद बताना और आखिरी में गाली गलौज करना, ये नाराज फूफा का लक्षण है। 20 मई 2026 को इस देश का विपक्ष का नेता एक जगह से कहता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह देश छोड़कर भाग जाएगा, गद्दार है, ये शब्द था उसका। तो आखिर ऐसा क्या किया था? क्योंकि दुनिया में युद्ध चल रहा था, उसके बावजूद भारत अपनी महंगाई, रसोई, सब कुछ बचाने में सफल हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा थोड़ा सोना कम खरीदते हैं, जैविक खाद पर लौटते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, उन्होंने आग्रह भर किया था। सारे नाराज फूफा लोग पॉपकॉर्न की तरह कूदने लगे, ये बात सत्य है। आधी रात को इस देश में टैक्स स्ट्रक्चर का रिफॉर्म हो रहा था, कहां गए थे सारे नाराज फूफा, किस गुफा में घुस गए थे? ये सारे फूफा राजनीतिक गुफा में घुसा दिए गए हैं, जनता ने डाल दिया है। गूंज में वो जितनी करें झूठ का प्रचार, जनता उनसे ज्यादा समझदार है। चाहे वो दलित की बात हो, चाहे मनुस्मृति पे महिलाओं की बात हो, चाहे SC ST के लिए जो आवंटन है, 3,37,000 करोड़ का बजट, शिक्षा पर 1,89,000 करोड़ का बजट, और नए IIMs IIT सारे चीज खुले जा रहे हैं। वो कह रहे थे स्कूल 650 नए, यूनिवर्सिटी 1,39,000 मेडिकल के लड़के हर साल पढ़ के निकल रहे हैं, वो जेंजी काम कर रहे हैं, स्काई रूट बनाकर आसमान में ऑर्बिट में फिट कर रहे हैं, स्पेस सेंटर बनाने की बात हो रही है इस देश में। तो प्रगतिशील नीतियों पर जब भी कोई व्यक्ति देश का मजाक उड़ाएगा, कहेगा डेड इकोनॉमी है, तो सवाल पूछा जाएगा कि हर बात पे से मिर्ची क्यों लगती है। तो भारत के परिवारों में मैंने सुना है, मैं इसका गवाह नहीं रहा हूं, देखा नहीं है कभी, कि कोई एक व्यक्ति फूफा होता है, वो हर बात पे मीन मेक निकालता रहता है, नाराज होता रहता है। तो प्रधानमंत्री ने एक थोड़ी सी चुटकी ली है, तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भाई? आलोचना आप भी करिए, हम भी थोड़ा कर लेते हैं। आपका सवाल महत्वपूर्ण है अंजना जी, इस देश के तमाम जनजी को एक बेहतर भविष्य के लिए जितनी सुविधाएं मिल सकती है इस देश से उसकी गारंटी होनी
1: चाहिए। जानते सत्यप्रकाश जी कितना लेते हैं ये बेड का?
3: मरे हुए लोगों को मैंने देखा है अभी
1: 14,000 से 18,000 एक एक बच्चे से लेते हैं।
3: आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी ना, पास में क्रिश्चियन सोसाइटी था, 1200-1200 रुपए में 10x6 का एक जगह मिलता था और लोग वहां से आईएएस बनकर निकले हैं। ये दिल्ली में हमने देखा है। 100% हॉस्टल होना चाहिए, बाहर से लोग पढ़ने आते हैं और वो बहुत साधारण पैसा लगेगा, बहुत बड़ा फंड उसमें लगेगा भी नहीं। देश
1: सिर्फ हॉस्टल की बात नहीं भाई, एमसीडी कहाँ रहता है
3: और ये एमसीडी
1: कहाँ रहता है जब ये घर बन रहे होते हैं, जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अवैध फ्लोर बनते चले जाते हैं।
3: चैन है, लोकल पार्षद हो, पुलिस हो, एमसीडी के अधिकारी हो, ये पूरा चैन है, सबके हिस्से कुछ कुछ बट जाता है और सब चुप हो जाते हैं। इस चैन को तोड़ना पड़ेगा
1: प्रदीप जी, ये चैन आप लोग भी चला रहे हैं,
3: ये चेन तोड़ना पड़ेगा।
1: क्यों नहीं सील हो रहे हैं ये घर?
0: होंगे,
1: कब होंगे?
0: होंगे, आप देखिए चालू हो गया, बुलडोजर एक्शन चालू हो गया, 100%
1: इतने दिन तक बंद क्यों रखी आंखें?
0: नहीं, आंखें बंद
1: बच्चों
0: नहीं
1: की रखी। जान नहीं जाती
0: बिल्कुल, जो जिम्मेदार होगा उसको छोड़ने वाले नहीं है। अगर किसी के वहां पे फाइल गई और उसने नहीं करी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री खुद इस मामले की जांच कर रही है और अगर उसके बाद में अगर होगी तो आप हमसे सवाल पूछिएगा, बिल्कुल आपका हक है। पर मैं ये कह रहा हूं अंजना जी, क्या तीन मुद्दे, क्या देश की इकोनॉमी 7.8% से ग्रो कर रही है?
1: ठीक है, मैं लौट रही हूँ, अभी आपकी सुई उसी पर के बार बार आप वही कह रहे हैं और थोड़ा आपको हैंडराइटिंग भी अच्छा करना होगा, झूठ वूट जो आपने लिखा है पढ़े में नहीं आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, सत्यप्रकाश जी वॉलंटियर कर रहे हैं कि मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूंगा। लेकिन अमित जमाई जी ये कह रहे हैं कि जहां पर देश में कुछ अच्छा भी होता है विपक्ष ऐसा, इसके बाद बोलिएगा, आपके बगल में अमित जी बैठे हैं, अमित जी वो कह रहे हैं कि अच्छी चीज में भी ये जो नाराजगी है और उसको हालांकि टू हिज बेनिफिट अगर दिया जाए तो अखिलेश यादव कई बार ऐसे मुद्दों पर बोलते नजर आते हैं, उनका कि नहीं भाई अच्छी बात है अगर ये हुआ है तो अच्छी चीज है। लेकिन ये जो गुस्साने वाला एक ट्रेंड हो गया है कि भाई 7.8% नंबर आया, डेटा आया, नहीं हम नहीं मानेंगे, ये सही है क्या?
4: अंजना जी देखिये, जब माननीय अखिलेश यादव जी जब छात्रों बच्चों में जाते हैं, युवाओं में जाते हैं, तो उनसे टू वे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनकी कमियों को पूछते हैं, कहाँ पढ़ाई लिखाई में किस चीज़ की कमी है। और आदरणीय राहुल जी भी जब प्रयागराज गए तो वहाँ वन वे भाषण नहीं दे रहे थे हिटलर की तरह, ये ये ये सब नहीं किया जाता है। आज का ये जो हमारा जनरेशन है ना, छात्र है, जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, आप जा रहे हैं, आप पूछिए कि जो बच्चे 5-5, 6-6 साल मुखर्जी नगर से लेकर जामिया नगर से लेकर इन काल कोठरियों जैसे मोहल्लों में जहां रहते हैं तैयारी करते हैं, उनकी जिंदगियों में चल क्या आ रहा है? अभी उत्तर प्रदेश में नोएडा में अंजना जी आप बोलते हो विपक्ष को गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है? अरे आकृति चौधरी के साथ ये मेघा रूपम जो डीएम है इसने क्या किया? और जो उच्च न्यायालय के जो जस्टिस अतुल श्रीधरन है बोला कि मेघा रूपम की अकाउंट से और जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है उनके अकाउंट से 5 लाख रुपए इस बच्ची को दिया जाना चाहिए। वो जो आकृति चौधरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जब हम सवाल पूछते हैं कि आपने पैलेट गन से मारा तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हम संसद में नहीं आएंगे, संसद में आने को तैयार नहीं हूं। कहीं देश में बात हो रही है तो आप कह रहे हो दिमागी नक्सल फूफा, अरे आपको सास भी बहू देखना है, आप देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए। लेकिन मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी छात्रों का भविष्य देख रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कानपुर आए थे और बोले थे कि रमईपुर इंडस्ट्रियल मेगा लेदर क्लस्टर 800 करोड़ का, दुनिया में हम टॉप 5 देश है जो हम लेदर प्रोड्यूस करते हैं, शूज से लेकर सब कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2022 में जो झूठ बोला, आज तक कानपुर में वो मेगा क्लस्टर शुरू नहीं हुआ। जब युवा बेरोजगार होगा, सड़क पे होगा, तो कहेंगे फूफा नाराज है, फूफा के लड़का नाराज है, लड़की नाराज है, छात्रा नाराज है। अरे भाई यही फूफा फूफी की लड़की तो आकृति चौधरी भी है जिसको आपने ट्रॉमा दिया। उन दो बच्चियों के साथ दिल्ली की पुलिस ने क्या क्या किया है अंजना जी? तो विपक्ष का काम क्या है, मतलब हम इनका इन गुणगान करें, हेल मोदी, मोदी जी जिंदाबाद, हेल हिटलर, ये नहीं होने वाला।
0: आप हो गए हिटलर, आप हो गए औरंगजेब, आप हो गए बाबर।
4: मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव,
0: आपके नेता होंगे बाबर, औरंगजेब,
4: छात्रों युवाओं का भविष्य,
0: मुगलाई सल्तनत,
4: और आप अपना पतन नहीं देख रहे हो।
5: अपना पतंग देखो और छात्रों से जब जाओ पूछो समस्या क्या है
3: बताएंगे
5: मन में भाषण मत दो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे
0: क्या हो गया दिमागी संतुलन चला गया है क्या
5: ये बंद करवाओ यार ये बंद करवाओ ये बंद करवाओ ये क्या
0: क्या हो गया क्या हो गया
5: बंद करवाओ इसको
0: क्या हो गया ठीक नहीं
5: हो गया छात्रों के बीच में जाए मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी तरह उनसे पूछे कि क्या हुआ है आपके साथ डिंपल जी की तरह जिस तरह से बच्चे बच्चियों की उन्होंने माँ की तरह से उनकी देखभाल करी उनसे पूछो कि बच्चों से कैसे बात किया जाता है
0: कपिल शर्मा शो में जाने वाले हैं क्या
1: प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए
0: अमित भाई
5: भेज दो
0: मेरा निवेदन है अंजना जी का शो पूरी दुनिया देखती है कपिल शर्मा जी के लिए यहाँ पे ऑडिशन शो पे मेरे भाई अमित जमाई कर रहे हैं उनको कपिल शर्मा जी को बुलाना चाहिए देखिए मैं वापस से इनकी झूठ की गूंज को एक्सपोज करूं
5: भेज दो उसके बाद हम सोचेंगे देखिए
0: इनकी झूठ इन्होंने बच्चों की बात करी
5: पहले उनको भेजो
0: अच्छा सुनो तो सही
5: इतना
0: नाराज फूफा हो आप सुनो मेरे नाराज फूफा ये देखो इनके ये रही अमित भाई ये रहा July 1, 2014
5: बॉडी लैंग्वेज
0: सुनो July 2014 के पहले की 2013 की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जब कांग्रेस पार्टी थी वो कह रही थी कि बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित उत्तर प्रदेश में आपके शासन काल में होते हैं ये रहा आपका विजन चलो मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ 20 साल अखिलेश यादव राजनीति में एक स्पीच दिखा दो जो युवाओं पे दी है एक स्पीच मुझे पता है आपकी जलन क्या है आपकी जलन ये है कि आपकी रैली में कोई भी युवा ये तस्वीर लेके नहीं आता मोदी जी के लिए कहते
1: हैं अरे मिस्टर जमाई इसके बाद वो जवाब दे लें जल्दी से बोलिए
0: देखिए मैं जानता हूं कि ये फ्रस्ट्रेटेड है ऑपोजिशन में रहते हुए पर इनके व्यवहार से ये और ऑपोजिशन में रहेंगे अखिलेश यादव जी का 20 साल का करियर है मुझे आप एक बात एक इनकी डेडिकेटेड स्पीच यूथ के लिए बता दीजिए देख लीजिए ये देखिए ये देखिए क्या हो रहा है इनको कोई एक डेडिकेटेड स्पीच नहीं है इनका रिपोर्ट कार्ड तो कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित इनके शासन काल में रह रहे थे इनको फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनकी रैली के अंदर सब इनको तुष्टीकरण वाले नेता कहते हैं प्रधानमंत्री जी जब युवा को एड्रेस करते हैं तो युवा कहते हैं प्रधानमंत्री जी आपके वर्जन से हम इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं इनमें और हम में ये फर्क है अगर इनकी सच में विजन अच्छी होती तो हमने पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश का दुगना दुगना किया है ये सब छोड़िए मैं दो मुख्य बात पूछूंगा क्या भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन 1,00,000 करोड़ किया इसमें किसी को दिक्कत हो सकती है पर इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दिक्कत थी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा क्या इसमें किसी को दिक्कत हो सकती पर इनने पूछा भारत के कितने जहाज गिरे भारत आज हर रेटिंग एजेंसी के हिसाब से दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो किसी को भी इसमें दिक्कत हो सकती पर कांग्रेस और सपा को इसमें दिक्कत है हम इस पे बात कर रहे हैं ये मूल वृक्ष है जो देश को आगे ले जाने के विजन के जिसमें ये विरोध करते हैं इनके पास कोई विजन नहीं है देश का सिर्फ देश के विकास के अंदर एक डाउट पैदा करना चाहते हैं ये नाराज तूफान है
5: कुछ ही महीने हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के लोग मिलकर तुम्हारी गुंडाई ठीक कर देंगे हम यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर
0: अरे भैया यही घमंड के चक्कर में विपक्ष में बैठोगे आज नोट कर लो अंजना ओम कश्यप जी का शो 8 सितंबर 2026 इसी घमंड की वजह से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठोगे इसी घमंड की वजह से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठोगे क्योंकि अतीक और मुख्तार की सरकार कोई वापस नहीं चाहती
1: अखिलेश जी
0: भी अब डेटा देख रहे हैं
1: अखिलेश जी
2: अंजना जी ये जो हमारे बीजेपी के भाई हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान देने वाले कम से कम आप लोग आज इस बात को चर्चा कर रहे हैं मोदी जी चर्चा कर रहे हैं जेएनजी पे धन्यवाद राहुल गांधी और देश के नौजवानों का जिनके बदौलत आज इनके दिल में जो भाषण देते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते इस्तीफा देना पड़ा 20 दिन संसद में रहते हुए सदन के अंदर आने की हैसियत हिम्मत नहीं जुटा पाए गृहमंत्री और प्रधानमंत्री
0: नौजवानों को दिखावा ही सही
2: दिखावा करने के लिए ही दिखावा करने के लिए ही ये सब करते हो लेकिन करना पड़ रहा है यही बात 2018 से राहुल गांधी जी शुरू तब से कर रहे हैं शिक्षा परीक्षा नौकरी कॉपी करो देखिए मोदी जी इतना सत्यवादी को दुनिया में कोई नहीं तो
1: सबसे बड़ा
2: देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता लेकिन ये जब मोदी जी आए थे तो इस देश के प्रति व्यक्ति पे 46,000 रुपए कर्जा था आज जो 1,46,000 रुपए कर्जा है
0: जो दोनों
2: भाई इस तरह से, ये तो जो एक तुम ये सत्य बोलते हो, मोदी जी बोलते हैं भाई, दुनिया में सबसे बड़े सत्यवादी मोदी जी हैं, दुनिया में मृदुभाषी मोदी जी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा संस्कारी बातें करने वाले मोदी जी हैं,
1: कभी वो सत्य नहीं बोलते हैं। भंडारी जी देखिए स्टूडियो में है लेकिन मोदी जी जो है आप मेरे साथ हैं, प्लीज
2: मोदी जी इतना सही बोलते हैं, इतना सत्य बोलते हैं, बस चीन के आगे और ट्रंप के आगे बेचारे घुटने टेक के बैठे रहते हैं। हमारे सीमाओं पे घुसता आ रहा है, चीन आके 60 किलोमीटर कब्जा कर लिया अरुणाचल में, वहां के नागरिक शोर मचा रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है, इनके सांसद पहले भी 5 साल पहले पार्लियामेंट में बोल चुके थे फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन इनको नहीं सुनाया जाएगा क्योंकि चीन से इनका कौन सा रिश्ता है, फूफा वाला है कि कुछ और वाला है, जमाई वाला है हमारे। दूसरा हम अमेरिका जिस तरह से चाह रहा है, उठक बैठक करा रहा है, जो चाह रहा है देश उसको बोलने नहीं आ रहा है, करने नहीं आ रहा है। एक जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किए थे, कैठे जहाजें चल रही हैं, कैठे बताए थे ना,
0: नगर में बताए इतने लाखों
2: जो है
0: स्टैंड यहाँ पे ले लिया जाए, इन चीन ने भारत की भूमि पे कब्जा किया है,
1: पूरा कर ले, वो पूरा कर ले, पूरा कर ले। भंडारी जी
0: बोलिए बोलिए
2: अंजना जी, जैसे आज बड़ोदरा में बोल रहे थे ना अंजना जी, जैसे आज बड़ोदरा में बोल रहे थे उसी तरह कुशीनगर में चुनाव हो रहा था, उसके पहले उद्घाटन किए थे और बता रहे थे यहाँ पे इतने दर्जन 5-स्टार होटल आएंगे, इतने ज्यादा टैक्सियां चलेंगी, इतना बड़ा टूरिज्म डेवलप होगा, इतने हवाई जहाज आएंगे और इतने करोड़ों लोग यहाँ के कमा लेंगे। 5 महीने में एयरपोर्ट में बंद हो गया, 2500 करोड़ लगा के चलाए थे। इसी तरह 7 एयरपोर्ट यूपी में और सबको गिना रहे थे और इसी तरह ढपली गा रहे थे। अरे भाई तुम्हारी कोई शिलान्यास उद्घाटन का योजना सफल हुई तो बताओ ना, सारी एक्सप्रेस वे धस गई, जिसको लूटे हो उत्तर प्रदेश में उसका पैसा खाए हो, कागज में बनाए हो, जितने बनाए हो रोज छप रहा, फोटो अखबार में आ रहा है, लोग आ रहा है, धस्ती जा रही है, तो पैसे लूटर क्या हुआ, स्मार्ट सिटी क्या हुआ, सब घर हर घर जल क्या हुआ, मैं चुनौती देता हूँ, चलो मेरे साथ गाँव में
0: आ जाओ, चलो गाँव में चलो, चलो पानी का पानी,
2: चलो देवरिया में,
0: चलो आपके गाँव चलेंगे, अंजना जी मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अखिलेश प्रताप सिंह जी के गांव चलेंगे और ओपन कैमरा और देख लेंगे, अगर 10 से 9 गांव वालों ने नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में काम कांग्रेस से ज्यादा हुआ है तो मैं इनसे
2: हो जाए अभी मैं जाके खुद मीडिया को लेकर दिखा दूंगा तुमको, इसी आज तक वाले को ले जाऊंगा। अंजना जी लाखों स्कूल बंद हो गए, स्कूल की बिल्डिंगें गिर जाएंगी, भाजपा कार्यालय की बिल्डिंग नहीं गिरेगी, 800 कार्यालय बन चुके हैं इनके, गेहूं बेच के पैसे लाए हैं, गेहूं बेच के इनके भाजपा के खातों में 10-11 हजार करोड़ रुपए इन न्यूज आती हैं, तो उनके कहां से आए, गेहूं बेच के लाए हैं, बड़ी बड़ी आरएसएस की बिल्डिंगें बन गई हैं, कहां से आई हैं, लेकिन कोई बता दे कि कोई आईआईटी आईएम नई अच्छी पुरानी बिल्डिंगों का मरम्मत कराए हो, क्यों, अभी मैं गया था इलाहाबाद में, वहां के हॉस्टलों की हालत देखे होते, वहां के हॉस्टलों की बिल्डिंगों की हालत देखी होते, मरम्मत बिना किसी की किस तरह से उपेक्षित पड़ी पड़ी है, किसी भी डिग्री कॉलेज आईएम आईआईटी और स्कूल कॉलेजों के बिल्डिंगों की हालत देख लीजिए और इनके भाजपाइयों के बिल्डिंगों की हालत देख लीजिए, संघ कार्यालयों के हर बिल्डिंगों की हालत देख लीजिए।
1: लेकिन इसी देवरिया में अभी तो चुनाव हुआ 24 में, तो आप कम वोट से मार्जिन कम रहा, आपने जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन शशांक मणि बीजेपी के जीत गए थे ना अखिलेश जी आपसे?
2: हाँ जीत गए थे, देवरिया में सदर अस्पताल है, बताएं, पूछा अपने रिपोर्टर से, मोदी जी बोल के अधिक देवरिया में 3 चीनी मिले में 3 महीने में चलवा दूंगा, आज 8 साल हो गए,
0: अरे सब हो गया, जवाब
2: 2 बार शिलान्यास किया था गडकरी जी ने, वहाँ रिंग रोड का तक रिंग रोड बन गया, बता दीजिए केंद्रीय विद्यालय का भवन का शिलान्यास, इनको भी बंद करिए,
0: अच्छा छेड़ा है,
2: अच्छा छेड़ा है, केंद्रीय विद्यालय के भवन का शिलान्यास किया था, 10 साल हो गए, केंद्रीय विद्यालय का भवन है क्या देवरिया में, बता दें,
1: ठीक है।
6: उन्होंने कहा था कि हम जो है देवरिया के शुगर मिल चला देंगे, बता दें चली कि नहीं चली देवरिया में तमाम और चीजों को
1: चर्चा जनता के साथ की हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा था। जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए उनकी बातों का, फिर सत्य प्रकाश जी और अमित जी को दिखाएं।
0: क्या आप आर्मी में विश्वास रखती हैं? करती हैं आप, इतनी बड़ी देशभक्त मैं भी करते हैं। अब आर्मी ने बोला है कि भारत की एक इंच भूमि चाइना या किसी भी अग्रेसर ने नहीं कब्जा करी, उसके बाद भी कांग्रेस ही नहीं मान रहे, तो इनको क्या बोलेंगे आप बताइए? अभी भी उनने रिपीट किया ना, क्या बोलेंगे इनको बताइए? आर्मी पे जिसको विश्वास नहीं उसको क्या बोलेगी, उसकी कितनी कथनी पे, बाकी छोड़िए इनका एक स्टेटमेंट मैंने उठाया तो ये बाकी तो निराधार हो जाता है। जो आर्मी की बात पे विश्वास रखे वो क्या बात करेगा, ये स्कूल की बात करेंगे? ये कल ही कर्नाटका के अंदर एक स्कूल का जो है पूरा का पूरा रूफटॉप गिर गया था, ये जैसे भेड़ियों जैसे बच्चों को एक स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे। रूफटॉप नहीं है, खाने को नहीं है कर्नाटका के अंदर, बेरोजगारी इधर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, ये क्या बात करने वाले? झूठ पे झूठ बोलना चाह रहे हैं आप। इनने बोला कि क्या हुआ भाजपा में आने, अयोध्या ये तो नहीं गए, राहुल गांधी तो नहीं गए, मेरे को तो पता नहीं कब दर्शन करने गए। अयोध्या के अंदर 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है मंदिर बनने के बाद, 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक का फायदा हुआ है और 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, पर ये तो जाएंगे ही नहीं कांग्रेस दफ्तर के बाद। और जरा वो देखो डीडीयू मार्ग में कांग्रेस की इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसको बोलो जरा उसको कुटिया में कन्वर्ट करो पहले।
1: प्रदीप जी सत्य निकेतन पूछेंगे तो कर्नाटक का वीडियो दिखाएंगे,
0: नहीं सत्य निकेतन
1: यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कांग्रेस ये जवाब नहीं हो सकता है।
0: अंजना जी मैं आप इनकी सिंसेरिटी,
1: आप सरकार है साहब,
0: अंजना जी आपकी सिंसेरिटी देखिए, आपने मुझसे 3 बार सत्य निकेतन पूछा जो आपका हक है और इस देश का हक है, पर कांग्रेसी के वक्तव्य में एक भी बार सत्य निकेतन आई है? उठाइए राजस्थान की रिकॉर्डिंग बताइए। ये दुनिया की बात करी पर जो जनता का मुद्दा सत्य निकेतन तक नहीं बात पूछ पाई हमसे, तो कैसा विपक्ष है ये? इनका काम था पूछना सत्य निकेतन का सवाल पर पूछे नहीं, ये ऐसा विपक्ष है इसलिए विपक्ष में बैठता है। मैं तो कह रहा हूं 4 बार इनको पूछना चाहिए था पर नहीं पूछे, यही एक्सपोज हो गए, ये तो आर्मी को झूठ ला रहे।
1: जल्दी से रिएक्शन
3: देखिए, अब नाराज फूफा लोग पर ज्यादा कमेंट करेंगे और नाराज हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस देश में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, पहले कभी जिनको राशन तक नहीं मिलता था वो 70 सालों में 80 करोड़ लोगों बच गए कैसे, कि 60 करोड़ लोगों के पास बैंक का खाता नहीं, 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ा, तो जनधन खाता खुला तो भी फूफा जी नाराज। अब है उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था अच्छी बनाए तो भी नाराज। अब इनकी नाराजगी पर मलहम लगाने का काम हमारा तो नहीं है।
1: सत्य प्रकाश जी उलट के ये सवाल भी तो आता है कि आप इतने अच्छा जीडीपी की बात कर रहे हैं, उसी देश में 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है।
3: बिल्कुल, 70 साल में कांग्रेस ने ऐसी माली हालत क्यों की कि 12 साल में हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला ये सदन में प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं कहा है, और आयुष्मान भारत योजना देकर गरीबों का इलाज कराया पहली बार हुआ इस देश में, ये दिखेगा नहीं इनको। और अगर महिलाओं के खाते सीधे पैसा गया, कई तरह की योजनाएं अलग अलग राज्यों में शुरू हुई, नहीं दिखेगा। एक छोटी सी योजना बता दूं, जनानी सुरक्षा योजना, जिसमें खाने और पीने का पैसा नहीं मिलता था, हुकुमदेव नारायण यादव एक गरीब सांसद थे, उन्होंने कहा अगर मेरी मां को भी मिला होता कांग्रेस के राज में तो मैं अस्वस्थ और कुपोषित पैदा नहीं होता, यह बनाया था कांग्रेस ने। आपकी पूरी की पूरी जो बिसात है ना कांग्रेस की, वो इस देश पर कालिक है। आपने इस देश को खोखला बनाने में जितना काम किया, आप बताइए हमारे पास रफाल नहीं था, हम युद्ध लड़ने के काबिल नहीं थे?
1: नीतीश कुमार तो कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे थे भाई मोदी को हराने के लिए,
3: स्ट्रेटजिक अलायंस उस समय बनते बनते रह गया, थैंक यू कि नहीं बन पाया।
1: अच्छा,
3: लेकिन जब देश के पास रफाल नहीं हो और अगर चांद पर पहुंच गया भारत, उस दिन भी नाराजगी थी कांग्रेस को।
1: चलिए यही पर हमें अंत करना पड़ेगा, आज 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में 2 संदिग्ध बंदूक लेकर कैसे पहुंच गए, इसके बाद आपको दिखाएंगे आतंकवादियों का सप्लायर पाकिस्तान अब कैसे फेक एआई की फैक्ट्री बन गया है, और इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत रशिया चाइना का ब्रिक्स संगठन क्या डॉलर के खिलाफ खड़ा है, और आखिर में आपको सावधान करेंगे कि भारत में किसी को सिविक सेंस सिखाना जानलेवा हो सकता है। देखते रहिए।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
5: देखे जन्म पहला पहला कदम।
6: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3। The E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
11: इन एसोसिएशन विद
12: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
15: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय में भी उतना प्रासंगिक है?
16: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
17: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
16: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आज तक की पंचायत में यूपी विजय के पक्के वादे।
6: अंजना जी को इंटरव्यू 22 में लिया था तो मैंने तब भी कहा था हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा। वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है वह इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा।
5: यूपी की चुनावी लीला का मथुरा से शंखनाद सिर्फ आज तक पर।

0: वडोदरा के शो में पीएम मोदी की कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री हुई। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो नेपथ्य में धुरंधर का गाना बज रहा था। दर्शकों में नौजवान और नेपथ्य में धमाकेदार गानों की धुन। मोदी के एंट्री के साथ गानों पर झूम रहे थे वो नौजवान, पीएम मोदी जिनसे संवाद करने यहां आए थे। इस शो की प्लानिंग बड़े ही करीने से की गई थी। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ा। और जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो माहौल कुछ अलग ही किस्म का था।
1: 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
0: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रमाल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा था नौजवानों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में अगले साल यानी 2027 में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन पीएम मोदी अभी से एक्टिव हैं और शायद यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। बृजेश दोषी, वडोदरा, आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: फूफा नाराज जेंजी पर सियासी आवाज, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अब देखिए सात तक सईद के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेनजी से भरे वडोदरा में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। कहा, झूठ के गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार से चलता है। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन में पहले की सरकारों पर योगी का हमला। बोले, माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। शुद्धिकरण में हल्द्वानी, नैनीताल में केस, अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर। दिल्ली में संसद मार्ग थाने पहुंचे।

0: कांग्रेस के नेता। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त NHRC, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के निर्देश। अवैध PGs के खिलाफ MCD ने शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। मुंबई में BKC सेंटर से गिरफ्तार 2 को पुलिस रिमांड, खुद को बता रहे थे PMO का अधिकारी। फर्जी आई कार्ड, हथियार बरामद। और इस शो की शुरुआत हम अयोध्या के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए CEO की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा था, जहां मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए CEO जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में CEO जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के CEO बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रूपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रूपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादरी के वोट की राजनीति कुछ इस राह पर शुरू हुई कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल ने अपना पूरा जोर लगा दिया। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर नीला कर दिया। अब रंग पर युद्ध छिड़ा है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेनजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अंबेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस जारी है बहुरूपिया का।

0: बहरूपिये का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
1: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
0: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: आज जेन जी पर राजनीति और लड़ाई और तीखी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से नाराज फूफा वाला कटाक्ष किया और ये संदेश देने का प्रयास किया कि विपक्ष देश के विकास को पचा नहीं पा रहा है।
3: भारत की धड़कन में गूंजे नया सुकून।
4: ये विकास की रफ्तार को जेन जी की रफ्तार से मैच कराने वाला पीएम मोदी का अंदाज है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में अधिकतर युवा शामिल थे जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। 12 वर्षों में भारत की बदल गई कार्यशैली के प्रधानमंत्री के दावों में युवाओं को संदेश भी था और सियासत का जोरदार प्रहार भी।
5: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
4: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के संबोधन में शामिल हुई नाराज फूफा वाली अभिव्यक्ति वडोदरा में एक बार फिर पीएम के भाषण का हिस्सा बनी।
5: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
4: जेन जी को दो अलग अलग भारत दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। 2014 से पहले के भारत को नहीं समझने वाले युवा को विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब क्लॉकिट करना चाहते हैं। कांग्रेस युवाओं को यह संदेश दे रही है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी देश की समस्याओं की वजह बीजेपी को बताया है।
6: सरकार के पास महंगाई रोकने का, सरकार के पास नौकरी देने की व्यवस्था, सरकार के पास इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितना आया है उसका कोई जवाब नहीं है। जहां जहां बीजेपी है वहां वहां पानी भर रहा है।
4: भारत में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बिगड़ा हुआ है, इस पर हंगामा जारी है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के विरुद्ध एक्शन की मांग की जा रही है।
0: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
7: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
0: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
8: जिस चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे और अरेस्ट होनी चाहिए।
0: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो

0: भी जारी किया है।
1: चीमा भी जिम्मेवार है जी गल का, मेरी मौत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेवार है।
2: की सवाल किया जी तुसीं ने?
1: मैं चिट्टे बारे सवाल किया जी।
2: चिट्टे तो तुसीं क्यों किया? थोड़े घरे कोई चिट्टा पींदा?
1: हाँ जी, मेरा मुंडा पींदा।
0: उधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मौत से पहले ये वीडियो बीजेपी ने बनवाया।
3: खा लिया उस व्यक्ति ने और उसको तुरंत सल्फास अगर कोई खा ले तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तब उसकी जान बचती है। और आप उस दौरान उस पे दबाव डाल रहे हैं, उससे दूसरा वीडियो बनवा रहे हैं कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
0: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
4: और अब खबर दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर राजनीति काफी तेज हो गई है।
0: ये कैंडल मार्च है मणिपुर के एक म्यूजिक टीचर चोंगथंग विक्रम सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए, जिन्हें दिल्ली में एक मामूली विवाद में मौत के घाट उतार दिया गया।
5: यहीं पर करीब करीब 7-8 लोग के आसपास मौजूद थे, जिसमें आसपास के ढाबे में काम करने वाले लोग थे, कोई डिलीवरी बॉय था, कोई पैकिंग का काम करता था, तो वो लोग शोर मचा रहे थे। अब ऊपर 3rd फ्लोर पर उनका घर है, तो वो नीचे आए, उनको शायद ऊपर आवाज आ रही थी, उन्होंने यहाँ पे मना किया। और जब मना किया तो इस बीच उनके बीच आपस में कुछ कहा सुनी हुई, और जब कहा सुनी हुई तो उन लोगों ने मारपीट हुई, और उसके बाद विक्रम जी अंदर की तरफ भागते। अब आप देखिए 3rd फ्लोर पे नेहा जी, यहाँ से वो ऊपर की तरफ विक्रम जी भागते हैं, और पीछे से सारे लड़के ऊपर की तरफ भागते हैं, और ऊपर की तरफ वो अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं और मदद की मांग करते हैं, तो अंदर जो उनकी वाइफ थी उनके पास आवाज जाती है, वो दरवाजा खोलती हैं, और उसके बाद वो लड़के दिखते हैं, भागते हुए भी दिखते हैं, मारपीट भी पूरी कैप्चर हुई है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो गई।
0: किलोकरी गांव में मणिपुर के 54 साल के म्यूजिक टीचर चोंगथंग विक्रम सिंह कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन मोहल्ले के शोर को लेकर शुरू हुए विवाद ने उनकी जान ले ली। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक नाबालिग को भी पकड़ा है।
6: जी, आरोपी वहाँ पर जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट्स है उनमें या तो काम करते हैं या डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, एज अ वर्कर काम करते हैं।
7: किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड
6: नहीं? अभी तक किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं।
0: नॉर्थ ईस्ट के लोगों की दिल्ली में सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार के मंत्री इसे क्राइम का मामला बताते हुए सियासत ना करने की बात कह रहे हैं।
8: मैंने विद इन 2 सप्ताह में बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जशीट भी फाइल कर देंगे कोर्ट में, कड़ी सजा होना चाहिए। 8 का 8 अलग अलग समुदाय अलग अलग राज्यों से है।
9: Those 8 people who killed our late brother Chongtham Vikram, they must be given life imprisonment. All those who have created racial violence against the people of Northeast, they should be given justice.
0: मामला गंभीर है, नॉर्थ ईस्ट के लोग सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में अब सख्त एक्शन का इंतजार है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: दिल्ली में हत्या तो जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या, और इस हत्या के बाद तनाव। आज सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन इस हत्या के विरोध में देखने को मिला है।
10: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
11: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
12: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
10: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
13: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
10: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहाँ पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब 1 सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
13: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोप कर उसका पेट फाड़ दिया।
14: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे। जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
10: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
4: बिहार के 13 जिलों में जबरदस्त बाढ़ है। गंगा और गंडक नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। गांव के गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है।
15: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। 13 जिलों में बाढ़ चपेट में, 27 लाख से ज्यादा लोग। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही हैं, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सबसे पहले भागलपुर की तस्वीरें देखिए।
16: मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है।
15: लोगों के
4: और अब खबर बाजार की। आज बाजार में क्या रहा ये हम आपको बताते हैं।
10: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 555 अंक टूटकर 75,578 और निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव से निवेशकों की चिंता बढ़ी। इसके अलावा ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव रहा। कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर भी घरेलू बाजार पर देखने को मिला। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपए में भी कमजोरी देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे कमजोर होकर 94.84 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से रुपए पर दबाव रहा। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और निवेशकों की सतर्कता से भी रुपए की कमजोरी बढ़ी। वहीं सराफा बाजार में तेजी का रुख रहा और सोना 606 रुपए बढ़कर 1,53,309 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2,406 रुपए बढ़कर 2,34,056 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। IBJA के मुताबिक पिछले कारोबारी दिन के PM रेट के मुकाबले सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।
4: और अब खबर जापान में होने वाले एशियन गेम्स की, जहां अपना परचम लहराने के लिए हमारे देश के धुरंधर जापान के लिए रवाना हो चुके हैं।
10: एशियन गेम्स में तिरंगा फहराने के लिए तैयार हिंदुस्तान। दिल्ली में मिली विदाई, अब जापान में बड़ा इम्तिहान।
0: ढेरों उम्मीदों का बोझ लेकर अब बारी है रवानगी की। जोश, जज्बे और जलवे के साथ दिल्ली में जुटे भारत के ये खिलाड़ी इस महीने होने वाले एशियन गेम्स में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने का अभियान शुरू करेंगे। एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार को दिल्ली में खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सेंड ऑफ सेरेमनी में खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। महीनों से खून पसीना एक कर रहे खिलाड़ियों के हौसले भी तिरंगा लहराने के लिए बुलंद हैं। भारत इस बार 768 सदस्यों का भारी भरकम दल लेकर जा रहा है। उसके सामने महिला और पुरुष वर्ग में क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी जैसे टीम खेलों में अपना खिताब बचाने की चुनौती होगी। वहीं नीरज चोपड़ा के बाहर होने के बाद एथलेटिक्स और बैडमिंटन जैसे खेलों में मेडल जीतने का दबाव भी होगा। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब खबर दुनिया की, जहां पंजाब की मुख्यमंत्री, पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पर घमासान मचा हुआ है। मरियम के एक बयान ने पाकिस्तान की आतंक के मोर्चे पर तो पोल खोल ही दी, साथ ही बदहाली भी एक बार फिर से पाकिस्तान की खुद ही मुख्यमंत्री ने सामने ला दी।
0: भारत से नहीं अपनों से है खतरा, इस बार ये सच राह चलते किसी बेबस नागरिक की जुबान से सामने नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी के बयान से आया है, जिसने पाकिस्तान की सियासत में हड़कंप मचा दिया है।
17: आप खुद देखें कि ट्राई बॉर्डर एरिया, वहां से हमें अफसोस की बात यह है कि मुझे थ्रेट जो है वो मेरे नेबरिंग कंट्रीज से कम है और मेरे नेबरिंग प्रोविंसेस से ज्यादा है। वहां से जो टेररिज्म है वो पंजाब में आता है, पंजाब के ऊपर सबकी नजर है। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ प्रोविंस है, लेकिन जिस किस्म का थ्रेट का हमें सामना है तमाम बॉर्डर्स से जो प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं।
0: मरियम नवाज ने यह बयान लाहौर में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया था, जब पाकिस्तान के एक राज्य की सीएम भारत से ज्यादा अपने ही पड़ोसी राज्यों से खतरा बताने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है।
4: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
21: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
20: छक्का
21: सब कैशलेस हो गया है।
20: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ तू।
22: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
23: बैट किसका है?
24: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
3: Money, money, money, money every month.
4: सोच बदलो और बैंक भी.
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: GK Max.
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: GK Max. Best पुट्टी?
8: JK Wall Max.
6: Best paint?
9: JK Max.
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ
11: JK Max paints.
10: JK Max paints. खुशियों के रंग।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
14: Jam Bomb!
15: Ek to ek.
16: Ishram.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
3: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
4: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
3: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
5: दरख्तों को देख करके आप समझ में आएंगे कि त्रिशूली की धारा कितनी ताकतवर थी। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ बह गया, ध्वस्त हो गया। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। 9 दिन पहले एक भरा हुआ शहर अब बंजर रेगिस्तान कब्रिस्तान की तरह दिखाई देने लगा। जो अपने आप में मिरेकल हाउस थे, जो बचे रहे लोग इनकी छतों पर खड़े रहे, अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। यहां पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। त्रावती से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
6: ना इतना दुखद है कि जान चले गई। पुलिस से बात करते समय पूरा जांच का पता तो लग गया है। अब पुलिस ने मुझे बताया कि 8 दिन के लगभग अंदर में, मैंने विदिन 2 सप्ताह में, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जशीट भी फाइल कर देंगे कोर्ट में, कड़ी सजा होना चाहिए। 8ों का 8 अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों से है, यह काम करते हैं, बाहर से आए हैं सब लोग, और अभी तो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन चार्ज शीट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यही बात हुआ है। जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय हैं, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द ही, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है। इसलिए मैंने कहा कि चार्जशीट कब तक होगा, तो दिल्ली पुलिस ने मुझे बताया कि लगभग 8-9 दिन के अंदर में चार्जशीट दायर हो जाएगा कोर्ट में, ताकि उनका सजा जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत कठोर सजा मिलना बहुत जरूरी है।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौट आओ।
1: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
3: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
4: अब्बा साईं,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पीएम का जेंजी संवाद, झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर युवा, सच की हुंकार के साथ देश। मुंबई में कहा, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनबाड़ी सम्मेलन में पहले की सरकारों पर योगी का हमला, बोले माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। शुद्धिकरण में हल्द्वानी नैनीताल में केस, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर, थाने में पहुंचे कांग्रेस के कई नेता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज विशेष में बात कानपुर के मशहूर दवा व्यापारी की हत्या की, जिसमें मास्टरमाइंड दवा व्यापारी विनीत बिनोचा की बहू ही निकली। बहू ने ससुर की हत्या की सुपारी 6 लाख रुपए में दी थी, और वो भी अपने ही घर के एक पुराने नौकर को। लेकिन सवाल यह है कि क्यों एक बहू अपने ही ससुर की जान की दुश्मन बन गई? एक बहू को अपने ही ससुर से इतनी नफरत क्यों हुई? देखिए रिपोर्ट।
1: बहुत ध्यान से इस महिला को देखते जाइए। अभी बस ये जान लीजिए कि इस घर के मालिक की बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। मरने वाले इस महिला के ससुर थे। जाहिर तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि यह महिला अपने ससुर की हत्या पर बहुत ज्यादा दुखी है। वो गुमसुम बैठी है, हताश है, निराश है। आंखों से लग रहा है कि जैसे रो रो कर सूख चुकी है। आस पड़ोस के लोग उसे दिलासा दिला रहे हैं। घर पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं, जो अपनी जांच कर रहे हैं। पहले वो सोफे पर अधलेटी सी मुद्रा में है, जो बहुत दुखी दिख रही है। फिर वो सोफे पर लेट गई, सिर पर हाथ रखा है, पूरी तरह से गमगीन। लेकिन अगर हम आपको कहें कि यह महिला रोने का नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यह हकीकत है। कानपुर के दवा व्यापारी की हत्या की मास्टरमाइंड बहू ही निकली। बहू ने नौकरों को 6 लाख रुपए की सुपारी देकर ससुर का कत्ल करवाया। सुबह बहू पुलिस वालों के सामने ये सारी एक्टिंग करती रही, और शाम होते होते उसके गुनाहों का पर्दाफाश हो गया, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। रिश्तों के खून की यह कहानी है कानपुर के दवा व्यापारी विनीत मनोचा और उनकी बहू शालू। शालू ने अपने ही करोड़पति ससुर की हत्या की साजिश क्यों रची? शालू की इस खूनी साजिश का पर्दाफाश कैसे हो? सोमवार की सुबह यह खबर आई कि कानपुर में एक बुजुर्ग दवा कारोबारी की लाश उनके ही घर में मिली है, वो भी खून से लथपथ। बेटा, बहू और पोता रात में पार्टी के लिए बाहर गए थे। सुबह 4 बजे लौटे तो अंदर विनीत मिनोचा का शव पड़ा था। विनीत मिनोचा कानपुर के बड़े दवा कारोबारी थे, करोड़पति थे, घर में अकेले थे, मारे गए। लेकिन घर से कोई सामान चोरी नहीं था, तो पुलिस को एक बात कंफर्म हो गई कि लूट के इरादे से तो हत्या नहीं हुई, यानी हत्या में कोई जानकार ही शामिल। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो पता चला कि रात को करीब 9:46 पर घर के अंदर दो लोग दाखिल होते हुए दिख रहे हैं, और बहुत आराम से दोनों ने ताला खोला और घर के अंदर चले गए। और ये सब तब हो रहा था जब सिर्फ 10 मिनट पहले ही विनीत मिनोचा का बेटा, बहू और पोता पार्टी करने के लिए घर से निकले थे। पुलिस को शक हुआ तो तुरंत इन दोनों की पहचान करवाई गई। पता चला कि इनमें से ये टी शर्ट वाला लड़का तो इनका पुराना नौकर है। मिनोचा की दुकान पर विशाल गौतम नाम का यह लड़का काम करता था। हालांकि बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन वो घर पर आता जाता रहता था। पुलिस ने पूरा सीसीटीवी खंगाला तो पता चला कि 1 घंटे पहले ही ये लड़का सोसाइटी में आया था। इसने मृतक की बहू शालू को रात को 8:40 पर कुछ सामान लाकर दिया था। पुलिस का शक और बढ़ा तो तुरंत सोसाइटी के मेन गेट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। यहां भी दोनों ही लड़कों की एंट्री मिल गई। दोनों लड़के हाथ में कुछ सामान लेकर सोसाइटी में दाखिल हो रहे हैं। पुलिस ने गार्ड का रजिस्टर चेक किया तो रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं था, उसकी एंट्री नहीं थी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि घर के अंदर से ही फोन आया था कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ घर आएगा, उसे एंट्री दे देना और रजिस्टर में दर्ज मत करना। अब इस बयान से पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस के सामने 3 बातें स्पष्ट हो चुकी थी। पहली कि हत्यारा कोई जानकार ही है। दूसरी, हत्यारे के पास चाबी पहले से मौजूद है, यानी कोई मिला हुआ है। और तीसरी कि हत्यारे को सोसाइटी में एंट्री भी अंदर से ही दिलाई गई। सोसाइटी में हत्यारों के प्रवेश की व्यवस्था पहले से की गई थी। अब पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज, गार्ड के बयान और दूसरे सुरागों को जोड़ा और जांच की दिशा सीधे घर के अंदर मोड़ दी। और फिर जब पूछताछ हुई तो एक ऐसी साजिश का पता चला कि पुलिस भी हैरान रह गई।
2: देखिए, जब कल ये सूचना मिलती है तत्काल हम लोग पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां से कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कलेक्ट किए गए उसमें सीसीटीवी था जिसमें दो संदिग्ध व्यक्ति दिखे। जब पता किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति विशाल गौतम इनके अपूर्व कर्मचारी रहा, इनके लगभग 12 साल उसने काम किया है। उसकी तलाश में लगातार टीम लग जाती है और इसके चलते शाम को मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी होती है। इसके साथ इसका एक अन्य साथी था, ये भी गिरफ्तार किया जाता है। जब इन लोगों से डिटेल में पूछताछ होती है तो इनके द्वारा बताया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को करने के लिए जो मृतक की बहू हैं शालू, इनके द्वारा कहा गया था और इसके बदले में इनको 2 लाख पहले और 4 लाख बाद में करने की बात, देने की बात कही गई थी। इस पूरे जब एनालिसिस की गई तो इसमें पता ये चलता है कि इनके द्वारा ही इनको, इन दोनों अभियुक्तों को इनको एंट्री दी गई और फिर एक सुनियोजित तरीके से वहां से ये लोग बाहर जाते हैं और फिर ये लोग एंट्री लेकर घटना को अंजाम देते हैं।
1: अब पुलिस के सामने पूरी कहानी साफ हो चुकी थी और इतनी देर में दोनों आरोपी भी गिरफ्तार हो गए और पकड़े जाने के बाद तोते की तरह पुलिस के सामने उन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। साफ साफ बता दिया कि घर की बहू ने उनको 6 लाख रुपए में ससुर की हत्या की सुपारी दी थी जिसमें से 2 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी थी।
3: किस लिए किया हत्या बुजुर्ग की?
4: वो हमने उनकी बहू ने कहा था, इसलिए हमने कहा था वो पैसे देने के लिए कहीं था।
3: अच्छा।
1: पूरा केस खुल चुका था। कानपुर में करोड़पति कारोबारी की हत्या की पूरी साजिश 24 घंटे से भी कम वक्त में साफ हो चुकी थी। सबसे पहले घटनाक्रम समझिए, फिर आपको मोटिव भी बताएंगे। पुलिस की जांच के मुताबिक शनिवार रात करीब 9:36 पर विनीत मिनोचा का बेटा सुब्रत, बहू शालू और उनका 6 साल का बेटा घर से पार्टी के लिए निकले। परिवार के निकलने के करीब 10 मिनट के बाद दो लोग फ्लैट के अंदर दाखिल हुए और कारोबारी के लौटने का इंतजार करने लगे। दोनों आरोपी करीब 1.25 घंटे तक फ्लैट के अंदर छिपे रहे क्योंकि विनीत मिनोचा घर पर नहीं थे। रात को करीब 10:58 पर विनीत मिनोचा घर लौटे। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। दोनों हमलावरों ने करीब 1/2 घंटे के भीतर कारोबारी पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। पूरी वारदात की टाइमलाइन करीब 112 मिनट की बताई जा रही है। अब ये भी पता चला है कि शुरुआत में ये प्लानिंग तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी, लेकिन पूरा प्लान बिगड़ गया।
5: क्या इसी तरीके से हत्या करने का प्लान था? इतनी बेरहम तरीके से हमने देखा कि कैसे चाकू से गोद कर पूरी तरीके से हत्या की गई, क्या यही इनका प्लान था?
2: इनिशियल जो प्लान था वो ये नहीं था। इनिशियल प्लानिंग इनकी ये थी कि ये दो अभियुक्त आए, ये दो लड़के आएंगे घर के अंदर, एंट्री करेंगे, वेट करेंगे और जब ये मृतक सो जाएंगे तब फिर तकिए से इनका मुंह दबा करके इनकी हत्या कारित कर देंगे, स्मॉदरिंग। लेकिन प्लानिंग का एग्जीक्यूशन जो है वो अलग तरीके से होता है और जब ये इंटर करते हैं तो एंट्री के बाद जब ये थोड़ी देर के बाद जब ये उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में लड़के रहते हैं, उस कमरे की लाइट जला देते हैं ये और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे इनके पास जो चाकू रहता है उस चाकू से ये वार करना शुरू कर देते हैं और उस पूरे घटनाक्रम में कई बार चाकू से वार करते हैं और वहीं पर मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है। अगर ये प्लानिंग ये थी कि अगर ये स्मॉदर करते हैं और फिर जब ये लोग किटी पार्टी से वापस आएंगे तो इसको एक हार्ट अटैक का रूप दे करके इसको मामले को रफा दफा हो जाएगा और फिर ये चीजें बाहर पब्लिक में नहीं आएंगी।
1: जांच में एक और अहम कड़ी सामने आई, फ्लैट की चाबी। पुलिस पूछताछ में विशाल ने कथित तौर पर बताया कि उसके पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी और इसी के जरिए वो अपने साथी के साथ अंदर दाखिल हुआ। इससे पुलिस को शक हुआ कि वारदात अचानक नहीं हुई बल्कि पहले से पूरी तैयारी की गई। पता चला कि हत्यारों को ये चाबी घर की बहू शालू ने ही उपलब्ध करवाई थी।
5: इस वक्त मैं मौजूद हूं दवा कारोबारी विनीत मिनोचा के घर के बाहर जहां पर दो आरोपियों ने उनकी चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे मामले की साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड उनकी बहू शालू थी जिसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उन्हीं के घर के बाहर। आप देखेंगे C104 ये घर है, एक पॉश एरिया में, पॉश सोसाइटी में जहां पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से दुरुस्त होती है, उसके अंदर ये फ्लैट है। किस तरीके से जो दो आरोपी हैं वो यहाँ पर एंटर होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये जो गेट है जिसको खोलेंगे आप तो उसके अंदर जो गेट आता है इसकी चाबी आरोपी शालू ने पहले से ही उन दोनों व्यक्तियों को बनवा के दी थी और ये कहा था कि जब वह और उनके पति पार्टी करने बाहर जाएंगे तो पीछे से वो उसी चाबी का इस्तेमाल करके घर के अंदर चले जाएं और इस पूरी घटना को अंजाम दें। आपको
0: लेकिन इस कहानी में असली सवाल यही है कि बहू ने अपने ही ससुर को क्यों मरवाया। करोड़पति ससुर थे, करोड़ों की संपत्ति थी, अच्छा खासा व्यापार था, तो फिर बहू ने अपने ससुर को क्यों मरवाया? ससुर की जान की दुश्मन क्यों बन गई इतनी नफरत कि बेरहमी से अपने ससुर को अपने ही घर में मरवा दिया? देखिए,
1: अब सवाल था कि इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या थी। आखिर शालू ने अपने ही ससुर की जान क्यों ली? शालू ने अपने ही ससुर की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी क्यों दी? वो शख्स जो उसके पति का पिता था, जो उसके बेटे का दादा था, उसी से इतनी नफरत की हत्या करवा दी? पुलिस की जांच के मुताबिक विनीत मिनोचा आर्थिक रूप से बेहद मजबूत थे, लेकिन बेटे और बहू के खर्च को लेकर उनका नियंत्रण था। आरोप है कि वो बेटे को सीमित पैसे देते थे और बहू की व्यक्तिगत गतिविधियां और खर्चों पर भी रोक टोक रखते थे। परिवार के भीतर इसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनने की बात सामने आई है। बहू को लगता था कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उसे और उसके पति को अपनी इच्छा के मुताबिक पैसा खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसी कथित नाराजगी ने धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश का रूप लिया। जांच के मुताबिक हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी तय किए जाने की बात सामने आई है। कथित तौर पर 2 लाख हत्या के बाद देने और बाकी 4 लाख करीब 15 दिन के भीतर देने की बात तय हुई थी।
6: तरीके से इतनी बड़ी प्लानिंग हो जाती है, और आप लोग के सामने किस तरीके का उन्होंने अपना साक्ष्य या रखा सामने, क्या बिहेवियर था उनका, क्या स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट कर लिया, आपसे क्या बातचीत उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में?
2: देखिए, इस पूरी घटनाक्रम से पहले भी कई बार इनका मिलना हुआ है इससे, विशाल गौतम से, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर, और उनके द्वारा ये प्लानिंग लगभग 20 से 25 दिन पहले ये पूरी प्लानिंग रची गई। ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में हुआ है। अभी रक्षाबंधन जन्माष्टमी के अवसर पर भी ये व्यक्ति आता है, ये फ्लैट में आता है और कुछ समय बाद ये वहाँ से जाता है, तो ये लगातार मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो लगातार ये चलता रहा है, और इस दौरान ये प्लानिंग भी हुई है। बिहेवियर की अगर बात करें तो बिहेवियर में अभी जैसा कि होता है कि तत्काल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट जो एविडेंसेस हैं वो कंपेलिंग एविडेंसेस हैं, और उसके आधार पर जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर भी आज इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: हमलावरों के बारे में बताया गया है कि वो घर के अंदर छिपकर विनीत के सोने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विनीत मिनोचा उस रात अचानक बच्चों के कमरे की तरफ चले गए। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। विनीत कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां छिपे दोनों हमलावर उनके सामने आ गए। कमरे की लाइट जलते ही दोनों को लगा कि अब उनके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके बाद चाकू से विनीत पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
0: विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: वडोदरा के शो में पीएम मोदी की कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री हुई। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो नेपथ्य में धुरंधर का गाना बज रहा था। दर्शकों में नौजवान और नेपथ्य में धमाकेदार गानों की धुन। मोदी के एंट्री के साथ गानों पर झूम रहे थे वो नौजवान, पीएम मोदी जिनसे संवाद करने यहां आए थे। इस शो की प्लानिंग बड़े ही करीने से की गई थी। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ा। और जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो माहौल कुछ अलग ही किस्म का था।
1: 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
0: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रमाल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा था नौजवानों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में अगले साल यानी 2027 में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन पीएम मोदी अभी से एक्टिव हैं और शायद यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। बृजेश दोषी, वडोदरा, आज तक। वी नीड प्रोटेक्शन, जस्टिस फॉर विक्रम। दक्षिणी दिल्ली के सनलाइट थाना में सुरक्षा और इंसाफ की मांग करते नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये कैंडल मार्च निकाला गया मणिपुर के म्यूजिक टीचर 54 साल के सी विक्रम सिंह की हत्या के विरोध में। कैंडल मार्च से पहले बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोग सनलाइट थाने में भी जमा हुए और वहां भी जमकर नारेबाजी की। पूरी वारदात किलोकरी गांव की सोमवार देर रात की है। बताया जाता है कि जिस जगह सी विक्रम सिंह रहते थे वहीं स्थित एक ढाबे में देर रात शोर शराबा हो रहा था। शोर शराबे से परेशान विक्रम ने जब ढाबे में मौजूद लोगों से शांत होने को कहा तो बताया जाता है कि इसी बात पर ढाबा स्टाफ और वहां मौजूद डिलीवरी बॉय उस पर टूट पड़े। बुरी तरह जख्मी हालत में विक्रम को होली फैमिली अस्पताल ले जाया जा सका, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बहरहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। आशुतोष कुमार के साथ अरविंद ओंझा, दिल्ली, आज तक,

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज से पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में खबरदार लेकर हमारी साथी श्वेता होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पीएम मोदी का जेन जी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत।

0: केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। शुद्धिकरण मामले में हल्द्वानी और नैनीताल में केस दर्ज, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली में भी संसद मार्ग थाने पहुंचे कांग्रेस के कई नेता। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिन में 24 इमारतें ढाई गईं। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 13 जिलों में 34 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर में बुरा हाल। लालू बोले, भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हो चला है आपको खबरदार करने का और सबसे पहले हम बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर आम आदमी न घर में सुरक्षित नजर आ रहा है न घर के बाहर। रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में हॉस्टल की 5 मंजिला इमारत गिरते सारे देश ने देखा। इस हादसे के बाद सत्य निकेतन इलाके में रहने वाले छात्र ही नहीं, दूसरे इलाकों में ऐसी ही कमजोर और पुरानी इमारतों में किराए पर रहने वाले लोग अपनी जान खतरे में महसूस करने लगे हैं। लेकिन दिल्ली में मणिपुर के एक संगीतकार की हत्या के बाद लग रहा है कि घर के बाहर भी खतरा कम नहीं है। मणिपुर के मशहूर संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में कथित हमले के बाद मौत हो गई। 55 वर्षीय सिंह रविवार देर रात घर के बाहर हो रहे शोर का विरोध करने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। उन्होंने सोमवार सुबह दम तोड़ दिया, मतलब जिस रविवार को दिल्ली में छात्र भ्रष्टाचार की इमारत में दब मरे, उसी दिन एक बुजुर्ग को उसी के घर के बाहर 8 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। दिल्ली में जिस तरीके से एक मणिपुर के संगीतकार को मारा गया, उससे दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों में बहुत गुस्सा है। लोगों का कहना है कि हम पहले अपने बच्चों को लेकर ही चिंतित रहते थे, लेकिन जिस तरह से चोंगथम विक्रम सिंह को छोटी सी बात के लिए उन्हीं के घर के बाहर मार दिया गया, वो बहुत परेशान करने वाला है। मणिपुर में हत्याकांड को लेकर बहुत गुस्सा है, वहां पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी।
1: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया, तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
2: सबको शौक है क्योंकि वो किसी को देखो, कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
3: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक बुजुर्ग तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
1: चोंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में 3rd फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी CCTV में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
4: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी। जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि CCTV लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
1: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
3: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, नो वन इज स्टेपिंग डेली। एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रेनाउंस सिंगर ऑफ मणिपुर, और इस तरीके का जो म्यूजिक लव म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो सांस स्वभाव के बंदे जो है उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
1: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
5: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत

0: 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति।
1: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
2: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?

0: ने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
1: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
2: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं या कोई विक्टिम होता है तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं, वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है। हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने का बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
1: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: दिल्ली देश भर में अपनी खतरनाक इमारतों की वजह से सुर्खियों में है। सत्य निकेतन इलाके में एमसीडी पुरानी इमारतों को नोटिस जारी कर रही है। इस वजह से छात्रों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है। ज्यादातर छात्र पुरानी इमारतों में रहते हैं, इसीलिए उन्हें डर है कि कहीं उनका अंजाम भी रविवार के हादसे जैसा ना हो। इसीलिए कई छात्र पुरानी इमारतों को खाली करना चाहते हैं, लेकिन हॉस्टल माफिया उनकी मदद करने के बजाय उन्हें धमका रहा है।
1: रविवार को दिल्ली के सत्य निकेतन में हॉस्टल की इमारत गिरने के बाद वहां पर बाकी के छात्र इस वक्त किस हाल में हैं, इसे लेकर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह सत्य निकेतन पहुंचे। तो हम इस इमारत में गए जो इस इलाके की सबसे पुरानी और ऊंची इमारतों में से एक है। इसलिए जब छात्रों ने इसे छोड़ने का फैसला किया तो उस हॉस्टल माफिया का सच सामने आया जिसके बारे में अक्सर छात्र शिकायत करते हैं।
4: ये पेंट हुआ है,
5: हाँ।
4: ये देखने से नया लग रहा है, ये पेंट हुआ है क्योंकि ये बिल्डिंग तो 25-30 साल पुराना है, पर ये हर साल पेंट होता है। पेंट होके ऐसे मतलब जो नए बच्चे आते हैं, मैं तो सेकंड ईयर से हूँ तो मेरे को तो पता है, दो साल हो गया मेरे को रहते रहते, जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है
5: कि बड़ा नया है, पीओपी किया हुआ है और ये सब है,
4: पर अंदर से ये बिल्डिंग बहुत मतलब खोखला है, पूरा ये बिल्डिंग जर्जर हो गया है।
1: हॉस्टल डेज नाम की इमारत भी बाहर से चकाचक दिखती थी, लेकिन रविवार को अचानक ढह गई। इसलिए इन छात्रों ने भी जब अपना कमरा खाली करने की बात मकान मालिक से कही तो पहले उसके सुर नरम दिखे, लेकिन अचानक उसने धमकाना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि उनका 1.5 लाख रुपया मकान मालिक पर बकाया है, लेकिन रितु दलाल नाम की हॉस्टल मालकिन अपने वादे से पलट गई।
6: हम रूम खाली कर रहे हैं, हम पैक कर रहे हैं सामान, आप हमें रेंट दे दोगे ना वापस? ठीक है, हाँ सिक्योरिटी, अभी अमन भैया वो भी नहीं बोल रहे थे देने। रेंट नहीं मांग रहे हैं,
1: सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद से यहाँ रहने वाले कई छात्र छात्राएं अपने घर चले गए हैं, लेकिन जिन छात्रों का लाखों रुपया रितु दलाल जैसे मकान मालिकों के पास है वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो लगातार अपने ओनर से गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें धमकी के अलावा कुछ नहीं हासिल हो रहा है।
5: ओनर का फोन आ रहा है, बात करते
7: हैं।
8: हेलो
7: आंटी,
8: मीडिया वाले क्या कर रहे हैं मेरे घर में?
7: आंटी वो
5: आंटी इनका पैसा दे दीजिए वापस। रितु जी इन लोग का पैसा दे दीजिए वापस, बच्चे परेशान हैं, इनका पैसा दे दीजिए ना वापस, इनकी मदद के लिए हम आए हैं, हम हैं मीडिया वाले, आज तक से हैं हम। आप क्यों नहीं
8: सुनिए, आप नीचे उतरिए, मैं इनका पैसा दे रही हूँ, आप नीचे उतरिए, पर मेरे घर में और भी बच्चे रहते, चोरी हो जाएगी तो फिर?
5: हाँ हम चोरी करने नहीं आए आंटी, हम रितु जी हमें आप इनका पैसा वापस दे दीजिए, ये बच्चे परेशान हैं।
8: सुनो आप मेरी बिल्डिंग से निकल जाइए, मैं पैसा वापस कर रही हूँ।
5: नहीं हम तभी निकलेंगे जब आप पैसा वापस करेंगे, आप इनका सिक्योरिटी और रेंट वापस कीजिए, आज तक यहीं पे बैठेगा।

0: पैसा वापस कीजिए।
1: इनकी सिक्योरिटी दे रही हूँ मैं।
2: आज तक के दखल के बाद एक बार फिर लगा कि छात्रों के पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन अचानक हॉस्टल की मालकिन ने अपना लालची मन दिखा दिया।
3: एडजस्ट कैसे हुआ? अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ, आप आधा महीने का रेंट काट लो, हमें आधा महीने का रेंट तो दो।
0: 10 दिन का आप काटिए, इनका पैसा क्यों काटेंगे आप?
3: बिजली बिल हम दे चुके हैं, मेरे पास हिस्ट्री है। मेरे पास हिस्ट्री है अकाउंट।
2: दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल की कमी की वजह से बाहर से आने वाले छात्रों को इस तरह के हॉस्टल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें अक्सर हॉस्टल मालिक ठगते हैं।
4: वो बोले कि आप अपना सारा सामान पैक करके रूम लॉक करके हमें चाबी दे देना, उसके बाद आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा।
2: दिल्ली में एक तरफ छात्र कमजोर हॉस्टल इमारतों को लेकर डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें हॉस्टल मालिकों की तरफ से धमकाया जा रहा है। सवाल ये है कि छात्रों को सुरक्षा और न्याय कौन देगा? मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
5: पुलिस पूछताछ में महेश ने बताया कि वो अपने माता पिता की तरफ से बिल्डिंग के मेंटेनेंस का काम देखता था। पिछले साल अगस्त में इस बिल्डिंग को हॉस्टल डेज नाम के पीजी ऑपरेटर को लीज पर दिया गया था। महेश के हिसाब से हादसे से पहले पिछले 8-10 दिनों से बिल्डिंग के बेसमेंट फ्लोर में मरम्मत का काम चल रहा था। बारिश के मौसम में बेसमेंट में कचरा जमा होने की वजह से ये काम कराया जा रहा था। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए विस्तार का काम भी चल रहा था। बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत को गिराने का काम शुरू हो गया है। रविवार को जो इमारत गिरी थी उसके बगल वाली इमारत को गिराने के आदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिए थे। ये इमारत लोहे के पाइपों के सहारे टिकी थी, जिसे गिराने के लिए एमसीडी के अफसर कर्मचारी पहुंच गए हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह वहीं से जुड़ रही हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मौसमी, क्या कार्रवाई इस समय चल रही है? ये बताया जा रहा है कि सभी इमारतों का सर्वे अब आखिरकार एमसीडी की तरफ से शुरू किया गया है, लेकिन ये जो इमारत गिराई जा रही है ये कहां पर है, अगर आप कैमरे से दिखा पाएं?
6: बिल्कुल, देखिए जो बैरिकेड पे हम लोग खड़े हैं श्वेता, हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी इमारत दिख रही है, 6-7 मंजिला, और ये पूरी कच्ची, देखिए सीमेंट भी इसकी नहीं नजर आ रही। ये वही कोलैप्स साइट के बगल वाली इमारत है, और ऊपर अगर आप देखें, पहले छत पे अजय आपको दिखाएंगे कि छत आपको एक तरफ टूटी हुई नजर आ रही है। टीन, जो नीली टीन है, वहां से पहले तोड़ने का सिलसिला अभी एमसीडी ने शुरू किया है, और वहां से पानी की टंकी यहाँ ऊपर से गिरी है, और यह हरी टीन और नीली टीन अब नीचे आके अगर आप देखें तो नीचे पानी की टंकी और नीली टीन पड़ी है, वॉशिंग मशीन वहां पे पड़ी आपको नजर आ जाएगी, और यहाँ पे जो मलबा पड़ा है यह अभी ऊपर से जो टूट हुई है उससे पड़ा है, और यहाँ देखिए कितनी प्रिकेरियसली ये खतरनाक तरीके से बिल्डिंग खड़ी हुई है, पूरे नीचे का माला गायब है एक तरीके से, एक तरफ की दीवार। तो यहाँ पे एमसीडी के जो कर्मचारी है वो मौजूद है, पूरी लाइटिंग की गई है, फ्लड लाइट से पूरी जगह को लाइट अप किया गया है, और इस तरीके की कार्रवाई जो है यहाँ पे शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। आप देखिए उसके सामने ही दूसरी बिल्डिंग है और ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक गाड़ी के महज जाने का फासला है, तो अगर सामने वाली बिल्डिंग्स और ये जो मंदिर है उसपे किस तरीके से उसको बचाना है। आसपास पीछे भी पूरी दवाई की दुकानें और भारी भीड़, आप देखिए वहाँ लाइटों के बीच में आपको जगमगाती, जूम इन करके दिखाएंगे अजय, तो ये पूरी बिल्डिंग बहुत खतरनाक ढंग से बीच में है जिसको ढाना है, और इसके ऑर्डर आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी इस पर अब कार्रवाई होगी और इसको, ये मलबे को भी यहाँ से हटाया जाएगा। बहरहाल लगातार यहाँ पे पूरी एरिया को कॉर्डन किया गया है और उसकी तैयारी की जा रही है।
5: शुक्रिया मौसमी, हम आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि अब जो खतरनाक इमारतें हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि एक अंजाम तक इस कार्रवाई को पहुंचाया जाए, क्योंकि आज तक लगातार दिल्ली की पुरानी इमारतों को लेकर सरकार को खबरदार करता रहा है। मुखर्जी नगर की एक पुरानी जर्जर इमारत को लेकर कल हमने आपको इसी वक्त शो में बताया था, अब उसे गिराने के आदेश आ गए हैं। मुखर्जी नगर की ये इमारत कई सालों से खतरनाक हालत में खड़ी थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था।

0: दिल्ली के बाद अब बात हम पंजाब की करते हैं, जहां को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वहां नशे को लेकर सवाल पूछना भी गुनाह है। पंजाब में गुलजार सिंह नाम के एक शख्स ने बेटे के नशे के आदी होने को लेकर वित्त मंत्री से सवाल किया। दावा है कि इसके बाद उस पर दबाव बनाया गया कि वो माफी मांगे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पंजाब में जबरदस्त सियासत हो रही है।
1: एक सीमा भी जिम्मेवार है, ये गल मेरी बहुत भी जिम्मेवार है। एक पंचायत पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
2: पंजाब के संगरूर में सुसाइड के इस वीडियो ने वहां की राजनीति में उबाल ला दिया है। कांग्रेस ने संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का इस्तीफा मांगा।
3: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
2: बीजेपी भी इस मामले को लेकर आक्रामक है। उसके प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से इस मामले को लेकर मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग कर डाली।
4: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है। हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे और अरेस्ट होनी चाहिए।
2: 50 साल के गुलजार सिंह ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के कार्यक्रम में नशे को लेकर सवाल पूछा था। वो बेटे की नशा करने की आदत से परेशान थे। आरोप है कि उनके गांव के सरपंच और अन्य लोगों ने मंत्री से सवाल पूछने पर माफी मांगने को कहा था। इस अपमान और दबाव से आहत होकर गुलजार सिंह ने सोमवार दोपहर जहर खा लिया और इलाज के दौरान लुधियाना के डीएमसीएच में उनकी मौत हो गई। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया।
1: चिट्टे बारे सवाल किया,
5: चिट्टे तो तुसीं क्यों किया, तुहाडे घरे कोई चिट्टा पींदा?
1: हाँ जी, मेरा मुंडा पींदा है।
2: इस आत्महत्या से पंजाब में नशे का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार के गले एक और विवाद पड़ गया, लेकिन आम आदमी का आरोप है कि मौत से पहले का यह वीडियो बीजेपी ने बनवाया है।
6: जहर खा लिया उस व्यक्ति ने और उसको तुरंत सल्फास अगर कोई खा ले तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तब उसकी जान बचती है। और आप उस दौरान उस पे दबाव डाल रहे हैं, उससे दूसरा वीडियो बनवा रहे हैं कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
2: बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने गांव वालों पर गुलजार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है, लेकिन जिस तरह से आत्महत्या करने वाले गुलजार सिंह को हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटने के दावे हो रहे हैं, उसे देखते हुए इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद बढ़ना तय है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
0: एक सियासत जेंजी को लेकर भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा वाला तंज किया और जेंजी को यह संदेश दिया कि जिस तेजी से आज काम हो रहा है उसका मुकाबला पिछले की कोई भी सरकार नहीं कर सकती।
7: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री है, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेंजी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेंजी ने नहीं देखा।
8: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
7: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
8: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
6: हाय फ्रेंड्स,
7: जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
9: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
7: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने लगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषण के दौरान विपक्ष और आलोचकों को नाराज फूफा कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसके पहले भी पीएम मोदी ने यह मुहावरा कई बार इस्तेमाल किया। इसी के बारे में हिंदी के जानकारों और कवियों से हमने पूछा।
10: बहुत प्रकार हैं फूफा की व्याख्या करने के लिए हमारे पास। फूफा दरअसल सिर्फ नाराज करने वाला प्राणी नहीं है। नाराज तब होता है जब उसके पास कोई हैसियत हो लेकिन अचानक वो न रहे और उसकी उपेक्षा हो। तो फूफा उपेक्षा के दंश से पीड़ित कभी कभी एक ऐसा फुफकारता हुआ सर्प बन जाता है जिसके पीछे उसका दर्प होता है। वो क्यों होता है कि वो जिस घर में आता है फूफा कहे जाने के लिए वो उसकी पत्नी का मायका होता है, और इसी घर में वो कभी जीजा बनकर भी आया था। तो जब वो जीजा था और वो जीजी थी घर भर की, तो जीजी के दोनों जी के बीच में जा बैठा था वो, तो उसकी महत्ता थी।
11: उत्तर भारत में विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रमों के अवसर पर ये घर के जामाता, जिनके साथ मुख्य परिवार का संबंध बहुत कोमल और नाजुक शर्तों पर बंधा हुआ होता है, देखा गया है कि छोटी छोटी बातों पर अप्रसन्न हो उठते हैं। तो नाराज फूफा वैसा ही एक पदबंध है।
12: कोई ऐसा भी व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा दल हो सकता है जो हरदम विपक्ष में ही रहता हो, यानी कुछ भी कहिए वो नाराज रहता हो, तो इसकी ओर भी संकेत किया जा सकता है कि मैं कुछ भी कहूंगा उनका मुंह फूला रहेगा, अर्थात वो नाराज ही रहेंगे, उनका स्वभाव है नाराज होना, ऐसा भी कोई हो सकता है।
0: पिछली पीढ़ी के जीजा जी आज के फूफा रिश्तों में होते हैं। इसे लेकर हिंदी के भाषाविद सुरेश पंत ने भी अपनी राय हमें लिखकर भेजी है। उन्होंने कहा कि फूफा का रूठना इसीलिए केवल नाराजगी नहीं है, उस अदृश्य सामाजिक अधिकार की याद भी है जो उम्र, रिश्ते और पारिवारिक वरिष्ठता से उन्हें मिला। समय पर प्रणाम न मिला, स्वागत में 2 मिनट कम लगे, खाने की मेज पर अपेक्षित सम्मान न मिले या किसी रस्म में सलाह न ली जाए, बस सामाजिक संतुलन बिगड़ा, मेजबान समझ जाते हैं मामला गंभीर है, फूफा रूठते हैं, मान मनुहार होती है और अंततः फूफा मान जाते हैं। यही तो हमारी लोक परंपरा का सौंदर्य है, रिश्ते में रूठने की गुंजाइश भी है और मनाने की भी। अदालतों की ओर से गैर कानूनी और संविधान विरोधी हरकतों को लेकर खबरदार करने से जुड़ी एक बड़ी खबर नोएडा की भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में हुए मजदूर प्रदर्शन के मामले में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम मेधा रूपम ने मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली की 24 साल की छात्रा पर एनएसए लगा दिया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बुरी तरह भड़क गया।
13: प्रशासन की वफादारी सरकार नहीं संविधान के प्रति होनी चाहिए, वरना यूपी को दमनकारी निरंकुश राज्य बनने में वक्त नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये बेहद सख्त टिप्पणी नोएडा की डीएम मेधा रूपम को लेकर है, जिनको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा कि डीएम का आचरण उपहास लायक है, इसलिए अदालत की टिप्पणियों को डीएम और पुलिस कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि छात्रा को 5 महीने तक जेल में रखने के लिए 5 लाख का मुआवजा दिया जाए और मुआवजे की रकम डीएम मेधा रूपम और पुलिस अफसरों के वेतन से वसूली जाए। अदालत की यह सख्ती इसी साल अप्रैल महीने में नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन के मामले से जुड़ी है। नोएडा के औद्योगिक इलाके फेज 2 सेक्टर 59, 60 और 84 में मजदूरों ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और काम के घंटों को कम करने को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान हिंसा और आगजनी भी हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसी मामले में जिला प्रशासन ने तमाम संदिग्धों और आरोपियों की धरपकड़ की थी। इसमें आकृति नाम की 24 साल की छात्रा को 11 अप्रैल को हिरासत में लेकर अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। वहीं 13 अप्रैल को नोएडा में हिंसा हुई, लेकिन 10 दिन बाद 24 अप्रैल को गुप्त बैठकों और साजिशों का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने आकृति पर एनएसए लगा दिया और 5 महीने तक जेल में रखा। इसी मामले पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई तो अदालत ने जिला प्रशासन और पुलिस को फटकारा और कहा कि 12 अप्रैल को गिरफ्तार छात्रा 24 अप्रैल को साजिश कैसे कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से अफसरों के निजी जवाबदेही की दिशा में कदम उठाया, उसने विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का नया मौका दे दिया है, जो अक्सर अफसरों पर राजनीति से प्रेरित होने का काम करने का आरोप लगाता है।
14: जैसे गैंग ऑफ वासेपुर हमने देखा था, आप ये कह सकते हैं कि गैंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। नोएडा का मामला अकेला नहीं है, जो डीएम साहिबा है, क्योंकि उनकी जो हनक है, दिमाग में हनक है, वो हनक कहीं और से आती है। तो कार्यपालिका उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो चुका है, ये पहली बार उच्च न्यायालय ने नहीं कहा।
15: कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अफसरशाही की मनमानी नहीं चलेगी। अफसरशाही जो राजनीतिक नेतृत्व की चाटुकारिता करके आंदोलनों को खत्म करना चाहता है वो नहीं चलेगा। और ये फैसला उन सारे अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में है जो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ही सब कुछ मानते हैं, संविधान को कुछ नहीं मानते हैं। संविधान सबसे बड़ा है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है।
16: किसी भी मामले में न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय का सम्मान करती है और न्यायालय के सम्मान न्यायालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कभी उनके निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करती।
13: अदालत की आपत्ति इस बात को लेकर भी थी कि पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को पर्याप्त सबूत के बिना एनएसए लगा दिया गया, जबकि डीएम को इस तरह का आदेश जारी करने से पहले साक्ष्यों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए थी।
0: राम मंदिर के नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। सीएम योगी आज अयोध्या में थे, वहीं पर उनकी राम मंदिर के नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा से मुलाकात हुई। अगले 57 दिनों में व्यवस्थाओं पर मंथन होगा। कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका ने ये जानकारी दी है। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जिसके बरेली में बाढ़ के पानी की चपेट में आने से करोड़ों की लागत में बन रही पानी की टंकी गिर गई। पानी की टंकी का गिरने का वीडियो आया है। बरेली के शेरगढ़ की ग्राम पंचायत बैरम नगर में ओवरहेड टैंक किच्छा नदी में समा गया। बरेली में जल जीवन मिशन के तहत करीब 3.97 करोड़ रुपए की लागत से यह पानी की टंकी बनी थी, लेकिन भीषण भू कटान के चलते टंकी की नींव के आसपास की जमीन खिसक गई और ये जमीन पर गिर पड़ी। इसी गांव में 70% घरों में टूटियां और पाइपलाइन बिक चुकी हैं, लेकिन पानी मिलने से पहले ही टंकी नदी में समा गई। राजस्थान की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में बेरोजगारों को ज्वाइनिंग तो मिल गई है, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो गया है। पीएचडी, एमटेक और नेट क्लियर किए छात्रों को वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, चौकीदार और रसोइये की नौकरी मिली तो विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी वार्ड बॉय की ड्यूटी के खिलाफ 3 दिन से धरना दे रहे हैं, तो समाज कल्याण विभाग के फोर्थ ग्रेड कर्मचारी जयपुर दफ्तर के बाहर रसोइये और चौकीदार की ड्यूटी मिलने के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उधर 10वीं पास, 1 ईयर वेटिंग लागू कर खाली पद पर नौकरी देने की मांग कर रहे हैं।
13: राजस्थान का जयपुर, जहां 2 तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में नौकरी पाने वालों का है, वहीं दूसरी तरफ वो बेरोजगार हैं जिनका फोर्थ ग्रेड कर्मचारी बनने का सपना अधूरा रह गया। मतलब जिसके पास नौकरी है और जो बेरोजगार, दोनों खुश नहीं। लेकिन क्यों? ये सवाल आज तक संवाददाता शरद कुमार को जयपुर के अंबेडकर भवन ले गया, जहां जमीन पर बैठे ये सारे समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी हैं। एमएससी, एमए, नेट और बीटेक के बेरोजगार सरकारी नौकरी की आस में फॉर्म भरकर सेलेक्ट तो हो गए, मगर जो नौकरी मिली है वो इनसे नहीं हो सकती है।
17: सरकारी नौकरी की तलाश में एमटेक, एमएससी और नेट क्लियर किए हुए छात्रों ने, बेरोजगारों ने फोर्थ ग्रेड की परीक्षा दी, अच्छी तरह से पास भी कर लिया, मगर पास करने के बाद बड़ा संकट है कि समाज कल्याण विभाग में इन्हें पोस्टिंग दी गई है रसोइया की। अब ये कभी खाना बनाए नहीं है, इस तरह से इतने बच्चों का और रसोइये का पद जो है वो ट्रेंड होता है, और ऐसे में ये समाज कल्याण दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं।
13: खबरदार करता सवाल ये है कि गलती किसकी है? क्या बड़ी बड़ी डिग्री लेकर फोर्थ ग्रेड की सरकारी नौकरी पाने वाले इन नौजवानों की, या फिर उस सरकारी सिस्टम की जिसने ये हालात पैदा होने दिए?
18: हमें विभाग में रसोईया चौकीदार का पद दिया गया है, जो कि एक रसोइयों का एक कुशल मतलब प्रशिक्षित तो होने चाहिए रसोईया, जिसमें जो खाना बना सके, और एक ही विभाग में अलग अलग पद दिए गए हैं। इसी समाज कल्याण विभाग में कार्यालयों में भी नियुक्तियां दी गई है, जो कि और हमें रसोईया और ये चौकीदार का पद दिया गया है, जो कि सही नहीं है। इसमें ना तो कोई राजपत्रित अवकाश दिया जा रहा है और 24 घंटे की नौकरी करवाई जाएगी। इसमें
19: चतुश्रेणी कर्मचारी यानी सहायक कर्मचारी के पद के लिए फॉर्म भरा था और उसी के लिए हमने एग्जाम दिया था, लेकिन सर हमें विभाग अलॉट हुआ, उसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलॉट हुआ, और विभाग ने हमें रसोईया और चौकीदार का पद दे दिया, जो कि कहीं भी विज्ञप्ति में मेंशन नहीं है। ये सर हमें जबरदस्ती थोपा गया है। सर हम खुद का खाना नहीं बना सकते और हमसे 50-50 स्टूडेंटों का खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं।
13: जयपुर के ही सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के बाहर भी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी में से एक श्रीकांत ने जयपुर के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रखा है। कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो सरकारी नौकरी के क्रेज की वजह से फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन कर लिया। इन सब का कहना है कि हमें आईसीयू ओटी में मरीज स्ट्रेचर पर ले जाने का काम दिया गया है और बेड पर चादर बदलते हैं, ये काम हमसे नहीं होगा।
20: ये सर अन्याय है। अगर प्रशासन ध्यान दे, हम चपरासी बने हैं तो हमें चपरासी की दो, हम करने को तैयार हैं, हम वार्ड बॉय नहीं बने हैं।
21: टाइल साफ करनी होती है, जिसके अलावा हमें बेडशीटें बदलनी होती है, और इसके अलावा हमें आईसीयू की वार्ड की सफाई करनी होती है, ओटी में हमें बेडशीटें चेंज करनी होती है, बेडशीटें लगानी होती है, ये सारे काम, और डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट हमसे धुलवाए जाते हैं, सारे काम हमसे करवाए जा रहे हैं। मास्क वास्क सारे धुलवाए जाते हैं, जो पेशेंट के लगाए जाते हैं वो वाले मास्क, ऑक्सीजन वाले सारे धुलवाए जाते हैं हमसे।
22: उन्होंने जो बताया है उसको कोई मेडिकल फील्ड वाला छात्र अगर है तो वो आसानी से कर सकता है, लेकिन मैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं तो उनके कार्य को समझने में काफी टाइम लगता है और उसको करने में भी परेशानी आती है। उन्होंने जो वर्क चार्ट बना के दिया है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट उसको आसानी से कर सकता है, लेकिन हमारे लिए उसमें परेशानी होती है, तो हमें उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और उन्होंने हमें जॉब चार्ट दे दिया, आपको ये काम करना है।
17: राजस्थान के सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में 53,000 से ज्यादा छात्र सेलेक्ट हुए हैं, मगर इस तरह से यहां पर बैठे हुए हैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के बाहर, क्योंकि हुए तो थे ये फोर्थ ग्रेड में भर्ती और चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए, मगर इनका कहना है कि इनसे वार्ड बॉय का काम कराया जा रहा है, आईसीयू में काम कराया जा रहा है, ओटी में काम कराया जा रहा है, जो ये जानते नहीं है। इनसे कोई भी गलती अगर हो जाएगी तो इनके जीवन के साथ बड़ी समस्या हो जाएगी।
13: राजस्थान में फोर्थ ग्रेड की 53,900 पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन उदयपुर के गीतांजलि इंस्टीट्यूट से बीटेक करने वाले लोकेश माली जैसे नौजवान इस परीक्षा में पास हुए।
23: बेरोजगारी का ये आलम था तो
3: उसी को देखते हुए लगातार कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। किसी एग्जाम में हम एक नंबर आधा नंबर से रह जाते हैं, अच्छे एग्जाम भी दिए हैं। और चतुर्थ श्रेणी का जब निकला था तो हमने ये सोचकर फॉर्म भरा था कि एक बार अगर इसमें लग गए तो ये जो बेरोजगारी का दाग है और ये जो कलंक है वो हमारे ऊपर से हट जाएगा और हम सरकारी सेवा के अंदर आ जाएंगे, जहां हमें सरकारी जो अवकाश दे होंगे, संडे दे होगा और नियमित 8 घंटे की ड्यूटी होगी, तो उसको हम टाइम को मैनेज करके बचे जो घंटे हैं उनमें हम अपने पढ़ाई को दे पाएंगे। लेकिन यहां हुआ हमारी आशाओं के बिल्कुल विपरीत।
4: नियुक्ति आदेश आया उसमें चौकीदार और रसोईया लिखा गया है। जिस पद के लिए हमने एग्जाम दिया हम चाहते हैं कि वही पद हमें अलॉट हो, ना कि हम ट्रेन बिल्कुल भी नहीं है, हम रसोईया 50 लोगों के लिए ना खाना बना सकते और 24/7 हम लोग हॉस्टल में भी नहीं रह सकते।
17: क्या काम करना चाहते हैं आप?
4: मेरे को जो जिस पद के लिए मैंने एग्जाम दिया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मैं चाहती हूँ कि वही पद मुझे मिले, ना कि रसोईया और
17: क्या काम करना चाहते हैं आप?
4: जो भी फोर्थ ग्रेड का जो भी काम होगा वो करेंगे।
5: हमें रसोई और चौकीदार बना दिया है, जिसका हमें नियुक्ति के बाद पता चला है। हम सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुए थे।
13: तो राजस्थान में जिस 10वीं पास के लिए निकली फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी बनकर जो लोग रील और स्टेटस लगा रहे थे, वो आज रसोईया और चौकीदार बनने को राजी नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब तक करीब 12,000 लोगों ने नौकरी छोड़ी है। माना जा रहा है कि 53,000 में से 25,000 लोग नौकरी छोड़ेंगे। लेकिन ये लोग जयपुर में ही धरने पर बैठे। इन नौजवानों का ये वर्ग पूछ रहा है कि जब ये नौकरी हम जैसे कम शिक्षित लोगों के लिए थी तो बड़ी बड़ी डिग्री वालों ने परीक्षा क्यों दी? इसलिए सरकार वेटिंग लिस्ट से 1 साल तक इसमें भर्ती करे ताकि खाली पद भरे जा सके।
23: मैं मात्र 1.5 नंबर से रहा हूँ, अगर इसमें जल्द से जल्द ये लागू हो जाता है तो अगले 1 साल में 20 से 25,000 बेरोजगारों को इसका फायदा मिलेगा।
24: अगर 40 साल की अगर बंदे की उम्र हो रही है किसी की, तो 2028 में तो वो भर्ती से बाहर निकल जाएगा ओवर जो के, तो इस नियम को बाद में लागू करने से क्या फायदा है?
13: इस पूरे मामले में खबरदार करता सवाल सरकार से, जिसने 10वीं पास के लिए निकली फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की परीक्षा में बड़ी बड़ी डिग्रीधारियों को एंट्री क्यों दी? शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अब बात बिहार में बाढ़ के कहर की। बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और हाथीदह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते थे इतना पानी घर से निकलता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते इतना पानी, बच्चा बुतरा सब मस्त है,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
4: आप जहाँ जाए घूमे कहाँ जाए रहे हैं, घोट डूबे गले तब की कर जाए, घोट डूबे गले तब जहाँ जाए खोते तहाँ जाए रहे ऊपर दाब कर रहा है।
2: क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब ये चीज डूब गले हैं एकदम घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गांव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहां पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: बिहार की उफनती नदियों ने लोगों को भारी मुसीबत में डाल दिया है। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से वो पानी पानी है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तल की शाखाओं में भी पानी भर गया है।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: state of mind with a cola spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a cola spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: पापा
8: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ
9: ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: बोलो ना बेटा क्या चाहिए?
13: जूस या सोडा डाले या आटा? बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
14: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
15: ये लो बस।
16: मजा। अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: चला।
1: मैं?
2: अरे आजकल की लड़कियाँ प्लेन चला रही हैं। चलो
3: सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट।
0: बड़ी जल्दी सीख गई।
1: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
3: स्वाद सपनों का।
4: आगे आगे।
5: अरे उधर
4: उधर यार।
5: करेक्ट करेक्ट।
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: state of mind with a cola spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a cola spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट। दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
4: इन एसोसिएशन विद
5: अनमोल बिस्किट, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: ये तस्वीर आपने देखी होगी हॉस्टल डेज की, जो कि जो महिला पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, वो यहाँ पे जो चल रहा है विमेंस वाला, बगल में ही बॉयज वाला था और ये गर्ल्स वाला पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। और यहाँ पे आप देखिए, हालांकि बाहर इस तरफ ताला पड़ा हुआ है, ठीक है, जरा ये देखिए ताला पड़ा हुआ है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। और ऊपर आप देखिए कपड़ा डाला हुआ है हॉस्टल डेज के अकोमोडेशन पे। लेकिन अगर भीतर जाके अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई यहाँ पे, एक सेकेंड आइए पवन, अंदर आइए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में ये चल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी पॉपुलर था, काफी पोस्टर बैनर प्रमोशन इसके पूरे इलाके में है। और जो रेट था, मुझे छात्रों ने बताया कि इसका रेट बाकी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये कितना संकरा है, ये हॉस्टल डेज गर्ल्स आप देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ की सुविधा बता रहे हैं। वही बिल्डिंग जो बगल में ढह गई है, इसी तरह की सुविधा बता रहे होंगे, नंबर भी दिए हुए हैं जो फरार चल रहा है आरोपी यहाँ पे। और ये देखिए कि वाईफाई, लॉन्ड्री, एसी रूम, गीजर, हाउसकीपिंग, ये सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। CCTV, 4 बारी मील मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, वार्डन मिलेगा और पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन नाम के लिए ये बैनर है, सुविधा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे 0/0 है यहाँ पे। और इसी तरीके की पूरा यहाँ पे अगल बगल में आपको बता दें कि PG अकोमोडेशन को लेके कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है, जबकि ये पता है कि हजारों छात्र और खास तौर से फर्स्ट ईयर के छात्र पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे बाहर इस तरीके से हॉस्टल डेज जो गर्ल्स वाला है, वहां पे ये तारों का जाल आप देख रहे हैं, उसकी बालकनी में हम लोग खड़े हुए हैं। बगल में वो बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है और यहाँ पे ये कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये छुपाया गया है। ये है हॉस्टल डेज का, ज्वाइन द डेज, और यहाँ जगह जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर है। इसी तरीके का 4 मंजिला जो बिल्डिंग का टावर है, वो भी गाइडलाइंस को पूरे खुला खेल का फरुखाबाद यहाँ पे चल रहा है, गाइडलाइंस को वायलेट करता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना पाछने वाला है यहाँ पे।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ, और हरदम रहिए खबरदार।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई या फिर ये नकली पीएमओ अफसर खुद ठगी के जाल में फंस गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर से ये सनसनीखेज घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। जब एक नकली पीएमओ अफसर बंदूकधारी बॉडीगार्ड के साथ अचानक पहुंच गया, चेकिंग में जब फर्जी आई कार्ड मिला तो इसकी पोल खुल गई। हम आपको बताएंगे भी कि असली और नकली आई कार्ड की पहचान आखिर कैसे हुई, लेकिन असली ट्विस्ट तो कोर्ट में आया जब इस व्यक्ति ने वकील ने दावा कर दिया कि वो कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि फर्जी जॉब रैकेट का शिकार हो गया। उसे पीएमओ का फर्जी लेटर, आईडी और यहां तक कि पीएम के दस्तखत वाली चिट्ठी भेजकर झांसे में लिया गया था। झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा, अगर इन तीन चीजों की कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होती तो यकीन मानिए पाकिस्तान उसमें बिना किसी मुकाबले के गोल्ड मेडल जीतता। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही से पाकिस्तान अब इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो सच का सामना करने के बजाय फेक एआई की दुकान खोलकर बैठ गया है और ताबड़तोड़ ऐसे वीडियोस डाल रहा है। पाकिस्तान एआई से फर्जी वीडियोस बनाकर अपनी हार को जीत में बदलने का बचकाना ड्रामा कर रहा है। आज पाकिस्तान के इस डिजिटल फर्जीवाड़े का कच्चा चिट्टा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे प्रोपेगेंडा की इस जंग में आतंकी पाकिस्तान अब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। इसके बाद बात उस खबर की जो ग्लोबल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल सकती है। राजधानी दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट से ठीक पहले डी डॉलराइजेशन पर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स पर डॉलर को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। आज क्रेमलिन के प्रवक्ता, क्रेमलिन यानी वो जगह जहां से रशिया के राष्ट्रपति रहते हैं, जहां से पूरा उनका कार्यालय चलता है, आज क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में, जब मैंने सीधे यही सवाल उनसे पूछा कि क्या ब्रिक्स डॉलर को कमजोर कर रहा है, क्या डॉलर का वैकल्पिक करेंसी अपने अपने नेशनल करेंसी को बना रहा है, जैसे भारत रुपया को, रशिया रूबल को और डॉलर को दरकिनार किया जा रहा है, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है, वो आपको दिखाएंगे। नॉर्थ कोरिया रशिया को आपस में जोड़ने वाले पहले रोड ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। यह पुल व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की जिगरी दोस्ती की मिसाल है। कभी अलग थलग पड़े ये दोनों देश अब पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बीच एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन रहे हैं।

अब आपको सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे देश में किसी को सिविक सेंस की सीख देना या कानून का पाठ पढ़ाना जानलेवा बन गया है। दिल्ली में खुले में शराब पीने हंगामा करने से रोकने पर मणिपुर के एक म्यूजिशियन की हत्या कर दी गई। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब का कहर दिखाएंगे। जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 15 पहुंच गया है, जबकि कई लोग जिंदगी मौत के बीच इस वक्त भी जंग लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इलाके में लंबे समय से अवैध शराब का काला कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस आबकारी विभाग सब जानकर भी आंखें मूंदे बैठे रहे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में जहरीली शराब की वजह से देश में 421 लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद दृश्यों के कत्ल की एक और कहानी, और फिर कैमरा ऑन होते ही बिलख बिलक कर रोना, आंसू बहाना, करोड़ों की जायदाद के लिए अपने ही ससुर की बेदर्दी से हत्या कराने वाली करोड़पति बहू का खौफनाक सच अब सबके सामने है। पुलिस की तफ्तीश में जो सीसीटीवी फुटेज और सबूत हाथ लगे हैं, वो इस बहू की उस एक्टिंग की पोल खोलते हैं जो उसने पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए रची थी। ये रोना धोना जो वीडियो आप देख रहे हैं, सब ड्रामा था। अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा के बयान ने एक बार फिर सियासी और सामाजिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। तौकीर रजा ने सर तन से जुदा और जय श्री राम के नारों की तुलना करते हुए दोनों को एक जैसा ठहराने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सर तन से जुदा जैसा हिंसक नारा जो सीधे तौर पर अपराध को बढ़ावा देता है, उसकी तुलना किसी धार्मिक और सांस्कृतिक संबोधन से कैसे की जा सकती है। और इसके बाद आपको भाषा के स्वयंभू ठेकेदारों का दोहरा रवैया दिखाएंगे। गरीब ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को जबरन मराठी की सीख देने वाली मंत्री जी जब पावर और ग्लैमर के सामने आते हैं तो कैसे अपने ही मापदंड भूल जाते हैं। मराठी ना बोल पाने पर हंसने लगते हैं। संजय दत्त ने महाराष्ट्र के मंत्री से सीधे कहा मराठी नहीं बोलेंगे, और इस पर मंत्री जी मुस्कुराने लगे, ठहाके लगाने लगे, जो ऑटो चालकों को कहते हैं कि पहले मराठी सीखो नहीं तो रोजी रोटी खत्म। और आखिर में वो दिलचस्प तस्वीर बिहार के गोपालगंज में कार चोरी के बढ़ते मामलों से परेशान होकर एक व्यक्ति ने अपनी कार को सड़क किनारे खड़ा करने के बजाय सीधे घर की छत पर पार्क करवा दिया। इसे क्रेन की मदद से दो मंजिला मकान की छत पर पहुंचाया गया। देखिए

लेकिन आज सबसे पहले हम आपको मुंबई की उस घटना के बारे में बताएंगे जो नकली सरकारी अफसरों को लेकर कई सवाल खड़े करती है। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पहली नजर में सब कुछ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसा दिखाई देता है, लेकिन जांच आगे बढ़ी जैसे जैसे कहानी में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आए कि सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहा बल्कि फर्जी सरकारी अफसरों के उस खतरनाक जाल तक पहुंच गया जिसमें कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, खुद ठगी का शिकार भी। अब क्या है ये पूरी घटना? 7 सितंबर की है ये घटना, जब मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। और कारण ये था कि अगले दिन यानी आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना था और वो शाम में शामिल भी हुए। अब जाहिर है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, आसपास के पूरे इलाके में आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही थी। इसी जांच के दौरान पुलिस कर्मियों को 2 लोगों पर शक हुआ और जब उनसे पूछताछ हुई तो उनमें से एक लड़के ने दावा किया कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय, सीधा बोला कि मैं पीएमओ से जुड़ा हुआ, और उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे अंदर जाने से रोका ना जाए। अब मुंबई पुलिस के मुताबिक इस लड़के का नाम रोहन पारिक है और उसके साथ आए बॉडीगार्ड का नाम दिलीप कुंडे। और जानते हैं ये दोनों पकड़े कैसे गए? जब मेटल डिटेक्टर से इस लड़के का बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे अंदर जा रहा था, बॉडीगार्ड, तब उसमें सुरक्षा कर्मियों को उसके पास पिस्टल होने का अंदेशा हुआ। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से एक पिस्टल मिली और इसके बाद इस बॉडीगार्ड ने रोहन पारिक को फोन किया और ये लड़का वापस एंट्री गेट पर पहुंचा। वहां उसने सुरक्षा कर्मियों को अपना एक पहचान पत्र दिखाया। दावा किया गया कि ये पहचान पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का है। अब इस आईडी कार्ड में रोहन पारिक को पीएमओ का ग्रेड सी ऑफिशियल बताया गया था, लेकिन यहीं से सुरक्षा कर्मियों का शक और गहरा हो गया। शक का कारण यही था कि इस पहचान पत्र पर उसके

लेकिन ये नहीं लिखा था कि कार्ड वैलिड कब तक है। इसके अलावा कार्ड पर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तो थे लेकिन उस अधिकारी का नाम नहीं लिखा था, जबकि पीएमओ के आईडी कार्ड पर उसे जारी करने वाले अधिकारी का नाम जरूर होता है, उसी से पहचान हो जाती है। अब बस यहीं से सुरक्षा कर्मियों को लगा कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लिया, बाद में गिरफ्तार किया और यहां तक ये कहानी बहुत सीधी दिखाई देती है। सबको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले दो लोग खुद को पीएमओ से जुड़ा हुआ बताकर एक हाई सिक्योरिटी इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये मामला प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का सीधा दिखता है। लेकिन इसके बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। जिस लड़के ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया था, उसके वकील ने अदालत में, कोर्ट में जब उसे पेश किया जा रहा था, उसको अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है कोर्ट की तरफ से। लेकिन जब अदालत में इसका वकील पहुंचा तो उसने दावा किया कि रोहन खुद एक ठगी का शिकार है। अब ये दावा देखिए, यानी जिस व्यक्ति को पुलिस नकली पीएमओ अधिकारी समझकर गिरफ्तार कर रही है, उसके वकील का कहना है कि वो खुद भी ये मानता रहा हो कि वो सचमुच प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी करता है। रोहन पारेख के वकील के मुताबिक उसे पिछले कुछ समय में ऐसे कई दस्तावेज और ईमेल्स मिले थे जिनसे उसे विश्वास हो गया कि उसे हकीकत में पीएमओ में नौकरी मिल गई है। दावा है कि उसे ईमेल के जरिए पीएमओ में नौकरी का ऑफर लेटर भेजा गया, उसे ईमेल पर ही एक आईडी कार्ड की कॉपी भेजी गई और यह भी दावा किया गया है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भी भेजा गया जिसमें उसे पीएमओ से जुड़ा अधिकारी बताया गया था। यही नहीं, कोर्ट में सबूत के तौर पर कुछ ईमेल्स भी पेश किए गए हैं। अब इन ईमेल्स में तरुण कपूर नाम के एक व्यक्ति का जिक्र था और कहा गया कि इसी व्यक्ति ने रोहन को पीएमओ में काम करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद तरुण गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की तरफ से उसे डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी से जुड़े ईमेल भेजे गए और महक गुप्ता नाम की एक महिला की ओर से रोहन को एडवाइजरी रोल में नौकरी का प्रस्ताव भेजे जाने का दावा किया गया। अब रोहन के वकील का कहना है कि ईमेल के जरिए उसे यहां तक निर्देश दिए गए थे कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए। यानी दावा तो यह है कि रोहन पारेख ने खुद को कोई सरकारी अधिकारी दिखाने के लिए बॉडीगार्ड नहीं रखा था, बल्कि उसे इस ईमेल के जरिए बताया गया था कि अब वो एक बड़े पद पर है और उसे सुरक्षा की जरूरत है। अब आखिर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है क्या? उसके बाद देखिए, उसने एक बॉडीगार्ड रख लिया, खुद को पीएमओ का अधिकारी समझ लिया और फिर वो बॉडीगार्ड रखकर घूमने लगा। रोहन का यह भी कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने या किसी हाई सिक्योरिटी इलाके में घुसने के लिए जियो वर्ल्ड प्लाजा नहीं आया था, बल्कि वो अपनी मंगेतर के लिए परफ्यूम खरीदने वहां पर पहुंचा था। अब देखिए, वो पहुंच भी कब रहा है, जब पीएमओ प्रधानमंत्री का अगले दिन वहां पर कार्यक्रम है। वो खुद ही दावा कर रहा है अपने वकील के जरिए कि उसको पीएमओ का एक अधिकारी वो अपने आप को समझ रहा था, उसे ऑफर लेटर्स आई थी और वो उसी जियो कन्वेंशन सेंटर में एक दिन पहले परफ्यूम खरीदने पहुंचता है, जैसा उसके वकील का दावा है। अब इस कहानी के आधार पर ये लड़का खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन इस कहानी में कोई झोल भी कई सारे नजर आते हैं। जैसे 2024 में इसे पीएमओ में नौकरी का ऑफर लेटर मिला, लेकिन सवाल है कि तब उसे, जब उसे तनख्वाह ही नहीं मिल रही थी, तो ये खुद को पीएमओ का असली अफसर कैसे समझता रहा? क्या जानबूझकर ये पीछे से पूरी साजिश रची गई थी कि अगर वो कहीं पकड़ा जाता है तो इन मेल्स को वो आगे कर दे, कोर्ट में बता दे? दूसरा, अगर ये खुद को पीएमओ का अधिकारी बता रहा है तो इसने अपनी निजी बॉडीगार्ड कैसे रख लिया? और सोचिए, ये लड़का इतना पढ़ा लिखा है, इसने गणित और विज्ञान में बीएससी की पढ़ाई की है, लेकिन इसके बावजूद इसने अनजान ईमेल एड्रेस से आए कुछ दस्तावेजों पर यकीन कर लिया और खुद को पीएमओ का ग्रेड सी ऑफिशियल समझने लगा। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि वकील तो कोर्ट में यही दावा कर रहे हैं। क्या ये बचने का एक तरीका था, एक स्ट्रैटेजी थी जो पहले से इसने बनाई थी? इसने अपना निजी बॉडीगार्ड कैसे रखा? क्योंकि इतनी बात तो हर कोई जानता है कि अगर किसी अफसर को सुरक्षा देनी होती है तो ये काम सरकार का होता है, ना कि अधिकारी खुद ही निजी बॉडीगार्ड रखते चले। हम यहां इस लड़के के दावों को सीधे तौर पर गलत नहीं बता रहे, लेकिन उसकी कहानी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गंभीर है।

0: और यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होना था वहाँ इत्तेफाक से ये लड़का प्रधानमंत्री के कार्यालय का ही अफसर बनकर कैसे पहुँच गया, देखिए।
1: रोहन क्या बताओगे? रोहन रोहन
2: दूसरे बस
3: बस बस बस बस बस बस बस
2: चलो अंदर। जी आप रोहन के फैमिली से हैं, बात जी आपसे जानना चाहेंगे, ये रोहन पीएमओ अपॉइंटेड था या नहीं था?
4: डिफेंस जो लॉयर हैं जो कि रोहन पारेख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रोहन पारेख को या तो फंसाया गया पीएमओ के नाम पर और उससे ये आई कार्ड भी उन्होंने ही दिया, ईमेल्स भी उन्होंने ही भेजे और वही उनसे संपर्क में थे, वही उसके कांटेक्ट में थे और उन्होंने ही उसे बॉडीगार्ड रखने के लिए भी कहा था। अब इस पर सवाल उठता है कि ये क्या सच में रोहन पारेख को किसी ने फंसाया है ये कहकर कि आप पीएमओ में एडवाइजरी रोल पर काम कर रहे हैं, या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब पुलिस को कह रहे हैं या बता रहे हैं। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: अब इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस देश में कितने लोग नकली सरकारी अफसर बनकर घूम रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने मनीष कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी, खुद को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का अंडरकवर एजेंट बताता था। बिहार के खगड़िया में इसने एक 5 मंजिला मकान बनाया जिसमें 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इलाके में यह बात भी फैली कि इस घर में एक स्विमिंग पूल भी हो सकता है। खगड़िया के लोगों के लिए ऐसा घर सामान्य नहीं था। यह बिहार का वो जिला है जो बाढ़ के लिए जाना जाता है और जहां हर साल घर जरूर डूबते हैं। लेकिन उस खगड़िया में जब यह खबर फैली कि मनीष कुमार गुप्ता एक आईएएस अधिकारी है, अजीत डोवाल उस पर काफी भरोसा करते हैं, लोग उसे प्रभावित होने लगे। यही नहीं, इस व्यक्ति ने अपनी गाड़ियों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवाया हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई की। जब पुलिस को भी इस व्यक्ति ने अपना परिचय एक आईएएस अधिकारी का दिया तो ये पूरी तरह फंस गया। पुलिस ने इसकी पूरी कुंडली निकाल ली। ये पता चला कि इस व्यक्ति ने पिछले 10 साल में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर कई लोगों को चूना लगाया, 10 साल में लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। और ऐसा नहीं है कि ये खुद को फर्जी आईएएस या आईपीएस अधिकारी बताने की पहली घटना थी। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई लोग पकड़े गए हैं जो खुद को एनएसए, अजीत डोवाल, कभी गृहमंत्री अमित शाह, कई बार सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताते हैं और बाद में ये सारे लोग फर्जी निकलते हैं। साल 2023 में गुजरात के किरण पटेल ने खुद को पीएमओ का, प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए यह दावा किया था कि उसे जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से सेब की पैदावार और सुरक्षा से जुड़े कामों की निगरानी के लिए भेजा गया है। ये सुनने के बाद जम्मू कश्मीर का प्रशासन इस व्यक्ति की आवभगत में लग गया। अब इसे प्रोटोकॉल के तहत सरकारी गाड़ियां दी गई, सुरक्षाकर्मी दिए गए, ये व्यक्ति सबको वहां चूना लगाता रहा। और अब इस मामले में भी ऐसी ही कहानी सामने आ रही है। सोचिए, जो अधिकारी असली हैं उनमें कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और युवाओं के हिस्से की सरकारी नौकरियां बेचते रहे, और जो फर्जी और नकली अधिकारी हैं वो भी खूब बेईमानी कर रहे हैं और इनमें कई तो ऐसे हैं जो शायद अब तक पकड़े ही नहीं गए। और हमें लगता है कि इस घटना के बाद सरकार को कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे असली और नकली सरकारी अफसरों की पहचान हो सके। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डॉक्यूमेंट्री से पाकिस्तान इतना परेशान हुआ कि अब जवाब में वो अपनी एक अलग ही कहानी लिख रहा है, एक ऐसी कहानी जिसमें पाकिस्तान भारत के कई एयरबेसेस तबाह कर देता है, मतलब कुछ भी, भारत के कई शहरों की बिजली काट देता है और बात संसद और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाती है। जानते हैं पाकिस्तान इन दावों का सबूत क्या देता है? वो जवाब में एक एआई से बना वीडियो जारी करता है और ऐसी कहानियां बनाता है जो हकीकत में हुई ही नहीं, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के दावे इतने बड़े हैं तो सबूत कहां है? अगर भारत के इतने एयरबेस तबाह हुए तो तस्वीर कहां है? अगर इतनी बड़ी तबाही हुई तो सैटेलाइट तस्वीरों में वो दिखाई क्यों नहीं दी? दुनिया भर की एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का विश्लेषण किया और इन सैटेलाइट तस्वीरों में सभी ठिकानों पर नुकसान के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन भारत में यही सैटेलाइट तस्वीरें कोई नुकसान नहीं दिखाती, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है और सब जानते हैं कि अगर झूठ बोलने का कोई ओलंपिक्स होता तो पाकिस्तान गोल्ड मेडल जरूर जीतता। पाकिस्तान की ख्याली दुनिया ऐसी है कि वो कल को यह भी कह सकता है कि इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है, या ये कह सकता है कि चांद पर पाकिस्तान का अंतरिक्ष यान उतरा है, या ये झूठ बोल सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान बन गया है। कुछ भी, यानी पाकिस्तान जितनी लंबी लंबी फेंकता है उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन यही पाकिस्तान ये भूल जाता है कि प्रोपेगेंडा की दुनिया में भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। समस्या ये होती है कि एक झूठ को बचाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है और धीरे धीरे झूठ इतना बड़ा हो जाता है कि उसे साबित करने के लिए वास्तविकता कम पड़ जाती है और तब पाकिस्तान को एआई की मदद लेनी पड़ती है। और ऑपरेशन सिंदूर के मामले में तो पाकिस्तान पहले दिन से यही कर रहा है। हम आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि पाकिस्तान कैसे अपने हमलों का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत ने बार बार सबूतों से पोल खोली। पाकिस्तान ने पहला फर्जीवाड़ा तब किया जब उसने युद्ध का पूरा सेट तैयार करवाया। 14 मई 2025 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट के पास पसरूर आर्मी छावनी पहुंचे और उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद पाकिस्तान को अपने लोगों को यह दिखाना था कि सेना मजबूत है, मोर्चा संभाले हुए है, सब कुछ कंट्रोल में है। फिर कैमरे लगाए गए, एक टैंक तैयार किया गया, टैंक को घास से ढककर उसके पीछे पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन यहां भी पाकिस्तान कोई सबूत नहीं दिखा पाया। दूसरा फर्जीवाड़ा तब किया जब हार के बाद भी जीत का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में विजय रैलियां निकाली गईं, सड़कों पर जश्न हुआ, पाकिस्तानी सेना की झूठी जीत के पोस्टर्स लगे, लेकिन यहां भी कोई असली सबूत पाकिस्तान नहीं दे पाया और फिर से उसकी बेइज्जती। तीसरा फर्जीवाड़ा तो सबसे आधुनिक फर्जीवाड़े में से एक था। पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से एक एनिमेटेड और एआई वीडियो, फेक एआई वीडियो जारी किया गया और उसमें दावा किया गया कि भारत के दर्जनों एयरबेस नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन यहां भी पाकिस्तान के पास सबूत के तौर पर कोई असली तस्वीर तो थी नहीं, फिर बेइज्जती हुई। चौथा फर्जीवाड़ा तब हुआ जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में झूठी खबर का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को आसमान का बादशाह बताया है। अब पाकिस्तान की संसद में इसे सेना की बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह तस्वीर एआई से बनाई गई थी और डेली टेलीग्राफ ने ऐसी कोई खबर प्रकाशित ही नहीं की। यही नहीं, इस एआई तस्वीर में पाकिस्तान और टेलीग्राफ की स्पेलिंग तक गलत थी, लेकिन वहां मंत्रियों को क्या मतलब, क्या स्पेलिंग जानेंगे, दिखा दिया। पांचवा फर्जीवाड़ा तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। दावा बड़ा था, इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि सबूत क्या है। अब सीएनएन के एक इंटरव्यू में जब उनसे सबूत मांगा गया तो ख्वाजा आसिफ के जवाब ने उन्हें एक मजाक बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि सबूत भारतीय सोशल मीडिया पर मौजूद है, यानी यहां भी पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था। और क्योंकि पाकिस्तान झूठ बोलता है इसलिए अब भी उसने एक एआई वीडियो जारी किया है, अपनी खूब भद पिटवाई, जबकि यही आप भारत को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर अपने पीछे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दिखाया, पाकिस्तान में हुए हमले की थर्मल इमेजिंग तस्वीरें जारी की, सैटेलाइट तस्वीरों के सबूत दिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था उसके तमाम वीडियोस जारी किए। हमें इसके लिए एआई की मदद नहीं लेनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि झूठ बोलता है इसलिए वो एआई चलाता है। हमें तो लगता है कि कहीं पाकिस्तान एआई से वीडियो बनाकर चांद पर ना पहुंच जाए। अगर वो पहुंच भी गया तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पाकिस्तान के झंडे पर चांद है, भारत का झंडा ही चांद पर है। देखिए,

0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि ब्रिक्स समिट से पहले डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के दबदबे को मिल रही चुनौती पर दुनिया में बहस क्यों छिड़ी है। इस बार का ब्रिक्स समिट हमारे अपने देश भारत में होने वाला है और ये एक ऐसा मंच है जिसके खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर बोलते हैं और इन देशों पर यह आरोप लगाते हैं कि ब्रिक्स देशों का मंच डॉलर को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन देशों का एक ऐसा समूह जिसके साथ शुरुआत हुई थी और वही समूह अब धीरे धीरे कई देशों में फैल गया है और डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से काफी चिढ़ते हैं। जब जब ये आयोजन होते हैं तो वो हमेशा इसके खिलाफ बोलते हैं और खास तौर पर डॉलर के मुद्दे पर जरूर छेड़ते हैं। अब क्योंकि ये समिट इसी हफ्ते 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है और इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं, तब डी डॉलराइजेशन पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, जो पहले अकल्पनीय लगता था, लेकिन आज क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने ब्रिक्स समिट से पहले मॉस्को से वर्चुअली एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिया और इस दौरान मैं भी वहां मौजूद थी। मैंने उनसे सीधा सवाल ये पूछा कि जब ये देश गैर डॉलर करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं तो इसे ये डी डॉलराइजेशन क्यों नहीं मानते। भाई उन्होंने खुद ही बताया डिमिट्री पेस्कोव ने कि रशिया बाकी देशों के साथ जो कि ब्रिक्स के देश हैं उनके साथ 90% पेमेंट अब डॉलर में नहीं बल्कि अपनी अपनी राष्ट्रीय करेंसी में कर रहा है, रूबल में कर रहा है, भारत रुपया में कर रहा है। तो यह है पूरा मामला डॉलर को अलग थलग करने का। 90% तक अगर वो डॉलर का इस्तेमाल खत्म कर चुके हैं तो उसको खुलकर डी डॉलराइजेशन बोलने से रशिया या ब्रिक्स क्यों बचता है। और राष्ट्रपति ट्रंप डॉलर को नुकसान पहुंचाने का जो आरोप इन ब्रिक्स देशों पर लगाते हैं वो इन पर आखिर क्या कहना चाहते हैं, ये सवाल मैंने उनसे पूछा। इस पर डिमिट्री पेस्कोव ने साफ कहा कि वो डॉलर के खिलाफ नहीं है बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद डॉलर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे, सुनिए।
1: हेलो मिस्टर पेस्कोव, थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्शन एंड इट्स नाइस दैट यू हैव कॉल्ड दिस सेशन टेलिंग द अनटोल्ड, सो वी आर काउंटिंग ऑन दैट। Donald Trump, the American president, says BRICS is a forum against the dollar. You yourself mentioned how 90% of the payments that Russia is doing with other BRICS countries has now moved on to national currency. There are other countries also within BRICS without sanctions who have opted for cross-border national currency payment systems. Why does Russia or BRICS shy away from openly claiming de-dollarization? And how would you respond to the allegation that BRICS is a forum against the dollar that Donald Trump often talks about?
2: धन्यवाद। यह बहुत दिलचस्प सवाल है। खैर, मैं फिर से दोहराऊंगा, ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। ब्रिक्स तो अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए है और रूस भी ब्रिक्स देशों में से एक है। रूस से अमेरिकी डॉलर और यूरो इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी है और अमेरिका ने हमें इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद की करेंसी क्यों ना इस्तेमाल करें। क्या इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है? नहीं, कुछ हद तक तो यह उससे भी बेहतर है। और हमने अलग अलग देशों को नेशनल करेंसी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देना शुरू किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ हैं और हम किसी डी डॉलराइजेशन पॉलिसी का दावा भी नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है। तो मैं ये कहूंगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे, तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है, और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है। और जाहिर है सभी देश वही कर रहे हैं जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, और अगर नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है तो वो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट नेशनल करेंसी में ही करेंगे, और यह किसी देश के खिलाफ की गई प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए अमेरिकी डॉलर को सबके लिए फायदेमंद बनाइए और हर कोई अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अभी प्रक्रिया इसके उलट है और ऐसा हमारी वजह से नहीं हो रहा है।
0: और अब आप आंकड़ों से इस डी डॉलराइजेशन की पूरी कहानी बताते हैं। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर को छोड़कर अपने अपनी जो राष्ट्रीय आपकी करेंसी है उसमें व्यापार करना, पेमेंट करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यही डी डॉलराइजेशन है। आज से 26 साल पहले वर्ष 2000 में दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी जो है वो 72% होती थी। ज्यादातर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर इसलिए रखते थे क्योंकि दूसरे देशों से कोई सामान या सेवा खरीदने के लिए उन्हें डॉलर में ही भुगतान देना होता था। लेकिन बाद में जब अमेरिका ने ईरान, वेनेजुएला, रशिया, कुछ अफ्रीकी देश सब पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाने लगे और आपस में एक दूसरे की जो राष्ट्रीय करेंसी है उसमें वो व्यापार करने लगे। इससे दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की जो हिस्सेदारी है वो 72% से घटकर आ गई 56%। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छोटे देशों को गैर डॉलर करेंसी में व्यापार करने के लिए रशिया और चाइना ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया, और क्योंकि ये दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी में व्यापार करने का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप अब इस मंच को डॉलर के खिलाफ एक गठजोड़ की तरह देखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल इन आंकड़ों को लेकर उठता है, ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे पांच देश आपस में जो व्यापार कर रहे हैं, ये शुरुआती पांच देश थे जिनके साथ ब्रिक्स शुरू हुआ था। उनमें काफी व्यापार अब बिना डॉलर का हो रहा है, गैर डॉलर करेंसी यानी अपनी अपनी राष्ट्रीय करेंसी में कर रहे हैं, जैसे हम रुपया में, रशिया रूबल में। अकेले रशिया ब्रिक्स देशों के साथ 90% व्यापार अपनी नेशनल करेंसी में कर रहा है। इनमें ब्राजील के साथ अधिकतम 10%, भारत के साथ 96%, भारत के साथ 96% जो रशिया का व्यापार है वो इस वक्त अपने अपने नेशनल करेंसी में हो रहा है यानी रूबल और रुपया में। चाइना के साथ 99.1% रशिया का व्यापार उसकी नेशनल करेंसी में हो रहा है। इसके अलावा गैर ब्रिक्स देशों में ईरान के साथ 96%, इजिप्ट के साथ 40% व्यापार भी डॉलर में नहीं हो रहा, अपनी अपनी राष्ट्रीय करेंसी में हो रहा है। रशिया का कहना है कि वो ब्रिक्स SCO और देशों वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी 97% व्यापार डॉलर में नहीं कर रहा, लेकिन रशिया ऐसे डॉलर के खिलाफ मुहिम नहीं कहता। वो ये कहता है कि अमेरिका ने डॉलर को कई देशों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और इसी वजह से अगर डॉलर को नुकसान पहुंचा रहा है अगर कोई तो वो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति इसके लिए खुद जिम्मेदार है। इस प्रेस ब्रीफिंग में दिमित्री पेस्कोव ने यह भी बताया कि जो भारतीय यूक्रेन में युद्ध में शामिल हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है और उन्हें भारत भेजने पर काम किया जा रहा है। सुनिए।
3: Yes, this issue was brought to agenda by Indian side numerous times and with a great attentiveness we approached to this issue. Now the work is being done to make a list of those Indian citizens who are now on the battlefield, and they will be sent back home as soon as they are determined. We are in a very deep contact, profound contact with the Indian side on this issue.
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन एक दूसरे के जिगरी दोस्त कैसे बने। आज इस दोस्ती की चर्चा खूब हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि रशिया और उत्तर कोरिया को आपस में जोड़ने वाले पहले पुल का उद्घाटन हुआ है जो रशिया और नॉर्थ कोरिया को जोड़ता है। एक किलोमीटर लंबा है, जिसने पहली बार दोनों देशों को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया है। यानी आज से पहले तक ऐसी कोई सड़क नहीं थी जो दोनों देशों को जोड़ती हो, लेकिन अब ऐसा हो गया है और पश्चिमी देश इसे लेकर दो बातें कह रहे हैं। उन्हें चिंता है कि इस पुल के जरिए हथियारों की गुप्त सप्लाई हो सकती है, दूसरा इससे प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जा सकता है, जबकि रशिया और नॉर्थ कोरिया पर इन आरोपों का कोई असर नहीं पड़ रहा। उल्टा उत्तर कोरिया और रशिया ने इस पुल का नाम ही सोवियत सेना के एक अधिकारी याकोव नोविशेंको के नाम पर रखा है। ये वही सोवियत अधिकारी है जिन्होंने किम जोंग उन के बाद किम इल सुंग की 1946 के एक ग्रेनेड हमले में जान बचाई थी और उत्तर कोरिया में उन्हें आज एक राष्ट्रीय नायक की तरह सम्मान दिया जाता है। और इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि अब राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती कैसे गहरी होती जा रही है। देखिए,

0: исторические события.
1: अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की ये जो दोस्ती है वो हुई कैसे और इस दोस्ती की पश्चिमी देश क्लोजेस्ट कॉमरेड यानी सबसे करीबी साथी क्यों मानते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब साल 2000 में पहली बार रशिया के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने उत्तर कोरिया का दौरा किया था और उस वक्त किम जोंग उन के पिता उत्तर कोरिया की सत्ता में थे। किम जोंग उन सिर्फ 16 साल के थे। यानी इस दोस्ती की शुरुआत किम जोंग उन के पिता से हुई थी और बाद में राष्ट्रपति पुतिन किम जोंग उन के देखिए तो एक दूसरे के दोनों पक्के दोस्त बन गए। इनमें भी साल 2019 इस दोस्ती के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वही साल था जब किम जोंग उन पहली बार रशिया गए और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें पारंपरिक रूसी ब्रेड और नमक दिया गया, उपहार मिले, शानदार डिनर कराया गया। हालांकि उस वक्त ये दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, सम्मान था, शिष्टाचार था, लेकिन दोनों नेताओं के बीच एक झिझक भी दिखती थी। और आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त दोनों नेता मिल तो रहे थे लेकिन वैसी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रशिया को अलग थलग करने की कोशिश हुई, तब उत्तर कोरिया ने रशिया का पूरा साथ दिया। इससे ये दोस्ती इतनी मजबूत हुई कि जून 2024 में जब राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे तो किम जोंग उन खुद रात 3 बजे उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। रात के 3 बजे, सोचिए, जिस उत्तर कोरिया में प्रोटोकॉल और सत्ता का प्रदर्शन इतना मायने रखता है, वहां देश का सुप्रीम लीडर खुद इतनी सुबह किसी विदेशी नेता को रिसीव करने पहुंचा और यहीं से पूरी दुनिया को एक संदेश दिया गया। संदेश यह था कि रशिया पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की परवाह नहीं करता, फिर चाहे वो प्रतिबंध खुद रशिया पर लगे हों या उत्तर कोरिया। इसके अलावा दुनिया ने रशिया और उत्तर कोरिया के बीच हुए रक्षा समझौतों को देखा, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन ने समझौतों से आगे बढ़कर इस दोस्ती को एक दूसरे के लिए सहज बनाया। जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन को रशिया में बनी अपनी आधिकारिक राष्ट्रपति जैसी ही ऑरस सेनेट लिमोजीन कार गिफ्ट की। किम जोंग उन को यह कार इतनी पसंद आई कि जून 2024 में जब राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया गए तो दोनों नेताओं ने प्योंगयांग की सड़कों पर इस कार को बारी बारी से चलाया। अब किम जोंग उन के लिए यह गिफ्ट इसलिए भी खास था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर परमाणु कार्यक्रम के कारण लग्जरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यह कार गिफ्ट करना सीधे तौर पर यूएन के नियमों को चुनौती दे रहा था। अब आपको देश के लोगों के बीच भाषा और क्षेत्र की लकीर खींचने वालों का दोहरा रवैया दिखाते हैं, कैसे रसूख के आगे उनके सारे कायदे, सारे कानून, सारे मापदंड भीगी बिल्ली बन जाते हैं। खबर महाराष्ट्र से है जहां भाषा की राजनीति का भी अपना ही एटीट्यूड है, लेकिन ये नियम, ये पैमाना और भाषा की भक्ति का ये पाठ किसी पर लागू होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपका कद कितना बड़ा है। हालिया नजारा मुंबई के एक भव्य मंच का है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त माइक पर बोल रहे थे, बगल में खड़े थे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। मंत्री जी इन दिनों मराठी के मास्टर जी बनकर घूम रहे हैं, वो हर किसी को मराठी सिखाने के मूड में है। मंच पर जब संजय दत्त आए तो मंत्री जी को लगा कि थोड़ा भाषाई अनुशासन यहां भी दिखा दिया जाए। खुद ही बोले कि वो आजकल सब लोगों को मराठी सिखा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त से भी कहा, मराठी में बोलिए। लेकिन इसके आगे जो हुआ वो भाषा को विवाद का रूप देने वालों के लिए एक मास्टर क्लास थी। माइक संभालते ही संजय दत्त ने दो टूक अपने ही अंदाज में कह डाला कि वो 6 साल यरवडा जेल में रहे तब भी मराठी नहीं सीख पाए, और बोलते बोलते संजय दत्त का हाथ भी मंत्री प्रताप सरनाईक के कंधे पर पहुंच गया। अगर आप सोच रहे हो कि इस बयान के बाद मंच पर हंगामा हुआ होगा, भाषा के ठेकेदारों ने विरोध में नारे लगाए होंगे, तो आप बिल्कुल गलत है। यहां संजय दत्त के आगे मंत्री जी बिल्कुल पिघल गए, गुस्सा नहीं आया, गुस्से के बजाय संजय दत्त की मराठी ना बोलने की बात पर बड़ी जोर से हंसने लगे। माहौल में ठहाके ऐसे गूंज उठे मानो संजय दत्त ने मराठी में कोई जोरदार फिल्मी पंच मार दिया।
2: मेरे भाई ने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है।
3: मैंने बोला आजकल मैं सब लोगों को मराठी सिखा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं बोला कि पहला एंट्री करने बाद संजय दत्तला पण आधी आपण आता मराठीत बोलायला लावूया।
4: तुम्ही सर्वांना नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
2: प्रताप भाई, मैं 6 साल जेल में रहा येरोड़ा में, तब भी मराठी नहीं सीख पाया।
1: अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, वही परिवहन मंत्रालय, वही मंत्री जी, वही मुंबई की सड़कें। सड़क पर दिन रात मेहनत करके कितना 300-400 रुपए कमाने वाले गरीब ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स के लिए फरमान जारी करते हैं, यहाँ मराठी का काम चलाओ ज्ञान अनिवार्य है, वरना इधर रोजी रोटी भूल जाइए। तर्क दिया जाता है कि यात्रियों से बेहतर संवाद विवाद रोकने के लिए मराठी जरूरी है। हालांकि विवाद होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दे दी। लेकिन सवाल यह है कि जो ड्राइवर रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते हैं, अगर वो मराठी का एक शब्द गलत बोल दें तो मराठी भाषा के स्वयंभू रक्षक सड़कों पर उतर आते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, गरीब चालकों के साथ बदतमीजी होती है, सरेआम थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं और थानों के चक्कर काटते काटते उनके लिए परेशानी होती है। लेकिन मशहूर अभिनेता संजय दत्त खुलकर कहते हैं कि उन्हें मराठी नहीं आती, तो मंत्री जी बगले झांकते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर ठहाके लगाते हैं। सवाल तो है कि क्या मराठी भाषा का मान सम्मान सिर्फ गरीब ऑटो वालों को पीट कर ही बचाया जाएगा? क्या मराठी भाषा के स्वयंभू ठेकेदार वैसा ही हंगामा करेंगे जैसा वो सड़क किनारे फल बेचने वालों, टैक्सी वालों, ऑटो चालकों को लेकर करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे कायदे कानून और भाषा की सख्ती सिर्फ उन्हीं पर चलती है जो पलटकर जवाब नहीं दे सकता। संजू बाबा ने तो मुस्कुराया, आईना दिखा दिया है। अब देखना यह है कि मंत्री जी की इस हंसी के पीछे छिपे दोहरे मापदंड को भाषा के विवाद में उलझने वाले लोग कब समझ पाते। दिल्ली में कल देर रात 8 लड़कों ने मणिपुर के एक शख्स की हत्या कर दी। 54 साल के विक्रम सिंह की हत्या इस बात पर हुई कि वो अपने घर के नीचे शराब पी रहे लड़कों को शराब पीने, शोर मचाने से बस रोक रहे थे। ये सारे लड़के उनके घर के नीचे मौजूद ढाबों, रेस्टोरेंट में काम करते थे। रात करीब 11:30 बजे का वक्त था जब उन्होंने शराब पीना और शोर मचाना शुरू किया। तब विक्रम सिंह घर से बाहर निकले, उन्होंने इन लड़कों से शराब पीने, शोर मचाने से मना किया। विक्रम सिंह और उन लड़कों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई। काफी देर तक हुई बहस के बाद विक्रम सिंह अपने घर चले गए, लेकिन उन लड़कों ने विक्रम सिंह का पीछा किया, उनके घर गए, घर जाकर उनसे मारपीट की। जब शोर सुनकर विक्रम सिंह का परिवार आया तो आरोपी लड़के वहां से फरार हो गए। घायल हालत में विक्रम सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले विक्रम सिंह एक म्यूजिशियन थे, बच्चों को गिटार का ट्यूशन देते थे, 17 वर्षों से परिवार के साथ दिल्ली में रह रहे थे। आरोप लगाया जा रहा है कि विक्रम सिंह के साथ जिन लड़कों ने मारपीट की वो उन पर नस्लवादी टिप्पणी भी कर रहे थे। हालांकि पुलिस इस एंगल से अभी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मामला खुले में शराब पीने, शोर मचाने से जुड़ा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 आरोपी बनाए गए, जिनमें से एक नाबालिग है। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है। विक्रम सिंह की हत्या के बाद दिल्ली में रहने वाले मणिपुर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, इंसाफ की मांग की। उन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर एक्शन लिया जाना चाहिए।
0: करीब करीब 7-8 लोग के आसपास मौजूद थे, जिसमें आसपास के ढाबे में काम करने वाले लोग थे, कोई डिलीवरी बॉय था, कोई पैकिंग का काम करता था, तो वो लोग शोर मचा रहे थे। अब ऊपर 3rd फ्लोर पर उनका घर है, तो वो नीचे आए, उनको शायद ऊपर आवाज आ रही थी, उन्होंने यहाँ पे मना किया। और जब मना किया तो इस बीच उनके बीच आपस में कुछ कहा सुनी हुई, और जब कहा सुनी हुई तो उन लोगों ने मारपीट हुई, और उसके बाद विक्रम जी अंदर की तरफ भागते हैं, ऊपर की तरफ वो अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं और मदद की मांग करते हैं। तो अंदर जो उनकी वाइफ थी उनके पास आवाज जाती है, वो दरवाजा खोलती हैं और उसके बाद वो लड़के दिखते हैं, भागते हुए भी दिखते हैं, मारपीट भी पूरी कैप्चर हुई है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उनकी मौत हो गई। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मारपीट की गई, वजह भी लगभग साफ है कि सिर्फ शोर मचाने से मना किया।
5: रात को 11:30 से 12 बजे के करीब कुछ लोग जो पास के एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनसे शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
6: ये ढाबे में काम करते हैं और डिलीवरी बॉयज भी है। रात को म्यूजिक और कुछ आवाजें आए, उसको लेकर के झगड़ा हुआ, लेकिन घटना इतना दुखद है कि जान चले गई। विदिन 2 सप्ताह में बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जशीट भी फाइल कर देंगे कोर्ट में। कड़ी सजा होना चाहिए। आठों का आठ अलग अलग समुदाय अलग अलग राज्यों से है, यहाँ काम करते हैं, बाहर से आए हैं सब लोग, और अभी तो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन चार्ज शीट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यही बात हुआ है।
1: ये कितना दुखद है कि एक व्यक्ति की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो खुले में शराब पीने हंगामा करने वालों को सही चीजें सिखा रहा था, और ऐसा कानूनन जुर्म है। 3 महीने की सजा है, 10,000 रुपया तक के जुर्माने का प्रावधान है अगर आप खुले में शराब पीकर इस तरह से हंगामा करते हैं। लेकिन हमारे देश में जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ रहे लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील करता है तो एक बड़ा अपराध, बड़े अपराध को समझिए न्योता देता है। सोचिए, विक्रम सिंह कुछ भी गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने बस गलत करने से रोका मौत। दिल्ली की हालत अब यह है कि यहां पर खुले में या फिर कार में बार सजाना बहुत आम बात है। इस साल 1 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच खुले में शराब पीने के 60,624 मामले दर्ज हुए, और बड़े आराम से जो लोग ऐसा करते हैं उसे कारोबार कहते हैं। इनमें करीब 41% केस तो साउथ दिल्ली में दर्ज हुए हैं, ये वही क्षेत्र है जहां मणिपुर के विक्रम सिंह की हत्या हुई। साउथ दिल्ली में तो पुलिस ने 34 ऐसे हॉटस्पॉट्स का पता लगाया है जहां अक्सर लोग खुले में शराब पीते हैं, और करीब 12,500 केस यहीं पर दर्ज हुए। इसके बाद नंबर आता है साउथ ईस्ट दिल्ली का। पुलिस ने यहां की 45 ऐसी जगहों की मार्किंग की है जहां खुले में शराब पी जाती है। 12,420 केस दर्ज किए गए। ये डेटा बताता है कि खुले में शराब पीने वाले दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और यही लोग आम लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा। खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगे। खबर दिल्ली पर मंडराते बड़े खतरे से जुड़ी है। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद एक नई रिपोर्ट चर्चा में है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक दिल्ली में रिक्टर स्केल पर 6.0 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया तो 33 लाख इमारतें दिल्ली NCR की मलबे में तब्दील हो जाएंगी। सेस्मिक जोन 4 में है दिल्ली, बताइए। बिल्कुल अंजना, दिल्ली के सत्य निकेतन में हुआ 5 मंजिला इमारत का खौफनाक हादसा अब नए खतरे को लेकर डरा रहा है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली एक तगड़ा भूकंप का झटका झेल सकती है? नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि दिल्ली NCR में करीब 89 लाख इमारतें हैं, और इनमें से 38% यानी करीब 33 लाख इमारतें खतरे की नींव पर खड़ी हैं। एनवायरमेंटल अर्थ साइंसेज में छपी इस स्टडी के मुताबिक अगर रिक्टर स्केल पर सिर्फ 6.0 तीव्रता का मध्यम भूकंप भी आ गया तो दिल्ली की जमीन पर खड़ी ये इमारतें तबाही का ऐसा मंजर दिखाएंगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है जो कि दूसरी सबसे खतरनाक भूकंप जोन है। यहां के हजारों अवैध निर्माण, बिना इंजीनियर के बनाई गई मंजिलें और मकान जो सालों से बिना किसी स्ट्रक्चरल ऑडिट के बने हैं, ये इस खतरे को और बड़ा कर देते हैं। सत्य निकेतन हादसे ने भी यही पोल खोली है कि कैसे नियमों की अनदेखी और अवैध बदलाव इंसानों की जिंदगी पर भारी है। कुदरत कब धरती को हिला दे ये कोई नहीं जानता, लेकिन सत्य निकेतन का ये हादसा एक वेकअप कॉल है। क्या हमारी इमारतें और हमारा प्रशासन किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है?

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
3: वाव दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स।
8: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: देखे जन्म पहला पहला कदम।
12: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
13: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
14: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे, तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
15: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: राम और रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किसे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और सम्मान हमेशा इंसान के वक्त और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: वडोदरा में पीएम मोदी का जेन जी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच के हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। यूपी विधानसभा चुनाव में एक्शन में कांग्रेस, दो दिन के दौरे पर रायबरेली में राहुल, व्यापारियों से मिले। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन में पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस उठाते हैं सवाल। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू सर्वे, पिछले दो दिन में 24 इमारतें ढाई गई। बिहार में बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 34 लाख प्रभावित, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर में बुरा हाल, लालू बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेन जी शो पर। इस शो में गुजरात के वडोदरा में मोदी सरकार के विकास की पिक्चर दिखाई गई, तो इस जेन जी शो के टिकट बुक माई शो पर बुक किए गए। ये पहली बार है जब किसी सार्वजनिक सरकारी कार्यक्रम के लिए भीड़ और एंट्री प्रबंधन हेतु बुक माई शो प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। बड़ी बात यह भी है कि मुफ्त रजिस्ट्रेशन शुरू होने के केवल एक घंटे के भीतर सभी सीटें बुक हो गईं और 42,000 से अधिक लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को 35,000 करोड़ रुपए की सौगात दी, तो विकास की परियोजनाओं के साथ साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तगड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और पूरा फोकस उनका जेन जी पर था। तो आइए आपको दिखाएं मोदी का जेन जी प्लान।
1: भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। ये भारत की युवा शक्ति का उत्कर्ष काल है। ये सारी मेहनत देश के युवाओं के फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करके की जा रही है।
2: ये है पीएम मोदी का जेन जी शो। जी हाँ, गुजरात के वडोदरा शहर में पीएम मोदी जेन जी से सीधे कनेक्ट होते हैं। कार्यक्रम का नाम नमो फॉर विकसित भारत रखा जाता है, लेकिन फोकस पूरा जेन जी पर रहता है। और ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम के लिए टिकट रखा गया। हालांकि ये बुकिंग फ्री थी, लेकिन इस टिकट की बुकिंग ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो के जरिए की जाती है। और बड़ी बात यह है कि एक घंटे के भीतर पीएम मोदी के जेन जी शो के सारे टिकट बुक हो जाते हैं। और तो और 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग में पहुंच गए, यानी पीएम मोदी का शो हाउसफुल रहा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर वाई आकार का रैंप तैयार किया गया और भाषण से पहले पीएम मोदी जेन जी के बीच रैंप वॉक करके पहुंचते हैं। मंच पर पहुंचते ही फिल्म क्वीन का गाना वी विल रॉक यू बजाया जाता है, तो उसके बाद फिल्म धुरंधर का गाना आरी आरी भी बजता है, यानी पीएम मोदी का रॉक ऑन जेन जी शो। और फिर शुरू होती है जेन जी के बीच पीएम मोदी की विकास की परफॉर्मेंस वाली पिक्चर, जिसमें तीन सीन्स पर पीएम मोदी को जबरदस्त तालियां मिलती हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा, कांग्रेस पर नाराज फूफा जी और झूठ की गूंज वाला तंत्र, और जेन जी के लिए एआई वाला रोजगार मंत्र। पहले बात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की। वडोदरा की जमीन से पीएम मोदी ऐलानिया कहते हैं कि आज 2800 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। और जेन जी के बीच ये भी बताते हैं कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना तब बनी थी जब आप में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, और अगर पिछली सरकार होती तो कई और पीढ़ियां निकल जाती। ये काम पूरा नहीं होता।
1: आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था, यानी यहां मैं सारे नौजवान देख रहा हूं, जब इसका विचार शुरू हुआ आप में से बहुत लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम करने के लिए, और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रही, फाइलें टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ। और 2014 में वडोदरा के और गुजरात के और देश के लोगों ने मुझे गुजरात से निकाल करके दिल्ली भेज दिया। जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद तीन चार पीढ़ी आती तो भी नहीं होता।
2: पीएम मोदी 2800 किलोमीटर डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर के काम को न सिर्फ अपनी उपलब्धि बताते हैं बल्कि राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि नाराज फूफा जी इस पर भी चिल्लाएंगे।
1: जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया।
2: पीएम मोदी विकास वाली पिक्चर के दूसरे ही सीन में पिछली कांग्रेस की सरकार पर जबरदस्त डायलॉग्स के साथ अटैक करते हैं।
1: पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है। आज भी इस कार्यक्रम में कई नई ट्रेन शुरू हुई है और साथ ही छोटे से बड़े कामगार को रोजगार के लाखों लाख अवसर मिलते हैं।
2: पीएम मोदी के जेन जी शो में

0: जी शो में कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा निशाना इसलिए क्योंकि जेन जी वोट की लड़ाई में राहुल गांधी ने 800 से ज्यादा शहरों में छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम शुरू किया है और अब पीएम मोदी वडोदरा में जेन जी के बीच इस पर झूठ की गूंज कहकर बात करते हैं।
1: झूठ की गूंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
2: तो आपने देखा सुना कि कैसे जेन जी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर पर नाराज फूफाजी वाला कटाक्ष, तो राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को टारगेट करते हुए झूठ की गूंज वाला प्रहार उन्होंने किया। हम आपको यह भी बता दें कि इस समय जेन जी क्यों बीजेपी से लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गए, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो सुनिए, देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 7 राज्यों में चुनाव हैं और इन 7 चुनावी राज्यों में जेन जी वोटर्स एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे हैं। अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर नई पीढ़ी यानी कि जेन जी जिस तरह से सजग और मुखर दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, राजनीतिक पार्टियों को मैसेज बहुत क्लियर है, जहां जेन जी वहां पलड़ा भारी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रंट कैमरा वाले वीडियोज हों या फिर विपक्ष पर दिमागी नक्सल वाला उनका प्रहार, फोकस पीएम मोदी का एकदम क्लियर है, जेन जी।
3: द ओजी ट्रेंड सेटर।
0: वडोदरा से पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है, विकास की बात होगी तो जेन जी के साथ होगी, विपक्ष पर वार होगा तो जेन जी के सामने होगा। यानी पीएम मोदी हर तरह से जेन जी के साथ न सिर्फ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं बल्कि जेन जी को अपने पाले में खींचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब से दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया। आज पीएम मोदी वडोदरा में जेन जी को ये बताना नहीं भूलते हैं कि एआई हो या कोई भी आधुनिक सेक्टर, भारत को दुनिया के सामने सुपर पावर बनने की तैयारी करनी होगी और ये सारी मेहनत युवाओं के भविष्य के लिए है।
1: आने वाले दौर में हर आधुनिक सेक्टर बिजली से ही चलेगा, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम पर निर्भर होगा। जैसे चिप इंडस्ट्री है, डेटा सेंटर और एआई से जुड़ी इंडस्ट्री है, इनका खाद पानी बिजली ही है। इसलिए अगर हमें एआई में दुनिया के सामने सुपर पावर बनना है तो देश को उसकी तैयारी, उसका इकोसिस्टम भी बनाना होगा। यही काम भारत ग्राउंड पर कर रहा है, तभी किसी देश से यूरेनियम के लिए समझौते हो रहे हैं, किसी से क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर समझौते किए जा रहे हैं। ये सारी मेहनत देश के युवाओं के फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करके की जा रही।
0: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसीलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
4: मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है। डेटा

0: आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी।
1: अब इंदौर में 19 सितंबर को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है कि इसके लिए 75,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया। और तो और, पीएम मोदी ने जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेन जी से सीधे कनेक्ट होने के लिए फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं। 23 जुलाई पहला सेल्फी वीडियो, 24 जुलाई दूसरा सेल्फी वीडियो, 31 जुलाई फिर इंस्टाग्राम रील्स वाला अंदाज, 20 अगस्त मंत्रियों को सीधे युवाओं के बीच जाने का निर्देश, 26 अगस्त इंस्टाग्राम पोस्ट की औसत एंगेजमेंट बढ़ने पर, 5 सितंबर एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में जेन जी अंदाज। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर देश को आगाह किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने 5 सितंबर 2026 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान दिमागी नक्सल वाले अपने बयान को फिर से दोहराया।
2: मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे।
1: और अब दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरी तो राहुल गांधी ने तुरंत पीएम मोदी पर वार किया और अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उन्हें वो दिमागी नक्सल और नाराज फूफा जैसे अपमानजनक तमगे देते हैं। जंग सीधे सीधे जेन जी की है, क्योंकि सच यही है, जेन जी जिधर वोट उधर। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें साल के आखिर में गुजरात विधानसभा के चुनाव भी शामिल हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी वडोदरा पहुंचते हैं तो चुनावी गूंज सुनाई देने लगती है, जेन जी को अपने पाले में खींचने की जंग भी। क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल की उम्र के लोग 21.19%, गुजरात 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश 21.91%, मणिपुर 23.74%, और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है। फिर पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से जेन जी के लिए किए गए ऐलान को गुजरात में भी दोहराते हैं।
3: मैंने लाल किले से भी युवा शक्ति के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ लाखों नौजवान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और इसलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर के द्वारा उनके कोचिंग हो।
1: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, यानी जेन जी शो के साथ पीएम मोदी ने गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। वडोदरा से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के सत्य निकेतन का एक और चौंकाने वाला सत्य, ऑपरेशन हॉस्टल डेथ 2.0, जो खुलासा करता है कि सत्य निकेतन में इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, कैसे पूरे इलाके में मौत के पीजी चल रहे हैं और छात्रों की मजबूरी की कीमत छात्रों से वसूली जा रही है। आइए दिखाते हैं आपको एक और बड़ा खुलासा।
5: दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छात्र भारी संख्या में रहते हैं, उनमें से सत्य निकेतन भी एक ऐसा इलाका है जहां पर एक बिल्डिंग कोलैप्स के बाद लगभग 7 लोगों की जान चली गई।
6: विजिबिलिटी यहां पे ज्यादा है, थोड़ा नजदीक पड़ता है कॉलेज के, तो इसलिए फिर सत्य में कंटिन्यू करा मैंने।
5: जिस बिल्डिंग के पास वो हादसा हुआ था, उसके साथ वाली जो बिल्डिंग है, वहाँ से अब लोग अपना सामान निकालते हुए नजर आ रहे हैं।
7: मतलब ऐसे चलने वाली कंडीशन में नहीं थे, बस हम आ गए।
5: स्थिति अभी हम घर के अंदर
7: अभी तो ठीक है, मतलब ये कि हाँ अभी सामान ला सकते हो, बट वो कब तक हमें नहीं पता।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में हॉस्टल डेज हॉस्टल डेथ कैसे बना, क्यों बना, अब उसका पूरा सत्य सामने आ रहा है।
8: सिक्योरिटी देने से मना कर रहे हैं। 16,000 रेंट था मेरा, 16,000 सिक्योरिटी, 3 से 4,000 मेंटेनेंस लेते हैं, लाइट का बिल अलग है, अपार्ट चलो लाइट का बिल ले रहे 14 रुपए यूनिट, डेली का कॉमन एरिया का 5 रुपए चार्जेस अलग लेते हैं। बच्चा अगर एक बार आ रहा है तो उसे 40 से 45 हजार रुपए चाहिए एक बार में शिफ्ट होने के लिए, 50-60 जिससे जितना बनता है वो उतना लूटते हैं।
9: तो जो इंसिडेंट हुआ है वो हमारी जस्ट एडजेसेंट बिल्डिंग थी और अभी वहां पे भी काफी डैमेज हो गया है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना सरकार की अकाउंटेबिलिटी है ना एमसीडी वालों की है।
1: दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के इस इलाके में क्यों छात्र जर्जर इमारतों के घुटनदार कमरों में रहने के लिए मजबूर हैं और कैसे सत्य निकेतन में मौत के पीजी चल रहे हैं, और आज छात्र मौत बांटने वाले पीजी यानी हॉस्टल डेज की कहानी भी सुना रहे हैं।
10: चीज लाइक की मतलब एक बहुत छोटा सा डब्बा सा रूम है, उसका इतना ज्यादा मतलब कोई प्राइजेस का कोई ऐसा नहीं है, मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी है, तो कुछ भी मतलब मांगे जा रहे हैं जो उनका मन करता है। एंड और तो क्या ही है, मतलब ना पीजी का अच्छे से मेंटेनेंस है, वॉल वगैरह रूट्स वगैरह उसकी सारी वीक पड़ी है।
11: सिक्योरिटी लॉक इन पीरियड के बाद भी नहीं मिली, पीजी ओनर्स ने नहीं दी, या फिर कई बार पीजी ओनर्स फालतू के टाइम पे लाइक आपने दीवार गंदी कर दी आपकी 2000 रुपए कट जाएंगे, आपने ये कर दिया वो कर दिया।
1: तो इस बीच सत्य निकेतन का हादसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ यानी डूसू चुनाव का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और बीजेपी की छात्र विंग ABVP दोनों ही पीजी हादसे पर गरज रहे हैं।
12: इन 18 डेज और इन 21 डेज एक टाइम लिमिट हो कि इतने में सत्यनिकेतन और हर जो स्टूडेंट सब है उनके पीजीज को ऑडिट हो जाएगा।
9: देखो जो बहुत वीक बिल्डिंग है आप उसकी देखो, अगर वो नहीं चल पाएगा आगे तो प्लीज उसे हटाओ।
13: दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, क्या हम बेसिक चीजें नहीं मांग सकते हैं? हमारे कॉलेज में 91 DU कॉलेजेस में सिर्फ 20 कॉलेजेस में हॉस्टल है, क्या हम हॉस्टल नहीं मांग सकते हैं?
1: आज तक ने आपको सत्य निकेतन में चल रहे मौत के पीजी की पड़ताल यानी ऑपरेशन हॉस्टल डेथ में इलाके की सच्चाई से पर्दा उठाया था, और आज हम ऑपरेशन हॉस्टल डेथ 2.0 में पीजी को लेकर नया और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज तक ने सत्य निकेतन इलाके में एक ब्रोकर यानी पीजी में छात्रों को कमरा दिलाने वाले का स्टिंग ऑपरेशन किया। इस ब्रोकर ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आज तक के खुफिया कैमरे पर ये ब्रोकर बताता है कि सत्य निकेतन में किसी भी बिल्डिंग के पास सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है।
14: ऐसा तो कोई बिल्डिंग इतने सारे नई ही बनी है जिसमें 2-3 लुक्स ना हो, उनको अब रिपोर्ट बनाइए। कुछ भी चीजें क्या है कि पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं पूछते हैं ना कि चीजें पब्लिक नहीं है, तो कोई मकान मालिक कुछ भी करता है, बातें न्यूज पर खूब होती है कि मकानों को ना सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलेंगे, ये मिलता कब है, मिलता कब, इसकी वजह से नहीं मिलता।
15: तो यहाँ पर हर फ्लोर का हर दूसरा मालिक है।
14: हाँ, ज्यादातर प्रॉपर्टी जैसी कोई मतलब मेरा कहने का मतलब जो आपको कह रहे हैं माफिया तो है जो एक व्यक्ति पर इकोसिस्टम को कंट्रोल कर, माफिया कौन है?
15: लेकिन आप बीच में ब्रोकर के तौर पर हो गए,
14: ब्रोकर ही हो गए ना,
15: कैसे वेंडर है, कैसे फिर आप लोगों तो कुछ बनता होगा ना, कैसे आप लोगों का जीवन चलता होगा?
14: आपको बताया नहीं कि 4,000-4,500 में एवरेज मार्जिन मिलता है।
1: ये ब्रोकर खुलासा करता है कि पीजी में रह रहे छात्रों से सबसे बड़ी कमाई बिजली के कनेक्शन से होती है।
14: इसमें मेजर पैसा गर्मियों में बिजली बिल का भी होता है, महीने का 2-2.5 लाख रुपए बिजली बिल फालतू भरना पड़ता है, तो इन चीजों में होता है। अब वो क्या होता है कि वो पैसा क्या होता है, वो फालतू ही जा रहा है ना, BSS को जा रहा है, उसे हमें क्या मिल रहा है, बच्चों को क्या मिल रही है, कुछ नहीं,
15: थोड़ा बहुत बच जाता है। एवरेज
14: एक वेंडर का मान लीजिए 700-800 से लेकर 1500 के बीच एवरेज मार्जिन होती है, 1500 चला जाता है सर्दियों में, 700-800 हजार तक गर्मियों में रहता है, क्योंकि 500 रुपये जो एक्स्ट्रा जो हम लोग बोले 500 रुपये यूनिट एक्स्ट्रा जो हमें पे करने पड़ते हैं, 17-18 रुपये यूनिट आता है, बच्चों से 10-12 रुपये यूनिट आदमी ले पाता है, वो पैसा हमें ही अपने जेब से भरना होता है अपने मार्जिन से।
15: लेकिन ये कैसे नुकसान में कमर्शियल का 18 रुपये के हिसाब से आ रहा है यहाँ पर?
14: बाहर जो यहाँ पर कोई नहीं रहने आ रहा है हमारे पास, बाहर का जो आता है जो दिल्ली गांव से आ रहा है जो कहीं से आ रहा है उसको चीज़ें नहीं पता है ना यहाँ की, वो तो बहुत लोग ऐसे भेड़े जाते हैं, अरे दिल्ली में तो बिजली फ्री है, ये दिक्कत है।
15: लेकिन यहाँ 200 यूनिट नहीं है दिल्ली है
14: कहीं, ये कमर्शियल ना कहाँ है,
15: यहाँ पर 200 यूनिट फ्री होते ही है,
14: कहीं नहीं कहीं नहीं, ये आपका 1 किलोवाट से 2 किलोवाट से कम कनेक्शन होना चाहिए तो ही जाएगा।
15: और अगर मीटर की बात करें तो 14-18 रुपए तक।
4: दस्तक में एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ट्रंप का खेल, बड़बोले मुनीर फेल। आप देखते रहिए दस्तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
19: देखे जन्म पहला पहला
20: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
21: और वही कहाँ गए थे घूमने?
22: GK Max.
23: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
22: GK Max. Best putty?
23: JK Wall Max.
22: Best paint?
23: JK Max.
22: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints. JK Max, JK Max Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
3: छक्का,
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार,
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: एक तो एक
10: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि यह शहर पहले कैसा रहा होगा।
4: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
3: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल आज तक।
5: मेरी मौजूदगी इस वक्त मुखर्जी नगर में है और मुखर्जी नगर में इसी तरह की गलियां हैं, इसी तरह के तारों के जंजाल हैं और इसी तरह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जिनकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है। कई जो दीवारें हैं उनमें जो प्लास्टर है वो उतर चुका है, लेकिन इन्हीं कंडीशंस में छात्र रहने को मजबूर होते हैं। एक ही गली देखिए कितनी पतली गली है, अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड का पहुंचना, एम्बुलेंस का पहुंचना ना के बराबर हो जाएगा। और देखिए किस तरह से छोटी छोटी गलियां और छोटे छोटे मकान हैं और इन्हीं मकानों के जो है काफ़ी भारी संख्या में रेंट छात्रों को देने पड़ते हैं। हम मौजूद हैं एक ऐसे घर में जहां पर रेंट पर छात्र रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अंदर चलेंगे और उन छात्रों से बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन स्थिति में वो रहने के लिए मजबूर हैं। लगभग 5 से 6 मंजिला इमारतें जो हैं वो मुखर्जी नगर में आपको देखने को मिल जाएंगी। अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर ये किस तरह से छात्र जो हैं रहते हैं। अगर इसी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी 5 माले इसमें हैं और 4 माले तक जो है वो परमिशन दी जाती है MCDA के द्वारा। लेकिन इस डर के माहौल में भी छात्र जो है वो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर छात्र इस छोटे से इलाके में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर वायरिंग है और अगर इसमें आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर यहाँ से जाना काफ़ी मुश्किल यहाँ होगा, यहाँ से बचना काफ़ी मुश्किल रहेगा। हमारे साथ इस वक्त 6 से 7 छात्र हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इस डर के माहौल में वो जीवन जी रहे हैं। ओम भाई, आपने सत्यनिकेतन में जो घटना है उसके बारे में सुना होगा।
6: बिल्कुल सुना है भाई साहब, और मुझे लगता है कि ये सत्यनिकेतन की जो घटना हुई है वो केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनी दीवारों का ढलना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के सपने का टूट जाना है। मुझे लगता है कि ये जो मलबा है वो केवल मलबा नहीं है, ये उस बच्चे के सपने का मलबा है जो क्या कहते हैं कि आज से कई साल पहले अपने घर से निकला था, जिस सपनों को सजो करके, उस चीज का मलबा है।
5: आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी स्थिति ऐसी?
7: हाँ, सेम टू सेम ऐसे ही कंडीशन हो चुके हैं।
5: बिना पिलर के सारे?
7: कहीं नहीं, बिना पिलर तो है ही नहीं कहीं पे, बस ईंट जोड़ा हुआ है बस। केवल
5: ना सिर्फ सत्यनिकेतन बल्कि मुखर्जी नगर में कई इलाके हैं जिसमें पटेल चेस्ट, नेहरू विहार, इंदिरा विहार जैसे इलाके हैं जहां पर काफी कमजोर हालत में बिल्डिंग्स हैं। और जैसा हमने कई छात्रों से बात की, उन्होंने बताया कि डर के साए में वो यहां पर रहकर कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी सालों सालों तक करते हैं। मेरे सहयोगी संजय साहब ने पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद दंसारी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। ट्रंप का खेल, बड़बोले मुनीर फेल, मतलब ट्रंप के सामने खोखलेबाजी करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से टाइटाई फिस्ट से दुहा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पिछले वर्ष बलूचिस्तान की खदानों में होने वाले खनिजों को अमेरिका भेजने का वादा किया था। व्हाइट हाउस में मुनीर ने ट्रंप को खनिजों के सैंपल भी दिखाए थे, लेकिन बलूचिस्तान में मचे गदर के कारण अमेरिकी कंपनी का काम ठप पड़ गया। अब पाकिस्तान के शासकों को डर है कि ट्रंप कहीं सार्वजनिक मंच से उनके क्लास न लगा दें।
9: डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे पाकिस्तान की क्लास। अमेरिका को खनिज भेजने वाले मुनीर का खेल खल्लास। कराची इस्लामाबाद में अमेरिकी कंपनी के ऑफिस बंद। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान, कभी चीन के सामने अपना हाथ फैलाता है, कभी अमेरिका के सामने। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए पिछले साल वॉशिंगटन में उसे अपने देश में मौजूद खनिज भेजने का वादा किया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस में स्टोन शो किया था। मुनीर ने लकड़ी का एक बॉक्स ट्रंप को दिखाया था जिसमें कई खनिज होने का दावा किया था। इन्हें देखकर ट्रंप बेहद खुश हुए थे। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिका को खनिजों की पहली खेप भी भेजी थी जिसमें एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट, डियोडीमियम और प्रेजोडीमियम जैसे खनिज शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान में दुर्लभ खनिज की ज्यादातर खदानें बलूचिस्तान प्रांत में हैं। इन इलाकों में विद्रोही संगठन BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दबदबा है। बलूच हमलों से अमेरिकी कंपनी के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। विद्रोहियों ने चागई जिले में रेको दिख खदान तक जाने वाली सड़कों को जाम कर दिया है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट अटक गया है। बलूचिस्तान में बचे गदर की वजह से पाकिस्तान अमेरिका को दुर्लभ खनिज की अगस्त में प्रस्तावित खेप नहीं भेज पाया है। इसके बाद कराची और इस्लामाबाद में अमेरिकी कंपनी US स्ट्रेटेजिक मेटल्स के दफ्तरों में काम बंद हो गया है।
10: पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है इसका एक और सबूत अमेरिका के सामने आ चुका है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे देखें या न देखें, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुर्लभ खनिजों का जो बक्सा लेकर व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जिसके बाद अमेरिकी कंपनी को बलूचिस्तान में खनन का ठेका दिया गया था, वो परवान नहीं चढ़ पाया है। यानी खुदाई से लेकर निर्यात तक की नौबत ही नहीं आ पाई, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात में पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण नहीं है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की जनता ऐसे किसी भी खनन पट्टे के खिलाफ है। लिहाजा नतीजा ये कि अमेरिकी कंपनी के पास अपने कारोबार का शटर गिराने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है।
9: सिर्फ अमेरिकी ही नहीं, कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड भी पाकिस्तान में काम छोड़ सकती है। रेको दिख में कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड भी खनन का काम कर रही है। दरअसल बलूचिस्तान को पाकिस्तान का खनिज भंडार कहा जाता है। यहाँ के ग्वादर पोर्ट पर चीन का दबदबा है। चीन ने CPEC के तहत ग्वादर और आसपास के इलाकों में करीब 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ग्वादर पोर्ट पर चीनी फिशिंग बोट्स की मौजूदगी भी बढ़ी है। स्थानीय बलूच मछुआरों का आरोप है कि बड़ी और ज्यादा ताकतवर चीनी बोट्स उनकी छोटी नावों को पीछे हटने पर मजबूर करती हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके अलग देश की मांग को लेकर लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बलूच लड़ाकों और विद्रोहियों का सूबे के करीब 70% हिस्से पर कब्जा है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में हथियारबंद लड़ाके बेखौफ होकर क्वेटा, कुछदार और मस्तूम जैसे शहरों में घुसते हैं, पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमले करते हैं। वहीं पहले से महंगाई और तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान के अंदर ही घमासान बचा हुआ है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के पंजाब राज्य की मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। मरियम ने कहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को भारत से नहीं बल्कि अपने ही देश के दूसरे प्रांतों से खतरा है।
11: आप खुद देखें कि ट्राई बॉर्डर एरिया, वहां से हमें अफसोस की बात यह है कि मुझे थ्रेट जो है वो मेरे नेबरिंग कंट्रीज से कम है और मेरे नेबरिंग प्रोविंसेस से ज्यादा है। वहां से जो टेररिज्म है वो पंजाब में आता है। पंजाब के ऊपर सबकी नजर है, पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ प्रोविंस है, लेकिन जिस किस्म का थ्रेट का हमें सामना है तमाम बॉर्डर्स से जो प्रोविंशियल बॉर्डर्स है।
9: मरियम नवाज ने ये बयान लाहौर में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया था।
11: जो टेररिज्म है
12: इससे आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तो रातों की नींद उड़ गई होगी। जिस आतंकवाद को पालने पोसने में पाकिस्तान ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अब वो उसके लिए ही नासूर बन चुका है। मरियम ने यह भी कहा था कि पंजाब अब एक सुरक्षित प्रांत बन रहा है, जहां सरकार ने एआई टेक्नोलॉजी पर काम किया है ताकि हम सभी प्रांतों की सीमाओं से आने वाले खतरों से निपट सकें।
11: इन्हें अगर पैसे अपने जमा करके अपने मोटरबाइक लिए वो चोरी हो जाती है, किसी का जेवर चोरी हो जाता है, किसी के घर में डाका पड़ जाता है, या तो फिर इसका मतलब है कि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सब बेकार है। इसलिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना वो एक बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, मुश्किल फैसले वो फैसला मैंने किया है, अपने आप को रिस्क में डाल के किया है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि पंजाब के लोगों को ये एहसास हो कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में सोते।
12: मरियम के इन बयानों के बाद से पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है।
10: पाकिस्तानी सियासत की ये कड़वी हकीकत है कि अक्सर बाढ़ ही खेत खा जाती है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, जिनके पिता नवाज शरीफ देश के कई बार प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनके चाचा शहबाज शरीफ इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और खासतौर पर पंजाब को भारत से उतना खतरा नहीं है जितना अपने लोगों से है। क्योंकि ये सवाल पाकिस्तान की अंदरूनी उथल पुथल को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, जहां फौज की भी नाकामी कई मोर्चों पर सामने आ रही है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान और सिंध से लेकर पंजाब तक उबल रही लोगों की नाराजगी यही बताती है कि पाकिस्तान के सामने वजूद का सबसे बड़ा खतरा अपने भीतर के घात से है।
12: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने मरियम नवाज के इस बयान का समर्थन किया है।
13: लेके नहीं सुन लेना, 9 से लेके 11 तक बल्कि 12 तक जो दहशतगर्दी पंजाब में हुई है, एक एक दिन में जो है वो तीन तीन बड़े शहरों में धमाके होते रहे हैं। लाहौर में एक दिन में 3 खुदकुश हमले हुए, 2 इमाम बारगाहों में, एक मस्जिद में, और तकरीबन कोई 200 के करीब डेड बॉडी हमने उठाई। वो दहशतगर्द कहाँ से आए थे? केपीके से आए थे। ये जितने भी दहशतगर्द हैं ये खुद कुछ बम्बार सारे, यानी वहाँ अफगानिस्तान में ये जो टीटीपी के लोग बैठे हैं जिसमें अफगान बशिंदे भी हैं, और यहाँ से जो केपीके से लोग वहाँ पे गए हुए हैं या यहाँ से भागे हुए हैं वो लोग भी हैं, वो वहाँ पे बैठ के सारी दहशतगर्दी केपीके में कर रहे हैं। वही लोग जो हैं वो पहले पंजाब को भी निशाना बनाते रहे, अब भी उनकी पूरी कोशिश है। इस वक्त पंजाब को सबसे बड़ा जो है वो खतरा इस तरफ से है।
14: और अब खबर रूस और यूक्रेन की, जहां दोनों देशों के बीच युद्ध रुका हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मंगलवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने भयंकर हमला किया, जहां कीव पर रूस की एयर स्ट्राइक में 2 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हो गए। बड़ी बात यह है कि कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला उस समय हुआ जब ट्रंप के 2 शांति दूत मॉस्को के बाद कीव यात्रा खत्म करके लौटे ही थे। तो आइए आपको दिखाएं कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है।

0: मॉस्को के बाद कीव में चला पीस अभियान। बातों मुलाकातों से कैसे खत्म होगा घमासान? शांति दूतों के जाते ही शुरू हुई बमबारी, मचा कोहराम। कीव पर मिसाइल अटैक में दो की गई जान। बस कुछ ही घंटों के लिए मिसाइलों का शोर थमा था। न ड्रोन से बमबारी हुई, न शहर शहर तबाही हुई, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के दो दूत पीस प्लान को अंजाम देने के अभियान पर निकले हुए थे। फिर उनके जाते ही तबाही की ये तस्वीरें सामने आने लगी। कीव पर एक बार फिर रूस ने बम बरसाए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए इस हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की है और रूस पर बेकसूरों की जान लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन हमलों में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए हैं। जवाब देने में यूक्रेन भी पीछे नहीं रहा। उसका ड्रोन रूस के पर्म रीजन की एक रिहायशी इमारत से सीधा जा टकराया। हमले के फौरन बाद कई फ्लोर आग की चपेट में आ गए जिससे एक शख्स की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए। यूक्रेन की ओर से रियाजन में एक तेल रिफाइनरी पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग इन दिनों और भीषण हो गई है। पिछले एक महीने में दोनों देशों ने एक दूसरे पर इतने बम बरसाए हैं कि अभी तक नुकसान का जायजा तक नहीं लिया जा सका है। रूस हर दूसरे दिन कीव और आसपास के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है जिससे यूक्रेन का जान माल का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रूस की ई कॉमर्स और ऑयल रिफाइनरी लगातार निशाने पर है। इससे पहले ट्रंप के दूतों ने रूस और कीव का दौरा किया था। पहले उनका पड़ाव था मॉस्को, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की। पुतिन, कुश्नर और विटकॉफ के बीच 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बातचीत चली। मुलाकात हुई, ढेरों बातें हुई और फिर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने वाले बयान भी जारी किए गए। दोनों देशों के बीच हालात सुधारने के लिए मॉस्को और कीव के दौरों पर निकले अमेरिका के दूतों की कोशिशों का समर्थन करते हुए और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर 3 दिन के लिए हमलों को रोक दिया गया था।
1: और अब खबर भारत में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन की, जहां नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जाना है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी बात यह है और खबर यह है कि हमारी संवाददाता अंजना के सवाल के जवाब में पेस्कोव ने कहा कि ब्रिक्स का उद्देश्य डॉलर को खत्म करना नहीं है, लेकिन अमेरिका खुद डॉलर को बर्बाद कर रहा है। पेस्कोव ने कहा कि जब हम पर डॉलर बैन हुआ तो हमने अपनी करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, मतलब अमेरिका खुद अपने डॉलर की साख गिरा रहा है। पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका ने रूस से डॉलर और यूरो के इस्तेमाल का अधिकार छीना है।
2: डोनाल्ड ट्रंप, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, सेज ब्रिक्स इज अ फोरम अगेंस्ट द डॉलर। यू योरसेल्फ मेंशनड हाउ 90% ऑफ द पेमेंट्स दैट रशिया इज डूइंग विद अदर ब्रिक्स कंट्रीज हैज नाउ मूव्ड ऑन टू नेशनल करेंसी। There are other countries also within BRICS without sanctions who have opted for cross-border national currency payment systems. Why does Russia or BRICS shy away from openly claiming de-dollarization? And how would you respond to the allegation that BRICS is a forum against the dollar that Donald Trump often talks about?
3: धन्यवाद। यह बहुत दिलचस्प सवाल है। खैर, मैं फिर से दोहराऊंगा, ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। ब्रिक्स तो अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए है और रूस भी ब्रिक्स देशों में से एक है। रूस से अमेरिकी डॉलर और यूरो इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी है और अमेरिका ने हमें इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद की करेंसी क्यों ना इस्तेमाल करें। क्या इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है? नहीं, कुछ हद तक तो यह उससे भी बेहतर है। और हमने अलग अलग देशों को नेशनल करेंसी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देना शुरू किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ हैं, और हम किसी डी डॉलराइजेशन पॉलिसी का दावा भी नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है।
4: Better corresponds with our national interests. So, and I would say that.
3: तो मैं ये कहूँगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे, तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है, और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है, उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है, और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है। और जाहिर है, सभी देश वही कर रहे हैं जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और अगर नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट नेशनल करेंसी में ही करेंगे, और यह किसी देश के खिलाफ की गई प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए अमेरिकी डॉलर को सबके लिए फायदेमंद बनाइए, और हर कोई अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी प्रक्रिया इसके उलट है, और ऐसा हमारी वजह से नहीं हो रहा है।
1: हमारी संवाददाता गीता मोहन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही थी। गीता ने भी पेस्कोव से सवाल किया। पेस्कोव ने जवाब देते हुए कहा कि रूस भारत पर तेल खरीदने के लिए लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध के खिलाफ है। रूस इसे अवैध और अस्वीकार्य मानता है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि ईरान और यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए व्यापार पर प्रतिबंध को बिल्कुल भी पसंद या स्वीकार नहीं करते।
5: Mr. Peskov, Geeta Mohan from India today.
4: I'm glad to see you.
5: Glad to see you too.
6: मैं इंडिया टुडे से गीता मोहन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर पेस्कोव, मैं आपसे उस बातचीत के बारे में पूछना चाहती हूँ जिसका आपने अभी जिक्र किया। आपने कहा कि एक यूनिपोलर दुनिया सबसे कठोर तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। मेरा मानना है कि आप यहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने अभी सीनेट में एक बिल पास किया है जो रूस ईरान प्रतिबंध बिल है। एक तरफ अमेरिका रूस के साथ बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह उन देशों पर भी प्रतिबंध लगा रहा है जो रूस के साथ व्यापार करते हैं, विटकॉफ, कुशनर। और वॉशिंगटन के साथ बातचीत में भारत को भी इसका सामना करना पड़ा है। क्या प्रतिबंधों और रूस के साथ व्यापार करने पर सजा पाने वाले देशों के बारे में भी बातचीत हो रही है?
3: सबसे पहले तो हम इसे स्वीकार नहीं करते, और इसे गैर कानूनी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से यह निश्चित रूप से गैर कानूनी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करना और दूसरे देशों या तीसरे पक्षों को दूसरों के साथ व्यापार करने पर धमकाना, हम इसे गैर कानूनी, अनुचित और अस्वीकार्य मानते हैं। तो प्रतिबंधों का मुद्दा भी एजेंडे में है। यह सबसे आगे नहीं है, क्योंकि समझौता ही सबसे मुख्य मुद्दा है। लेकिन जाहिर है कि यह यूक्रेन के शांतिपूर्ण समाधान के पूरे एजेंडे का एक अहम हिस्सा है।
4: ऑफ पीसफुल सेटलमेंट अराउंड यूक्रेन ऑफ कोर्स।
1: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स पर। यह बड़ी खबर है, अब सरकारी डॉक्टर उत्तर प्रदेश में 70 साल तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे। ये बड़ा निर्णय हुआ है। पहले 65 साल तक रिटायरमेंट की सीमा थी, अब 70 साल उम्र कर दी गई है। और उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने ये बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बड़ा ऐलान किया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अब 70 साल तक सरकारी डॉक्टर्स उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे पाएंगे, और उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स का रिटायरमेंट होगा अब 70 साल। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: state of mind with a Cola Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Cola Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया
2: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल की अपनी बिसात, अपने मोहरे, अपनी चाल है। कहीं वर्दी के रंग बदल रहे हैं, कहीं नेता, कहीं प्रभारी बदल रहे हैं, कहीं भतीजे। और इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने क्रांतिकारी तब्दीली कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जेंजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
1: जब हम यूनिफॉर्म में आ जाते हैं तो सब गैर बराबरी खत्म हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी लाती है। इसीलिए आज छात्र सभा के नौजवान नई सोच, नई विचारधारा के साथ नई यूनिफॉर्म में जाकर के छात्र नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका रहा है, जो हमारी एफर्मेशन है, एफर्मेटिव एक्शन है, हमारे जो डेमोक्रेटिक एक्शंस हैं, उनको छात्र नौजवानों तक कैसे पहुंचाएं, और जो लगातार पीडीए मूवमेंट चल रहा है, उस पीडीए मूवमेंट से कैसे छात्र नौजवानों को जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ें।
0: 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी संक्रांति काल से गुजर रही है। इसके संकेत 31 अगस्त को तो मिल ही गए थे, जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंगवस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था। लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है, जिसके जरिए अखिलेश यादव यूपी के जेंजी दलित वोटर तक अपनी पहुँच की रणनीति तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश है। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए। दलित वोटों तक पहुंच की समाजवादी कोशिश की वानगी कुछ ऐसी है कि अखिलेश किसी भी चुनावी मुद्दे का जिक्र करते हुए बाबा साहब को याद करना नहीं भूल रहे। पिछले दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बयान देते हुए भी बाबा साहब को याद कर लिया।
2: प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चोरी हुई तो सोचो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान और कानून उसी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि चोर पकड़े गए ना, तो चोरों के कार्रवाई कैसे हो रही है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, जो कानून है उसी के तहत तो पकड़े जा रहे हैं।
0: अखिलेश के अंबेडकर मंत्र के पीछे दरअसल चुनावी आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि 2022 में जहां समाजवादी पार्टी को बमुश्किल 10 से 12 फीसदी दलित वोट मिले थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर लगभग 35 से 40 फीसदी तक पहुंच गए थे। इंडिया गठबंधन की ओर दलितों के बढ़ते इस रुझान ने अखिलेश को उम्मीदों से भर दिया है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी छात्र सभा की ड्रेस से ही सही अपना लाल रंग छोड़ नीला होने को तैयार हो रही है। और नीले रंग की मुहिम कुछ ऐसी है कि 1942 में अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, तब उन्होंने इसके लिए गहरे नीले रंग का झंडा चुना। उस झंडे के केंद्र में अशोक चक्र स्थापित था। अम्बेडकर खुद भी अक्सर नीले रंग के कपड़े पहनते थे, बाद में दलित सियासत करने वालों ने भी इसी नीले रंग को अपनाए रखा। और अब लोहिया के जमाने से लाल रंग के साथ सियासत करती आ रही समाजवादी पार्टी धीरे धीरे नीले रंग को अख्तियार करती दिख रही है। उधर यूपी में दलित वोट की सियासत के दो दावेदार और हैं, जिसमें कांग्रेस और बीएसपी की भी अपनी रणनीतियां हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली में दलित आदिवासी 32 सांसदों की विशेष बैठक करके रणनीति बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस के SC/ST मोर्चा अध्यक्ष और खुद यूपी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने रणनीति तैयार की है। दलित वोटों की सियासत करने वाली बाकी बची बीएसपी, जिसने जेंजी वोटों के लिए अपनी रणनीति में नया प्रयोग मायावती के छोटे भतीजे ईशान आनंद के तौर पर किया है। ईशान को 15 राज्यों की समीक्षा की जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ, मुंबई में बोले विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनबाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, अब 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डिप्टी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया गया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। दिल्ली में पूर्व मुख्य सचिव ने की खुदकुशी, नोएडा के फ्लैट में फंदे से लटका हुआ मिला शव, सुसाइड नोट में मानसिक तनाव और बीमारी का जिक्र।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर में एक दवा कारोबारी का उन्हीं के घर में कत्ल हो जाता है। इस हादसे से पूरा परिवार सन्न और सदमे में था। घर की इकलौती बहू का तो रो रो कर बुरा हाल था। रिश्तेदार किसी तरह उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे और उधर पुलिस अपनी कोशिश। 24 घंटे बीत जाते हैं, इसके बाद अचानक पूरी कहानी बदल जाती है। सास बहू की सीरियल में भी ऐसा क्या होता होगा जो असल जिंदगी की सीरियल में टिक गया। हम सब खामखा कई बार पुलिस वालों को कोसते रहते हैं कि कैसी पुलिस है ये जो एक केस नहीं सुलझा पाती। पर आज आपको कुछ ऐसे सीन दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद सिर्फ पुलिस ही क्यों, शायद हम में से हर कोई धोखा खा जाए। शायद क्यों, यकीनन धोखा खा जाए। अब आप ही बताइए, एक सीन, दो सीन, तीन सीन, जितने भी सीन में ये किरदार दिखाई दे रहा है, रत्ती भर भी कहीं से इसकी अदाकारी में जरा सी भी खोट नजर आ रही है। रोते हुए, निढाल, बदहवास, गहरे सदमे में, ऐसी तकती निगाहें के बीच हैरान परेशान वाली मुद्राएं, परफेक्ट अदाकारा, परफेक्ट एक्टिंग और सिचुएशन के हिसाब से। बस फर्क इतना है कि ये किसी मुंबईया सीरियल के सीन नहीं है बल्कि असल जिंदगी के असली सीन है। सिचुएशन यह है कि इस घर में 63 साल के करोड़पति कारोबारी और इस अदाकारा के ससुर का कत्ल हो गया है। कत्ल की खबर जैसे ही घर वालों को मिली, घर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। हर कोई सन्न और सदमे में। थोड़ी देर में घर के अंदर रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। हर एक के चेहरे के भाव उनका दर्द बयान कर रहे थे। लेकिन इस कमरे में अगर सबसे ज्यादा दर्दीला चेहरा किसी का नजर आ रहा था तो वो ये थे, इस घर की बहू। अब ससुर का कत्ल, वो भी घर के अंदर, दर्द का छलकना बनता भी था। पर ये क्या, सिर्फ 24 घंटे बाद ही न सिर्फ पूरा सीन बल्कि पूरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और तो और साथ में बहू भी बदल गई। सिर्फ 24 घंटे पहले तक जिस बहू के रोते हुए, उदास, निढाल, बदहवास, बेसुध, गहरे सदमे में शून्य जैसी तकती निगाहें, पुलिस वालों के बीच हैरान परेशान वाली मुद्राएं आप देख रहे थे, अब उसकी कोई भी अदाकारी आप देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस चेहरे से वो एक्टिंग कर रही थी, उस चेहरे को कानून ने उसी के दुपट्टे से अब ढक दिया है। दरअसल पुलिस वालों की हिरासत में दुपट्टे से चेहरा ढके ये वही बहू, वो बहू जो 24 घंटे पहले तक अपने ससुर के कत्ल पर आंसू बहा रही थी। दरअसल उस ससुर की सुपारी इसने खुद अपने हाथों से ली थी। अब चलिए, कानपुर से आई इस दहला देने वाली कहानी की शुरुआत यूपी पुलिस के सबसे पसंदीदा ऑपरेशन लंगड़ा से करते हैं। लंगड़ाते हुए ये दो लड़के पुलिस की हिरासत में, रात के अंधेरे में जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें अभी अभी हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असल में ये दोनों किराए के वही कातिल हैं जिन्हें इस बहू ने अपने ससुर के कत्ल की सुपारी दी थी। सुनिए दोनों मैडम बहू के बारे में क्या कह रहे हैं।
1: भाई, क्यों भाई, किस लिए हत्या की थी? किस लिए हत्या की थी?
2: नाम मेरा विशाल गौतम है।
1: तुम्हारा क्या नाम भैया? किस लिए किया हत्या बुजुर्ग की?
2: वो हमने उनकी बहू ने कहा था, इसलिए हमने कहा था, वो पैसे देने के लिए कहीं था।
1: अच्छा।
0: ये कानपुर शहर है, इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं।

0: मृतक की बहू द्वारा ही बताया जाता है कि गार्ड को कि इनका रजिस्टर में कहीं इंद्राज ना हो और किसी और नाम से इनकी एंट्री कराई जाए, तो ये कहीं ना कहीं शक की सुई बहू के ऊपर लाता है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूं दवा कारोबारी विनीत मिनोचा के घर के बाहर, जहां पर दो आरोपियों ने उनकी चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे मामले की साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड उनकी बहू शालू थी, जिसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उन्हीं के घर के बाहर, आप देखेंगे C104 ये घर है, एक पॉश एरिया में, पॉश सोसाइटी में, जहां पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से दुरुस्त होती है, उसके अंदर ये फ्लैट है। किस तरीके से जो दो आरोपी हैं वो यहां पर एंटर होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये जो गेट है जिसको खोलेंगे आप, तो उसके अंदर जो गेट आता है इसकी चाबी आरोपी शालू ने पहले से ही उन दोनों व्यक्तियों को बनवा के दी थी और ये कहा था कि जब वह और उनके पति पार्टी करने बाहर जाएंगे तो पीछे से वो उसी चाबी का इस्तेमाल करके घर के अंदर चले जाएं और इस पूरी घटना को अंजाम दें। आपको दिखाऊंगा पीछे ये CCTV जो है कैमरा है वो लगा हुआ है, जहां पर कोशिश करेंगे कोई लोग आए भी हैं बात करने की, आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे?
2: अभी कोई अभी इस स्थिति में नहीं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं।
1: पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है आपकी जो यहाँ पे शालू जान को, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
2: नहीं अभी हम कुछ,
1: आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया या वो कैसे कर सकती है ऐसी चीज?
2: पिताजी के दुख से ही नहीं उभर पा रहे हैं,
1: हम डबल शॉक है कहीं ना कहीं,
2: अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है कुछ कि क्या हो रहा है। अभी हमें ऐसा कोई न्यूज नहीं पता चली है।
1: आप लोगों को लेकिन पता लगा है कि इनको जेल भेज दिया गया है?
2: हमें नहीं पता।
1: क्या हमको पता? तो ये घर वाले थे जो आए, जिनका कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि जेल में भेज दिया गया है और वो बात नहीं करना चाह रहे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यही वो CCTV कैमरा है जिसमें आरोपी आते और जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को तब शक हुआ जब इस CCTV का जो एक्सेस है वो आरोपी शालू ने देने से मना कर दिया और ये बहाने बनाने लगे कि उसका एक्सेस उनके पास नहीं है, तब पुलिस को शक हुआ। लेकिन जब असली में पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच करी तो देखा कि जो दोनों आरोपी हैं, जिसे शुभम बताया गया लेकिन असली में उसका नाम कुछ और था, उसको ये पूरा परिवार पहले से जानता था, जिसके बाद ये पूरी हत्या का खुलासा हुआ।
3: CCTV कैमरे और सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज से ये पता चला कि शनिवार की रात जब दोनों आरोपी सोसाइटी के गेट पर पहुंचे तब उन्होंने गार्ड को यही बताया कि शालू मैडम ने बुलाया है। हालांकि तब विशाल ने अपना असली नाम बताने की बजाय शुभम बताया था। गार्ड ने बाकायदा शालू से फोन पर बात भी की और फिर विशाल को उसके साथी के साथ अंदर भेज दिया।
1: बताइए उस दिन जो यहाँ पे हत्याकांड हुआ है, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है, जो हत्या आरोपी आए थे, जिसको शुभम बोल के बोला गया था कि उसकी एंट्री कराई जाए, वो किसने एंट्री करने के लिए?
4: मैडम ने मतलब आदेश दिया था कि मतलब उनको आने दीजिए। उस समय 2 मिनट पहले मतलब फोन आया था, इसमें फोन रखते हुए मतलब वो आए थे लड़के, उनसे पूछ करके, उनके नाम पूछ करके उनके भाईजत भेजा गया यहाँ से।
1: बकायदा उनको नाम बताया गया कि इनको एंट्री दे दी जाए,
4: पूछा गया उनसे, रोका गया यहाँ पे, रोकर यहाँ पर उनसे नाम पूछा गया, पूछने के बाद में उनके पद आदेश अनुसार भेजा गया वहाँ।
1: ये भी बताया गया कि आप इसको एंट्री में नोट मत करिएगा, फोन पे ही एंट्री दे दी।
4: अब बात मतलब डिटेल आप मोबाइल में निकाल सकते हो, उसमें सब कुछ बातें उनकी,
1: मतलब आप लोगों ने फोन पे बात करी, उन्होंने एंट्री करने से मना किया,
4: उनका आदेश हुआ, मतलब आदेशों में उनकी जाने दी।
1: हत्या करने आए आरोपियों की इस सोसाइटी में एंट्री और किसी ने नहीं बल्कि उनकी बहू शालू द्वारा दी गई थी। पीछे विजुअल्स में आप देखेंगे तो एक पॉश सोसाइटी है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है और जाता है तो सबसे पहले उसकी यहाँ पर इस तरीके से एंट्री होती है। यहाँ जो गेट है यहाँ पर लगातार गार्ड्स बैठे रहते हैं और आने और जाने वाले हर व्यक्ति की बाकायदा एंट्री करते हैं, जिसके बाद ही उसे अंदर जाने दिया जाता है।
3: पुलिस के मुताबिक शालू विशाल के साथ मिलकर पिछले 20-25 दिनों से अपने ससुर के कत्ल की प्लानिंग कर रही थी। उसने विशाल को 2 किश्तों में कुल 6 लाख रुपए देने का वादा किया था। विशाल सामान देने के बहाने जन्माष्टमी के दिन भी शालू से मिलने उसके घर आया था।
0: पूरी घटनाक्रम से पहले भी कई बार इनका मिलना हुआ है इससे, विशाल गौतम से, अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पर, और उनके द्वारा ये प्लानिंग लगभग 20 से 25 दिन पहले ये पूरी प्लानिंग रची गई। ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में हुआ है। अभी रक्षाबंधन जन्माष्टमी के अवसर पर भी ये व्यक्ति आता है, ये फ्लैट में आता है और कुछ समय बाद ये वहाँ से जाता है, तो ये लगातार मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो लगातार ये चलता रहा है और इस दौरान ये प्लानिंग भी हुई है।
3: दरअसल साजिश ये थी कि शनिवार की रात शालू अपने पति के साथ पार्टी में घर से बाहर जाएगी, पीछे से दोनों कातिल आएंगे और सोते हुए विनीत मिनोचा का मुंह तकिया से दबा देंगे ताकि सबको ऐसा लगे कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। पर गड़बड़ ये हो गई कि तब मिनोचा जाग रहे थे और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी, जिससे दोनों कातिल घबरा गए और अपने साथ लाए चाकू से उन पर अचानक हमला कर दिया।
0: इनिशियल जो प्लान था वो ये नहीं था, इनिशियल प्लानिंग इनकी ये थी कि ये दो अभियुक्त आए, ये दो लड़के आएंगे, घर के अंदर एंट्री करेंगे, वेट करेंगे और जब ये मृतक सो जाएंगे तब फिर तकिए से इनका मुंह दबा करके इनकी हत्या कारित कर देंगे, स्मॉदरिंग। लेकिन प्लानिंग का एग्जीक्यूशन जो है वो अलग तरीके से होता है और जब ये इंटर करते हैं तो एंट्री के बाद जब ये थोड़ी देर के बाद जब ये उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में लड़के रहते हैं उस कमरे की लाइट जला देते हैं ये और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे इनके पास जो चाकू रहता है उस चाकू से ये वार करना शुरू कर देते हैं और उस पूरे घटनाक्रम में कई बार चाकू से वार करते हैं और वहीं पर मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है। अगर ये प्लानिंग ये थी कि अगर ये स्मॉदर करते हैं और फिर जब ये लोग किटी पार्टी से वापस आएंगे तो इसको एक हार्ट अटैक का रूप दे करके इसको मामले को रफा दफा हो जाएगा और फिर ये चीज़ें बाहर पब्लिक में नहीं आएंगी।
3: ऐन वक्त पर चाकू से विनीत मिनोचा की हत्या किए जाने की वजह से शालू का पहला प्लान फेल हो गया। प्लान ये कि विनीत मिनोचा की मौत दिल का दौरा लगना चाहिए और यहीं से खेल बिगड़ गया। अब चूंकि मामला सीधे सीधे कत्ल का था तो सीन में पुलिस की एंट्री लाजमी थी, लेकिन शालू तब भी घबराई नहीं, एक उदास बहू की एक्टिंग लगातार करती रही। अब सवाल ये था कि जब घर में सब कुछ मौजूद था, ससुर का करोड़ों का कारोबार था, शालू का पति घर का इकलौता वारिस क्योंकि वो इकलौता बेटा था, तो फिर शालू ने अपने ससुर की हत्या क्यों करवाई? तो बकौल पुलिस शालू अक्सर पार्टियों में जाया करती थी, इसे लेकर उसके ससुर कई बार टोक चुके थे। घर के अंदर भी उसके ससुर ने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। इसके अलावा मिनोचा अपने बेटे और बहू को महीने के खर्च के लिए एक तय रकम दिया करते थे। बिजनेस के साथ साथ पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल मिनोचा के पास था। इसी बात से शालू नाखुश थी, वो सारा कंट्रोल और पैसा अपने पास रखना चाहती थी।
0: जब से ये कैमरा लगा था इनके घर में तब से ये फ्रीडम कर्टल हो रही थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी थी। प्लस इनके जो फादर इन लॉ थे वो फाइनेंशियल होल्ड पूरा उनका रहता था, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जब डिटेल में और आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें और निकल गया।
1: विनीत मिनोचा हत्याकांड की जांच में आरोपी शालू और उसके ससुर के बीच रिश्ते और तनाव को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक समाज और परिवार के सामने तो दोनों के रिश्ते एकदम ठीक और सामान्य थे, लेकिन अंदर ही अंदर शालू को अपने ससुर से कई शिकायतें थी जिसे वे सीधे तौर पर उनसे कह नहीं सकती थी। पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट में शालू ने बताया कि कैसे करोड़ों रुपए होने के बावजूद उसके ससुर, उसके पति और उन्हें सिर्फ एक सीमित पॉकेट मनी दिया करते थे और साथ ही साथ कपल पार्टीज में जाने के लिए रोक टोक भी किया करते थे। पुलिस के मुताबिक ये तनाव तब बढ़ गया जब बीते समय विनीत मिनोचा ने सिक्योरिटी का हवाला देकर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए, जिसका एक्सेस भी उनके पास अपने फोन पर था। जानकारी के मुताबिक यह बात शालू को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उसने अपने ससुर को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और यह हत्या की साजिश रच डाली।
3: पर अफसोस, लालच ने अब सब कुछ खत्म कर दिया। ससुर के खात्मे के साथ साथ अब शालू के ससुर की दौलत हत्याने का ख्वाब भी खत्म हो गया। पर क्या इस साजिश में अकेले शालू शामिल थे? क्या शालू के पति को इस साजिश की कोई भनक नहीं थी? फिलहाल की जांच में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, पर पुलिस का कहना है कि उसकी तफ्तीश अभी जारी है।
0: देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अभी जस्ट शुरू हुई है, पूछताछ भी अभी चली रही है और पति से भी पूछताछ की गई, घर वालों से भी पूछताछ की गई, पति के साथ भी जो एविडेंसेस थे वो साझा किए गए और अभी मैं जैसे मैंने कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन और जो भी एविडेंसेस हमें मिलेंगे उसके आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी तीन एक्यूज्ड हो गए, जो दो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और जो महिला हैं जिन्होंने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया है, इनको आज गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
3: अब आप ही बताइए, कई बार पुलिस वाले जब किसी पर शक करते हैं तो हमें और आपको इस बात पर गुस्सा आता है कि जब कुछ नहीं मिला तो खामखा किसी को भी पुलिस परेशान कर रही है। अब अगर घर के अंदर किसी मर्डर केस के बाद खुद कातिल ऐसी अदाकारी करेगी तो भला कैसे कोई उस पर शक करेगा। इसीलिए कहता हूँ, कभी चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि हर आदमी में होते ही 10-20 आदमी। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। गुवाहाटी में एक घर से बदबू आ रही थी। पड़ोसी पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस घर पर पहुंचती है लेकिन दरवाजा बंद था। किसी तरह पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर कमरे में आधी अधूरी लाश पड़ी थी, क्योंकि लाश का सिर गायब था। अब पुलिस घर के अंदर रखे फ्रिज का दरवाजा खोलती है, लाश पूरी हो जाती है।
5: ये घर के अंदर रखा एक फ्रिज है। आसपास हाथों में दस्ताने पहने पुलिस वाले और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स खड़े हैं। पुलिस की मौजूदगी में फ्रिज के अंदर से एक शख्स बहुत सावधानी से एक पॉलिथीन का पैकेट बाहर निकालता है और फिर कुछ ही देर बाद उस पैकेट के साथ पुलिस वाले तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पैकेट में क्या है? शायद नहीं, क्योंकि इस पैकेट में कोई आम घरेलू इस्तेमाल की चीज नहीं है, बल्कि एक महिला का कटा हुआ सिर है। जी हाँ, कटा हुआ सिर, वो भी उस महिला का जो बमुश्किल 2 दिन पहले तक इसी मकान में रहती थी। मामला असम की राजधानी गुवाहाटी के नूनमाटी इलाके का है, जहां 25 साल की रिया तालुकदार की लाश उसी के घर में मिली। रिया का सिर फ्रिज में रखा था, जबकि जिस्म फर्श पर पड़ा था। उसके हाथों की उंगलियां भी कटी हुई थी। असल में रविवार 6 अगस्त की रात करीब 10:15 बजे नूनमाटी इलाके की पुलिस को वशिष्ठपुर बाईलेन के एक मकान से तेज बदबू की शिकायत मिली। घर में कोई नहीं था। यहाँ रहने वाले पति पत्नी दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। ऐसे में पुलिस की टीम दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई।
6: Yesterday at around 9:45 p.m. we received an information that a couple, a married couple, residing at Vakhistapur, Bailen number 4, house number 14, had not been responding calls from their families. Immediately a team from Hatigaon police station was dispatched to the house. On reaching there, they found the wife, Riya Talukdar Goswami, dead, her head severed from the body. Immediately experts from the CID, FSL were called to the spot. They examined the scene of crime and exhibits, various exhibits have been seized.
5: उसका पति रामानुजम गोस्वामी कैब ड्राइवर है। दोनों की शादी करीब 8 महीने पहले हुई थी। दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयां भी होती थी, लेकिन एक दिन रिया की लाश इस हालत में उसके अपने ही घर से मिलेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। वारदात के बाद से रामानुजम फरार था, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसका कहना था कि उसकी पत्नी का किसी और शख्स से अफेयर है, जिसे लेकर उनकी आपस में लड़ाई होती थी। फिलहाल पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है, लेकिन जिस बर्बरता से एक पति ने अपने पत्नी की जान ली और शव के टुकड़े कर सिर को फ्रिज में छुपा दिया, वो लोगों को हैरान कर रहा है।
7: सुगा डेडी कौन है बोले बोला?
5: पूर्ण विकास बोहरा, गुवाहाटी आज तक।
3: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
9: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपंदेही जिले के भुटवल इलाके में।
10: अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2,500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
1: अरे मौत मौत को हाँ। पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
3: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है। आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
4: अब्बा साईं।

वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का जेंजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत।

0: के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, अब 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डिप्टी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया गया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें दहाई गई। दिल्ली में पूर्व मुख्य सचिव ने की खुदकुशी, नोएडा के फ्लैट में फंदे से लटका हुआ मिला शव, सुसाइड नोट में मानसिक तनाव और बीमारी का जिक्र।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का उद्घाटन किया, डिजिटल फाइनेंस पर दिया गया जोर। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी बोले, विकसित भारत के लिए भरोसा और मजबूत हुआ है। जेनजी से भरे वडोदरा में प्रधानमंत्री ने 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार के साथ। वडोदरा के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, लोकार्पण और 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। जालना में धुले सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मराठा आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से रास्ता रोको आंदोलन किया। जालना में शिवसेना शिंदे गुट के हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने मनोज रांगे पाटिल से मुलाकात की, सेहत का ध्यान रखने की भी अपील की गई। पालगढ़ में रिलीफ हॉस्पिटल मारपीट मामले में शिवसेना की बड़ी कार्रवाई, 7 पदाधिकारी निलंबित किए गए। बंगाल में डीजे बैन पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला, बोले ममता बनर्जी करती तो हिंदू विरोधी कहलाती। संजय राउत की एकनाथ शिंदे को सलाह, बीजेपी में कर लें अपनी पार्टी का विलय। पुणे में पिता की मौत से पहले तेज डीजे का शोर बना मुसीबत, महिला ने सुनाई दर्दनाक आपबीती। मुंबई बीएमसी के 89 नगर सेवकों के चुनाव पर कानूनी संकट है, जाति प्रमाण पत्र से संपत्ति की घोषणा तक उठे हैं सवाल। बीएमसी के 5 नगर सेवकों का निर्वाचन रद्द हुआ, यूबीडी के 24 समेत सभी प्रमुख दलों के पार्षदों पर चुनावी याचिकाएं। पालघर में आशा सेविकाओं ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन, सरकारी दर्जा लंबित, कोविड भत्ते समेत कई मांगों को लेकर दिया गया धरना। कोल्हापुर में एमआईडीसी के विरोध में बवाल, आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का गेट तोड़ा, कांच भी फोड़ा। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइफ का गाना रिलीज हुआ, फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी नजर आएंगी। फिल्म प्रेम कीटाणु का रोमांटिक ट्रैक का तीसरा गाना सामने आया है, इस फिल्म में एक्टर वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना और आफिया सैयद नजर आएंगे। फिल्म 13 साई की रिलीज डेट सामने आ गई है, अगले साल 5 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। भक्ति भाव से भरपूर फिल्म हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा नाम की फिल्म का ऐलान किया गया, अगले साल रिलीज की जाएगी खाटू श्याम जी पर आधारित ये फिल्म। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा, 32 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 155 करोड़ के पार। एक साल में मेमोरी चिप में 400% महंगा होने से स्टैंडर्ड आईफोन 18 के लॉन्च पर सस्पेंस। मैनपावर ग्रुप के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर में भारत का हायरिंग आउटलुक दुनिया का सबसे मजबूत आउटलुक। भारत ने अगस्त में पिछले साल के मुकाबले 30% कम सोना इंपोर्ट किया है, कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी और पीएम की गैर जरूरी गोल्ड न खरीदने की अपील का असर। देश के 6 बड़े महानगरों में किराएदारों के करीब 1.5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर फंस गए हैं, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा रकम फंसी। डिजिटल पेमेंट्स के दौर में यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल से एटीएम के कैश निकालना करीब 20% घट गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। आज वडोदरा से मुंबई तक प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो दिखा। वडोदरा से मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई भारत के विकास की कहानी है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले बैंक अकाउंट फिंगर टिप पर लाने पर किसी को यकीन ही नहीं था, लेकिन आज ये हकीकत बन चुका है।
2: गुजरात दौरे से पीएम मोदी सीधे मुंबई पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में एग्जीबिटर से बातचीत की और कहा कि फिनटेक की इस ऊर्जा के बीच इन दिनों मुंबई की सांस्कृतिक ऊर्जा भी अपने चरम पर है, क्योंकि कुछ दिनों में गणेशोत्सव शुरू होने वाला है।
3: स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है। इसलिए सरकार ने स्कीम को 2030 तक बढ़ाने का फैसला भी लिया है। साथियों, पीएम स्वनिधि को यह सफलता हासिल ही नहीं होती अगर यूपीआई ही न होता। इस स्कीम की सफलता में यूपीआई की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है।
2: पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई भारत के विकास की कहानी है। 10 साल पहले बैंक अकाउंट फिंगरप्रिंट पर लाने पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन आज यह हकीकत बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत का यूपीआई 11 देशों में उपलब्ध है। पीएम ने यूपीआई की विकास यात्रा को लेकर एक महिला कारोबारी की कहानी भी सुनाई।
3: मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था। अब उसे अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, और इसके लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है, और उस बहन का बिजनेस अभी भी इतना छोटा है कि ट्रेडिशनल क्रेडिट मॉडल उसको एफिशिएंट सर्विस नहीं दे सकते। इस प्रकार के बिजनेस है जिनकी जरूरतों को फिनटेक एनालाइज, एंटीसिपेट और एड्रेस कर सकते हैं, और ऐसे बिजनेस की संख्या बहुत बड़ी है।
2: वहीं मुंबई में एक दिन पहले एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास पीएम ऑफिस की आईडी और बॉडीगार्ड था। उसके पास .32 बोर का हथियार भी बरामद हुआ। आरोपी की पहचान रोहन पारिक के रूप में हुई है। बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि उससे तरुण कपूर नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क किया था, जिसने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया था और पारिक से रक्षा अधिग्रहण और दूसरे मामलों पर पीएमओ के लिए सलाहकार की भूमिका निभाने को कहा था।
4: रोहन पारिक, जो कि 24 साल का है, खार मुंबई का रहने वाला है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, ऐसा वो पुलिस को बता रहा है। आपको बता दें कि 7 सितंबर की शाम रोहन पारिक, उसका बॉडीगार्ड दिलीप कुंदे और उसके साथ एक तीसरा व्यक्ति प्रथमेश बागुल ये जियो वर्ल्ड में दाखिल हुए। और जो प्रथमेश बागुल और दिलीप कुंदे हैं, दिलीप कुंदे के पास एक हथियार भी था और वो अपने आप को रोहन पारेख का बॉडीगार्ड बताता है। आपको बता दें, रोहन पारेख जियो वर्ल्ड में एंटर भी कर गए, वो अंदर गए, फिर अंदर जाकर बाहर आए, और उसके बाद जब दिलीप कुंदे बॉडीगार्ड को सुरक्षा रक्षकों ने रोका कि आप हथियार लेके अंदर नहीं जा सकते, तब रोहन पारेख ने आकर अपना आईडी कार्ड दिखाया। आईडी कार्ड में ये लिखा हुआ था कि वो प्रधानमंत्री दफ्तर पीएमओ में काम करते हैं, ग्रेड सी के ऑफिसर हैं, और पर उसमें वैलिडिटी की तारीख नहीं लिखी हुई थी। डेट ऑफ इश्यू जरूर लिखा हुआ था, पर एक डेट ऑफ वैलिडिटी, पीरियड ऑफ वैलिडिटी होता है हर सरकारी आइडेंटिटी कार्ड पे, वो नहीं था। उसमें सिग्नेचर ऑफ इश्यूअर ये भी मेंशन था आइडेंटिटी कार्ड में, पर जो सिग्नेचर था इश्यूअर का, उसमें जो जिसने इशू किया था उसका डेजिग्नेशन भी नहीं लिखा हुआ था। इस पर शक निर्माण हुआ और इसीलिए पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को आगे की जांच करने के लिए कहा गया। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में राहुल गांधी पर नाराज फूफा बोलकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने फ्रेट कॉरिडोर पर नाराज फूफा जी वाला तंज कसा, तो राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को टारगेट करते हुए झूठ की गूंज वाला प्रहार किया। इस वक्त जेंजी बीजेपी से लेकर तमाम सियासी दलों की मजबूरी बन चुके हैं, क्योंकि 2027 में यूपी और गुजरात समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेंजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं।
5: ओजी ट्रेंड सेटर
6: वडोदरा से पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है, विकास की बात होगी तो जेंजी के साथ होगी, विपक्ष पर वार होगा तो जेंजी के सामने होगा। यानी पीएम मोदी हर तरह से जेंजी के साथ न सिर्फ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं बल्कि जेंजी को अपने पाले में खींचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब से दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेंजी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ लेकिन जेंजी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया। आज पीएम मोदी वडोदरा में जेंजी को ये बताना नहीं भूलते हैं कि एआई हो या कोई भी आधुनिक सेक्टर, भारत को दुनिया के सामने सुपर पावर बनने की तैयारी करनी होगी और ये सारी मेहनत युवाओं के भविष्य के लिए है।
3: आने वाले दौर में हर आधुनिक सेक्टर बिजली से ही चलेगा, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम पर निर्भर होगा। जैसे चिप इंडस्ट्री है, डेटा सेंटर और एआई से जुड़ी इंडस्ट्री है, इनका खाद पानी बिजली ही है। इसलिए अगर हमें एआई में दुनिया के सामने सुपर पावर बनना है तो देश को उसकी तैयारी, उसका इकोसिस्टम भी बनाना होगा। यही काम भारत ग्राउंड पर कर रहा है, तभी किसी देश से यूरेनियम के लिए समझौते हो रहे हैं, किसी से क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर समझौते किए जा रहे हैं। ये सारी मेहनत देश के युवाओं के फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत करके की जा रही।
6: जेंजी की ताकत हर कोई समझ रहा है क्योंकि दुनिया भर में जेंजी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसीलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेंजी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेंजी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
7: मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है। डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी।
6: अब इंदौर में 19 सितंबर को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है कि इसके लिए 75,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जेंजी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेंजी के साथ संवाद किया। और तो और पीएम मोदी ने जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेंजी से सीधे कनेक्ट होने के लिए फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं। 23 जुलाई पहला सेल्फी वीडियो, 24 जुलाई दूसरा सेल्फी वीडियो, 31 जुलाई फिर इंस्टाग्राम रील्स वाला अंदाज, 20 अगस्त मंत्रियों को सीधे युवाओं के बीच जाने का निर्देश, 26 अगस्त इंस्टाग्राम पोस्ट की औसत एंगेजमेंट बढ़ने पर, 5 सितंबर एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में जेंजी अंदाज। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर देश को आगाह किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने 5 सितंबर 2026 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान दिमागी नक्सल वाले अपने बयान को फिर से दोहराया।
8: मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे।
6: और अब दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरी तो राहुल गांधी ने तुरंत पीएम मोदी पर वार किया और अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उन्हें वो दिमागी नक्सल और नाराज फूफा जैसे अपमानजनक तमगे देते हैं। जंग सीधे सीधे जेंजी की है क्योंकि सच यही है, जेंजी जिधर वोट उधर। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें साल के आखिर में गुजरात विधानसभा के चुनाव भी शामिल हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी वडोदरा पहुंचते हैं तो चुनावी गूंज सुनाई देने लगती है। जेन जी को अपने पाले में खींचने की जंग भी, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल की उम्र के लोग 21.19%, गुजरात 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश 21.91%, मणिपुर 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है। फिर पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से जेन जी के लिए किए गए ऐलान को गुजरात में भी दोहराते हैं।
3: मैंने लाल किले से भी युवा शक्ति के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ लाखों नौजवान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और इसलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर के द्वारा उनके कोचिंग हो।
6: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, यानी जेन जी शो के साथ पीएम मोदी ने गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। वडोदरा से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गिरगांव कोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि मामले में समन जारी करने को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल कुछ राजनीतिक रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमांडर इन चीफ कहने पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने शिकायत को आधारहीन बताया था, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। वहीं ट्रायल पर लगी हुई अंतरिम रोक को 6 हफ्तों के लिए जारी रखा गया है।
9: हमारे देश के सम्माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जयपुर रैली में जो अनुद्गार निकाले थे, जो बातें कही थी, उसके खिलाफ मैं मुंबई के गिरगांव कोर्ट में गया था, और मुंबई के गिरगांव कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 3 बार समन्स निकाले, लेकिन राहुल गांधी के कार्यालय में राहुल गांधी ने वो स्वीकार नहीं किया। उसके बाद माननीय कोर्ट ने समन्स खुद मुझे बाय हैंड दिए, और वो बाय हैंड मैं लेकर अकबर रोड दिल्ली को राहुल गांधी जी के निवास स्थान पर गया था, और आगे मुझे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस डर से राहुल गांधी हमारे इस डिसीजन के खिलाफ वो बॉम्बे हाईकोर्ट गए। बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने हमारी जो गिरगांव कोर्ट की याचिका थी वो निरस्त करने के लिए उन्होंने अर्जी दी, लेकिन आज मुंबई के सम्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि हमारी जो केस है वो चलती रहेगी, और राहुल गांधी ने जो पिटीशन दायर की थी वो पिटीशन आज उन्होंने डिसमिस कर दिए, और हमारी केस चालू रहेगी। राहुल गांधी को गिरगांव कोर्ट में आना ही पड़ेगा।
10: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका भले ही खारिज कर दी हो, पर 7 साल बीत जाने के बावजूद गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत पर अभी भी सुनवाई नहीं हो सकेगी। राहुल गांधी के वकील के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश पारित करने के बाद 2019 में दी अंतरिम रोक को 6 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया, ताकि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकें और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकें। विद्या, मुंबई, आज तक।
0: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से बेहद गर्मा चुका है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में तनातनी लगातार बढ़ रही है। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के उस बयान के बाद घमासान मच गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब सरकार का प्रतिनिधिमंडल मनोज जरांगे पाटिल से मिलने अंतरवाली सराटी नहीं जाएगा। वहीं जरांगे पाटिल ने भी विखे पाटिल और साथ ही सरकार पर मराठा समाज के साथ विश्वासघात करने के आरोप लगाए हैं।
11: एक तरफ मनोज जरांगे पाटिल जालना के अंतरवाली सीट पर मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे, दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आरक्षण पर रण तेज होने की हलचल दिख रही है। देर रात तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले वर्षा पर महायुति के नेताओं की बैठकें हुई, और बैठक के बाद कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल सामने आए तो दो टूक कह दिया कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल अब मनोज जरांगे पाटिल से मिलने अंतरवाली सराटी नहीं जाएगा।
12: शेवटी मराठा समाजाच्या व्यापक हिताकरता काही निर्णय करतो आपण आणि त्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुद्धा सुरू आहे, फक्त निर्णय झालेला नाही. आता त्यामध्ये मान्य जनरंगे पाटील समाधानी नाही आहे, त्याला आता माझ्याकडे त्याला काही दुसरं हे नाही आहे, काही माझ्याकडे असा कोणता पर्याय नाही आहे की त्यांना मी समाधान करू शकतो.
11: राधाकृष्ण विखे पाटिल के इस बयान ने मराठा आरक्षण की मांग पर अड़े आंदोलनकारियों में आक्रोश भर दिया, जिसके बाद मनोज जरांगे पाटिल का भी पलटवार आया कि मराठा समाज अपनी राह खुद चुनेगा, कोई आए या ना आए.
13: आवन करत काय करे, आम्हाला आमचं आवन ठरलेलं आहे, पक्क ठरलं आमचं, हो ना, पक्क ठरलंय आमचं. तयारी सुरू झाली, मुंबईत जाणार आहे, 12 तारखेला तारीख डिक्लेअर होणार आहे. कोण कोण मराठ्यांच्या डोळ्यात चटणी फेकून आता पळून गेला बाजूला, त्यो बी तिथं सापडणार आहे. लय झालं तर असं जाऊ इकडून लोणीला.
11: मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण के मुद्दे पर 11 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं. इन 11 दिनों में उनका वजन 7 किलो कम हो गया है. हर बीतते वक्त के साथ उनकी तबीयत बिगड़ रही है. मुख्य तौर पर मनोज जरांगे की मांग है कि सभी मराठों को ओबीसी श्रेणी के तहत कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए. कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हैदराबाद और सतारा गजेटियर के रिकॉर्ड को पूरी तरह से लागू किया जाए. अनशन समाप्त करने से पहले बाकी बची मांगों पर आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव जारी किया जाए. इन मांगों के जवाब में सरकार का दावा है कि हैदराबाद और सतारा गजेटियर के आधार पर कुणबी प्रमाण पत्र देने का काम तेजी से चल रहा है.
12: आता 58 लाख नोंदीच्या सगळ्या नोंदी आम्ही आता ग्रामपंचायतीला डिस्प्ले केल्या आणि 10 तारखेपासून तर 17 पर्यंत आपण तिथे कॅम्प लावलेले आहेत.
11: अब बीजेपी के नेता प्रसाद लाड मनोज जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं कि जरांगे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जिद छोड़कर अस्पताल में भर्ती हो जाए.
14: सातत्याने प्रयत्न आहे की त्यांनी उपोषण सोडावं. मराठा समाजाच्या ज्या त्यांच्या मागण्या होत्या त्यापैकी 12 मागण्या आम्ही पूर्ण केल्या. त्यांचं त्याच्यामध्येही जे समाधान नाही झालं ते समाधान करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. आम्ही सरकार म्हणून जेव्हा प्रयत्न करत असतो तेव्हा खोटं बोलून काम ना देवेंद्र फडणवीस करतात ना एकनाथ शिंदे करतात. जे देणार बोलणार ते दिलेलं आहे.
11: सरकार कह रही है कि मनोज जरांगे से जो वादा किया गया था वो पूरा किया जा रहा है और आगे भी उनकी मांगे मानी जाएंगी. मगर शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं. एक तरफ सरकार संवाद और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला दे रही है तो दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल का आक्रामक रुख जारी है. आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या सरकार 12 सितंबर से पहले कोई बीच का रास्ता निकाल पाती है या टकराव और आरक्षण का रण भीषण रूप लेगा.
15: मराठा आरक्षण पर आर पार की जंग और 12 सितंबर का अल्टीमेटम, अब गेंद पूरी तरह से महायुति सरकार के पाले में है. एक तरफ मनोज जरांगे पाटिल का कड़ा रुख तो दूसरी तरफ सरकार की बैठकों और आश्वासनों का दौर भी जारी है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 12 सितंबर से पहले सरकार इस पर कोई समाधान निकालती है या तो फिर राजनीतिक मुद्दा और गहराते नजर आता है. कैमरा पर्सन आशीष धामापुरकर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक.
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: महाराष्ट्र में एमपीएससी परीक्षा में कथित धांधली और पेपरली के आरोपों पर छात्रों का आक्रोश थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पुणे में छात्रों ने ओंकारेश्वर मंदिर चौक से डीएम ऑफिस तक मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज छात्र महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से जवाबदेही और उनके चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।
2: हाल ही में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट की हुई फूड एंड ड्रग्स की जो एग्जाम थी, इस पूरे एग्जाम में गफला हुआ, ये सब सामने आया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एफआईआर भी दाखिल किया। उसके बाद अलग अलग एग्जामों को लेकर ट्रांसपेरेंसी की मांग रखी जा रही है। हम पुणे के कलेक्टर ऑफिस के चौक में है, जहां आप सीधा देख सकते हो अक्रॉस द महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के जितने भी छात्र जो पुणे में पढ़ते हैं, जो जिसे पुणे को जिस शिक्षा का घर कहा जाता है, वहां से सब लोग अब जुड़ चुके हैं। पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज से मार्च निकला और मार्च निकलते निकलते कलेक्टर ऑफिस तक आ पहुंचा है। कलेक्टर के दफ्तर पे आते ही ये मार्च एंड होगा थोड़ी देर में, लेकिन अहम बात यह है छात्रों में रोष है, सरकार के खिलाफ है। और उनका कहना है कि अगर इस पूरे मामले में गफला हुआ है सामने आ रहा है, 6 अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो बाकी की राजनीतिक कड़ियां हैं वो नहीं सामने आई। जिन जिन का नाम जुड़ा है वो किसी का नाम नहीं सामने आ रहा। और सबसे अहम बात है सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो बी ग्रेड की उसमें जो एग्जाम थी क्लास बी की, उसमें भी गफला हुआ है ये।
1: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली।

जेनजी से भरे वडोदरा में प्रधानमंत्री ने 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बताया विकसित भारत की नींव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश का युवा सच की हुंकार के साथ। वडोदरा के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोकार्पण भी। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। मुंबई में पीएम मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन किया। डिजिटल फाइनेंस पर जोर दिया गया। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी बोले विकसित भारत के लिए भरोसा और मजबूत हुआ। बीकेसी के जियो वर्ल्ड प्लाजा में फर्जी पीएम अधिकारी बनकर युवक पहुंचा। कोर्ट में वकील बोले ठगी का शिकार हो सकता है आरोपी। पीएमओ के फर्जी आईडी बॉडीगार्ड और 32 बोर हथियारों के साथ 24 साल का युवक गिरफ्तार। कोर्ट में बचा पक्ष ने साजिश का दावा किया। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। 4 नई प्रकार की योजनाओं की भी घोषणा की गई। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले सरकारों पर योगी का हमला। कहा माफियाओं के पास जाया करता था केंद्र का पैसा। सीएम योगी ने आगे कहा विकास में जोर पर है उत्तर प्रदेश। एसपी और कांग्रेस वाले सवाल उठाते हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। रामलला के दरबार में टेका मत्था। हनुमानगढ़ी में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर जोर दिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत। आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। बीती शाम राहुल गांधी को लेकर लखनऊ एयर इंडिया फ्लाइट का गो अराउंड दूसरे प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग। तेज हवाओं के दबाव के चलते AI-1717 ने गो अराउंड। राहुल गांधी समेत सभी यात्री सुरक्षित। शुद्धिकरण मामले में हल्द्वानी और नैनीताल में केस दर्ज हुआ। अज्ञात के खिलाफ FIR। दिल्ली में भी संसद मार्ग थाने पहुंचे कांग्रेस के कई नेता। सत्यनिकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त NHRC। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के निर्देश। अवैध पीजी के खिलाफ MCD ने भी शुरू कर दिया स्ट्रक्चरल सर्वे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर गरम हुई है राजनीति। बीजेपी का सीएम मान पर सीधा अटैक। कहा कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। जाला में धुले सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर महाराष्ट्र मराठा आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से रास्ता रोको आंदोलन किया। जाला में शिवसेना शिंदे गुट के हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। सेहत का ध्यान रखने की अपील भी की गई। पालघर के रिलीफ हॉस्पिटल मारपीट मामले में शिवसेना की बड़ी कार्रवाई। 7 पदाधिकारी निलंबित। बंगाल में डीजे बैन पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला। बोले ममता करती तो हिंदू विरोधी कहलाती। संजय राउत की एकनाथ शिंदे को सलाह बीजेपी में करने अपनी पार्टी का विलय। पुणे में पिता की मौत से पहले तेज डीजे का शोर बन गया मुसीबत। महिला ने सुनाई दर्दनाक आपबीती। मुंबई में BMC के 89 नगर सेवकों ने चुनावी कानून पर संकट है। जाति प्रमाण पत्र से संपत्ति की घोषणा तक उठे गए सवाल। BMC के 5 नगर सेवकों का निर्वाचन रद्द किया गया। UPT के 24 समेत सभी प्रमुख दलों के पार्षदों पर चुनावी याचिकाएं। पालघर में आशा सेविकाओं ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन। सरकारी दर्ज और लंबित कोविड भत्ते समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। कोल्हापुर में MIDC के विरोध में बवाल। आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का गेट तोड़ा और कांच भी फोड़े। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के लिए हनुमान प्रतिमा हटाने पर विवाद। हिंदू संगठनों ने महाआरती की। हिंदू संगठनों ने प्रतिमा हटाने का विरोध भी किया। महाआरती में जुटे सैकड़ों लोग। हिंदू संगठनों ने कहा प्रतिमा हटाई गई तो आंदोलन होगा। पटना में भीम आर्मी का SC ST OBC को 65% आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। उत्तराखंड के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जोरदार प्रदर्शन। करीब 600 MBBS इंटर्न डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर

फीट पानी, आवागमन प्रभावित हुआ। दानापुर में भीषण बाढ़ की चपेट में आए कई इलाके, चारों ही तरफ पानी पानी, संकट में आ गई हैं जिंदगियां। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, शव यात्रा सहित सैकड़ों वाहन सड़क खुलने के इंतजार में। कानपुर में सीएनजी भरवाने को लेकर दरोगा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों में भिड़ंत हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रयागराज में यमुना में छलांग लगा रहे बच्चे, हेलीपैड बना खतरनाक स्टंट का अड्डा, वीडियो हो रहे हैं वायरल। जालौन में बेखौफ बदमाशों ने युवक का घेर कर गोली मारी, फिर चाकू से गोदा भी, गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दूर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट, 8-10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ाकर पीटा, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। मथुरा में 12 साल की लड़की का पहले रेप किया गया, फिर हत्या करके बागपत में फेंका गया, 5 महीने पहले किडनैपिंग हुई थी। बरेली में बाढ़ के पानी से करोड़ों की लागत से बन रही पानी की टंकी गिरी, टंकी के गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया। कोटा में 40 फीट ऊंचे जामुन के पेड़ पर चढ़ गया था लेपर्ड, 5 फ्री कोशिश में ट्रैंकुलाइज किया गया, 20 मिनट के बाद नेट में गिरा, 4 घंटे तक रेस्क्यू चला। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पेड़ से टकराई थी तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो गाड़ी, हादसे में 2 युवकों की मौत हुई। नागपुर में पब में एंट्री को लेकर हुआ था विवाद, ईगो हर्ट होने पर आरोपी ने पब को आग लगा दी, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आमेर में टूरिस्ट गाइड की चाकू को हुक्कर हत्या, जयपुर में फूटा लोगों का गुस्सा, 6 मांगों पर अड़ा है परिवार। मनीष हत्याकांड में सामने आया है लाइव वीडियो, भागते भागते गाइड के पेट में चाकू घोंपा गया। बुलंदशहर के शादी समारोह में दूल्हे ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दर्ज किया है मामला। पुंछ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार का भयानक एक्सीडेंट, हादसे में 4 शिक्षक घायल हुए, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। मुंबई में मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार कार के चलाने वाले 6-7 चालकों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस पहचान में जुटी। दावणगेरे में कार की चपेट में आ गया था तेंदुआ, रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए ने उन पर हमला किया। समस्तीपुर में ट्रेन में महिलाओं का चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का खुलासा, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार में दुकान में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सिडनी में घर के बाथरूम में बैठे 10 फीट लंबे अजगर को देखकर घरवाले परेशान और हैरान, मशक्कत के बाद रेस्क्यू करवाया गया। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर किया था एंड्रॉइड डिवाइस, पैकेट खोलते ही निकला गोबर। गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजारों में बढ़ गई रौनक, बापा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्तिकार। घर पर ही 8 साल से गणपति बप्पा की मूर्ति बना रही दिल्ली की लड़की रुचि, इको फ्रेंडली विसर्जन से पर्यावरण का संदेश। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी में फाइनल में पहुंचकर भारत का नाम रोशन किया। शीतल का फाइनल में कजाकिस्तान की एजादा सीडान के साथ मुकाबला है, गोल्ड पर होंगी सबकी निगाहें। भारत को एक और पद की उम्मीद है, ब्रॉन्ज के लिए दावा पेश करेंगी पैरा खिलाड़ी सरिता। लखनऊ की हवा देश में सबसे ज्यादा साफ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप पर है लखनऊ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में 2 नंबर पर इंदौर और 3 नंबर पर जबलपुर है, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची जारी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की भी स्थिति अच्छी है, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर में 8वीं रैंक हासिल की, पिछले साल 9वें पायदान पर था नोएडा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी का योजना पर मंथन। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब का गाना रिलीज हुआ, फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी नजर आएंगे। फिल्म प्रेम कीटाणु की रोमांटिक ट्रैक वाला तीसरा गाना भी सामने आया, इस फिल्म में एक्टर वीर पहाड़िया, अपार शक्ति खुराना और आफिया सैयद नजर आएंगे। फिल्म तेरा साई की रिलीज डेट सामने आ गई है, अगले साल 5 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भक्ति भाव से भरपूर फिल्म हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा नाम की फिल्म की घोषणा, अगले साल रिलीज की जाएगी खाटू श्याम पर आधारित ये फिल्म। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है, 32 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 155 करोड़ के पार। एक साल में मेमोरी चिप के 400% महंगा होने से स्टैंडर्ड आईफोन 18 के लॉन्च पर सस्पेंस। मैनपावर ग्रुप के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर में भारत की हायरिंग आउटलुक दुनिया में सबसे मजबूत। भारत ने अगस्त में पिछले साल के मुकाबले 30% कम सोना इंपोर्ट किया है, कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री मोदी की गैर जरूरी गोल्ड न खरीदने की अपील का असर। देश के 6 बड़े महानगरों में किराएदारों के करीब 1.5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर फंस गए, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा रकम फंसी। डिजिटल पेमेंट के दौर में यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल से एटीएम

से कैश में काला करीब 20% तक घटा। सीएमआई के सर्वे के मुताबिक 52% कंपनियों ने इस साल से ज्यादा बिक्री की उम्मीद जताई है। कच्चे माल की कीमत के बीच 35% कंपनियों ने दाम बढ़ाए भी हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 4 सितंबर तक खरीफ की फसलों का कुल रकबा पिछले साल के करीब 1.5% घट गया है। एक स्टडी के मुताबिक पिछले 90 दिनों में करीब 73% ग्रामीण परिवारों ने एलपीजी का इस्तेमाल किया। महंगी रिफिल और डिलीवरी की वजह से महज 23% परिवार ही खाना पकाने के लिए एलपीजी पर निर्भर। जगुआर और लैंड रोवर का खर्च करीब 21,500 करोड़ घटाने का टाटा मोटर्स ने योजना बनाई है। 4,000 नौकरियों को भी खत्म करेगी कंपनी। मेमोरी चिप की कीमतें दोगुनी होने से सैमसंग इंडिया ने टीवी और होम अप्लायंसेस बिजनेस में 80 से 100 एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में रूस का भीषण हमला। सुमी में पैसेंजर ट्रेन को बनाया गया था निशाना। दोनों ही हमलों में 2 लोगों की मौत की खबर। 20 सितंबर से आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे ज़ेलेंस्की। शांति वार्ता के लिए 7 इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी पर बातचीत। हंगरी ने रूस के 10 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। देश छोड़ने का जारी किया है फरमान। कूटनीतिक नियमों के उल्लंघन पर हंगरी ने सख्त कार्रवाई की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात की। सर्गेई लावरोव ने कहा मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है रूस। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। कहा जब तक हमलावरों को पछतावा नहीं होगा तब तक पूरी ताकत के साथ संघर्ष जारी रहेगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलिबाफ का बड़ा बयान। कहा ईरान के तेल पर गैस संपत्तियों पर अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन के हूती विद्रोहियों का सऊदी पर भीषण हमला। एयरपोर्ट और अरामको ऑयल साइट्स को बनाया गया था निशाना। हमले के बाद भीषण आग लगी। 73 लोग घायल हुए। इजरायली राष्ट्रपति ने की ब्रिटेन के संभावित प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना। राष्ट्रपति हरगोज ने कहा बस्तियों पर प्रतिबंध से कोई समाधान नहीं निकलेगा। राजधानी बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर लगेगी लगाम। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ला रही है माई फीड माई वे कानून। नए कानून से इंस्टाग्राम फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट दिखाने का बदल सकता है तरीका।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई या फिर ये नकली पीएमओ अफसर खुद ठगी के जाल में फंस गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर से ये सनसनीखेज घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। जब एक नकली पीएमओ अफसर बंदूकधारी बॉडीगार्ड के साथ अचानक पहुंच गया, चेकिंग में जब फर्जी आई कार्ड मिला तो इसकी पोल खुल गई। हम आपको बताएंगे भी कि असली और नकली आई कार्ड की पहचान आखिर कैसे हुई, लेकिन असली ट्विस्ट तो कोर्ट में आया जब इस व्यक्ति ने वकील ने दावा कर दिया कि वो कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि फर्जी जॉब रैकेट का शिकार हो गया। उसे पीएमओ का फर्जी लेटर, आईडी और यहां तक कि पीएम के दस्तखत वाली चिट्ठी भेजकर झांसे में लिया गया था। झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा, अगर इन तीन चीजों की कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होती तो यकीन मानिए पाकिस्तान उसमें बिना किसी मुकाबले के गोल्ड मेडल जीतता। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही से पाकिस्तान अब इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो सच का सामना करने के बजाय फेक एआई की दुकान खोलकर बैठ गया है और ताबड़तोड़ ऐसे वीडियोस डाल रहा है। पाकिस्तान एआई से फर्जी वीडियोस बनाकर अपनी हार को जीत में बदलने का बचकाना ड्रामा कर रहा है। आज पाकिस्तान के इस डिजिटल फर्जीवाड़े का कच्चा चिट्टा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे प्रोपेगेंडा की इस जंग में आतंकी पाकिस्तान अब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। इसके बाद बात उस खबर की जो ग्लोबल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल सकती है। राजधानी दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट से ठीक पहले डी डॉलराइजेशन पर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स पर डॉलर को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। आज क्रेमलिन के प्रवक्ता, क्रेमलिन यानी वो जगह जहां से रशिया के राष्ट्रपति रहते हैं, जहां से पूरा उनका कार्यालय चलता है, आज क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में, जब मैंने सीधे यही सवाल उनसे पूछा कि क्या ब्रिक्स डॉलर को कमजोर कर रहा है, क्या डॉलर का वैकल्पिक करेंसी अपने अपने नेशनल करेंसी को बना रहा है, जैसे भारत रुपया को, रशिया रूबल को और डॉलर को दरकिनार किया जा रहा है, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है, वो आपको दिखाएंगे। नॉर्थ कोरिया रशिया को आपस में जोड़ने वाले पहले रोड ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। यह पुल व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की जिगरी दोस्ती की मिसाल है। कभी अलग थलग पड़े ये दोनों देश अब पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बीच एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन रहे हैं।

अब आपको सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे देश में किसी को सिविक सेंस की सीख देना या कानून का पाठ पढ़ाना जानलेवा बन गया है। दिल्ली में खुले में शराब पीने हंगामा करने से रोकने पर मणिपुर के एक म्यूजिशियन की हत्या कर दी गई। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब का कहर दिखाएंगे। जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 15 पहुंच गया है, जबकि कई लोग जिंदगी मौत के बीच इस वक्त भी जंग लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इलाके में लंबे समय से अवैध शराब का काला कारोबार फल फूल रहा था। पुलिस आबकारी विभाग सब जानकर भी आंखें मूंदे बैठे रहे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में जहरीली शराब की वजह से देश में 421 लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद दृश्यों के कत्ल की एक और कहानी, और फिर कैमरा ऑन होते ही बिलख बिलख कर रोना, आंसू बहाना, करोड़ों की जायदाद के लिए अपने ही ससुर की बेदर्दी से हत्या कराने वाली करोड़पति बहू का खौफनाक सच अब सबके सामने है। पुलिस की तफ्तीश में जो सीसीटीवी फुटेज और सबूत हाथ लगे हैं, वो इस बहू की उस एक्टिंग की पोल खोलते हैं जो उसने पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए रची थी। ये रोना धोना जो वीडियो आप देख रहे हैं, सब ड्रामा था। अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा के बयान ने एक बार फिर सियासी और सामाजिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। तौकीर रजा ने सर तन से जुदा और जय श्री राम के नारों की तुलना करते हुए दोनों को एक जैसा ठहराने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सर तन से जुदा जैसा हिंसक नारा जो सीधे तौर पर अपराध को बढ़ावा देता है, उसकी तुलना किसी धार्मिक और सांस्कृतिक संबोधन से कैसे की जा सकती है। और इसके बाद आपको भाषा के स्वयंभू ठेकेदारों का दोहरा रवैया दिखाएंगे। गरीब ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को जबरन मराठी की सीख देने वाली मंत्री जी जब पावर और ग्लैमर के सामने आते हैं तो कैसे अपने ही मापदंड भूल जाते हैं। मराठी ना बोल पाने पर हंसने लगते हैं। संजय दत्त ने महाराष्ट्र के मंत्री से सीधे कहा मराठी नहीं बोलेंगे, और इस पर मंत्री जी मुस्कुराने लगे, ठहाके लगाने लगे, जो ऑटो चालकों को कहते हैं कि पहले मराठी सीखो नहीं तो रोजी रोटी खत्म। और आखिर में वो दिलचस्प तस्वीर बिहार के गोपालगंज में कार चोरी के बढ़ते मामलों से परेशान होकर एक व्यक्ति ने अपनी कार को सड़क किनारे खड़ा करने के बजाय सीधे घर की छत पर पार्क करवा दिया। इसे क्रेन की मदद से दो मंजिला मकान की छत पर पहुंचाया गया। देखिए

0: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको मुंबई की उस घटना के बारे में बताएंगे जो नकली सरकारी अफसरों को लेकर कई सवाल खड़े करती है। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पहली नजर में सब कुछ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसा दिखाई देता है, लेकिन जांच आगे बढ़ी जैसे जैसे कहानी में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आए कि सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहा बल्कि फर्जी सरकारी अफसरों के उस खतरनाक जाल तक पहुंच गया जिसमें कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, खुद ठगी का शिकार भी। अब क्या है ये पूरी घटना? 7 सितंबर की है ये घटना, जब मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। और कारण ये था कि अगले दिन यानी आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना था और वो शाम में शामिल भी हुए। अब जाहिर है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, आसपास के पूरे इलाके में आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही थी। इसी जांच के दौरान पुलिस कर्मियों को 2 लोगों पर शक हुआ और जब उनसे पूछताछ हुई तो उनमें से एक लड़के ने दावा किया कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय, सीधा बोला कि मैं पीएमओ से जुड़ा हुआ, और उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे अंदर जाने से रोका ना जाए। अब मुंबई पुलिस के मुताबिक इस लड़के का नाम रोहन पारेख है और उसके साथ आए बॉडीगार्ड का नाम दिलीप कुंडे। और जानते हैं ये दोनों पकड़े कैसे गए? जब मेटल डिटेक्टर से इस लड़के का बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे अंदर जा रहा था, बॉडीगार्ड, तब उसमें सुरक्षा कर्मियों को उसके पास पिस्टल होने का अंदेशा हुआ। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से एक पिस्टल मिली और इसके बाद इस बॉडीगार्ड ने रोहन पारेख को फोन किया और ये लड़का वापस एंट्री गेट पर पहुंचा। वहां उसने सुरक्षा कर्मियों को अपना एक पहचान पत्र दिखाया। दावा किया गया कि ये पहचान पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का है। अब इस आईडी कार्ड में रोहन पारेख को पीएमओ का ग्रेड सी ऑफिशियल बताया गया था, लेकिन यहीं से सुरक्षा कर्मियों का शक और गहरा हो गया। शक का कारण यही था कि इस पहचान पत्र पर उसके जारी होने की तारीख तो लिखी थी कि भाई ये आईडी कार्ड कब जारी हुआ, लेकिन ये नहीं लिखा था कि कार्ड वैलिड कब तक है। इसके अलावा कार्ड पर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तो थे लेकिन उस अधिकारी का नाम नहीं लिखा था, जबकि पीएमओ के आईडी कार्ड पर उसे जारी करने वाले अधिकारी का नाम जरूर होता है, उसी से पहचान हो जाती है। अब बस यहीं से सुरक्षा कर्मियों को लगा कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लिया, बाद में गिरफ्तार किया और यहां तक ये कहानी बहुत सीधी दिखाई देती है। सबको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले 2 लोग खुद को पीएमओ से जुड़ा हुआ बताकर एक हाई सिक्योरिटी इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये मामला प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का सीधा दिखता है। लेकिन इसके बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। जिस लड़के ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया था, उसके वकील ने अदालत में, कोर्ट में जब उसे पेश किया जा रहा था, उसको अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन जब अदालत में इसका वकील पहुंचा तो उसने दावा किया कि रोहन खुद एक ठगी का शिकार है। अब ये दावा देखिए, यानी जिस व्यक्ति को पुलिस नकली पीएमओ अधिकारी समझकर गिरफ्तार कर रही है, उसके वकील का कहना है कि वो खुद भी ये मानता रहा हो कि वो सचमुच प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी करता है। रोहन पारेख के वकील के मुताबिक उसे पिछले कुछ समय में ऐसे कई दस्तावेज और ईमेल्स मिले थे जिनसे उसे विश्वास हो गया कि उसे हकीकत में पीएमओ में नौकरी मिल गई है। दावा है कि उसे ईमेल के जरिए पीएमओ में नौकरी का ऑफर लेटर भेजा गया, उसे ईमेल पर ही एक आईडी कार्ड की कॉपी भेजी गई और यह भी दावा किया गया है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भी भेजा गया जिसमें उसे पीएमओ से जुड़ा अधिकारी बताया गया था। यही नहीं, कोर्ट में सबूत के तौर पर कुछ ईमेल्स भी पेश किए गए हैं। अब इन ईमेल्स में तरुण कपूर नाम के एक व्यक्ति का जिक्र था और कहा गया कि इसी व्यक्ति ने रोहन को पीएमओ में काम करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद तरुण गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की तरफ से उसे डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी से जुड़े ईमेल भेजे गए और महक गुप्ता नाम की एक महिला की ओर से रोहन को एडवाइजरी रोल में नौकरी का प्रस्ताव भेजे जाने का दावा किया गया। अब रोहन के वकील का कहना है कि ईमेल के जरिए उसे यहां तक निर्देश दिए गए थे कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए। यानी दावा तो यह है कि रोहन पारिख ने खुद को कोई सरकारी अधिकारी दिखाने के लिए बॉडीगार्ड नहीं रखा था, बल्कि उसे इस ईमेल के जरिए बताया गया था कि अब वो एक बड़े पद पर है और उसे सुरक्षा की जरूरत है। अब आखिर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है क्या? उसके बाद देखिए, उसने एक बॉडीगार्ड रख लिया, खुद को पीएमओ का अधिकारी समझ लिया और फिर वो बॉडीगार्ड रखकर घूमने लगा। रोहन का यह भी कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने या किसी हाई सिक्योरिटी इलाके में घुसने के लिए जियो वर्ल्ड प्लाजा नहीं आया था, बल्कि वो अपनी मंगेतर के लिए परफ्यूम खरीदने वहां पर पहुंचा था। अब देखिए, वो पहुंच भी कब रहा है, जब पीएमओ प्रधानमंत्री का अगले दिन वहां पर कार्यक्रम है। वो खुद ही दावा कर रहा है अपने वकील के जरिए कि उसको पीएमओ का एक अधिकारी वो अपने आप को समझ रहा था, उसे ऑफर लेटर्स आई थी और वो उसी जियो कन्वेंशन सेंटर में एक दिन पहले परफ्यूम खरीदने पहुंचता है, जैसा उसके वकील का दावा है। अब इस कहानी के आधार पर ये लड़का खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन इस कहानी में कोई झोल भी कई सारे नजर आते हैं। जैसे 2024 में इसे पीएमओ में नौकरी का ऑफर लेटर मिला, लेकिन सवाल है कि तब उसे जब उसे तनख्वाह ही नहीं मिल रही थी, तो ये खुद को पीएमओ का असली अफसर कैसे समझता रहा? क्या जानबूझकर ये पीछे से पूरी साजिश रची गई थी कि अगर वो कहीं पकड़ा जाता है तो इन मेल्स को वो आगे कर दे, कोर्ट में बता दे? दूसरा, अगर ये खुद को पीएमओ का अधिकारी बता रहा है तो इसने अपनी निजी बॉडीगार्ड कैसे रख लिया? और सोचिए, ये लड़का इतना पढ़ा लिखा है, इसने गणित और विज्ञान में बीएससी की पढ़ाई की है, लेकिन इसके बावजूद इसने अनजान ईमेल एड्रेस से आए कुछ दस्तावेजों पर यकीन कर लिया और खुद को पीएमओ का ग्रेड सी ऑफिशियल समझने लगा। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि वकील तो कोर्ट में यही दावा कर रहे हैं। क्या ये बचने का एक तरीका था, एक स्ट्रैटेजी थी जो पहले से इसने बनाई थी? इसने अपना निजी बॉडीगार्ड कैसे रखा? क्योंकि इतनी बात तो हर कोई जानता है कि अगर किसी अफसर को सुरक्षा देनी होती है तो ये काम सरकार का होता है, ना कि अधिकारी खुद ही निजी बॉडीगार्ड रखते चले। हम यहां इस लड़के के दावों को सीधे तौर पर गलत नहीं बता रहे, लेकिन उसकी कहानी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गंभीर है। और यहां सोचने वाली बात तो यह है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होना था, वहां इत्तेफाक से ये लड़का प्रधानमंत्री के कार्यालय का ही अफसर बनकर कैसे पहुंच गया, देखिए।
1: रोहन क्या बताओगे? रोहन रोहन
2: दूसरे बस
3: जी, आप रोहन के फैमिली से हैं बात जी, आपसे जानना चाहेंगे ये रोहन पीएमओ अपॉइंटेड था या नहीं था?
4: डिफेंस जो लॉयर हैं, जो कि रोहन पारेख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रोहन पारेख को या तो फंसाया गया पीएमओ के नाम पर और उससे ये आई कार्ड भी उन्होंने ही दिया, ईमेल्स भी उन्होंने ही भेजे और वही उनसे संपर्क में थे, वही उसके कांटेक्ट में थे और उन्होंने ही उसे बॉडीगार्ड रखने के लिए भी कहा था। अब इस पर सवाल उठता है कि ये क्या सच में रोहन पारेख को किसी ने फंसाया ये कहकर कि आप पीएमओ में एडवाइजरी रोल पर काम कर रहे हैं, या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब पुलिस को कह रहे हैं या बता रहे हैं। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: अब इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस देश में कितने लोग नकली सरकारी अफसर बनकर घूम रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने मनीष कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी, खुद को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का अंडर कवर एजेंट बताता था। बिहार के खगड़िया में इसने एक 5 मंजिला मकान बनाया जिसमें 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इलाके में यह बात भी फैली कि इस घर में एक स्विमिंग पूल भी हो सकता है। खगड़िया के लोगों के लिए ऐसा घर सामान्य नहीं था। यह बिहार का वो जिला है जो बाढ़ के लिए जाना जाता है और जहां हर साल घर जरूर डूबते हैं, लेकिन उस खगड़िया में जब यह खबर फैली कि मनीष कुमार गुप्ता एक आईएएस अधिकारी है, अजीत डोवाल उस पर काफी भरोसा करते हैं, लोग उसे प्रभावित होने लगे। यही नहीं, इस व्यक्ति ने अपनी गाड़ियों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवाया हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई की। जब पुलिस को भी इस व्यक्ति ने अपना परिचय एक आईएएस अधिकारी का दिया तो ये पूरी तरह फंस गया। पुलिस ने इसकी पूरी कुंडली निकाल ली। ये पता चला कि इस व्यक्ति ने पिछले 10 साल में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर कई लोगों को चूना लगाया। 10 साल में लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। और ऐसा नहीं है कि यह खुद को फर्जी आईएएस या आईपीएस अधिकारी बताने की पहली घटना थी। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई लोग पकड़े गए हैं जो खुद को एनएसए, अजीत डोभाल, कभी गृहमंत्री अमित शाह, कई बार सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताते हैं और बाद में ये सारे लोग फर्जी निकलते हैं। साल 2023 में गुजरात के किरण पटेल ने खुद को पीएमओ का, प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए यह दावा किया था कि उसे जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से सेब की पैदावार और सुरक्षा से जुड़े कामों की निगरानी के लिए भेजा गया है। ये सुनने के बाद जम्मू कश्मीर का प्रशासन इस व्यक्ति की आवभगत में लग गया। अब इसे प्रोटोकॉल के तहत सरकारी गाड़ियां दी गई, सुरक्षा कर्मी दिए गए, यह व्यक्ति सबको वहां चूना लगाता रहा। और अब इस मामले में भी ऐसी ही कहानी सामने आ रही है। सोचिए, जो अधिकारी असली हैं उनमें कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और युवाओं के हिस्से की सरकारी नौकरियां बेचते रहे, और जो फर्जी और नकली अधिकारी हैं वो भी खूब बेईमानी कर रहे हैं, और इनमें कई तो ऐसे हैं जो शायद अब तक पकड़े ही नहीं गए। और हमें लगता है कि इस घटना के बाद सरकार को कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे असली और नकली सरकारी अफसरों की पहचान हो सके। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डॉक्यूमेंट्री से पाकिस्तान इतना परेशान हुआ कि अब जवाब में वो अपनी एक अलग ही कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें पाकिस्तान भारत के कई एयरबेसेस तबाह कर देता है, मतलब कुछ भी, भारत के कई शहरों की बिजली काट देता है, और बात संसद और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाती है। जानते हैं पाकिस्तान इन दावों का सबूत क्या देता है? वो जवाब में एक एआई से बना वीडियो जारी करता है और ऐसी कहानियां बनाता है जो हकीकत में हुई ही नहीं। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के दावे इतने बड़े हैं तो सबूत कहां है? अगर भारत के इतने एयरबेस तबाह हुए तो तस्वीर कहां है? अगर इतनी बड़ी तबाही हुई तो सैटेलाइट तस्वीरों में वो दिखाई क्यों नहीं दी? दुनिया भर की एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का विश्लेषण किया, और इन सैटेलाइट तस्वीरों में सभी ठिकानों पर नुकसान के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन भारत में यही सैटेलाइट तस्वीरें कोई नुकसान नहीं दिखाती। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, और सब जानते हैं कि अगर झूठ बोलने का कोई ओलंपिक्स होता तो पाकिस्तान गोल्ड मेडल जरूर जीतता। पाकिस्तान की ख्याली दुनिया ऐसी है कि वो कल को यह भी कह सकता है कि इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है, या ये कह सकता है कि चांद पर पाकिस्तान का अंतरिक्ष यान उतरा है, या ये झूठ बोल सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान बन गया है। कुछ भी, यानी पाकिस्तान जितनी लंबी लंबी फेंकता है उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन यही पाकिस्तान ये भूल जाता है कि प्रोपेगेंडा की दुनिया में भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। समस्या ये होती है कि एक झूठ को बचाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है, और धीरे धीरे झूठ इतना बड़ा हो जाता है कि उसे साबित करने के लिए वास्तविकता कम पड़ जाती है, और तब पाकिस्तान को एआई की मदद लेनी पड़ती है। और ऑपरेशन सिंदूर के मामले में तो पाकिस्तान पहले दिन से यही करता है। हम आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि पाकिस्तान कैसे अपने हमलों का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत ने बार बार सबूतों से पोल खोली। पाकिस्तान ने पहला फर्जीवाड़ा तब किया जब उसने युद्ध का पूरा सेट तैयार करवाया। 14 मई 2025 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट के पास पसरूर आर्मी छावनी पहुंचे, और उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद पाकिस्तान को अपने लोगों को यह दिखाना था कि सेना मजबूत है, मोर्चा संभाले हुए है, सब कुछ कंट्रोल में है। फिर कैमरे लगाए गए, एक टैंक तैयार किया गया, टैंक को घास से ढककर उसके पीछे पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन यहां भी पाकिस्तान कोई सबूत नहीं दिखा पाया। दूसरा फर्जीवाड़ा तब किया जब हार के बाद भी जीत का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में विजय रैलियां निकाली गई, सड़कों पर जश्न हुआ, पाकिस्तानी सेना की झूठी जीत के पोस्टर्स लगे, लेकिन यहां भी कोई असली सबूत पाकिस्तान नहीं दे पाया, और फिर से उसकी बेइज्जती। तीसरा फर्जीवाड़ा तो सबसे आधुनिक फर्जीवाड़े में से एक था। पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से एक एनिमेटेड और एआई वीडियो, फेक एआई वीडियो जारी किया गया, और इसमें दावा किया गया कि भारत के दर्जनों एयरबेस नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन यहां भी पाकिस्तान के पास सबूत के तौर पर कोई असली तस्वीर तो थी नहीं, फिर बेइज्जती हुई। चौथा फर्जीवाड़ा तब हुआ जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में झूठी खबर का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को आसमान का बादशाह बताया है। अब पाकिस्तान की संसद में इसे सेना की बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह तस्वीर एआई से बनाई गई थी और डेली टेलीग्राफ ने ऐसी कोई खबर प्रकाशित ही नहीं की। यही नहीं, इस एआई तस्वीर में पाकिस्तान और टेलीग्राफ की स्पेलिंग तक गलत थी, लेकिन वहां मंत्रियों को क्या, मतलब क्या स्पेलिंग जानेंगे, दिखा दिया। पांचवा फर्जीवाड़ा तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। दावा बड़ा था, इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि सबूत क्या है। अब सीएनएन के एक इंटरव्यू में जब उनसे सबूत मांगा गया तो ख्वाजा आसिफ के जवाब ने उन्हें एक मजाक बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि सबूत भारतीय सोशल मीडिया पर मौजूद है, यानी यहां भी पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था। और क्योंकि पाकिस्तान झूठ बोलता है इसलिए अब भी उसने एक एआई वीडियो जारी किया है, अपनी खूब भद पिटवाई, जबकि यही आप भारत को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर अपने पीछे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दिखाया, पाकिस्तान में हुए हमले की थर्मल इमेजिंग तस्वीरें जारी की, सैटेलाइट तस्वीरों के सबूत दिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था उसके तमाम वीडियोस जारी किए। हमें इसके लिए एआई की मदद नहीं लेनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि झूठ बोलता है इसलिए वो एआई चलाता है। हमें तो लगता है कि कहीं पाकिस्तान एआई से वीडियो बनाकर चांद पर ना पहुंच जाए। अगर वो पहुंच भी गया तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पाकिस्तान के झंडे पर चांद है, भारत का झंडा ही चांद पर है। देखिए,

0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि ब्रिक्स समिट से पहले डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के दबदबे को मिल रही चुनौती पर दुनिया में बहस क्यों छिड़ी है। इस बार का ब्रिक्स समिट हमारे अपने देश भारत में होने वाला है और ये एक ऐसा मंच है जिसके खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर बोलते हैं और इन देशों पर ये आरोप लगाते हैं कि ब्रिक्स देशों का मंच डॉलर को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन देशों का एक ऐसा समूह जिसके साथ शुरुआत हुई थी और वही समूह अब धीरे धीरे कई देशों में फैल गया है और डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से काफी चिढ़ते हैं। जब जब ये आयोजन होते हैं तो वो हमेशा इसके खिलाफ बोलते हैं और खास तौर पर डॉलर के मुद्दे पर जरूर छेड़ते हैं। अब क्योंकि ये समिट इसी हफ्ते 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है और इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं, तब डी डॉलराइजेशन पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, जो पहले अकल्पनीय लगता था, लेकिन आज क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने ब्रिक्स समिट से पहले मॉस्को से वर्चुअली एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिया और इस दौरान मैं भी वहां मौजूद थी। मैंने उनसे सीधा सवाल ये पूछा कि जब ये देश गैर डॉलर करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं तो इसे ये डी डॉलराइजेशन क्यों नहीं मानते। भाई उन्होंने खुद ही बताया डिमिट्री पेस्कोव ने कि रशिया बाकी देशों के साथ जो कि ब्रिक्स के देश हैं उनके साथ 90% पेमेंट अब डॉलर में नहीं बल्कि अपनी अपनी राष्ट्रीय करेंसी में कर रहा है, रूबल में कर रहा है, भारत रुपया में कर रहा है। तो यह है पूरा मामला डॉलर को अलग थलग करने का। 90% तक अगर वो डॉलर का इस्तेमाल खत्म कर चुके हैं तो इसको खुलकर डी डॉलराइजेशन बोलने से रशिया या ब्रिक्स क्यों बचता है। और राष्ट्रपति ट्रंप डॉलर को नुकसान पहुंचाने का जो आरोप इन ब्रिक्स देशों पर लगाते हैं वो इन पर आखिर क्या कहना चाहते हैं, ये सवाल मैंने उनसे पूछा। इस पर डिमिट्री पेस्कोव ने साफ कहा कि वो डॉलर के खिलाफ नहीं है बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद डॉलर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे, सुनिए।
1: हेलो मिस्टर पेस्कोव, थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्शन एंड इट्स नाइस दैट यू हैव कॉल्ड दिस सेशन टेलिंग द अनटोल्ड, सो वी आर काउंटिंग ऑन दैट। Donald Trump, the American president, says BRICS is a forum against the dollar. You yourself mentioned how 90% of the payments that Russia is doing with other BRICS countries has now moved on to national currency. There are other countries also within BRICS without sanctions who have opted for cross-border national currency payment systems. Why does Russia or BRICS shy away from openly claiming de-dollarization? And how would you respond to the allegation that BRICS is a forum against the dollar that Donald Trump often talks about?
2: Thank you. It's a very interesting question.
3: यह बहुत दिलचस्प सवाल है। खैर, मैं फिर से दोहराऊंगा। ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। ब्रिक्स तो अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए है और रूस भी ब्रिक्स देशों में से एक है। रूस से अमेरिकी डॉलर और यूरो इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी है और अमेरिका ने हमें इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद की करेंसी क्यों ना इस्तेमाल करें। क्या इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है? नहीं, कुछ हद तक तो यह उससे भी बेहतर है। और हमने अलग अलग देशों को नेशनल करेंसी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देना शुरू किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ हैं और हम किसी डी डॉलराइजेशन पॉलिसी का दावा भी नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है।
2: बेटर कोरिस्पॉन्ड्स विद आवर नेशनल इंटरेस्ट्स। सो एंड I would say that,
3: तो मैं ये कहूंगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे, तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है, और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है। और जाहिर है सभी देश वही कर रहे हैं जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, और अगर नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है तो वो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट नेशनल करेंसी में ही करेंगे, और यह किसी देश के खिलाफ की गई प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए अमेरिकी डॉलर को सबके लिए फायदेमंद बनाइए और हर कोई अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अभी प्रक्रिया इसके उलट है और ऐसा हमारी वजह से नहीं हो रहा है।
0: और अब आप आंकड़ों से इस डी डॉलराइजेशन की पूरी कहानी बताते हैं। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर को छोड़कर अपनी अपनी जो राष्ट्रीय आपकी करेंसी है उसमें व्यापार करना, पेमेंट करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यही डी डॉलराइजेशन। आज से 26 साल पहले वर्ष 2000 में दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी जो है वो 72% होती थी। ज्यादातर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर इसलिए रखते थे क्योंकि दूसरे देशों से कोई सामान या सेवा खरीदने के लिए उन्हें डॉलर में ही भुगतान देना होता था। लेकिन बाद में जब अमेरिका ने ईरान, वेनेजुएला, रशिया, कुछ अफ्रीकी देश सब पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाने लगे और आपस में एक दूसरे की जो राष्ट्रीय करेंसी है उसमें वो व्यापार करने लगे। इससे दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की जो हिस्सेदारी है वो 72% से घटकर आ गई 56%। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छोटे देशों को गैर डॉलर करेंसी में व्यापार करने के लिए रशिया और चाइना ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया, और क्योंकि ये दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी में व्यापार करने का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप अब इस मंच को डॉलर के खिलाफ एक गठजोड़ की तरह देखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल इन आंकड़ों को लेकर उठता है, ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे पांच देश आपस में जो व्यापार कर रहे हैं, ये शुरुआती पांच देश थे जिनके साथ ब्रिक्स शुरू हुआ था। उनमें काफी व्यापार अब बिना डॉलर का हो रहा है, गैर डॉलर करेंसी यानी अपनी अपनी राष्ट्रीय करेंसी में कर रहे हैं, जैसे हम रुपया में, रशिया रूबल में। अकेले रशिया ब्रिक्स देशों के साथ 90% व्यापार अपनी नेशनल करेंसी में कर रहा है। इनमें ब्राजील के साथ अधिकतम 10%, भारत के साथ 96%, भारत के साथ 96% जो रशिया का व्यापार है वो इस वक्त अपने अपने नेशनल करेंसी में हो रहा है यानी रूबल और रुपया में। चाइना के साथ 99.1% रशिया का व्यापार उसकी नेशनल करेंसी में हो रहा है। इसके अलावा गैर ब्रिक्स देशों में ईरान के साथ 96%, इजिप्ट के साथ 40% व्यापार भी डॉलर में नहीं हो रहा, अपनी अपनी राष्ट्रीय करेंसी में हो रहा। रशिया का कहना है कि वो ब्रिक्स एससीओ और देशों वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी 97% व्यापार डॉलर में नहीं कर रहा, लेकिन रशिया ऐसे डॉलर के खिलाफ मुहिम नहीं कहता। वो ये कहता है कि अमेरिका ने डॉलर को कई देशों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और इसी वजह से अगर डॉलर को नुकसान पहुंचा रहा है अगर कोई तो वो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति इसके लिए खुद जिम्मेदार है। इस प्रेस ब्रीफिंग में दिमित्री पेस्कोव ने यह भी बताया कि जो भारतीय यूक्रेन में युद्ध में शामिल हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है और उन्हें भारत भेजने पर काम किया जा रहा है। सुनिए।
2: Yes, this issue was brought to agenda by Indian side numerous times, and with a great attentiveness we approached to this issue. Now the work is being done to make a list of those Indian citizens who are now on the battlefield, and they will be sent back home as soon as they are determined. We are in a very deep contact, profound contact with the Indian side on this issue.
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन एक दूसरे के जिगरी दोस्त कैसे बने। आज इस दोस्ती की चर्चा खूब हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि रशिया और उत्तर कोरिया को आपस में जोड़ने वाले पहले पुल का उद्घाटन हुआ है जो रशिया और नॉर्थ कोरिया को जोड़ता है। एक किलोमीटर लंबा है, जिसने पहली बार दोनों देशों को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया है। यानी आज से पहले तक ऐसी कोई सड़क नहीं थी जो दोनों देशों को जोड़ती हो, लेकिन अब ऐसा हो गया है और पश्चिमी देश इसे लेकर दो बातें कह रहे हैं। उन्हें चिंता है कि इस पुल के जरिए हथियारों की गुप्त सप्लाई हो सकती है, दूसरा इससे प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जा सकता है, जबकि रशिया और नॉर्थ कोरिया पर इन आरोपों का कोई असर नहीं पड़ रहा। उल्टा उत्तर कोरिया और रशिया ने इस पुल का नाम ही सोवियत सेना के एक अधिकारी याकोव नोविशेंको के नाम पर रखा है। ये वही सोवियत अधिकारी हैं जिन्होंने किम जोंग उन के बाद किम इल सुंग की 1946 के एक ग्रेनेड हमले में जान बचाई थी और उत्तर कोरिया में उन्हें आज एक राष्ट्रीय नायक की तरह सम्मान दिया जाता है। और इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि अब राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती कैसे गहरी होती जा रही है। देखिए,

0: исторические события.
1: अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की ये जो दोस्ती है वो हुई कैसे, और इस दोस्ती की पश्चिमी देश क्लोजेस्ट कॉमरेड यानी सबसे करीबी साथी क्यों मानते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब साल 2000 में पहली बार रशिया के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने उत्तर कोरिया का दौरा किया था, और उस वक्त किम जोंग उन के पिता उत्तर कोरिया की सत्ता में थे। किम जोंग उन सिर्फ 16 साल के थे। यानी इस दोस्ती की शुरुआत किम जोंग उन के पिता से हुई थी, और बाद में राष्ट्रपति पुतिन किम जोंग उन के देखिए तो एक दूसरे के दोनों पक्के दोस्त बन गए। इनमें भी साल 2019 इस दोस्ती के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वही साल था जब किम जोंग उन पहली बार रशिया गए और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें पारंपरिक रूसी ब्रेड और नमक दिया गया, उपहार मिले, शानदार डिनर कराया गया। हालांकि उस वक्त ये दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, सम्मान था, शिष्टाचार था, लेकिन दोनों नेताओं के बीच एक झिझक भी दिखती थी। और आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त दोनों नेता मिल तो रहे थे लेकिन वैसी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रशिया को अलग थलग करने की कोशिश हुई, तब उत्तर कोरिया ने रशिया का पूरा साथ दिया। इससे ये दोस्ती इतनी मजबूत हुई कि जून 2024 में जब राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे तो किम जोंग उन खुद रात 3 बजे उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। रात के 3 बजे सोचिए, जिस उत्तर कोरिया में प्रोटोकॉल और सत्ता का प्रदर्शन इतना मायने रखता है, वहां देश का सुप्रीम लीडर खुद इतनी सुबह किसी विदेशी नेता को रिसीव करने पहुंचा, और यहीं से पूरी दुनिया को एक संदेश दिया गया। संदेश यह था कि रशिया पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की परवाह नहीं करता, फिर चाहे वो प्रतिबंध खुद रशिया पर लगे हों या उत्तर कोरिया पर। इसके अलावा दुनिया ने रशिया और उत्तर कोरिया के बीच हुए रक्षा समझौतों को देखा, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन ने समझौतों से आगे बढ़कर इस दोस्ती को एक दूसरे के लिए सहज बनाया। जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन को रशिया में बनी अपनी आधिकारिक राष्ट्रपति जैसी ही ऑरस सेनेट लिमोजीन कार गिफ्ट की। किम जोंग उन को यह कार इतनी पसंद आई कि जून 2024 में जब राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया गए तो दोनों नेताओं ने प्योंगयांग की सड़कों पर इस कार को बारी बारी से चलाया। अब किम जोंग उन के लिए यह गिफ्ट इसलिए भी खास था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर परमाणु कार्यक्रम के कारण लग्जरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यह कार गिफ्ट करना सीधे तौर पर यूएन के नियमों को चुनौती दे। अब आपको देश के लोगों के बीच भाषा और क्षेत्र की लकीर खींचने वालों का दोहरा रवैया दिखाते हैं। कैसे रसूख के आगे उनके सारे कायदे, सारे कानून, सारे मापदंड भीगी बिल्ली बन जाते हैं। खबर महाराष्ट्र से है जहां भाषा की राजनीति का भी अपना ही एटीट्यूड है, लेकिन ये नियम, ये पैमाना और भाषा की भक्ति का ये पाठ किसी पर लागू होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपका कद कितना बड़ा है। हालिया नजारा मुंबई के एक भव्य मंच का है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त माइक पर बोल रहे थे, बगल में खड़े थे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। मंत्री जी इन दिनों मराठी के मास्टर जी बनकर घूम रहे हैं, वो हर किसी को मराठी सिखाने के मूड में है। मंच पर जब संजय दत्त आए तो मंत्री जी को लगा कि थोड़ा भाषाई अनुशासन यहां भी दिखा दिया जाए। खुद ही बोले कि वो आजकल सब लोगों को मराठी सिखा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त से भी कहा मराठी में बोलिए, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो भाषा को विवाद का रूप देने वालों के लिए एक मास्टर क्लास थी। माइक संभालते ही संजय दत्त ने दो टूक अपने ही अंदाज में कह डाला कि वो 6 साल यरवडा जेल में रहे तब भी मराठी नहीं सीख पाए, और बोलते बोलते संजय दत्त का हाथ भी मंत्री प्रताप सरनाईक के कंधे पर पहुंच गया। अगर आप सोच रहे हो कि इस बयान के बाद मंच पर हंगामा हुआ होगा, भाषा के ठेकेदारों ने विरोध में नारे लगाए होंगे, तो आप बिल्कुल गलत है। यहां संजय दत्त के आगे मंत्री जी बिल्कुल पिघल गए, गुस्सा नहीं आया, गुस्से के बजाय संजय दत्त की मराठी ना बोलने की बात पर बड़ी जोर से हंसने लगे। माहौल में ठहाके ऐसे गूंज उठे मानो संजय दत्त ने मराठी में कोई जोरदार फिल्मी पंच मार दिया।
2: मेरे भाई ने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है।
3: मैंने बोला आजकल मैं सब लोगों को मराठी सिखा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं बोला कि पहला एंट्री करने बाद संजय दत्तला पण आधी आपण आता मराठीत बोलायला लावूया।
4: तुम्ही सर्वांना नमस्कार।
0: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
2: प्रताप भाई, मैं 6 साल जेल में रहा येरोड़ा में, तब भी मराठी नहीं सीख पाया।
1: अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, वही परिवहन मंत्रालय, वही मंत्री जी, वही मुंबई की सड़कें, सड़क पर दिन रात मेहनत करके कितना 300-400 रुपए कमाने वाले गरीब ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स के लिए फरमान जारी करते हैं। यहाँ मराठी का काम चलाओ ज्ञान अनिवार्य है, वरना इधर रोजी रोटी भूल जाइए। तर्क दिया जाता है कि यात्रियों से बेहतर संवाद विवाद रोकने के लिए मराठी जरूरी है। हालांकि विवाद होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दे दी। लेकिन सवाल यह है कि जो ड्राइवर रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते हैं, अगर वो मराठी का एक शब्द गलत बोल दें तो मराठी भाषा के स्वयंभू रक्षक सड़कों पर उतर आते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, गरीब चालकों के साथ बदतमीजी होती है, सरेआम थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं और थानों के चक्कर काटते काटते उनके लिए परेशानी होती है। लेकिन मशहूर अभिनेता संजय दत्त खुलकर कहते हैं कि उन्हें मराठी नहीं आती, तो मंत्री जी बगले झांकते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर ठहाके लगाते हैं। सवाल तो है कि क्या मराठी भाषा का मान सम्मान सिर्फ गरीब ऑटो वालों को पीट कर ही बचाया जाएगा? क्या मराठी भाषा के स्वयंभू ठेकेदार वैसा ही हंगामा करेंगे जैसा वो सड़क किनारे फल बेचने वालों, टैक्सी वालों, ऑटो चालकों को लेकर करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे कायदे कानून और भाषा की सख्ती सिर्फ उन्हीं पर चलती है जो पलटकर जवाब नहीं दे सकता। संजू बाबा ने तो मुस्कुराया, आईना दिखा दिया है। अब देखना यह है कि मंत्री जी की इस हंसी के पीछे छिपे दोहरे मापदंड को भाषा के विवाद में उलझने वाले लोग कब समझ पाते। दिल्ली में कल देर रात 8 लड़कों ने मणिपुर के एक शख्स की हत्या कर दी। 54 साल के विक्रम सिंह की हत्या इस बात पर हुई कि वो अपने घर के नीचे शराब पी रहे लड़कों को शराब पीने, शोर मचाने से बस रोक रहे थे। ये सारे लड़के उनके घर के नीचे मौजूद ढाबों रेस्टोरेंट में काम करते थे। रात करीब 11:30 बजे का वक्त था जब उन्होंने शराब पीना और शोर मचाना शुरू किया, तब विक्रम सिंह घर से बाहर निकले। उन्होंने इन लड़कों से शराब पीने, शोर मचाने से मना किया। विक्रम सिंह और उन लड़कों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई। काफी देर तक हुई बहस के बाद विक्रम सिंह अपने घर चले गए, लेकिन उन लड़कों ने विक्रम सिंह का पीछा किया, उनके घर गए, घर जाकर उनसे मारपीट की। जब शोर सुनकर विक्रम सिंह का परिवार आया तो आरोपी लड़के वहां से फरार हो गए। घायल हालत में विक्रम सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले विक्रम सिंह एक म्यूजिशियन थे, बच्चों को गिटार का ट्यूशन देते थे। 17 वर्षों से परिवार के साथ दिल्ली में रह रहे थे। आरोप लगाया जा रहा है कि विक्रम सिंह के साथ जिन लड़कों ने मारपीट की वो उन पर नस्लवादी टिप्पणी भी कर रहे थे। हालांकि पुलिस इस एंगल से अभी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मामला खुले में शराब पीने, शोर मचाने से जुड़ा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 आरोपी बनाए गए, जिनमें से एक नाबालिग है। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है। विक्रम सिंह की हत्या के बाद दिल्ली में रहने वाले मणिपुर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, इंसाफ की मांग की। उन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर एक्शन लिया जाना चाहिए।
5: करीब करीब 7-8 लोग के आसपास मौजूद थे, जिसमें आसपास के ढाबे में काम करने वाले लोग थे, कोई डिलीवरी बॉय था, कोई पैकिंग का काम करता था, तो वो लोग शोर मचा रहे थे। अब ऊपर 3rd फ्लोर पर उनका घर है, तो वो नीचे आए, उनको शायद ऊपर आवाज आ रही थी, उन्होंने यहाँ पे मना किया। और जब मना किया तो इस बीच उनके बीच आपस में कुछ कहा सुनी हुई, और जब कहा सुनी हुई तो उन लोगों ने मारपीट हुई, और उसके बाद विक्रम जी अंदर की तरफ भागते हैं, ऊपर की तरफ वो अपने फ्लोर पे पहुंचते हैं और मदद की मांग करते हैं। तो अंदर जो उनकी वाइफ थी उनके पास आवाज जाती है, वो दरवाजा खोलती हैं और उसके बाद वो लड़के दिखते हैं, भागते हुए भी दिखते हैं, मारपीट भी पूरी कैप्चर हुई है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उनकी मौत हो गई। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मारपीट की गई, वजह भी लगभग साफ है कि सिर्फ शोर मचाने से मना किया।
6: रात को 11:30 से 12 बजे के करीब कुछ लोग जो पास के एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनसे शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
7: ये ढाबे में काम करते हैं और डिलीवरी बॉयज भी हैं। रात को म्यूजिक और कुछ आवाजें आए उसको लेकर के झगड़ा हुआ, लेकिन घटना इतना दुखद है कि जान चले गई। विदिन 2 सप्ताह में बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जशीट भी फाइल कर देंगे कोर्ट में। कड़ी सजा होना चाहिए। आठों का आठ अलग अलग समुदाय अलग अलग राज्यों से है, यह काम करते हैं, बाहर से आए हैं सब लोग, और अभी तो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन चार्ज शीट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यही बात हुआ है।
1: ये कितना दुखद है कि एक व्यक्ति की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो खुले में शराब पीने हंगामा करने वालों को सही चीजें सिखा रहा था, और ऐसा कानूनन जुर्म है। 3 महीने की सजा है, 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है अगर आप खुले में शराब पीकर इस तरह से हंगामा करते हैं। लेकिन हमारे देश में जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ रहे लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील करता है तो एक बड़ा अपराध, बड़े अपराध को समझिए न्योता देता है। सोचिए विक्रम सिंह कुछ भी गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने बस गलत करने से रोका मौत। दिल्ली की हालत अब यह है कि यहां पर खुले में या फिर कार में बार सजाना बहुत आम बात है। इस साल 1 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच खुले में शराब पीने के 60,624 मामले दर्ज हुए, और बड़े आराम से जो लोग ऐसा करते हैं उसे कारोबार कहते हैं। इनमें करीब 41% केस तो साउथ दिल्ली में दर्ज हुए हैं, ये वही क्षेत्र है जहां मणिपुर के विक्रम सिंह की हत्या हुई। साउथ दिल्ली में तो पुलिस ने 34 ऐसे हॉटस्पॉट का पता लगाया है जहां अक्सर लोग खुले में शराब पीते हैं, और करीब 12,500 केस यहीं पर दर्ज हुए। इसके बाद नंबर आता है साउथ ईस्ट दिल्ली का। पुलिस ने यहां की 45 ऐसी जगहों की मार्किंग की है जहां खुले में शराब पी जाती है, 12,420 केस दर्ज किए गए हैं। ये डेटा बताता है कि खुले में शराब पीने वाले दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और यही लोग आम लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा। ये खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगे। ये खबर दिल्ली पर मंडराते बड़े खतरे से जुड़ी है। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद एक नई रिपोर्ट चर्चा में है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक दिल्ली में रिक्टर स्केल पर 6.0 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया तो 33 लाख इमारतें दिल्ली NCR की मलबे में तब्दील हो जाएंगी। सेस्मिक जोन 4 में है दिल्ली, बताइए। बिल्कुल अंजना, दिल्ली के सत्य निकेतन में हुआ 5 मंजिला इमारत का खौफनाक हादसा अब नए खतरे को लेकर डरा रहा है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली एक तगड़ा भूकंप का झटका झेल सकती है? नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि दिल्ली NCR में करीब 89 लाख इमारतें हैं, और इनमें से 38% यानी करीब 33 लाख इमारतें खतरे की नींव पर खड़ी हैं। एनवायरमेंटल अर्थ साइंसेज में छपी इस स्टडी के मुताबिक अगर रिक्टर स्केल पर सिर्फ 6.0 तीव्रता का मध्यम भूकंप भी आ गया तो दिल्ली की जमीन पर खड़ी ये इमारतें तबाही का ऐसा मंजर दिखाएंगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है जो कि दूसरी सबसे खतरनाक भूकंप जोन है। यहां के हजारों अवैध निर्माण, बिना इंजीनियर के बनाई गई मंजिलें और मकान जो सालों से बिना किसी स्ट्रक्चरल ऑडिट के बने हैं, ये इस खतरे को और बड़ा कर देते हैं। सत्य निकेतन हादसे ने भी यही पोल खोली है कि कैसे नियमों की अनदेखी और अवैध बदलाव इंसानों की जिंदगी पर भारी है। कुदरत कब धरती को हिला दे ये कोई नहीं जानता, लेकिन सत्य निकेतन का ये हादसा एक वेकअप कॉल है। क्या हमारी इमारतें और हमारा प्रशासन किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है?

0: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और सम्मान हमेशा इंसान के वक्त और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। नमस्कार।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
2: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
3: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
2: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रूपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रूपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
2: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेन जी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
4: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
2: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
5: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
6: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं।

0: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
1: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
0: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहरूपिया का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
2: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
0: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
4: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, जिसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना है। ये सारी कोशिश उस जेन जी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेन जी ने नहीं देखा।
5: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
4: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
5: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
4: हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे

0: राहुल की नकल बता रही है।
1: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
0: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने के लगे।
2: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
3: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
4: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
3: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
5: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
3: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
6: चीमा भी जिम्मेवार है, मेरी मौत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेवार है।
7: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
6: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
7: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
6: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
3: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਨਵਾਇਆ।
8: ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫਾਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਬ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੇ ਦਬਾਅ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਨਵਾ ਰਹੇ ਹੈ कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
3: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
2: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
9: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चौंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
10: बहुत दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शोक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
11: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक गुजर तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
9: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी सीसीटीवी में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
12: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था। वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे, लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी, जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ, तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
9: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
11: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, लोगों ने स्टेप इन डाली। एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर, जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रेनाउंस सिंगर ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक लव, म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो शांत स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
9: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे, वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
13: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति।
14: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
12: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
14: देखिए, ये अपने घर में थे तब बालकनी में, ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ, और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
9: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
15: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं, या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है, जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए, और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
9: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
16: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
17: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
18: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
16: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
19: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
16: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब एक सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
20: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा, जो कि ऑलरेडी बेल पे रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंपकर उसका पेट फाड़ दिया।
21: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे। जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
16: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
2: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं इतना पानी घर से नीचे आता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: नहीं, कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते इतना पानी, बच्चा बुतरा से बसते है सर, कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गांव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
4: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहां पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
5: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर दी हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेंजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेंजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अंबेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहरूपिये का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
8: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
9: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेन जी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेन जी ने नहीं देखा।
10: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
9: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
10: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
9: हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
11: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
9: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने में लगे।
0: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
1: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
12: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
1: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
13: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे और अरेस्ट होनी चाहिए।
1: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
14: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
15: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
14: ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
15: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
1: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਨਵਾਇਆ।
16: ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫਾਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਬ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੇ ਦਬਾਵ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਨਵਾ ਰਹੇ ਹੈ कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
1: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधु के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
0: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
9: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
17: दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो, कोई गुस्सा वाले इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
18: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का गुजर तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
9: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी सीसीटीवी में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले इस संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
19: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी, जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
20: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
18: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, नो वन इज स्टेपिंग डैडी, एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रिनाउंस सिंगर ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक लव, म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो सांस स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
20: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे, वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
21: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसका पति।
22: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
19: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
22: देखिए, ये अपने घर में थे तब बालकनी में, ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ, और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
20: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है।
23: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं, या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयस है जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए, और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ, और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
20: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
24: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
25: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
26: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
24: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
27: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
24: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब एक सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
2: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंप कर उसका पेट फाड़ दिया।
3: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे। जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
24: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते थे इतना पानी घर से नीचा होता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते इतना पानी, बच्चा उतरा समझते है सर,
2: व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
4: आप जहाँ जाए घूमे तहाँ जाए, घर डूबे गए तब की करिए, घर डूबे गए तब जहाँ जाए घूमे तहाँ जाए, ऊपर दाब के रहबे।
2: क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब ये चीज डूब गए हैं एकदम, घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गाँव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहाँ पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उफनाती हुई नदियां बिहार की लोगों को परेशान कर रही हैं, जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इस पानी ने चपेट में लिया है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तलों तक शाखाओं में पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित की रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेंजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेंजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए होगी, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अंबेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहरूपिया का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
8: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
9: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना,

0: क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना। इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री है, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेंजी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेंजी ने नहीं देखा।
1: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
0: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
1: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
2: हाय फ्रेंड्स,
0: जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
3: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
0: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने में लगे।
4: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
5: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
6: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
5: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
7: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
5: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
8: चीमा भी जिम्मेवार है, मेरी मौत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेवार है।
9: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
8: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
8: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।

0: उधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मौत से पहले ये वीडियो बीजेपी ने बनवाया।
1: खा लिया उस व्यक्ति ने और उसको तुरंत सल्फास अगर कोई खा ले तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तब उसकी जान बचती है। और आप उस दौरान उस पे दबाव डाल रहे हैं, उससे दूसरा वीडियो बनवा रहे हैं कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
0: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधु के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
2: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
3: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
4: सबको शौक है क्योंकि वो किसी को देखो, कोई गुस्सा वाले इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
5: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक गुजर तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
3: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी CCTV में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले इस संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
6: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए। वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी, जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि CCTV लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
3: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
5: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, नो वन इज स्टेपिंग डेली। एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रेनाउंड सिंगर ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक लव, म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो शांत स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
3: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे, वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
4: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसका पति।
7: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
8: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
7: देखिए, ये अपने घर में थे तब बालकनी में, ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ और उस आमने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
3: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
9: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं या कोई विक्टिम होता है तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं, वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयस है जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने का बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द ही, ये लोग तो भाग गए थे और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
3: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
10: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
11: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
12: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
10: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
13: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
10: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहाँ पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब 1 सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
13: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंप कर उसका पेट फाड़ दिया।
14: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे, जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
10: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
2: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पे जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं इतना पानी घर से निकलता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: नहीं, कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते इतना पानी, बच्चा उतरा बसते हैं सर,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप
4: लोग? ऊपर दाब के रह,
2: क्या सब दिक्कत हुआ,
4: सब चीज डूब गए हैं एकदम घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गांव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहां पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास, सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उफनाती हुई नदियां बिहार की लोगों को परेशान कर रही हैं, जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इस पानी ने चपेट में लिया है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तलों तक शाखाओं में पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित की रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेनजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंगवस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए होगी, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अंबेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं, पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहुरूपिये का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
8: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
9: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री है, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेनजी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेनजी ने नहीं देखा।
10: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
9: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
10: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
11: हाय फ्रेंड्स,
9: जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
12: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
9: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने लगे।
0: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
1: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
13: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
1: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
14: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
1: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
15: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ?
16: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
15: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
16: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
1: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਨਵਾਇਆ।
17: ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫਾਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਬ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੇ ਦਬਾਵ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਨਵਾ ਰਹੇ ਹੈ कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
1: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
0: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
9: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीटकर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
18: बहुत दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
19: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक बुजुर्ग तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
9: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी सीसीटीवी में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
20: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी। जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
2: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
19: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, नो वन इज स्टेपिंग डैडी। एक म्यूजिशियन, वाज अ टीचर जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रिनाउंड सिंगर ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक लव, म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो सांस स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
2: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
21: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से, वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति।
22: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
23: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
22: देखिए, ये अपने घर में थे, तब बालकनी में ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनके, इनका आमना सामना हुआ, और उस आमने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
2: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं।
24: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं, या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है। उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है, जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए, और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द ही, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
2: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
25: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
26: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
27: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
25: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
28: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अभियुक्त है उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
25: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब एक सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
28: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंपकर उसका पेट फाड़ दिया।
3: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे। जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
25: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते थे इतना पानी घर से निकलता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते इतना पानी, बच्चा बुतरू बस है सर,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब चीज डूब गए एकदम घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गांव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहां पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उफनाती हुई नदियां बिहार की लोगों को परेशान कर रही हैं, जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इस पानी ने चपेट में लिया है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तलों तक शाखाओं में पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित की रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेनजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: तो विद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अंबेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन, उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहरूपिया का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
8: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी पर

0: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वाया कार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेंजी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेंजी ने नहीं देखा।
1: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
0: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
1: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
2: हाय फ्रेंड्स,
0: जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
3: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
0: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने लगे।
4: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
5: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
6: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
5: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
7: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
5: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
8: ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਕਦ ਚੀਮਾ ਹੈ।

0: ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
1: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ?
0: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1: ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
2: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਨਵਾਇਆ।
3: ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫਾਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਬ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੇ ਦਬਾਵ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਨਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਮ ਮੰਤਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਮਕੋ ਹਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਨਹੀਂ।
2: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
4: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
5: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार जंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
6: दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो, कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
7: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक बुजुर्ग तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
5: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी CCTV में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
8: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी। जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि CCTV लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
5: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
7: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, नो वन इज स्टेपिंग डेली। एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर, जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रेनाउंड सिंगर ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक लव, म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो शांत स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
5: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे, वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
6: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से, वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसका पति।
9: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
10: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
9: देखिए, ये अपने घर में थे तब बालकनी में, ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनके इनका आमना सामना हुआ और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
5: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
11: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं या कोई विक्टिम होता है तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं, वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द ही, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
5: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
12: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
13: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
14: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
12: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
15: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
12: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब 1 सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
15: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंपकर उसका पेट फाड़ दिया।
16: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे, जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
12: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
4: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं इतना पानी घर से नीचे आता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते है इतना पानी, बच्चा बुतरा सब मस्त है,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
4: अब जहाँ जाए घूमे तहाँ जाए, घर डूबे गए तब की करिए, घर डूबे गए तब जहाँ जाए खोते तहाँ जाए, ऊपर दाब के रहबे।
2: क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब ये चीज डूब गए हैं एकदम घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गाँव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहां पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है, इसके लिए लड़ रहे हैं। ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेनजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अम्बेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं, पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहरूपिय का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
8: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
9: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार का रैंप, भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेनजी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेनजी ने नहीं देखा।
10: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
9: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
10: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
11: हाय फ्रेंड्स,
9: जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
12: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
9: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने में लगे।
0: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
1: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
13: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, FIR दर्ज हो, FIR दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
1: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की CBI जांच की मांग की है।
14: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी FIR होगी, हमें इनकी FIR पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं CBI की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
1: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
15: चीमा भी जिम्मेवार है, ये गल का मेरी मौत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेवार है।
16: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ?
15: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
16: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
15: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
1: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਨਵਾਇਆ।
17: ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫਾਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਬ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੇ ਦਬਾਵ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਨਵਾ ਰਹੇ ਹੈ कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
1: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
0: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
9: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
18: बहुत दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
19: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक गुजर तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
9: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में 3rd फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी CCTV में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
20: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी। जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
2: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
19: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, नो वन स्टेप इन दिल्ली, एक म्यूजिशियन टीचर जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रेनाउंड सिंगर ऑफ मणिपुर, और इस तरीके का जो म्यूजिक लव, म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो शांत स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
2: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
21: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से, वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति।
22: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
20: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
22: देखिए, ये अपने घर में थे, तब बालकनी में ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ, और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
2: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
23: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं, या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है, जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए, और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द ही, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
2: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
24: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
25: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
26: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
24: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
27: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
24: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब एक सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
27: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंपकर उसका पेट फाड़ दिया।
3: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे। जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
24: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं इतना पानी घर से नीचे आता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते है इतना पानी, बच्चा बुतरू बस है सर,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
4: अब जहाँ जाए घूमे तहाँ जाए रहे हैं, घर डूबे गए तब की करिए, घर डूबे गए तब जहाँ जाए होते तहाँ जाए ऊपर दाब के रह।
2: क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब ये चीज डूब गए हैं एकदम, घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गाँव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहाँ पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उफनाती हुई नदियां बिहार की लोगों को परेशान कर रही हैं, जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इस पानी ने चपेट में लिया है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तलों तक शाखाओं में पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित की रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेंजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेंजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अम्बेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहुरूपिये का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
8: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
9: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेन जी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेन जी ने नहीं देखा।
10: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
9: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
10: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाए

0: का क्या होगा? अब फूफाजी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
1: हाय फ्रेंड्स,
2: जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
3: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
2: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने में लगे।
4: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
5: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
6: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
5: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
7: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
5: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
8: चीमा भी जिम्मेवार है, मेरी बहुत भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
9: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
8: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
8: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
5: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ।
10: ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫਾਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਬ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੇ ਦਬਾਅ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੈ कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
5: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
4: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
11: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चौंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
12: बहुत दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
13: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक गुजर तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
11: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके

0: किसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया। बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी सीसीटीवी में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
1: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे। और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया। और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए। वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी, जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ, तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
0: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
2: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूँगी, नो वन स्टेपिंग डली, एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रेनाउंड सिंगर ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो 700 के बंदे जो है उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
0: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
3: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसका पति।
4: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
5: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
4: देखिए, ये अपने घर में थे तब बालकनी में, ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ, और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
0: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
6: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं, या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए, और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
0: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
7: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
8: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
9: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
10: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
8: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
9: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो अभियुक्त है उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
8: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब 1 सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
9: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंपकर उसका पेट फाड़ दिया।
11: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे। जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
8: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
7: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है, आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है, और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पे जा सकते हैं, या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: तो सर घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं इतना पानी घर से नीचे आता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलती इतना पानी, बचाव उतरा से बस
2: है सर, व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब चीज डूब गए एकदम, घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गांव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है। जब पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उफनाती हुई नदियां बिहार की लोगों को परेशान कर रही हैं, जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इस पानी ने चपेट में लिया है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तलों तक शाखाओं में पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित की रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेनजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेनजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: तो विद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए होगी, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अंबेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहरूपिया का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
8: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
9: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेंजी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेन जी ने नहीं देखा।
10: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
9: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
10: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
9: हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
11: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
9: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने के लगे।
0: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
1: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
12: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
1: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
13: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
1: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
14: चीमा भी जिम्मेवार है, ये गल का मेरी मौत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेवार है।
15: की सवाल किया जी तुसीं ने?
14: मैं चिट्टे बारे सवाल किया जी।
15: चिट्टे तो तुसीं क्यों किया? थोड़े घरे कोई चिट्टा पींदा?
14: हाँ जी, मेरा मुंडा पींदा।
1: उधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मौत से पहले ये वीडियो बीजेपी ने बनवाया,
16: खा लिया उस व्यक्ति ने, और उसको तुरंत सल्फास अगर कोई खा ले तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तब उसकी जान बचती है। और आप उस दौरान उस पे दबाव डाल रहे हैं, उससे दूसरा वीडियो बनवा रहे हैं कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
1: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
0: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
9: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चौंगथम विक्रम सिंह हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया। लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
17: दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो, कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
18: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का गुजर तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
9: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी सीसीटीवी में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले इस संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
19: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी। जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ, तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
20: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
18: बच्चे से लेके बुरे तक, मैं कहूंगी लोगों ने स्टेप इन डाली। एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर, जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रिनाउंस सिंगर ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक लव, म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो शांत स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
20: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
21: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति।
22: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
19: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
22: देखिए, ये अपने घर में थे तब बालकनी में, ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ, और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
20: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
23: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं, या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है, जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए, और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
20: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
24: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
25: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
26: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
24: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
27: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
24: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब एक सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
27: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पे रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंपकर उसका पेट फाड़ दिया।
2: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे। जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
24: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथी हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पे जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा घर खाली करके?
3: हाँ तो सर घर में पानी चल गया सर, निकलते थे इतना पानी घर से निकलता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलती है इतना पानी, बच्चा बुतरा से बस्त है,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
4: अब जहाँ जाए घूमे कहाँ जाए रहे हैं, घर डूबे के लिए काम की कर जाए, घर डूबे के लिए तब जहाँ जाए होते तहाँ जाए ऊपर दाब के रह।
2: क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब ये चीज डूब गए हैं एकदम घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गांव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहाँ पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उफनाती हुई नदियां बिहार की लोगों को परेशान कर रही हैं, जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इस पानी ने चपेट में लिया है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तलों तक शाखाओं में पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित की रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेंजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रूपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रूपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेंजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अम्बेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहुरूपिये का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।
8: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
9: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेन जी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेन जी ने नहीं देखा।
10: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस

0: प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
1: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
0: हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
2: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
0: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने में लगे।
3: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
4: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
5: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
4: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
6: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
4: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से।
3: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
0: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चौंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
7: दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है, बहुत हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
8: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का गुजर तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
0: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी सीसीटीवी में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले इस संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
9: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया।

0: और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए। वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी, जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ, तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
1: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
2: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, लोगों ने स्टेप इन डाली। एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर, जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ रिनाउंस सिंगर ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो सांस स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
1: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
3: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से कोई मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति।
4: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
0: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
4: देखिए, ये अपने घर में थे, तब बालकनी में ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ, और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
1: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
5: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
6: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
7: महिलाओं के साथ पुरुष यहाँ पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
8: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
6: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
9: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
6: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब 1 सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
9: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा, जो कि ऑलरेडी बेल पे रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोप कर उसका पेट फाड़ दिया।
10: ये ऐसी सूचना भी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे, जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
6: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल, हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
5: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर, क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है और जिनका भी घर है, आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पे जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं तो इतना पानी घर से निकलता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: नहीं, कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं। क्या स्थिति है, घर से निकलती है इतना पानी, बच्चा बुतरा से बस्त है सर,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
4: अब जहाँ जाए घोटे कहाँ जाए रहे हैं, घोटे डूबे के लिए तब की कर जाए, घोटे डूबे के लिए तब जहाँ जाए घोटे कहाँ जाए रहे, ऊपर दाब कर रहा है।
2: क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब भी चीज डूब गए हैं एकदम, घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गाँव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहाँ पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास, सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है, इसके लिए लड़ रहे हैं। ये स्थिति है।
0: तो साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उफनाती हुई नदियां बिहार की लोगों को परेशान कर रही हैं, जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इस पानी ने चपेट में लिया है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तलों तक शाखाओं में पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित की रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेंजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। यहां सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर कर दिया है नीला, और अब इस रंग पर जंग छिड़ गई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेंजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अंबेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस, जारी है बहरूपिया का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूले